शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः। दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं अपने आप को समझने की, हमारे व्यक्तित्व को समझने की, हमारी आत्मा को समझने की, हमारे विचारों को समझने की, आध्यात्म की और धर्म की बात करते हैं। तो आज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है मीना अय्यर जी। मैं मीना अय्यर जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए उनसे प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ा सा पहले हमें बताएं कि वो भला कहाँ हैं, क्या करती हैं वो। मीना जी प्लीज।
1: जी नमस्ते, आप सबको मेरी नमस्ते।
0: जी
1: मैं मुंबई में रहती हूँ, मुझे 50 साल हो गए मुंबई में रहते हुए। इसके पहले मैं अहमदाबाद में थी जहाँ स्कूलिंग वगैरह की,
0: जी
1: फिर आगे की पढ़ाई यहाँ की, ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री में। उसके बाद मैंने म्यूजिक इंडस्ट्री में काम किया 20 साल, पहले HMV में और फिर मैग्ना साउंड।
0: वाओ, ओके।
1: तो बेसिकली आर्टिस्टों को फेमस किया।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब।
1: और अभी जो है वो मैं वेदांत सीखती भी हूँ, सिखाती भी हूँ और संगीत भी सीखती हूँ और गाती रहती हूँ।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी ही प्यारी बात कही मीना मैम आपने। खास करके एक शब्द का जो आपने प्रयोग किया, वेदांत।
1: जी,
0: कुछ वक्त गुजरा है मेरे को भी एक किताब पढ़ने का मौका मिला था वेदांता के ऊपर, और कुछ वक्त गुजरा मतलब शायद 20 साल हो गए, लेकिन
1: अच्छा।
0: पहले पहले तो वो किताब मुझे बड़ी कठिन लगी, लेकिन जब कोशिश करके आगे बढ़ते रहे तो बहुत ही अमेजिंग चीजें क्लियर हुई मुझे पहली बार मेरी जिंदगी में। मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो आज हम थोड़ी सी वेदांत के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हुए, प्रारंभ करते हुए, सबसे पहले तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा मीना मैम
1: जी,
0: कि थोड़ा हमें आध्यात्म के बारे में बताइए, मतलब स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताइए। मतलब मैं और मेरे सीधे साधे सुनने वाले लोग आध्यात्म से क्या समझे, आध्यात्म का क्या मतलब है मैम?
1: आध्यात्म का मतलब है टू जस्ट बी।
0: ओके।
1: जैसे आपको ईश्वर ने बनाया वैसे आप रहो, यानी अपना स्वभाव जिसके साथ आप पैदा हुए हो उस स्वभाव में कोई भी गलत रंग नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे इफ यू आर काइंड हार्टेड,
0: जी
1: आप दयालु हो स्वभाव से, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं आप ऐसे हो इसलिए छले जाते हो, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हर एक इंसान को ईश्वर किसी खास वजूद से बनाता है और सबका ही अलग अलग ध्येय होता है लाइफ में। अगर वो समझ में आ जाए जल्दी तो बहुत ही बढ़िया, और अगर ना आए तो जब आप तैयार हो जाते हो तो कोई ना कोई गुरु रूप में आ ही जाता है आपको समझाने के लिए कि आप किस चीज के लिए बने हो। तो अध्यात्म इस अपने आप से जुड़े रहना एट ऑल टाइम्स।
0: बहुत खूबसूरत।
1: और
0: हाँ जी बोलिए।
1: हमारा विचार ये है कि हम मनुष्य हैं और सत्य की खोज में हैं, है ना
0: जी,
1: लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम ही वो सत्य हैं और मानवता में हमने अपने आप को खो दिया है, वो सच्चाई है।
0: ओके, ऑलराइट।

0: मैम, अगर इस बात को मैं थोड़ा सा आपसे और प्रार्थना करूं समझाने के लिए कि आपने कहा हम मानव हैं और थोड़ा सा हम खो गए हैं, थोड़ा सा हम शायद भटक गए हैं, ऐसा क्यों कहा मैम आपने? मतलब हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं या शायद हमारा ध्यान कुछ ज्यादा ही मटेरियलिस्टिक चीजों में उलझ गया है, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं इस बात को?
1: जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, पहले ही अध्याय में कहा कि हमको दो चीजों ने जकड़ के रखा है इस संसार में, एक तो शोक, दूसरा मोह
0: जी,
1: सौरो एंड डिल्यूजन। सौरोस तो तरह तरह के हमारे शोक होते हैं, है ना, कोई चीज गुम गई या किसी से लड़ाई हो गई या किसी से हमने बात की और उसने सही जवाब नहीं दिया, ऐसे शोकों की मतलब कतार बनी रहती है रोज रोजमर्रा की जिंदगी में भी, और हम उससे उभर नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है, हम अंदर से आनंद रूप हैं, वो हम समझ ही नहीं पाते हैं, हम बहुत दूर आ गए हैं इन सब में उलझते उलझते उलझते, इसलिए कहा कि मानवता में हम भटक गए हैं। और मोह किस चीज का, पहले तो ये गलत फहमी है कि ये थोड़ी टेक्निकल बात है लेकिन बताना जरूरी है
0: जी,
1: कि
0: जी।
1: हम अपने आप को सीमित कर देते हैं कि ये जो शरीर है जिसका नाम मीना है ये मैं हूँ
0: जी,
1: लेकिन हम सिर्फ इतना नहीं है
0: जी,
1: एक्चुअली पूरा कॉस्मोस हम ही हैं।
0: क्या बात है,
1: हाँ ये बेसिकली वेदांत में यही समझाया जाता है कि आप जिसके पीछे भाग रहे हो या जिसे ढूंढने में लगे हो वो आप खुद हो।
0: बहुत खूब, बहुत सुंदर। मुझे मुझे ठीक से याद आ रहा है मीना मैम, कुछ समय गुजरा मैंने रोंडा

0: जो है वो एनर्जी से बना है। कोई भी एक छोटे से छोटा कण इस प्रकृति में एनर्जी से बना है। एनर्जी ना कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ना दोबारा बनाई जा सकती है, ये हमेशा है, हमेशा से थी और हमेशा रहेगी।
1: बिल्कुल।
0: अब हमारे शरीर का कोई एक छोटा सा बायोलॉजिकल सेल भी एनर्जी ही है और ये पूरी दुनिया एनर्जी से बनी है। तो उसमें ये बोला गया, तो फिर हम इस पूरी दुनिया से अलग कैसे हुए? अलग हैं ही नहीं हम, हम भी वही एनर्जी हैं, प्रकृति भी वही एनर्जी है। तो हम किस धोखे में जीते हैं कि मैं ही मैं हूं, मेरा अपना स्वार्थ, मेरा अपना पाना। आपने जो बात कही वो थोड़ी थोड़ी मुझे यहां से मैच होती हुई दिख रही है। मतलब उन्होंने शायद थोड़ा से अलग तरीके से इस बात को कहा
1: जी,
0: लेकिन आपने इस बात को वेदांता के हिसाब से समझाया
1: जी।
0: बहुत खूब दोस्तों, विचार कीजिए। ये पूरा प्रोग्राम विचार करने का ही है। जैसा मैम ने पहले ही कह दिया कि आध्यात्म जो हम हैं वही रहे हैं, इसी की कहानी है, ना हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। अब आपसे ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैम। आपने बहुत प्यारी प्रबुद्ध जिंदगी जी है, तो आपको आध्यात्म के बारे में सबसे पहले कब पता चला, किसने बताया?
1: किसी ने बताया तो नहीं, लेकिन जहां तक मुझे याद है
0: जी,
1: करीब 4 साल की उम्र से ही अगर कहीं कई भगवत कथा हो रही है या कहीं कोई संत आए हैं तो मैं बड़ी खींचती चली जाती थी उसकी ओर कि नहीं मुझे जाना है। और वो जो भी बोलते थे, कुछ समझ में आता था कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं बहुत प्रभावित होती थी कि ये कितना मतलब साफ सुथरी बातें करते हैं और उनमें कोई इमोशनल अप्स एंड डाउन्स नहीं है। तो रुचि है बचपन से ही इसमें।
0: अच्छा।
1: और टू ऐड टू दैट, मेरी जो नानी थी वो बहुत ही यंग एज में विधवा हो गई थी और बहुत ही आध्यात्मिक थी। वो हर रोज मॉर्निंग में विष्णु सहस्रनाम पढ़ना, शाम को ललिता सहस्रनाम पढ़ना और दिन भर लेडीज को एडुकेट करना गांव में कि ये स्तोत्र पढ़ो, ये स्तुति करो, ये करो, वो करो। तो एंड शी यूज्ड टू से वन सेंटेंस, ये सब तो रिलीजियस बातें हुई, भक्ति की बातें हुई, मुझे वो एक बात बार बार दोहराती थी कि मनुष्य जन्म जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको ऐसे ही गवाओ मत। तो तब मुझे ये नहीं समझ आता था, लेकिन वो समझने के लिए मैंने ये रास्ता चुना कि इन्होंने ऐसे क्यों कहा मुझसे। तो उसमें मैं बहुत कुछ सीखती चली गई और अब सिखाती गई हूँ थोड़ा बहुत।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम आज सौभाग्यशाली हैं कि जो आपकी टीचिंग्स हैं, जो आपकी नानी की टीचिंग्स रही, वो उनका कुछ हिस्सा हमें आज मिल पा रहा है। वी आर सर्टेनली फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड कि आपसे बातें हो रही हैं। बहुत सुंदर दोस्तों, मेरा फिर से आपसे प्रार्थना रहेगी कि बहुत ध्यान से इस बातचीत को सुनिए जो मीना मैम हमें बता रही हैं। एक पॉज लीजिए, विचार कीजिए अभी तक मीना मैम ने जो कहा, तब तक लीजिए एक ये प्यारा सा भजन सुनिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं।

0: तो मीना मैम, आगे बढ़ते हुए हमने बात करी आध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की।
1: यस,
0: जब हम इस तरीके की बातचीत कर रहे होते हैं मैम, तो एक शब्द पीछे नहीं रहता, वो भी फौरन आगे आ जाता है, वो है धर्म।
1: जी,
0: अब कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये सारी बातें नॉर्मल साधारण इंसान के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये सारी भाषाएं साधु संतों की हैं, बहुत पढ़े लिखे लोगों की हैं।
1: हाँ।
0: लेकिन हमें बिल्कुल सरल भाषा में बताइए मैम, क्या फर्क है ये दोनों शब्दों में, आध्यात्म और धर्म? हाँ।
1: धर्म की सहायता से आप अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हो, यानी दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से।
0: जी।
1: अगर आपने बहुत सारा ज्ञान पाया और उसके बाद अगर आप भगवान के भक्त नहीं हुए तो वो ज्ञान व्यर्थ है।
0: जी।
1: और अगर आप सिर्फ भक्ति कर रहे हैं और ज्ञान में आपकी बिल्कुल रुचि नहीं है तो वो एक तरह का पागलपन है, फैनाटिकिज्म जिसे बोलते हैं ना।
0: जी।
1: तो ये ऐसा है कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ी शक्ति है जिन्होंने हम सबको नियंत्रित कर रखा है या जो शासन चलाती है इस संसार में।
0: जी।
1: और आप अगर अपने आप को ही देखिए, आपके पास ये शरीर है, मतलब आपके पास अगर कोई चीज है तो वो आपसे अलग हुई हुई कि नहीं?
0: जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, शरीर हम बोल रहे हैं ना, हमारे पास ये शरीर है।
1: हाँ, तो शरीर आपके पास है तो शरीर आपसे अलग है। मन आपके पास है, आप अपने विचारों को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो मन भी आपसे अलग है। बुद्धि में अलग अलग विचार आते हैं, कई डिसीजंस आप लेते हो, बुद्धि भी आपसे अलग है ना। और इन सब के परे आपको कैसे ये सब दिखता है या समझ में आता है या महसूस होता है या एहसास होता है? क्योंकि आपके पास एक आत्मशक्ति है ना। वो आत्मशक्ति परसीवेबल नहीं है
0: जी,
1: लेकिन अगर आप इन सब से छूट जाओ, ध्यान करते हुए क्या होता है, यही होता है ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं। ऐसे जब आप माइनस करते जाओगे तो अपने आत्म स्वरूप में पहुंचते हो और उसमें जो क्या बोलते हैं, अनब्रोकन ब्लिस जो मिलता है वो किसी और चीज में आपको नहीं मिलेगा। ये अनुभव करने की बात है। वैसे पढ़ पढ़ के हम बहुत कुछ इंटेलेक्चुअली समझ तो जाते हैं, लेकिन जब तक ध्यान में बैठकर इसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हम खुद आनंद रूप हैं। तो रिलीजन हेल्प्स यू, जब आप उस शक्ति को मानते हो, उसके बारे में स्तुति करते हो, उसके लिए कोई नियम पालन करते हो कि थोड़ी सी पूजा कर लें, ये स्तोत्र पढ़ लें, ये मंत्र पढ़ लें, तो आपका मन शुद्ध होता है उससे। और जो शुद्ध मन होता है वो बड़ा पावरफुल हो जाता है कुछ भी करने के लिए। जब तक विचलित रहेंगे आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो धर्म और ये अध्यात्म साथ साथ चलें तो बढ़िया। और धार्मिक व्यक्ति अगर अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करें, उसको तपस्या की तरफ ले जाए, तो वो जरूर सक्सेसफुल होगा। तो दोनों अलग नहीं है, लेकिन वन शुड कल्मिनेट इनटू द अदर, अंग्रेजी में कहें तो।
0: जी जी, बहुत बहुत सुंदर। आपकी ये बातें सुनकर मेरे दिमाग में अभी दो प्रश्न आ रहे हैं मीना मैम,
1: कहिए।
0: मैं पूछता हूं, लेकिन बस एक छोटे से पॉज के बाद एक छोटा सा भजन सुनते हैं, फिर मैं वापस आता हूं आपके पास।
1: जी।

0: मीना मैम, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, प्रार्थना की, कि मेरे दिमाग में दो सवाल आए हैं। मैं इस बातचीत में पूरी एक साधारण सीधी सादी भोली भाली जनता को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो समझना चाहता है। तो
1: राइट राइट,
0: प्रश्न मेरा यह हुआ कि ठीक है, आपने बताया कि स्तुति और मंत्र पढ़ना और कोई क्रिया करना और ये सब करना और मन पवित्र करना, मतलब आपने फिर धर्म और आस्था के बीच और ये सॉरी धर्म और अध्यात्म के बीच के डिफरेंस और सिमिलैरिटीज एंड कनेक्शंस के बारे में भी बात की। बहुत सारे लोगों के लिए बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती
1: है, मुश्किल है।
0: तो एक सीधा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, इन सब चीजों को समझने के लिए क्या ध्यान लगाना एक रास्ता है मैम? नंबर वन, दिस इज पहला क्वेश्चन। अगर फर्ज कीजिए मैं ध्यान लगाने बैठ जाऊं और जैसा आपने गाइड किया कि पहले मैं कहूं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मतलब मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, धीरे धीरे नेगेटिव माइनस करते गए, आपने बोला ना, हम डिलीट करते गए चीजों को और फिर हम अपने आत्मशुद्ध आत्मा तक पहुंचे
1: जी।
0: तो साधारण मनुष्य के लिए मैं ध्यान लगाने बैठूं और विचार करता चलूं कि मैं मेरा शरीर नहीं हूं, मैं मेरा मन नहीं हूं, तो क्या यही सही रास्ता है मैम? ये मेरा पहला प्रश्न हुआ।
1: ओके,
0: दूसरा प्रश्न ये है मैम कि ध्यान लगाते लगाते हम माइनस करते करते आत्म शुद्धि आत्मा तक पहुंच गए, फर्ज कीजिए, आपने कहा ना आप ये सब करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मुझे ये पवित्र की डेफिनेशन बताएं, ये पवित्र की परिभाषा क्या है, मतलब मैं पवित्र हो गया मतलब क्या, इसका मतलब मेरे मन में ऐसा क्या हो गया कि मैं पवित्र हो गया? सो ये दो सवाल है मेरे।
1: ओके, ध्यान लगाना जो है वो मोहब्बत होने वाली जैसी बात है
0: जी।
1: यानी आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि मैं अब ध्यान कर रहा हूँ और आंखें मूंद के बैठ गए। मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोग सो जाते हैं
0: जी,
1: ध्यान कुछ होता नहीं है उसमें। और ध्यान लगाने के लिए उसके पहले एक क्रिया है कि आपको थोड़ा बहुत अध्ययन किया हुआ होना चाहिए अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, तब आप उस पर विचार करोगे और तब जाके ध्यान लगेगा आपका, है ना
0: जी।
1: तो आम आदमी के लिए किसी सत्संग में जाना या किसी मंत्र का जप करना एक नियमानुसार, या पीरियोडिकली किसी मंदिर में जाके दर्शन कराना, इन सब चीजों से आस्था बढ़ती है उनकी और मन में एक शक्ति भी मिलती है कि ये जो कर्ता धर्ता ईश्वर है वो मेरी देखभाल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उसको दृढ़ बनाता जाता है ये सब प्रैक्टिसेस। तो ध्यान लगाना ही उत्तम है ऐसा नहीं है। ध्यान लगाने वाले लोग जो हैं वो दे आर ऑल क्या कहें, मच लर्नेड, जो ज्ञानी लोग होते हैं
0: जी,
1: वो ध्यान लगा सकते हैं आसानी से।

0: और मतलब इस शारीरिक एग्जिस्टेंस से वो उस रेल में पहुंच सकते हैं, जो कि आम आदमी के लिए मुश्किल है. लेकिन फिर भी अगर आप उस क्या कहते हैं, वो शब्द जो है बड़ा आकर्षक है कि हम ध्यान करते हैं, है ना. मेडिटेशन आजकल एक बड़ा स्टाइल स्टेटमेंट है.
1: हाँ, बड़ा अट्रैक्टिव, बड़ा फैशनेबल है।
0: हाँ, तो उसमें गाइडेड मेडिटेशन नाम की चीज भी होती
1: जी
0: है
1: हाँ, जी हाँ, वो भी बड़ा
0: कि
1: फैशनेबल है।
0: हाँ, तो वो जो आपकी मेंटल कसरत कराते हैं उसमें, है ना. तो दैट इज नॉट मेडिटेशन इन द ट्रू सेंस. ध्यान कैसा होता है कि आपको मोहब्बत कैसे होती,
1: जी
0: किसी को आपने देखा और कुछ तो आपको भा गया उसमें और बस आपको अच्छे लगने लगे, है ना. ऐसे ही ध्यान में जब आप आंख मूंद के बैठते हो तो इमीडिएटली ये सब जो हम ये नहीं है बोल रहे हैं ना, नेती नेती, वो अपने आप माइनस हो जाएगा और अपने स्वरूप में आप फौरन स्थित हो जाओगे. इट्स अ वेरी क्या बोलते हैं उनको, इंस्टेंटली हो जाता है, वो
1: अच्छा,
0: कोशिश
1: ओके,
0: नहीं करनी पड़ती.
1: एट द स्पर ऑफ द मोमेंट,
0: हाँ,
1: ओके ओके। और दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा,
0: पवित्रता. हाँ,
1: जी,
0: पवित्रता के माने हम मनुष्यों के लिए 6 शत्रु बताए गए हैं शास्त्र में. सबसे पहले तो डिजायर, कामना. अगर वो आपकी पूरी नहीं होती है तो आपको क्रोध आ सकता है, आएगा ही. और अगर कामना पूरी हो जाती है तो लोभ आता है कि ये मैं और करूं और करूं और करूं. जब लोभ आता है तो आप में एक तरह का प्राइड, मद बोलते हैं उसको, प्राइड
1: जी
0: आ जाता है. और अगर वो नहीं फुलफिल होता है आपका लोभ, तो आपको ईर्ष्या, मात्सर्य होने लगता है औरों से, जिनका हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है.
1: जी
0: और अगर कामना पूरी नहीं हुई तो आपको क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तो आपको सही गलत में फर्क नजर आना
1: बंद हो
0: बंद हो
1: जाएगा।
0: जाएगा,
1: जी
0: एंड देन इट विल बी योर डिस्ट्रक्शन एक्चुअली. तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य, इनको षटरिपु कहते हैं संस्कृत में, 6 दुश्मन हमारे.
1: जी
0: तो अरे, ये सब क्या है, एक के बाद एक कनेक्टेड है. तो अगर हम कामना से दूर रहें तो इन सब से बच सकते हैं. और ऐसा नहीं है, लोग पूछते हैं, मत स्पेशली जो यंग लोग हैं वो पूछते हैं, सो व्हाट, वी शुड नॉट विश फॉर एनीथिंग.
1: करेक्ट।
0: ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. जो आपके लिए जरूरी है, आपके जीने के लिए जो जरूरी है, उसकी कामना करना कोई गलत बात नहीं है.
1: जी
0: कि आपको अपने आत्म की प्राप्ति करनी है, ये भी गलत आशा नहीं है. लेकिन जो नीड और वांट में जो फर्क है ना, वो अगर आपको समझ आ जा रहे तो आप पवित्र रहोगे. क्योंकि ये सब भावनाएं जब आती हैं तो मन अपवित्र हो जाता है ना. क्योंकि आपको कैसे बनाया, आपको बिल्कुल साफ सुथरा बना के ईश्वर ने भेजा है,
1: जी
0: उसमें आप ये सब क्वालिटीज डालोगे तो अपवित्र होगा ही.
1: ओके मैम, आई एग्री विद योर पॉइंट। बात मुझे एक साधारण मनुष्य के दिमाग के हिसाब से 50% मैं कन्विंस हो पा रहा हूं। 50% अभी अभी आपने कुछ एग्जाम्पल्स दिए यंग जनरेशन की, क्या हम विश करना बंद कर दें
0: हाँ
1: वगैरह वगैरह, तो वहां
0: जी
1: पर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, वैसा भी नहीं करना है। तो कई कई मौके आजकल की डेट में ऐसे किसी भी इंसान के साथ आ जाते हैं कि हम बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे थे और किसी ने
0: हाँ
1: पीछे से हमारी गाड़ी में टक्कर मारी।
0: जी
1: और चलिए, टक्कर तक तो ठीक है, कोई बात नहीं,
0: हाँ
1: क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक करा लेना चाहिए,
0: हाँ
1: उसमें
0: हाँ
1: लड़ाई झगड़ा की क्या बात है,
0: हाँ
1: आफ्टर ऑल इंश्योरेंस कराया ही इसीलिए था। अब गाड़ी सड़क पे चलेगी तो ठुकेगी भी,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इससे आगे बढ़ गई है बात, गाड़ी ठुकी पीछे से ठुकी, मतलब गलती उसकी थी, वो फिर भी आके हमको गेट खोल के बाहर निकाल के मारना शुरू कर देता है
0: जी,
1: कि किस तरह से तू गाड़ी चला रहा था और तू कौन है और मैं बहुत बड़ा हूं। मैम वहां पर कहां रह जाती है पवित्रता मन की, मैंने कोई गलती की नहीं फिर भी मैं पिट रहा हूं। ऐसे अत्याचार में तो फिर भड़क पड़ता है, मन करता है गोली मार दें इसको। वहां पर पवित्र मन का क्या मतलब हुआ, पवित्र मन फिर वहां कैसे काम आएगा? मतलब हुआ ये कि मैं पिटता रहूं उससे पवित्र मन लेके?
0: नहीं नहीं नहीं, वहां पे क्या बोलते हैं, जो सही है वो करना चाहिए
1: जी,
0: और जो गलत है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपके किसी फॉल्ट के बिना आपके ऊपर वो बरस रहा है या मार रहा है, तो फिर आपका भी हक है कि आप उसको भी सही जवाब दें उसी तरह, नहीं तो उसको भी समझ में नहीं आएगा।
1: हाँ,
0: क्योंकि उसको वही भाषा समझ आती है, तो आपको भी उसको वैसे ही समझाना पड़ेगा।
1: ओके, क्योंकि रेज जो है ना मैम चारों तरफ बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है। पीछे,
0: और उसका भी आप मूल कारण देखिए क्या
1: जी,
0: है
1: जी जी,
0: व्हेन यू जीरो डाउन कि ये क्यों हुआ, उसके पीछे भी कोई डिजायर ही होगा। अब देखो
1: जी जी, डिजायर डिजायर शायद ये होगा कि मैं अपने आप को उससे बड़ा साबित करूं।
0: हाँ, कुछ भी हो सकता है
1: जी,
0: फेम फेम का डिजायर, पैसे का डिजायर,
1: पावर का डिजायर,
0: पदवी का डिजायर। हाँ।
1: जी जी जी, ठीक है। तो दोस्तों इस बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है, कहां पर और कितना हमें रिटेलिएट करना है या रिस्पॉन्सिव होना है। रिस्पॉन्सिव होना,
0: मतलब रिस्पॉन्सिव होना बेटर
1: है, मतलब
0: आपके लिए भी और अपोजिट पार्टी के लिए भी।
1: क्योंकि रिस्पॉन्सिबल शब्द को अगर हम तोड़े तो आता है रिस्पॉन्स एबल, मतलब हम रिस्पॉन्स देने लायक हैं।
0: बिल्कुल,
1: रिएक्ट और रिस्पॉन्सिबल में यही फर्क है।
0: हाँ, हाँ।
1: चलिए, वेल मीना मैम, आपने वेदांता भी पढ़ा, आपने कई कॉर्पोरेट्स में काम भी किया, संगीत से भी जुड़ी रही, बहुत आपने ज्ञान भी लिया और मेडिटेशन भी किया और बात को समझा भी।
0: हाँ जी।
1: लेकिन आप आज की दुनिया में हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं आज की दुनिया से, और आज सोशल मीडिया का जबरदस्त बोलबाला है। अब हम आंख मूंद कर बैठ तो नहीं सकते मैम कि हमको सोशल मीडिया देखना ही नहीं है। तो सोशल मीडिया के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे कि सोशल मीडिया का आध्यात्म पर या स्पिरिचुअलिटी पर, या चलिए एक बार को धर्म की बात भी कर लेते हैं, इन पर क्या असर हो रहा है सोशल मीडिया का?
0: सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है अगर मुझसे पूछें
1: जी,
0: कि विश्व भर में आपके कोई भी कनेक्टेड दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, उनसे आप पल भर में जुड़ सकते हो
1: जी।
0: पहला तो फायदा ये है। दूसरा, आपको जो अच्छी बात लोगों को बतानी होती है वो भी एक क्लिक करने से सबके पास पहुंच जाती है, है ना, और उसका ही वाइस वर्स भी पॉसिबल है।
1: बिल्कुल,
0: तो उससे बच के रहना है। ये नहीं है कि हम उसमें बिल्कुल रहे ही ना या वो देखे ही ना, समझ में कैसे आएगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है इफ यू डोंट सी। अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए ना, पहले कहां ये स्टार मेकर या कुछ और था जहां हम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे, अब तो हो सकता है। पहले अनलेस एंड अंटिल किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो ने आपको बुलाया नहीं, ऑडिशन नहीं लिया, तब तक कोई आपको सुन भी नहीं सकता था, पता भी नहीं चलता था। अभी तो यू कैन डू इट। जहां तक अच्छी बातों को फैलाने वाली बात है, सोशल मीडिया इज वेरी गुड। जहां लोगों के साथ कनेक्ट होने की बात है वहां भी अच्छी बात है, और जहां लोगों को सतर्क करने वाली बात है उसके लिए भी सोशल मीडिया बहुत अच्छा है
1: जी।
0: लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। और दूसरा उसका एक एस्पेक्ट है कि बहुत अपने फोन में उसको अगर देखते रहें तो आपका नुकसान भी एक तरह होता है कि आपकी आंखों की जो रोशनी है उस पर बहुत बुरा असर होता है उसका
1: जी।
0: इसलिए जितना कम इस्तेमाल करें अच्छा है, सिर्फ अपने काम के लिए उसको यूज करें फिर उसको रख दें। अभी आजकल के अगर आप बच्चों को देखें तो सदा स्क्रीन में कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, पता नहीं क्या।
1: करेक्ट।
0: तो वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। और जब आप चार लोगों के बीच बैठे हो तो ये तो मतलब अशिष्ट व्यवहार है मुझे पूछे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: सामने इंसान बैठा है, आप उनसे बात करिए, ये क्या बात हुई उसमें झांक रहे हैं। घरों में भी होता है
1: जी,
0: माँ बाप बच्चे बैठे हैं, सब अपने अपने फोन में पता नहीं क्या देख रहे हैं।
1: आपने बिल्कुल, बिल्कुल।
0: आदतें हैं जो बिगड़ी हुई हैं, उनको सुधारने में देर नहीं लगेगी, बस मन होना चाहिए कि अब नहीं करना है।
1: बहुत बहुत प्यारी बात कही आपने मैम, बहुत बहुत प्यारी बात कही। और इसको सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रही हैं एक दूसरे एंगल से कि सोशल मीडिया एक दो धार की तलवार है।
0: हाँ।
1: दोनों तरफ इसकी एजेस हैं, अगर हमने इसको गलत चलाया
0: जी
1: तो हम कट जाएंगे।
0: हाँ।
1: सो वी नीड टू नो कि इसको हमें चलाना कैसे है, किस तरफ से इसको चलाना है।
0: हाँ।
1: और बस वो खतरनाक लाइन कब पार होती है बस वही पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों टाइम एंड अगेन इस बारे में बार बार बात हो रही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत प्यारा है लेकिन हमें सजग होना चाहिए कि कहीं ये हमारे सर पर ना चढ़ जाए। चलिए
0: हावी नहीं हो जाए,
1: हावी ना हो जाए। क्योंकि हमको गुलाम बनने की बहुत ज्यादा आदत है, फौरन नशे में डूब जाने की आदत हमें बहुत है
0: जी, जी।
1: तो इसलिए थोड़ा संभलिए। चलिए मीना मैम।
0: हाँ।
1: मुझे ये बताइए, बहुत बहुत हाँ। सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की, शुरू शुरू में भी आपने कहा था, प्रैक्टिस करते हैं। हमको चारों तरफ दिखाई देता है, हर फैमिली में कम से कम बुजुर्ग लोग तो हमें ये करते हुए दिखते ही हैं, फिर कुछ यंग लोग भी दिखाई देते हैं। स्पिरिचुअलिटी उनको लगता है बड़ी प्यारी चीज है और उससे हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, हम शांति पा जाएंगे, स्ट्रेस हट जाएगा, फिजिकली भी हम अच्छे हो जाएंगे, लेकिन फिर वो फिर मॉडर्न दुनिया में उलझ जाते हैं, काम में स्ट्रेस लेने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा घर में परिवार में कलह सब कुछ शुरू हो जाता है।
0: यस।
1: तो आफ्टर ऑल कोई भी इंसान आध्यात्म की प्रैक्टिस कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाता, व्हाई?
0: अपनी चॉइस है ना
1: जी।
0: अभी मुझे देख लो, जब मैं बचपन से इसे जुड़ी हुई हूँ लेकिन फुल टाइम देने का वक्त मुझे तब नहीं मिला, कुछ पढ़ाई भी नहीं की, कुछ सीखा भी नहीं, कुछ भी नहीं। चार पांच श्लोक आते थे वही बोल दिया करते थे, रोज स्नान करके फिर स्कूल भाग जाते थे। लेकिन शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके भी सब 15 साल के हो गए, मेरी बड़ी वाली बेटी, तब जाके मैं इसके अध्ययन में लगी। और फिर ऐसे हुआ कि मतलब उन किताबों से मन हटता ही नहीं था, एक के बाद एक, एक के बाद एक मैं बस सीखती चली गई, सीखती चली गई, सीखती चली। वो तो ऐसा है कि आप जब तक पानी में उतरोगे नहीं तैरना सीखोगे नहीं
1: जी।
0: ऊपर ऊपर से देख के अच्छा लगता है, ये तो ठीक है, लेकिन अनुभव करने की बात है। यू हैव टू वॉक द पाथ टू नो द पाथ, है ना?
1: ओके।
0: किसी के बताने पे आप कितना ही करोगे। और लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन भी है इसके बारे में, जैसा मैंने कहा ना, आप सीधी सादी जिंदगी जियो कि एक डिसिप्लिन के साथ जियो कि सुबह इस वक्त उठना है, इस वक्त स्नान करना है, इस वक्त खाना है, इस वक्त सोना है, तो वो भी एक स्पिरिचुअल लाइफ ही है। स्पिरिचुअलिटी यानी ये नहीं कि आप माला जपते बैठ जाओ या ऑरेंज वस्त्र पहन लो या किसी मंदिर में रोज जाओ, दैट डज नॉट डिफाइन स्पिरिचुअलिटी। आप अपने अंदर का जो आप हो ना, आपका जो व्यक्तित्व है, उसके साथ हमेशा जुड़े रहो, यही स्पिरिचुअलिटी है।
1: ओके।
0: हाँ।
1: बिल्कुल ठीक।
0: अभी कोई दरवाजा खटखटाता है
1: जी,
0: कौन है पूछता है ना।
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ।
0: तो आप कहते हो ना मैं हूँ, तो व्हाट मेक्स यू से कि मैं हूँ, थोड़ा सोचिए उसको। तो वो जो अंदर से आवाज आई कि मैं हूँ, वो हमेशा आपको एहसास दिलाता रहता है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ।
1: ओके,
0: उस मैं से हमेशा जुड़े रहिए, अलग मत होइए। तो दैट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। फिर आप गलत बातों में नहीं पड़ोगे, कोई बिना मतलब की बात कर रहा है तो आप अपने आप वहां से उठ के चले जाओगे। दीज थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली, कोई एफर्ट नहीं लगता है इसमें। खुशी खुशी रहना, एफर्टलेसली जीना, यही स्पिरिचुअलिटी है। जितनी खुशी आप लोगों को बांट सकते हो बांटो, बिना किसी मोल के, वही तो स्पिरिचुअलिटी है। ह्यूमन एक 18 पुराण है हमारे
1: जी,
0: एक श्लोक है उसके बारे में कि अष्टादश पुराणानाम केवलम वचनद्वयम, कि 18 पुराणों में दो ही बातें कही गई हैं, वो ये है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, किसी को दुख ना पहुंचाएं और जितना उपकार हो सके किसी का भी उतना करें जिंदगी में, तो आप स्पिरिचुअल हो।
1: सुंदर, अति सुंदर। चलिए सिंपल भाषा में सिंपल मैसेज है दोस्तों, विचार करने लायक चीज है। रुकिए ना, एक प्यारा सा भजन सुन लें और फिर हम मीना मैम के पास वापस आते हैं।
2: बहुत मुश्किल है डगर इस संसार की, किसी गुरु की तलाश कीजिए जो हमें इन मुश्किल

0: अगर आपकी बातचीत को सुनकर, हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर अगर कोई व्यक्ति कन्विंस हो जाए, सहमत हो जाए कि नहीं ठीक है, आज मुझे कुछ डिफरेंट प्रस्पेक्टिव मिला है अध्यात्म का, रिलीजन का, चलिए जैसा मीना मैम ने कहा मैं प्रैक्टिस शुरू करता हूं, क्यों मैं अपने अंतर्मन में बड़ा दुखी इंसान हूं, बड़ा गुस्सा भरा हुआ है मेरे अंदर, मन करता है इसको मार दूं उसको मार दूं, मेरे हिसाब से कभी कुछ हो नहीं रहा वगैरह वगैरह। लेकिन आज मीना मैम ने बोला है चलो मैं शुरू करता हूं ध्यान से और आध्यात्म की तरफ मैं बढ़ूंगा, मन को पवित्र करूंगा, जैसे हम लोग की पीछे बातचीत हुई। तो 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप आप क्या बताना चाहोगे कि हमें 1 2 3 4 ये करो तो धीरे धीरे आप आध्यात्म की तरफ बढ़ोगे, मतलब हमें मेथड बताइए।
1: हाँ, सिंपल मेथड्स बताती हूँ
0: जी।
1: जब भी मौका मिले किसी मंदिर में जाके दर्शन कीजिए और अकेले जाइए
0: जी।
1: तो जब आपके और उस अंदर मूर्ति के बीच में जो कुछ भी एक्सचेंज होता है उसको आप मन में लेके वापस आइए, जरूर उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको कोई कोई भी हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई भी पसंदीदा है
0: जी,
1: तो उनके नाम का जाप आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको शिव जी पसंद है तो ओम नमः शिवाय है ना, सो अबाउट 5 मिनट्स 10 मिनट्स आंख मूंद के उनका नाम जाप करो तो उसमें क्या होगा, माइंड स्टेडी होगा
0: जी।
1: तीसरा, जब कभी कोई महात्मा कहीं भी लेक्चर दे रहा हो किसी भी विषय पे, नीड नॉट बी ऑफ योर इंटरेस्ट, लेकिन अगर कोई महात्मा कहीं कोई सत्संग हो रहा है तो मौका मिले तो जाइए उधर, क्योंकि उस पूरे घंटे 1.5 घंटे में वो लोग जो कुछ भी बताते हैं उनमें कभी कभी हमारे मन में उठ रहे सवालों का भी जवाब मिल जाता है
0: जी।
1: मुझे ऐसी जिंदगी में बहुत सारे जवाब मिले हैं, मैं इंटेंशनली नहीं गई थी लेकिन जाके कुछ पाके आई। तो ये सब चीजें

0: तो धीरे धीरे परिवर्तन जरूर होगा, ये मेरा विश्वास।
1: सिंपल आसान तरीका है दोस्तों, अपनाने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा हमें अपने आप को अरेंज करना है। वक्त तो वही है 24 घंटे, हमें अपने आप को अरेंज करना है और इन चीजों पर जाना है। नंबर वन ध्यान, नंबर टू कोई अगर कहीं प्रवचन हो रहा हो तो जाके सुनिए। बहुत प्यार से मैम ने कहा कोई जरूरी नहीं है आपके इंटरेस्ट की बात हो रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ सवालों के जवाब आपको फिर भी मिल ही जाएंगे। नंबर थ्री, कोई भी देवता हैं, कोई भी डेटी है जिनको आप पसंद करते हैं, उनका ध्यान कर लीजिए क्या फर्क पड़ रहा है। बाकी वक्त तो हम गुजारते ही हैं, तो ये चार पांच प्रैक्टिसेस हैं। मुझे ऐसा लगता है विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर हम 5 मिनट 10 मिनट मे बी हाफ एन आवर जितना भी हमको मन लगे करें, तो धीरे धीरे उस तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत सुंदर मैम, तो बस चलते चलते मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपके सारे जो श्रोता हैं आज जिन्होंने आपको सुना, आपसे बातें समझी हैं, अपनी प्यारी सी जिंदगी को जीने के लिए, आपने पीछे कहा ना, आपकी नानी ने कहा था कि मनुष्य का एक जीवन मिला है उसको ऐसे बेकार मत करो। तो क्या संदेश है आपका कि हम उसको बेकार कैसे ना करें? बस
0: अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है
1: जी
0: कि अपने आप के पास या अपनी आत्मा के पास फिर लौट जाने के लिए
1: जी
0: शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास है।
1: वाओ।
0: एक श्लोक है जो मैं पढ़ूंगी जो आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ है कि दुर्लभम त्रयम एवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। यानी ये तीन चीजें दुर्लभ है लाइफ में। पहला तो मनुष्यत्वम, ह्यूमन बीइंग पैदा होना। दूसरा मुमुक्षुत्वम, यानी अपने मन में एक चाह हो कि मुझे अब फिर लौट के नहीं आना है संसार में, मुझे मोक्ष पाना ही है। और तीसरी बात जो दुर्लभ है वो ये है कि कोई महापुरुष हमारे जीवन में आए और हमें ये सब समझाए कि हम कैसे पार लगाएं। और ये सब मिलता है हमको देवानुग्रह हेतुकम, भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो चूंकि हमें मानव शरीर मिला है तो उसका पूरा पूरा उपयोग करें उसको याद करते हुए, तो जरूर हम पार लग सकते हैं। दैट इज द मैसेज। और हमारे पास जो बुद्धि है, अभी एक पक्षी या एक पशु जो है बैठ के ध्यान नहीं कर सकता है, उसको ये सब समझ में भी नहीं आएगा कि ये जन्म क्यों मिला है या हमें क्या करना है, पास्ट में हमने क्या कर्म किए थे, अब क्यों भुगत रहे हैं, कुछ नहीं समझ आता है। लेकिन मनुष्य के पास वो शक्ति है, अपने सारी जो करण मिले हैं हमको, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो मिले हैं, उनको नियंत्रण में रखने की शक्ति मनुष्य के पास है। और अपने आप के पास पहुंचने का रास्ता भी हमारे पास है, बस थोड़ा सूक्ष्म बनना पड़ेगा। वो जैसे कबीर दास का भजन है ना, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास।
1: जी, अमेजिंग, ब्यूटीफुल।
0: तो अपने साथ रहिए, अपने पास रहिए, जितना हो सके खुश रहिए, जितना हो सके औरों को भी खुश बनाए रखिए। दैट्स ऑल हम मनुष्य के रूप में कर सकते हैं।
1: बहुत सुंदर मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है कि इतनी प्यारी चीजें आपने हमें बताई हैं। सिंपल तरीके से कोई भी व्यक्ति उसको सुनकर प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आई होप मैंने कुछ तो काम की चीज बताई।
1: जी
0: धन्यवाद,
1: थैंक यू।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन FM रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। कबीर खान। जब भी हम चक दे इंडिया का नाम सुनते हैं, आंखों के सामने एक ही चेहरा आता है, वो कोच जो चिल्लाता कम था, समझता ज्यादा था, जो देशभक्ति को शोर से नहीं सन्नाटे में लिए हुए एक संकल्प से जीता था, और उस किरदार को जिंदगी दी थी शाहरुख खान ने। कबीर खान ने हमें सिखाया था, देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडा लहराना नहीं, देशभक्ति का मतलब है हर बार, हर हार के बाद अपनी गर्दन सीधी रखना, जीत के बाद विनम्र रहना, और सबसे जरूरी, अफरा तफरी के बीच विश्वास बनाए रखना। कल मुझे कबीर खान बहुत याद आए, इसीलिए नहीं कि दुनिया ने उनका जन्मदिन मनाया, बल्कि इसीलिए कि एक असली कहानी मेरी आंखों के सामने थी। एक नाम, अमोल मजूमदार। सोचिए, एक नौजवान लड़का मुंबई की रणजी टीम में डेब्यू करता है, और पहली ही पारी में 216 रन, वो भी नॉट आउट। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक ऐलान था कि मैं तैयार हूं। लगभग 25 साल तक वो रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। उन्होंने 11,000 से ज्यादा फर्स्ट क्लास रन बनाए, 30 शतक, हर मुश्किल वक्त में टीम के लिए दीवार बनकर खड़े रहे। टैलेंट था, संकल्प था, आंकड़े भी साथ थे, लेकिन कभी कभी किस्मत अपनी अलग ही कहानी लिखती है। इंडिया की नीली जर्सी उनसे दूर ही रही। सोचिए जरा, जब दुनिया कहती हो ये लड़का देश के लिए खेलना चाहिए, और फिर भी मौका ना मिले, ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसका सपना आंखों के सामने हो और हाथ तक पहुंचकर फिसल जाए। ये कहानी यही मुरझा भी सकती थी, लेकिन नहीं। कुछ लोग सपने टूटने के बाद बिखरते नहीं, वो उन टुकड़ों को ईंधन बना लेते हैं। जब खेलने का सफर धीरे धीरे खत्म हुआ, तब उन्होंने मैदान छोड़ा नहीं, बस अपनी जगह बदल ली। बैट्समैन से मेंटर बन गए, आईपीएल में बैटिंग कोच, अंडर 19, अंडर 23 के साथ काम, मुंबई टीम के हेड कोच, और फिर आया 25 अक्टूबर 2023, एक नया अध्याय। BCCI ने उन्हें इंडियन वुमेन्स टीम का हेड कोच बना दिया। उस दिन सिर्फ उनका सपना नहीं बदला, एक पूरी टीम का भविष्य बदलने की शुरुआत हुई। फिर आया 2025 का वुमेन्स वर्ल्ड कप, शुरुआत शानदार, श्रीलंका पर जीत, पाकिस्तान पर जीत, देश को लगा इस बार कुछ खास होने वाला है। लेकिन खेल सिर्फ जज्बात से नहीं जीता जाता। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, 3 लगातार हार, विश्वास हिल गया, सवाल उठने लगे, सपना नाजुक लगने लगा। इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद तो लगा कि बस, सेमीफाइनल बस एक पतली सी डोर पर लटका हुआ है। ये वही पल था जहां कहानी टूट भी सकती थी, लेकिन वही फिर से एक शांत आवाज उठी। कोच ने टीम को देखा, गुस्से से नहीं, शोर से भी नहीं, शांति से, और कहा,
गलतियां बार बार नहीं दोहरा सकते, लाइन पार करनी होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये डर से आजादी का संदेश था। उन शब्दों ने आग जगाई, खुद पर विश्वास आया और फिर जो हुआ वो कहानी का मोड़ था। टीम वापस मैदान पर उतरी डर के साथ नहीं, दृढ़ निश्चय के साथ। हर मैच में एक नया जज्बा, हर ओवर में एक नई उम्मीद और फिर कैप्टन हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में इंडिया ने 2025 का वर्ल्ड कप जीत लिया। ट्रॉफी उठी, आंखों में आंसू थे, देश जश्न मना रहा था। लेकिन जीत के बीच एक चेहरा था, शांत विनम्र अमोल मजूमदार। उन्होंने टीम को सिर्फ टेक्निक नहीं दी, उन्होंने टीम को डर से बाहर निकाला। उन्होंने बताया हार अंतिम सच नहीं है। कबीर खान एक फिल्म का किरदार था, लेकिन यहां कहानी असली थी। कबीर खान ने कहा था 70 मिनट, यहां शायद 70 मिनट नहीं 70 दिन लगे या 70 साल का सब्र। लेकिन सीख एक ही थी, देशभक्ति सिर्फ जोश नहीं होती, देशभक्ति शांति होती है, जिम्मेदारी होती है और सबसे बढ़कर दूसरों के सपनों को अपना बना लेना होता है। अमोल मजूमदार खुद इंडिया के लिए नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने एक पूरी टीम को दुनिया जीतना सिखा दिया। कभी कभी खुदा हमें वही नहीं देता जो हम मांगते हैं, वो हमें उससे भी बड़ा देता है। खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इतिहास लिखने का मौका जरूर मिला और शायद यही असली जीत थी। इस कहानी का सार, जीत तब बनती है जब अहंकार छोटा हो और संकल्प बड़ा। और कभी कभी सबसे बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो खुद स्पॉटलाइट में नहीं होता। कबीर खान ने हमें सिनेमा में भी यही सिखाया था और अमोल मजूमदार ने जिंदगी में दिखा दिया। और शायद इसीलिए ऐसे लोग देश के दिल में बस जाते हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: इंडियन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कोई भी चाचा जी फॉरवर्ड भेज देंगे ये मैसेज 11 लोगों को भेजो वरना, और नीचे लिखा होगा साइंटिफिकली प्रूवन। इंडिया में रिसर्च का सबसे बड़ा सोर्स है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स।

सफर बीच का। कभी कभी ना सुबह थोड़ी ज्यादा शांत होती है, जैसे दुनिया ने हल्का सा वॉल्यूम कम कर दिया हो। शहर की आवाजें, गाड़ियों के हॉर्न, फोन की घंटी, लोगों की भाग दौड़, सब धीरी पड़ जाती है। और उस शांति के बीच एक ट्रेन चल पड़ती है। सोचिए, एक औरत साड़ी में लिपटी हुई, हाथ में किताब, उंगलियां उस किताब के पन्नों के बीच ठहरी हुई, जैसे जिंदा निशान, जैसे कोई याद रुक कर बैठी हो। ट्रेन धीरे से पहाड़ों की तरफ बढ़ रही है। सुबह की रोशनी साड़ी के पल्लू पर गिरती है और कपड़े की सिलवटें भी कहानी सुनने लगती है। प्लेटफॉर्म पर हल्का सा कोहरा है, ठंडी हवा, दूर पहाड़ों पर बादल लटके हुए, और वो उतरती है बिना शोर के, जैसे सफर ने उसे हल्का सा छूकर आगे बढ़ा दिया हो। ये कोई तेज रफ्तार सफर नहीं, यहां कोई जल्दी नहीं, यहां सिर्फ बीच का वक्त है। सुबह का पर्दा जब पहाड़ों से उठता है ना, तो लगता है जैसे दुनिया ने पानी के रंग से खुद को रंग दिया हो। दियोदार के पेड़ बादलों में गुम हो जाते हैं, चाय के बागों में शबनम मोती बनकर टिक जाती है, पहाड़ियां कोहरे की पतली सी डोर से जुड़ी होती हैं, और ट्रेन के अंदर अंदर वक्त अलग चल रहा है। चाय के कप की हल्की सी खनक, पहियों की एक समान धड़कन, धक धक धक धक धक धक, जैसे पूरा देश सांस ले रहा हो। कोई कूली आवाज लगाता है, कोई अपनी शॉल का कास लेता है, कोई खिड़की से बाहर देखते देखते खुद में खो जाता है। यहां कोई भाग नहीं रहा, यहां सिर्फ रुकना है, महसूस करना है। स्टेशन्स आते हैं, छोटे छोटे स्टेशन्स, जैसे कहानी के बीच में छोटी सी एक तस्वीर, लैंप की पीली रोशनी, आधे चेहरे, गरम पकौड़ों की खुशबू और बेचने वाले की मुस्कान, जो ठंड से भी ज्यादा गर्म हो। फिर एक सीटी बजती है और वो छोटा सा शहर फिर से कोहरे में लिपट कर पीछे रह जाता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है आपको कि ट्रेन जब छोटे पहाड़ी स्टेशन पर रुकती है तो मन करता है कि बस थोड़ी सी देर वहीं रुक जाएं, बस एक घंटे के लिए ही सही, आप उतर कर किसी और जिंदगी को छू लें। एक गीली सी गली, लकड़ी के धुएं की खुशबू, मिट्टी और बारिश का मिला जुला एक एहसास, दूर कहीं से गिरजे की घंटी की आवाज, प्लेटफॉर्म पर खड़े स्कूल के बच्चे स्वेटर पहने हुए, एक आदमी हाथ हिलाता हुआ जैसे वो आपको पहचानता हो, जैसे आप दोनों का कोई पुराना रिश्ता हो बिना मिले, और आप सोचते हो क्या होता अगर मैं यहीं रह जाती, क्या होता अगर मैं इस शहर की हो जाती। लेकिन सफर रुकता नहीं, एक तेज सी सीटी और ट्रेन फिर से चल पड़ती है। वो शहर पहाड़ों में लिपट जाता है, लेकिन लेकिन दिल में रह जाता है। कुछ जगहें होती हैं ना जो बस पल भर के लिए मिलती हैं, पर उनका असर गहरा होता है, कभी कभी तो मंजिल से भी गहरा। हाँ, शायद सफर का सच यही है, मंजिल जरूरी है पर जो बीच का रास्ता है ना, वो ज्यादा याद रहता है। वो इंतजार, वो खिड़की से बाहर देखना, वो सोचना कि जिंदगी पहुंचने का नाम नहीं है, वो लम्हे जब आप किसी सुरंग से गुजरते हो और अंधेरा पल भर के लिए सब कुछ चुप कर देता है, फिर अचानक रोशनी,
जैसे याद दिलाती हो अंधेरा भी सफर का हिस्सा है। पुल हल्की सी कांप के साथ पार होते हैं, नीचे गहरी घाटी, ऊपर खुला आसमान, और तब कहीं जाकर समझ आता है ये सफर सिर्फ एक जगह का नहीं है, ये सफर अंदर का है। हर स्टेशन एक एहसास है, हर मोड़ एक सीख, हर रुकना एक मौका। जिंदगी भी शायद ऐसी ही है। हम सोचते हैं मंजिल पे पहुंचकर सुकून मिलेगा, पर सुकून तो अक्सर रास्ते में मिल जाता है, एक कप चाय में, एक अनजान मुस्कान में, एक पल के ठहराव में। और फिर धीरे से समझ आता है मंजिल सिर्फ बहाना है, असल खूबसूरती तो सफर में है। वो धक धक, वो कोहरा, वो पहाड़ी शहर जो पल भर के लिए अपना सा लगने लगता है, वो सफर जो हमें बदल देता है बिना शोर किए। और जब आप अपनी मंजिल पर उतरते हो तो आप वही नहीं होते जो चढ़े थे। कुछ यादें साथ होती हैं, कुछ शहर दिल में बस जाते हैं, कुछ चेहरे नाम के बिना अपने हो जाते हैं। और फिर जिंदगी की किसी शांत सुबह में जब आवाजें कम हो जाती हैं, तो वही सफर फिर से याद आता है। तब समझ आता है जिंदगी का मतलब सिर्फ पहुंचना नहीं था, जिंदगी का मतलब था चलना, महसूस करना, रुकना और फिर से चल देना। सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत था। जेंटली, धीरे से सफर कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: देसी मिडिल क्लास लग्जरी। इंडियन मिडिल क्लास के पास सब कुछ होता है, बस उसे यूज करने की परमिशन नहीं होती। ड्राइंग रूम का सोफा सिर्फ गेस्ट्स के लिए, नया डिनर सेट सिर्फ खास मौके के लिए। और वो खास मौका कब आता है? जब डिनर सेट का डिजाइन आउटडेटेड हो जाता है। हम लोग चीजें फ्यूचर के लिए संभाल के रखते हैं भाई, और फ्यूचर आता है डी क्लटर करने।

26 नवंबर 2008 मुंबई की एक ऐसी रात जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। शहर रोशनियों से भरा था लेकिन अंधेरा अचानक बहुत गहरा हो गया। गोलियों की आवाज, लोगों की चीखें, डर का एक भारी सा साया। ऐसा लगा जैसे आतंक ने मुंबई की हिम्मत तोड़ने की हर कोशिश की हो। लेकिन उस अंधेरी रात में एक रोशनी भी थी, एक ऐसा पल जहां इंसानियत और साहस ने डर को चुनौती दी। उस रोशनी का नाम था तुकाराम ओमले। वो मुंबई पुलिस के एक साधारण से कांस्टेबल थे, ना कोई बड़ी कुर्सी, ना कोई बड़ी ताकत। उम्र 54 इयर्स, शरीर अपने बेहतरीन दौर में भी नहीं था और हाथ में ना बंदूक ना सुरक्षा कवच, सिर्फ एक लकड़ी की लाठी। लेकिन जो चीज उनके पास थी वो किसी भी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली थी, उनका संकल्प, उनका फर्ज, उनका देश के लिए जीने और मरने का जज्बा। उस रात जब गोलियां चल रही थी, उन्होंने एक ऐसे आतंकवादी का सामना किया जो पूरी तरह से इक्विप्ड था, हथियार से लैस था, AK-47 लेकर खड़ा था। सोचिए, एक तरफ ऑटोमेटिक राइफल, दूसरी तरफ एक लाठी। अक्सर फिल्मों में हम देखते हैं ना ऐसे ही दृश्य, लेकिन ये फिल्म नहीं थी दोस्तों, ये सच था, उस रात का काला सच। जैसे ही उन्होंने आतंकवादी को देखा, उन्होंने पल भर का भी इंतजार नहीं किया, सीधा बढ़े और उस बंदूक की नाल को पकड़ लिया। हाँ, बंदूक की नाल, वो लोहा जो गोली चलाने से तप रहा था, वो लोहा जो मौत बरसा रहा था। उन्होंने उसे दोनों हाथों से जकड़ लिया। गोलियां चल रही थी बिल्कुल पास से, एक के बाद एक उनके शरीर को चीरते हुए। कहते हैं उन्हें 12 से ज्यादा गोलियां लगी थी, लेकिन सोचिए, हर गोली जो उनके शरीर ने सही वो किसी और तक पहुंचने से रुक गई। हर पल जो उन्होंने उस नाल को पकड़ कर रखा वो पल देश को बचाने का पल था। खून बह रहा था, शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनकी पकड़ ढीली नहीं हुई। जब तक उनके साथियों ने आकर उस आतंकवादी को काबू में नहीं कर लिया, तब तक वो पकड़, वो हिम्मत, वो दृढ़ता आखिरी सांस तक बनी रही। दोस्तों, ये सिर्फ एक बहादुरी का काम नहीं था, ये इतिहास था। दुनिया भर में बहुत ऐसे हमले हुए हैं, लेकिन शायद ये पहली बार था जब इतने बड़े शहरी आतंकी मामले में एक भारी हथियार से लैस हमलावर को जिंदा पकड़ा गया। और ये मुमकिन हुआ एक निरस्त्र कांस्टेबल की वजह से। उस जिंदा गिरफ्तारी ने सच को दुनिया के सामने रखा, साजिश का चेहरा बेनकाब हुआ, न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई। अगर वो उस रात डर जाते, अगर वो एक कदम पीछे हट जाते, तो शायद कहानी कुछ और होती। दोस्तों, हिम्मत का मतलब सिर्फ ताकत नहीं होता, कभी कभी हिम्मत का मतलब होता है डर के सामने खड़े रहना, अकेले, निरस्त्र, लेकिन टूट कर नहीं। श्री तुकाराम ओमले ने हमें ये सिखाया कि देशभक्ति शब्द नहीं होती, वो क्रिया होती है, वो फैसला होता है जो आप उस पल में लेते हो जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पल का फासला हो। उन्होंने अपनी जान दी, लेकिन देश को एक अनमोल चीज दे गए, सच, न्याय की उम्मीद और एक मिसाल। आज हम जब 26/11 को याद करते हैं तो हम दर्द को याद करते हैं, शहीदों को याद करते हैं, लेकिन उन सब के बीच एक चेहरा जो हमें हमेशा याद रखना होगा, एक हल्का सा मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक साधारण आदमी जो किसी फिल्म का हीरो नहीं था, जो किसी पोस्टर पर भी नहीं था, लेकिन जिसने असली जिंदगी में हीरो होने का मतलब दिखा दिया। उनका नाम लेना ही सीने में एक गर्व भर देता है,
श्री तुकाराम ओमले। उन्होंने हमें दिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा काम सबसे साधारण लोग कर जाते हैं और देश देश उन पर हमेशा कर्जदार रहता है। आज जब हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं ना, जब हम अपनी जिंदगी आराम से जी पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस रात का वो पल हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा किसी ने अपने खून से लिखी थी और उस लिखावट में एक नाम हमेशा चमकता रहेगा, श्री तुकाराम ओमले, हमारे अमर नायक, हमारे सच्चे वीर और हमारी यादों में सदा जीवित।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। सोशल मीडिया रियलिटी। हम सब बोलते हैं मैं सोशल मीडिया से दूर रहना चाहती हूँ, फिर 2 मिनट बाद फोन उठा के चेक करते हैं किसी ने हमें मिस तो नहीं किया। सबको पीस तो चाहिए पर नोटिफिकेशन साइलेंट नहीं करते। इनर पीस और ऑनलाइन प्रेजेंस दोनों एक साथ मेंटेन करना, यही मॉडर्न योगा है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे सिर्फ एक शिक्षक नहीं रहे बल्कि एक मार्गदर्शक रहे।

0: मंच की यादगार कहानियां, विकल्प की स्थापना और उसकी दिशा, और इस बदलते समय में रंगमंच की भूमिका। तो आइए स्वागत करते हैं आदरणीय श्री मोहनलाल जी गोयल का।
1: जिंदगी के रंग गीतों के संग, आज का रंग जो मैं पेश करने जा रहा हूँ रंगमंच के ऊपर, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, सभी को नमस्ते कहता हूँ। दर्शकों, ये रंगमंच की बात है तो आगे बढ़ते हैं, हम कैसे रंगमंच की बात कर रहे हैं।
0: चलिए गोयल जी, फिर शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं, कुछ अपने बचपन के दिनों के बारे में बताइए। परिवार, फैमिली, परिवेश, शुरुआती संस्कारों ने आपके व्यक्तित्व को कैसे आकार दिया, कुछ उसके बारे में हमारे साथ कुछ बातें साझा कीजिए। थोड़ा हमें अपनी पुरानी जिंदगी में ले एक झलक दिखाइए।
1: मेरा जन्म जो है 1945 में नवंबर में हुआ था, 11 नवंबर को, लेकिन जैसे मेरा जन्म हुआ उसके 6 महीने बाद मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए। यानी मैंने अपने पिताजी को देखा तक नहीं है, और मैं गांव में था, उनकी शक्ल भी नहीं देख पाया, उनकी कोई फोटोग्राफ भी नहीं थी, ये मेरी कमी रही। लेकिन फिर भी उनके दिए हुए संस्कार आज भी मेरे पास हैं। जैसे हमारा परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन हमारे परिवार में कुछ जो खास तौर पर मेरे पिताजी का, मेरे माताजी कहा करते थे पिताजी के बारे में, कि वो दान में बड़ा विश्वास करते थे, अपने साथियों का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसा ही मेरा भी अब तक भी जो परिवेश रहा है उसी में संस्कारों का ये समावेश हुआ, जिसके कारण मैं आज भी थोड़ा बहुत दान पुण्य की तरफ ध्यान रहता हूँ, या थोड़ा बहुत जो भी किसी हेल्प कर सकता हूँ मैं मदद करने की तैयार रहता हूँ। ये मेरे संस्कार जो मेरे पिताजी ने दिए, जिनको मैंने देखा तक नहीं था।
0: बहुत सुंदर, और ये तो बहुत ही जिंदगी में खालीपन सा हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप उनके संस्कारों को लेके आगे चलते रहे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बातचीत शुरू करते हैं। तो क्या बचपन से ही आपका रंगमंच की ओर झुकाव था, या ये सफर बाद में शुरू हुआ, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: मेरा शुरू से ही, जो बचपन में से ही मैं रंगमंच से जुड़ गया, वो इस तरह से जुड़ गया कि उन दिनों में रामलीला आया करती थी, रामलीला के लोग आया करते थे, उनके लिए मैं दिन में तो दाना आटा वगैरह इकट्ठा करता था, दाल वगैरह इकट्ठी करता था, और शाम को मैं वो बाबू एक पैसा दे दे, ऐसी एक छोटी छोटी जो गीत, उन दिनों के गीत होते थे, उन पे मैं थोड़ी एक्टिंग करके लोगों को रिझाया करता था, जिससे मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, वो दान कर दिया था। ऐसा मेरा शुरू से रहा, तो बचपन से ही मुझे रंगमंच से ऐसा जुड़ना पड़ गया। कारण ये था कि इच्छा थी, इच्छा शक्ति थी उस वक्त की, उस वक्त के मुताबिक जो था उसके मुताबिक मैं करता रहा, इसी रंगमंच से शुरू से जुड़ गया था मैं।
0: अरे तो ये तो बहुत ही जोरदार बात है, आप बचपन से ही मतलब रामलीला के माध्यम से रंगमंच से जुड़ गए,
1: जी,
0: एक तरह से कहूं तो मैं
1: जी।
0: तो कोई जीवन में कोई गुरु, शिक्षक या ऐसी कोई प्रेरक शख्सियत जो आपको अभी भी याद हो, या जिनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस हो, कुछ उनके बारे में बताइए बचपन की।
1: जी, मेरे मेरे गुरु थे, उनका नाम भी मोहनलाल था, मेरा मोहनलाल है, उनका मोहनलाल था, और उन्होंने मुझे रंगमंच की बारीकियां बताई, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे स्टेज पे बोला जाता है, कैसे मैं खास तौर पे मैं एलोक्यूशन में बहुत आगे बढ़ गया, यानी एलोक्यूशन से मैं आगे बढ़ गया रंगमंच की तरफ। तो रंगमंच को लाने वाले मेरे गुरु थे श्री मोहनलाल जी, और वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं श्रद्धांजलि रूप उनको कहूंगा कि उनके कारण ही सब कुछ हूं मैं, रंगमंच के कारण, जो भी रंगमंच का मैं कार्य कर रहा हूं उनके कारण ही हूं। चाहे वो थोड़ी उम्र के लिए हम 3-4 साल इकट्ठे रहे, 4 साल, लेकिन 4 साल में भी मेरे जो जितने भी एज ए गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो हमारा बना रहा आखिर तक।
0: बड़ी बात है सर, आप भी आज भी उनको याद कर रहे हैं, देखिए कितनी बहुत बढ़िया बात है। तो एक शिक्षक और बाद में प्राचार्य के रूप में आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, क्या शिक्षण और रंगमंच साथ साथ चलते रहे, क्योंकि टीचिंग में तो काफी समय भी देना पड़ता है, तो ये कैसे मैनेज करते रहे आप दोनों?
1: ऐसा था सर कि शिक्षक के तौर पे मैं बहुत ज्यादा रंगमंच की तरफ झुक गया था। मैं खास तौर पे, मेरी खासियत थी वहां पर, मैं मशहूर था इस बात के लिए कि मोहनलाल गोयल कभी बच्चों का नुकसान नहीं करेगा,

0: शिक्षण के लिए। मैं रात को ही एक महीने का पूरा कैंप लगाया करता था रंगमंच के लिए। तो रात को हम रिहर्सल करते, रात के 1-2 बजे तक बैठे रहते, और शाम को उसको बच्चे मुझे छोड़ के जाते घरों में। तो उसके बाद फिर सुबह पे आके फिर पढ़ाया करता था मैं। और अगर मैं बाहर अंदर जाता था, क्योंकि बहुत बार 3-3 4-4 दिन लग जाते थे जब हम कंपटीशन में जाते थे रंगमंच के, तो नाटकों का, खासतौर पर एकांकी नाटकों का पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत चलन था। तो
1: अच्छा
0: एकांकी नाटकों के कारण मैं बहुत मशहूर हो गया वहां पर। लेकिन 3-4 दिन लग जाते थे, एक बार जाते थे, तो फिर मैं संडे को क्लास लगाया करता था, और सभी सभी को समोसा भी खिलाया करता था। इस तरह से मैं समोसे वाला प्रोफेसर बन गया। इस तरह से कहने की बात यह है कि मैंने कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं किया एज फार एज शिक्षण इज कंसर्न। शिक्षा को पूरा ध्यान भी देता रहा, लेकिन साथ ही साथ मैं पढ़ाता भी रहा, और पूरा रंगमंच के नाम पे मेरा नाम था, सारे दिल्ली, राजस्थान, उसके बाद जयपुर, जयपुर के बाद ये तो अब की बात है, लेकिन उन दिनों में मैं हिमाचल, दिल्ली और पंजाब में, खास तौर पे, और हरियाणा में, चारों स्टेट्स में मेरा नाम था रंगमंच के लिए।
1: नहीं, तो बहुत बड़ी बात है कि आपने कभी अपनी टीचिंग को भी नहीं छोड़ा और बच्चों की भी पढ़ाई का कोई नुकसान किया, और उसके साथ में ये भी करते रहे। ये दोनों नामों के बीच में आपने संतुलन बनाए रखा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए, इसी संतुलन के नाम पे और आपके इस पैशन के नाम पे, स्टेज से जो आपका प्यार रहा है शुरू से, इसी के नाम पे रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं, बहुत बढ़िया सा।
0: जी जी जी

0: हाँ, तो वेलकम बैक गोयल साहब। तो अब ये
1: जी
0: बताइए कि आपका पहला मंचन या पहले अभिनय अगर आपको याद है तो बताइए, वो कैसा अनुभव था जब आप पहली बार स्टेज पे गए थे, क्या था वो?
1: वो उस वक्त का नाम था आवाज का नीलाम, यानी आवाज का नीलाम। एक आवाज अखबार छपता था उन दिनों में, यानी ऐसा सोचा गया था, ऐसा लेखक ने उसको आवाज दिया था, नाम का अखबार का नाम आवाज रखा था। उसमें नौकर का रोल अदा किया था। मेरे जो सीनियर थे मुझे पिटाई करा करते थे, तुम ऐसे नहीं बोलते, तुम ऐसे नहीं बोलते। तो उस तरह से वो पिटाई मुझे आज तक याद है, और उस वजह से मैं आज रंगमंच में जो मैं नाम बनाया, उस वजह से बनाया। क्योंकि शुरू शुरू में जो जो आदमी सीख लेता है, तो जो सीख मिल जाती है उसके बाद फिर वो कायम रहती है। उसी कायम रहने के कारण ही मैं आज जो थोड़ा बहुत कर पाया हूँ, रंगमंच की सेवा कर रहा हूँ। मेरा आवाज का नीलाम था और नौकर का रोल किया था मैंने शुरुआत में।
0: ये पहले पहले जो प्लेस थे उनमें इस तरह के रोल्स होते भी काफी थे। मुझे याद है
1: बिल्कुल
0: एकांकी
1: बिल्कुल
0: नाटकों में
1: बिल्कुल
0: पहले
1: होते थे।
0: ऐसे रोल्स बहुत होते थे, कभी वो
1: बिल्कुल
0: कॉमेडी
1: बिल्कुल।
0: करता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, इस तरह
1: मुझे
0: के
1: आज भी
0: होते
1: उसका डायलॉग याद है
0: थे।
1: एक,
0: अरे
1: मैं
0: अच्छा,
1: सुनाना चाहूंगा कि
0: हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए।
1: सेठ और जो अखबार वाला मालिक है उसके बीच एक चर्चा है। वो कहता है कि अखबार जो छापता है वो गरीब आदमी है, ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन सेठ आदमी का कार्य जो कार्य करता है वो संपादक है, और संपादक और सेठ के बीच एक आपस में संवाद होता है कि गरीब की गुर्बत, गरीब की इज्जत, गरीब की मोहब्बत भी खरीदी जा सकती है सेठ की, लेकिन आप हमारी उस प्रथा को नहीं खरीद सकते जो आप सोच रहे हो। ऐसी कोई बात हुई थी, मुझे याद आया।
0: अच्छा,
1: यानी कहने का मतलब गरीब की हर चीज खरीदी जा
0: हर
1: सकती
0: चीज
1: है,
0: कर,
1: लेकिन गरीब की इज्जत आबरू जो है वो फिर भी कायम रहती है किसी ना किसी तरीके से, जो कुछ भी किया जा सके।
0: हाँ, उसका स्वाभिमान कायम रहता है, बाकी
1: स्वाभिमान
0: बड़े से बड़े
1: बिल्कुल
0: हो कितना
1: बिल्कुल।
0: भी गरीब रहे। बिल्कुल सही
1: जी
0: बात।
1: जी जी
0: तो अच्छा, आप ये बताइए सर, आपके द्वारा निर्देशित या अभिनीत कौन कौन कौन सा नाटक ऐसा जो है आपको याद रहता है कि यार ये मेरे को बहुत फेवरेट है मेरा, तो ऐसा कौन सा है?
1: मेरे दो नाटक बहुत अच्छे मुझे हमेशा याद रहते हैं। एक तो है बकरी, सर्वेश्वरदास सक्सेना का, और
0: अच्छा
1: दूसरा नाटक था जो कौन नचाए नाच।
0: अच्छा
1: कौन नचाए नाच एक हमारे दोस्त थे, उनका लिखा हुआ है। आजकल वो दूरदर्शन पे बहुत ऊंची चीज है, शायद
0: अच्छा
1: प्रोड्यूसर से भी ऊपर है, रवि जी उनका नाम है, वो
0: अच्छा अच्छा
1: कपूरथला से बिलोंग करते थे। उन्होंने लिखा था नाटक कौन नचाए नाच। उसमें क्या है, जो खास बात हो रही थी कि चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे कहीं भी हो, जनता हमेशा नाचती रहती है, नचाने वाले नचाते हैं,
0: नचाते। अच्छा, ये
1: और हमेशा जनता कठपुतली बनी रहती है। इस वजह से जनता ही हमेशा पिसती है, कभी किसी का नुकसान नहीं होता ऊपर वालों का, तो वो वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन हम जनता ही हमेशा उनको झेलती है, चाहे अच्छा
0: मतलब
1: हो या
0: ये,
1: बुरा
0: हाँ
1: हो।
0: वही कठपुतली वाली बात है, नचाने वाला कोई होता है, हम कठपुतली हैं सब लोग,
1: जी जी
0: वही
1: बिल्कुल।
0: आनंद का जो डायलॉग है, बिल्कुल।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मेरे को याद आ गया कि साहब ये भी बहुत ऊंचे राइटर थे, ये कहा
1: बहुत
0: जाए
1: ऊंचे
0: आपके
1: राइटर
0: लेवल
1: थे।
0: पर बहुत ऊंचे
1: इसमें
0: राइटर।
1: खासियत, जो बकरी नाटक मैंने किया था उसमें बकरी जो बनाया था मैंने लाइव बकरी बनाई थी। एक पतली सी लड़की ली, और पतली सी लड़की को मैंने उसका वेशभूषा वैसे बनाई, और वो यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल हुआ करता था, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था उस लड़की को।
0: अरे वाह वाह वाह,
1: और
0: बहुत
1: उसके
0: बढ़िया।
1: सिर्फ सिर्फ भाव भाव थे, वो हाव भाव दिखाती थी अपना, लेकिन बोल तो सकती नहीं थी। मैं कभी आवाज जो होता है उसका आवाज होती थोड़ी बहुत, लेकिन अदरवाइज उसने कमाल कर दिया था लड़की ने। हाव
0: अच्छा,
1: भाव ऐसे अपने सिर हिलाती थी, जहाँ पांव हिलाती थी जब उसके साथ कुछ भी होता था, तो वो बहुत अच्छा रहा नाटक वो। और वो अभी अभी मुझे याद है उसके, बकरी को क्या पता था मश्क बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ ना कहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ ना कहेगी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा मश्क बन के रहेगी ये शब्द उसके। मश्क वो नहीं होता है जिसमें पानी भरते हैं, वो
1: पानी पानी भरते हैं, चमड़ा होता है
0: जो होती है चमड़े की, जो
1: उसका शरीर चमड़ा होता है जो उसी में पानी भरते हैं,
0: वही के घूमते हैं जिसके जी।
1: हाँ बस वो कुछ नहीं कहेगी, वो क्या कहेगा मश्क, क्या कहेगी,
0: क्या क्या गोयल साहब आपने क्या दे रहा जी। आजकल के बच्चों को तो मश क्या होता है पता ही नहीं है।
1: नहीं पता,
0: आप तो बात करते मश देखी नहीं होगी इन्होंने कभी।
1: नहीं नहीं नहीं देखी नहीं होगी, बात
0: नहीं देखी, नहीं देखी। पहले वो नाली के अंदर चलाते थे उसको जब हम छोटे थे,
1: मुझे बिल्कुल
0: सफाई करते थे
1: बिल्कुल।
0: क्या पुरानी याद दिला दी आपने सर।
1: हाँ जी,
0: तो अब जैसे सिंहासन खाली है या मीरा जैसी प्रस्तुतियां हैं, ये बहुत बड़े बड़े नाटक है, तो इनसे कोई जुड़ी हुई याद हो तो कोई ऐसी बात।
1: मेरा सिंहासन खाली है तो एक नाटक था, नाटक किया हमने यूनिवर्सिटी में, सेकंड आया था उसका। लेकिन मीरा जो था उसके साथ मेरी जुड़ी हुई कई बातें हैं
0: जी।
1: पहली बात, मीरा के मैंने 25 शो किए ऑल ओवर इंडिया में।
0: अच्छा।
1: और हम जहाँ डीएवी स्कूल की बस ले जाया करते थे, 45 बच्चे उसमें थे, 45 बच्चे, उन सभी बच्चों को मैं साथ जाता था, मैं डायरेक्ट किया था उस प्ले को। और वो नृत्य नाटिका थी, वो नृत्य नाटिका इतनी मशहूर हुई सारे इंडिया में, 25 जगह पर मैंने किया, क्योंकि डीएवी स्कूल कॉलेज जो हमें स्पॉन्सर कर देते थे। लेकिन खास बात ये थी कि मैंने 5 लाख रुपए कमाए इससे, और 5 लाख ही मैंने अलग अलग जगह पर दान कर दिए। जैसे अमृतसर खेला तो अमृतसर वहां पर पिंगलवाड़ा है वहां दिया एक पैसा, जो जहां जो जय लुधियाना खेला, जहां पूना। एक खास बात मैं इसके बारे साझी करना चाहूंगा कि मीरा डांस ड्रामा जब किया था, हमारे एक प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस होती है डीएवी की एट पुणे, पुणे में होना था। तो मुझे कहा गया था मीरा डांस ड्रामा लाना, मैंने कहा कौन लाएगा इतना, मैं यहाँ के राजस्थान के यानी जो लोक गीतों पर आधारित नृत्य होते हैं वो लेके जा रहा था। तो मुझे रास्ते में आ गया, जैसे मैं अभी चढ़ा जयपुर स्टेशन पे थे हम सब लोग, अभी गए नहीं थे, तो मुझे फोन आ गया कि नहीं नहीं मीरा ही लाना आपने। मैं सब बच्चों को उतारा और फिर दोबारा से बस ले गए, 3 दिन में और 2.5 दिन में पहुंचे वहां पर, और फिर प्ले किया वहां पर। उस प्ले को गुलजार ने देखा और एक जो है अपनी नृत्य करती है जिसकी टांग पांव नहीं है,
0: अच्छा सुधा चंद्रन,
1: सुधा चंद्रन, इन दोनों ने देखा और सबकी आंखों में आंसू आ गए थे उस वक्त। और खास तौर पे जब मैंने मेड़ता और चित्तौड़गढ़ किया, चित्तौड़गढ़ वाले थे लोग मेरे साथ माफी मांग रहे हैं कि सर हम आपसे माफी मांगते हैं, मीरा के साथ बहुत हमने गलत किया, ऐसा एहसास हुआ ये मुझे एहसास भूलता नहीं है। और मैं मेड़ता में बारिश हो रही थी, खूब बारिश हो रही थी, लोगों ने पानी में खड़े होकर के नाटक देखा। तो इस तरह से ये मीरा के साथ मेरी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई बातें हैं सर।
0: बहुत ही बढ़िया सर, ये तो मजा आ गया। तो चलिए आपके इस मीरा नाटक के नाम पे, और ये जो अच्छा देखिए उस जमाने में मेरे को ये लगता है कि इतनी टेक्निक साउंड इफेक्ट लाइट इफेक्ट वगैरह भी नहीं थे उस जमाने में, तो बहुत बेसिक रूप से नाटक किया करते थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ सर, अब वापस हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत। अब आते हैं हम विकल्प नाट्य संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। तो विकल्प की स्थापना का विचार कैसे आया, इसके पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या था, कुछ इसके बारे में बताइए हमारे को।
1: विकल्प नाटक संस्थान जो था हमारा बना, नाट्य संस्था, वो 4 लोगों ने बनाई थी उस वक्त, ये 1974 की बात है, 1974 यानी 50 साल पुरानी बात है। उस वक्त एक मिस्टर हरि नारायण थे, और अभी भी है हमारे साथ हरिनारायण शर्मा, दूसरे थे राजेश रेड्डी जो आपके यानी रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर रहे अल्टीमेटली, पास एक मिस्टर थे भटनागर साहब, और एक थे एक और थे, 4 लोगों ने मिलके आपस में नाटक किया करते थे यूनिवर्सिटी में, खेला करते थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में। उनके दिमाग में आया कि हम चारों को इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए नाटकों का काम करेंगे, इसलिए संस्था बन गई। और संस्था बनते बनते ये लगातार आज 50 साल पूरे कर लिए इसने, 50 साल से ऊपर भी हो गया। हम अभी अभी पिछले दिनों में 1 मार्च 1925 को 2025 को हमने इसका 50वां जो है दिवस मनाया गया। और उसमें राजेश रेड्डी को बुलाया गया था और हरिनारायण जी को, दोनों को सम्मानित किया था। राजेश रेड्डी एक बहुत लेखक भी है, कवि भी है, नाटककार भी है, बहुत मशहूर आदमी है और इंटरनेशनल स्टार का आदमी है। वो उनके उनकी देख रेख में सारा कांड किया हमने।
0: राजेश रेड्डी जी का नाम मैंने भी सुना है। तो अब विकल्प किस दिशा में काम कर रहा है, क्या उसकी पहचान किस तरह से बना रखी है, आप कोई मंथली करते हैं, किस तरह से क्या है?
1: ऐसा है सर, हाँ, इस दिशा में असल में क्या है कि जो हमारी संस्थाएं हैं, ये नाटक की संस्थाएं आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोर रहती हैं। सरकार हमें कोई देती नहीं है, लोगों के चंदे के ऊपर, लोगों की जहाँ कंट्रीब्यूशन के ऊपर है, जहाँ आपस में जो मिलजुल के ही काम करते हैं, तो इसलिए कोई रेगुलरिटी तो बन नहीं सकती इसमें। हाँ, इतना जरूर है कि 2-3 महीने में एक नाटक जरूर हो जाता है, लेकिन इसको मैंने इस बार एज ए प्रेजिडेंट ऑफ नाट्य विकल्प नाट्य संगठन का प्रेजिडेंट के नाते मैंने इसको दिशा दी है नई। इसमें हमारे कुछ नए जो सदस्य जुड़े हैं वो नृत्य के और गाने में यानी संगीत में बहुत अच्छे हैं। उनका संगीत का कार्यक्रम मैंने 2-3 कर दिए इस वजह से, और उसके अलावा मैंने 2-3 नाटक भी कर दिए। नाटक में अब मैं एकांकी की तरफ जाना चाहता हूँ, अब फुल लेंथ की बजाय एकांकी, चाहे 2 कर लो या 1 कर लो, लेकिन एकांकी की तरफ जा रहा हूँ मैं। जैसे अभी हमने एक नाटक किया था अंधेर नगरी चौपट राजा के ऊपर, एक छोटा छोटा नाटक किया था। ऐसे ही हमने एक अनार वो भी बीमार एक नाटक किया था, वो भी छोटा नाटक था। इसका मतलब ये हुआ कि आज एकांकी इसको ज्यादा पसंद करेंगे, तो ज्यादा समय लंबा बैठना दर्शक बैठना नहीं पसंद कर रहे, तो इसलिए एकांकी का ज्यादा रोल होना चाहिए। उस एंगल से मैं इधर काम और नुक्कड़ नाटक का भी थोड़ा सा ध्यान रख रहा हूँ कि जैसे ये हमारा जो अंधेर नगरी वाला प्ले था, इसमें पानी पे ऊपर हमने वाटर के ऊपर दिया था थोड़ा बहुत आइडिया, अच्छा, जो अच्छा। पानी कैसे बचाया जा सकता है, तो उस एंगल से मैं सोचता हूँ कि सरकार से अगर बात की जाए तो नुक्कड़ नाटक ऐसे बनाए जाए, कुछ कुछ बातों को लेकर के सरकार से बात की जा सकती है, या किसी मंत्री से बात की जा सकती है, जिसके ऊपर हम नुक्कड़ नाटक करें और उसके साथ संदेश भी दे सके।
0: लोगों में पानी की कंजर्वेशन के लिए संदेश जाए, तो अगर नाटकों के माध्यम से दिया जाए तो बहुत अच्छा
1: जी, जी,
0: तो जी, इसका मतलब है कुछ चुनौतियां तो हैं। देखिए विकल्प चलाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आर्थिक आपने बता ही दिया, कलाकारों की उपलब्धता भी होगी, लोगों पे इतना समय भी नहीं होता होगा रिहर्सल वगैरह के लिए आ पाए।
1: इसमें मैंने एक तजर्बा किया, इसमें एक मैंने प्रयोग किया कि हमारे एक मिस्टर प्रेमचंद गांधी जी हैं, ही इज ए वेरी गुड राइटर आल्सो, उन्होंने गाथा बंदनी एक नाटक लिखा,

0: उसके चार हिस्सों, चार कहानियां हैं उसकी, कि चार स्त्रियां जो हैं वो शिकार हो जाती हैं, यानी जिसको बोलते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट का। तो उन चारों ने अपने चारों अलग अलग एरियाज में, जैसे एक लड़की है जो ईसाई लड़की है और वो किसी कारण से किसी के साथ लग जाती है और उसका मर्डर कर देती है। तो उसका कारण सही होता है, कारण जो मर्डर का वो सही है। जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र की लड़की है, उसका जो सरपंच है वो उसका दुष्कर्म करता है उसके साथ, उसे मर्डर कर दिया। ऐसे एक बाबा, मैंने बाबा का रोल अदा किया उसमें, यानी जो जैसे आज के जमाने में बाबा काम करते हैं, उस बाबा का मर्डर हो गया। तो इस तरह से चार कहानियां थी अलग अलग, लेकिन चार कहानी के पात्र सबके अलग अलग थे, इसलिए हमारे रिहर्सल की प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं अदरवाइज तो इकट्ठा नाटक पूरा 3 घंटे का 2.5 घंटे का करना हो तो बड़ा मुश्किल हो
1: जाए। गाथा बंदी में जो कुछ याद आ रहा है आपका, अभी हुआ था इसी में, क्या भगवंत ने इसी में पार्ट किया था क्या?
0: हाँ, इसमें जेलर का रोल अदा किया सबसे ज्यादा,
1: जेलर का। अभी याद आ गया मुझे।
0: हाँ जी,
1: अरे मैं भगवंत से
0: अभी दूरदर्शन पे जा रहे हैं, दूरदर्शन पे जा रहे हैं अभी। एक उसका एपिसोड हो गया, दूसरा एपिसोड होना है 5 तारीख को, 5 मार्च को उसकी होनी है, यानी रिहर्सल चल रही है आजकल हमारी, शुरू होगी रिहर्सल, आज से शुरू हो रही है। तो इस तरह से भगवंत कौर बहुत अच्छी नाटक कर रहा है, अच्छी अभिनेता है, बहुत पुरानी है
1: वो। सर हमारे बैंक में भी बहुत नाटक करती थी, क्योंकि मैं तो उसको जाने कब से कह रहा हूँ, उसका भी रेडियो इंटरव्यू करना है, लेकिन मुश्किल बड़ी, कभी इधर चली जाती है कभी उधर चली जाती है, बिजी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: भगवंत मेरी बड़ी पुरानी मित्री है एक तरह से, हम लोग नौकरी साथ साथ की है काफी समय।
0: क्या बात है साहब।
1: तो मेरे को तो विकल्प वो बहुत बोलती थी, अब मेरे को विकल्प के अध्यक्ष ही मिल गए, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। मैं विकल्प के नाटक मैं जा रही हूँ, मैं वहां बिजी हूँ, ऐसे बहुत कहती रहती थी मेरे से। चलिए तो इसी उस पे हम एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल।

0: अच्छा गोयल साहब, तो
1: हाँ जी
0: आपको क्या लगता है कि आजकल जो एक ये सिनेरियो बन रहा है मंच का, तो युवाओं की रंगमंच के प्रति गंभीरता कम हुई है या इसका रूप बदल गया है? नए बच्चे आ रहे हैं, स्टेज से जुड़ रहे हैं, क्या
1: दोनों दोनों
0: आपको?
1: चीजें हैं साहब, दोनों चीजें
0: अच्छा,
1: हैं। इसमें रंगमंच के प्रति गंभीरता भी कम हो गई है, लोग ज्यादा जल्दी ही रिजल्ट चाहते हैं, हर आदमी परिणाम चाहता है, परिणाम ये। लेकिन रंगमंच आप जानते हो कि ये तो एक ऐसी विधा है जहां पर परिश्रम की लोड़ जरूरत है, जहां पर हर तरह से एक तरह का समर्पण की जरूरत है, वो समर्पण नहीं हो सकता आज के जमाने में, तो इसलिए गंभीरता कम हुई। लेकिन जो रूप बदला है इसका, जैसे वेब सीरीज शुरू हो गई है या ओटीटी हो गया है, ऐसा कुछ वहां पर झुकाव तो हो रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं हो रहा। उससे रंगमंच, जो हमारा पुराना रंगमंच, जो हमारी जो सब संस्कृति के मुताबिक हम कहें तो अच्छी नहीं है बात, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। युवा बिल्कुल बेकार तो नहीं है इस बात के लिए, लेकिन फिर भी झुकाव तो दूसरी तरफ ज्यादा हो रहा है।
0: तो कुछ ऐसा बताइए, आपने विकल्प से जुड़े से नए कलाकार हैं जिन्हें आपने तैयार किया हो और आपको लगता है कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ना आपको एक गर्व महसूस होता हो, कोई ऐसे कलाकार
1: बिल्कुल,
0: ग्रूम किए हो आपने बताए
1: मैं
0: हो?
1: आपको बताता हूँ सर कि आलोक जी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो नृत्य के लड़कियां आई हैं, खास तौर पे 60 ईयर अबाब की एज की एक मीरा सक्सेना करके लड़की है
0: अच्छा,
1: लेडी, और इसके अलावा रुनझुन घोष करके एक लड़की है जो कि 125 सिर पे घड़े रख करके नाचती है, बबाई डांसिंग करती है वो, और हम
0: बात
1: बबाई करती है, और उसकी जो मदर है वो बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है और कोच भी है। उसने हमारे दोस्त जो बच्चे थे मीरा, जो बबाई डांस किया 125 सिर पे घड़े रख करके, छोटे छोटे घड़े रख करके, और हमारे दो बच्चे जो थे डीएवी के, वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। इस वजह से मैं गर्व महसूस करता हूँ उनके बच्चों के लिए जो मैंने तैयार किए थे। उसके अलावा अभी हम जो नाटक कर रहे हैं उसमें नए लोग लिए जा रहे हैं, जैसे एक जुरानी करके लड़का है, तो इस तरह से कुछ नए कुछ पुराने मलामलू के अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा विकल्प जो है, अच्छे नाटक दे सके, अच्छे नृत्य दे सके, अच्छे गीत दे सके। अभी मैंने जगजीत सिंह पर एक उनकी नाइट करनी है, जगजीत सिंह के जो हमारे पास गायक है ना, मेरे अपने गायक, जैसे तीन चार गायक हैं, जैसे ओम गोस्वामी है, प्रमोद गोस्वामी है, ऐसे एक एक और लड़का है हमारे पास, तो तीन चार लड़के हैं, और एक मेरा स्टूडेंट है यूएसए से आया हुआ है यहाँ पर पंजाब का, वो बहुत अच्छा गाता है, क्लासिकल गाता है, वो वहाँ प्रोग्राम देता है, स्टेज शो देता है, वो पर चांस आया हुआ। उनका लेकर 29 मार्च को मैं करने जा रहा हूँ एक जगजीत सिंह के नाम श्रद्धांजलि समारोह, स्वरांजलि समारोह।
0: चलिए, उसके लिए सर बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और जगजीत सिंह का
1: बहुत धन्यवाद
0: प्रोग्राम
1: सर,
0: करें तो हमें भी याद कर लीजिए, हम भी
1: जरूर
0: गजल
1: जरूर जरूर जरूर
0: के
1: जरूर
0: फैन
1: जरूर जरूर साहब, जरूर
0: हैं,
1: आप,
0: गजल
1: मेरा
0: के फैन
1: सौभाग्य
0: हैं।
1: होगा, मेरा
0: वाह,
1: सौभाग्य होगा साहब। अरे
0: मैं साहब तलब महमूद जगजीत सिंह इनका बड़ा फैन हूँ।
1: क्या बात साहब, आपको अच्छा लगेगा, मेरा ऐसा ख्याल है।
0: जी बिल्कुल अच्छा लगेगा सर। तो आपके, आप ये बताइए कि जैसे आजकल रंगमंच और फिल्म अभिनय तो बहुत हो ही गया, ओटीटी वेब सीरीज वगैरह में, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है एक्टिंग जब हम स्टेज पे करते हैं और जब हम फिल्म के लिए एक्टिंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है बेसिक डिफरेंस क्या है?
1: बेसिक डिफरेंस यही है कि रंगमंच में जो खासियत ये है कि एक्टर को सब कुछ वहीं दिखाना पड़ता है, उसको सब 100% देना पड़ेगा तभी वो कामयाब होगा। लेकिन फिल्म में तो कहीं भी कट कर दो, कहीं भी काम कम कर दो, ज्यादा कर दो, आवाज ऊंची कर दो, टेक्निक का बहुत जरूरी हो सकता है। लेकिन रंगमंच में तो जब तक आवाज अच्छी नहीं होती, जब तक हाव भाव अच्छे नहीं देगा बच्चा, कोई भी बंदा, तो काम नहीं हो सकता। इसी रंगमंच का ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको एक, अगर इजाजत दो, घटना सुनाना चाहूंगा। जहां पर
0: हाँ सुनाइए सर।
1: मेरे, मैं जब बीए फाइनल में पढ़ता था पंजाब में, तो मेरे पास बलराज सहनी आया करते थे, उस तरफ डुड्डी के गांव है जहां लाल लाजपत राय का जन्म हुआ था, वहां पर एक नावलकार थे जसवंत सिंह, उनके पास वो दोस्त थे, आपस में दोस्त, एक महीने के लिए आया करते बरासानी। तो मैंने कॉलेज में बुलाया उनको, उनसे पूछा कि रंगमंच में, वो रंगमंच के साथ जुड़े हुए थे तो बरासानी, मैंने उनसे पूछा कि कैसे मुश्किल होता है। तो उन्होंने 2 बीघा जमीन का एक एग्जाम्पल दी, मुझे घटना सुनाई कि मैं जब 2 बीघा जमीन का जो टांगा लेकर के भाग रहा था, तो मुझे कहता जो मेरा निदेशक था वो कहता था कि और भागो और भागो, जब तक खून नहीं निकल आए तब तक उसने मुझे छोड़ा नहीं। यानी इस स्थिति तक साधना की जाती है रंगमंच में, तो यानी खून मांगती है रंगमंच, लेकिन फिल्म में वो चीज नहीं। फिल्म में बहुत सारी चीजें सुरक्षित की जा सकती है, ऑलरेडी किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन रंगमंच में सब कुछ अपने ही आप ही देना होता है सब कुछ। तो ये मेरा ख्याल यही अलग डिफरेंस है सबसे बड़ा।
0: नहीं सही बात है ना, और बलराम साहनी तो क्या तो करेक्टर एक्टर थे साहब, क्या
1: और क्या बात है,
0: क्या बात। बलराम साहनी के भाई थे भीष्म साहनी, वो भी बहुत अच्छा,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पंजाब के थे,
0: पंजाब के थे दोनों, बहुत
1: बिल्कुल
0: गुरदासपुर
1: के थे। हाँ जी हाँ जी,
0: बहुत बढ़िया। अच्छा तो ये बाई दे वे जब ये बात चल रही है, तो एनएसजी से जो कलाकार निकलते हैं इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कैसे क्या है?
1: मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया निकल रहे हैं जो एनएसजी से निकल रहे हैं, क्योंकि उनको यानी नीचे स्तर तक रह करके, जमीनी स्तर पर रह करके काम करना पड़ता है और एक्टिंग को की बारीकियों को हर तरह से सीखना पड़ता है, इसलिए वो मैं समझता हूँ कि असली जो रंगमंच है वो नाट्य संस्थाओं से जो प्रशिक्षित होकर के आते हैं, निखर के आते हैं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। मेरा ख्याल तो यही है। अलकाजी का नाम आपने सुना ही है, अलकाजी का क्या बात है साहब, बहुत सारे जितने एक्टर हैं, अच्छे एक्टर जितने भी हुए हैं, वो सब हमेशा एनएसजी से निकले हुए, जो ज्यादा अच्छे लगे आपको, मेरा ख्याल है कि दूसरे इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी एक नेचुरल किसी के टैलेंट होता है तो वो आता है, ऊपर आते हैं, बहुत सारे आते हैं लोग, लेकिन फिर भी अगर प्रशिक्षित होगा और नेचुरल भी हो तो मिला के और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए एनएसडी से निकले हुए लोगों को मैं अच्छा समझता हूँ।
0: अब बलराज साहनी साहब के नाम पे हम एक गाना सुन लेते हैं, कोई उनकी फिल्म कही है ना, तो रुक जाते हैं, आपने बात याद दिला दी उनकी।
1: जी जी जी।

0: अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं गोयल साहब, आपकी जो डीएवी कॉलेज के आप प्रिंसिपल भी रहे हैं और इतने विद्वान हैं, तो एक शिक्षाविद और समाज सेवी के रूप में आपकी सामाजिक गतिविधियां रंगमंच से कैसे जुड़ती है, क्योंकि आप सामाजिक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व रहते हैं, शिक्षाविद तो हैं ही आप, एजुकेशनिस्ट तो हैं ही, तो रंगमंच भी आप थे, तीनों चीजों को कैसे बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं आप?
1: हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी समाज की आवश्यकताएं होती हैं उसके मुताबिक हम थिएटर को करें।
0: जी
1: यानी जब चुनते हैं हम कोई भी नाटक, तो कोशिश होती है कि समाज का कोई ना कोई पहलू छुआ जा सके, उसे उसके उसका उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसे जैसे नृत्य नाटकाएं हैं, जैसे मीरा नृत्य नाटका है हमारी, मीरा नृत्य नाटका ने बहुत अच्छा काम किया समाज सेवा का। समाज सेवा के साथ साथ एक यानी बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन रहा, और उससे जो पैसा कमाया गया वो आगे दिया गया। तो इस तरह से एक तरह का समाज सेवा के रूप में मैं कार्य करता रहा।

0: और हमने एक प्रोग्राम दिया था बागा बॉर्डर पर, जिसमें मैं नृत्य नृत्य दिए थे सारे, और थोड़ा छोटा मोटा एक प्ले दिया था, वो बहुत पसंद आया था पाकिस्तानियों को भी। मैं पाकिस्तान भी 3 बार गया हूँ वहां पर, वहां का नाटक देखा, तो वहां सामाजिक सरोकारों को ज्यादा जोड़ते हैं पाकिस्तान वाले। हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले ज्यादा जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मैं बाहर बैठा था, नाटक देख रहा, लड्डू करारे पंजाबी में था, लड्डू करारे, तो वो क्या करते हैं, मुझे उठा दिया जी, पता लग गया कि मैं तो थोड़ा जुड़ा हूँ रंगमंच के साथ, मुझे स्टेज पे ले गए, मुझे अपना एक भूमिका बना दी उन्होंने, मेरी एक एक पात्र बना दिया इमीडिएटली उन्होंने। इस तरह के कार्य करने से समाज को जोड़ना और भी आसान हो जाता है। इस तरह से नाटक के तौर पे मैं ये कर पाया हूँ, थोड़ा बहुत समाज सेवा का काम भी करता रहा, जैसे आपको बताया कि मैंने 5 लाख रुपए कमाए और वो आगे बांट दिए, तो बांटने में मजा आता है साहब। जैसे
1: ये दान की तो प्रवृत्ति आपने शुरू से ही है ना, अपने फादर से आपने लिया है, बातें करते ही है। नहीं तो पाकिस्तान का किस्सा आपने अच्छा सुनाया, वाघा बॉर्डर पे भी आपने प्ले किया है, क्या श्रोताओं मतलब
0: पंजाब में सर,
1: बिल्कुल सही बात है, वहाँ पाकिस्तान में पंजाबी लैंग्वेज ज्यादा यूज आती है नाटकों में।
0: हाँ, बिल्कुल पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज ही थी। कठपुतली नाटक एक बहुत अच्छा था मेरा पंजाबी प्ले, जो कपूर सिंह को मनका लिखा हुआ है, तो इस तरह से पंजाबी प्ले भी बहुत किए मैंने, लेकिन हिंदी प्ले ज्यादा किए मैंने।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा शौक है पाकिस्तानी जो टीवी ड्रामाज आते हैं, मैं YouTube पर काफी देखता हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे।
0: एक करण सिंह एक अमृतसर में एक बंदा था जी, ही डेड नाउ, ही इज अ वेरी गुड नुक्कड़ नाटक। मैं NSS के नेशनल सर्विस स्कीम के कैंप लगाया करता था एज ए टीचर, तो वहां पर मैं उनको बुलाया करता था, वो सिर्फ आने जाने का खर्चा लिया करते थे मुझसे 500-700 रुपए, और वो यानी समाज की जो असलियत है उनके ऊपर नाटक किया करते थे, और वो गांव में 10-10 हजार की गैदरिंग को एड्रेस कर देते थे। और एक बार तो हमारा ऐसा हुआ कि लाइट चली गई, तो हमारे चारों तरफ ट्रैक्टर थे खड़े, मैंने कहा ट्रैक्टर की लाइट जगा लो भाई, ट्रैक्टर की लाइट जगा के भी हमने प्ले किया। तो एक सामाजिक सरोकारों का बहुत अच्छा मैं तरीका बनाया था, नेशनल सर्विस स्कीम के हर कैंप में उनको बुलाया करता था, और कैंपों में प्रोग्राम किया करता था नाटकों के द्वारा 3-4 नाटक करते थे वो, 5-3 घंटे का प्रोग्राम होता था, बहुत अच्छा होता था। इस तरह से सामाजिक सरोकारों के
1: काम। अगला प्रश्न भी यही था कि आपको लगता है कि थिएटर समाज परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है?
0: बिल्कुल,
1: आपने नुक्कड़ माध्यम के से बता ही दिया कि अगर हम करें तो जुड़ सकते हैं। चलिए, समाज और थिएटर का ये जो संबंध है इस पे रुक के हम एक कोई गाना सुन लेते हैं, और करीब करीब हम बकौल अमीन सयानी आखिरी पायदान पर आ गए हैं, और इसके बाद में बस 1-2 प्रश्न और है, फिर अपन समाप्त करेंगे।
2: ए भाई दर्द।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, अप अप जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, अप अप खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और स्थानीय माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।

0: गोयल साहब, आप अपने लंबे अनुभव के आधार पर अब युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो अब रंगमंच पे आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
1: उनके लिए मैं चार लाइनें बोलना चाहूंगा सर।
0: अरे वाह, स्वागत है।
1: इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि हजारों मुश्किलें हैं इंसान के आगे, सब गुबारा है मुझे ईमान के आगे। रोशनी कहीं बदनाम ना हो जाए इस डर से, रख दिया मैंने दिया तूफान के आगे।
0: वाह, बहुत सुंदर सा, वाह।
1: तो मुश्किलें हमेशा आती हैं इंसान के आगे, और जो दृढ़ संकल्प होते हैं वही लोग रंगमंच में आ सकते हैं। और युवाओं को मेरा संदेश है, अगर रंगमंच पे आना है तो दृढ़ संकल्प हो करके, जुनून को साथ लेकर के, अपनी हर चीज को भूल करके, अनुशासन को अपनाते हुए अगर आप आ सकते हो तो आना चाहिए, नहीं अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जहां पर रंगमंच जो है आपका परिश्रम मांगता है, रंगमंच आपके लिए सबको देने को तैयार है, लेकिन बाद में देता है पहले लेता है। आप क्या दे सकते हो, वो देने वाली प्रवृत्ति अगर होगी, चाहे अपना समय देना रिहर्सल के लिए समय देना, और उसके अलावा सब कुछ दे देना अपने आप को, यानी दृढ़ संकल्प होकर के कार्य करोगे तो रंगमंच और भी उभरेगा और नए कलाकार भी आएंगे, नए युवा जुड़ेंगे। युवाओं के लिए मेरा यही है कि मुश्किल हमेशा आती है, मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन उसको सामना करना जरूरी है। हर बाधाओं का जो सामना अगर करता है इंसान, वही कामयाब होता है। संघर्ष के बिना जीवन नहीं है। कि लहरों से लड़ो, तूफानों से जूझो, क्या चलते हो किनारे किनारे, किनारे किनारे चलने से कुछ नहीं होता, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष के बिना कुछ नहीं हो सकता।
0: अच्छा गोयल साहब, मुझे अभी ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया कि आप इतने बड़े स्टेज के आर्टिस्ट हो, हमने आपसे कोई डायलॉग नहीं सुना, तो तो मैं, ये तो बड़ी हमारी हमारी तरफ से गलती हो जाएगी। नहीं, आपके इतने प्ले आपने किए, कोई अगर आपका मन हो, कोई
1: मैंने एक डमरू नाथ एज ए स्टूडेंट मैंने डमरू नाथ प्ले किया था, जिसमें वो जो ओझा होते हैं उसका रोल अदा किया था मैंने।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: तो उसका मैं एक डायलॉग सुना देता हूँ।
0: सुना दीजिए।
1: जय काली काली महाकाली, ब्रह्मा की पुत्री इंद्र की साली, जा बैठी पीपल की डाली, पलट तेरा ध्यान किधर है। जब पलट तेरा ध्यान किधर है बोलता था मैं, चुमटे के साथ खड़काता था, तो कई बच्चे उठ जाते थे, नींद से उठ जाते थे। तो अब तो 80 साल का हो गया, मैं उतनी आवाज में वो दम नहीं रहा, लेकिन वक्त था जब दम था।
0: नहीं नहीं, आपके आवाज में अभी भी दम है, और 80 साल पे आपका स्टेज के प्रति पैशन जो है, मतलब अच्छे अच्छे युवाओं को शर्मसार कर दे, मैं तो ये कहूंगा सर। मतलब मेरे को तो बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है। आप हैं, अमिताभ बच्चन हैं, वो 83 इयर्स पे भी देखिए क्या केबीसी और
1: मुकाबला हो सकता है।
0: ऐसे लोग विलक्षण होते हैं,
1: शताब्दी के लोग हैं वो तो साहब,
0: शताब्दी के लोग हैं साहब, मतलब विलक्षण है। इस उम्र को जैसे रोक रख के रखा हुआ है,
1: जी जी जी,
0: और वही जोश, वही वो जोश पूरा दौड़ के आते हैं अभी भी केबीसी के अंदर, आप देखिए।
1: हाँ बिल्कुल, कभी आप चल के नहीं आएंगे, दौड़ के आएंगे। हाँ,
0: दौड़ के आएंगे, मतलब कभी आप उनको ढीला डाला नहीं।
1: मैं भी 80 साल की उम्र पे भी थिएटर कर रहा हूँ, तो यही कारण है कि इन लोगों का ही पूरा प्रेरणा मिलती है हमें, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों से, नहीं तो कैसे आदमी बढ़ता है आगे के लिए।
0: आपको सलाम है सर हमारी तरफ से, हम तो यही।
1: मैं जिंदगी के रंग गीतों के संग दर्शकों का, और खास तौर पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे सुना और मेरे कुछ बातों को ध्यान में रखा होगा, ऐसा मेरा ख्याल है कि इसका शायद कोई फायदा हो सके तो मैं बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
0: नहीं नहीं सर, अभी अभी अभी अभी अपन समापन करते हैं। तो गोयल जी, आपसे बातचीत सचमुच एक प्रेरणादायक अनुभव रहा। आपने जिस सादगी, स्पष्टता और आत्मीयता से अपने जीवन के अनुभव साझा किए, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। आपकी यात्रा हमें सिखाती है कि मंच केवल रोशनी और तालियों का नाम नहीं, बल्कि वह एक साधना है, समर्पण की, संस्कारों की और स्मृति जिम्मेदारी की। विकल्प जैसी संगठन के माध्यम से नई पीढ़ी को दिशा देना और बदलते दौर में भी रंगमंच की ज्योति को प्रज्वलित रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। हम आशा करते हैं आपकी ये ऊर्जा और प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों तक यूं ही पहुंचती रहे। आपने आज हमारे लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: मेरा जिंदगी के रंग गीतों के संग कार्यक्रम के लिए सलाम।
0: आज के लिए इतना ही। मैं हूं आलोक कुमार, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। नमस्ते।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की कहानी। सुनते रहिए रेडियो टंडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़, आरजे रंजिला के साथ।

0: जहां पना
1: कहो।
0: आपको इस वक्त तकलीफ देने की माफी चाहता हूं हुजूर, लेकिन आपसे एक जरूरी बात करनी थी।
1: तो कहो, क्या बात है?
0: हुजूर, मेरी भतीजी के बारे में है। उसके माता पिता को एक डाकू ने कुछ महीने पहले मार दिया।
1: बहुत बुरा हुआ, आगे बताओ।
0: वो कहती है कि वो डाकू एक साधु के बेस में रह रहा है। वो सिर्फ 10 साल की है हुजूर, पर मुझे लगता है कि वो सच बोल रही है।
1: खैर, अभी हमारे सोने का वक्त हो गया है, लेकिन कल सुबह उसे दरबार में ले आना, हम इस पर गौर करेंगे।
0: शुक्रिया जहां अपना, आपको तकलीफ देने के लिए एक बार फिर माफी चाहता हूँ।
1: बीरबल, सुखदेव सिंह जी, कल रात हमारे एक भरोसेमंद और वफादार सिपाही ने हमें अपनी एक समस्या बताई।
2: हुजूर, हमें बताएं हम कैसे मदद कर सकते हैं, और समस्या क्या है हुजूर?
1: सुखदेव सिंह जी, हमने आपको अपनी राजधानी और इसके चारों ओर आसपास के इलाकों के सारे डाकुओं को पकड़ने का काम सौंपा था। उस सिपाही ने हमें बताया कि एक डाकू ने कुछ महीने पहले उसके भाई को मार डाला। बताइए, क्या आपने सारे डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है?
3: हुजूर, हम तकरीबन सबको पकड़ने में कामयाब हो गए थे, सिवाय एक डाकू के जिसको हम नहीं पकड़ पाए। उसकी तलाश अब तक जारी है और वो शायद छुपा बैठा है। मुझे यकीन है कि हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। वैसे भी पिछले 3 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है।
1: आपका मतलब है कि एक डाकू अब भी आजाद है? लेकिन
2: हुजूर, आप समस्या बताइए, शायद हम मदद कर सकें।
1: उस सिपाही ने हमें बताया कि उसकी भतीजी ने उस डाकू को पहचान लिया है, मगर वो एक अंधे साधु के भेष में रह रहा है। हम एक छोटी सी बच्ची का यकीन भला कैसे करें? और फिर काफी लोग उस साधु की शक्ति में विश्वास करते हैं।
2: हुजूर, कोई भी जादूगर अपने माया जाल से गरीब भोले भाले लोगों को अपने चमत्कारों से लुभाता है। थोड़ी सी जानकारी मिलने पर हम सच्चाई का पता लगा सकते हैं। क्यों ना हम उस सिपाही और उसके भतीजी को मिलकर उनकी कहानी सुने?
1: हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। सिपाही, दिलावर सिंह और उसकी भतीजी को दरबार में पेश किया जाए।

0: अब हमें पूरी कहानी बताओ।
1: जहाँ पना, करीब 3 महीने पहले एक डाकू मेरे भाई के घर में घुसाया। मेरे भाई और उसकी पत्नी को उसने मार डाला। ये छोटी बच्ची उनकी बेटी है और उस हादसे की गवाह भी। उस हादसे के बाद से भारी सदमा लगने के कारण इसने अपने बोलने की शक्ति खो दी।
0: फिर क्या हुआ?
1: कुछ हफ्ते पहले मैंने एक अंधे साधु के बारे में सुना जो जंगल में रहते हैं, जो लोगों को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। काफी रोगी उनसे मिलने के बाद ठीक हो जाते और सुकून पाते। मैंने सोचा अगर वो सचमुच एक अंतर्यामी है तो शायद वो मेरी भतीजी के बोलने की शक्ति भी वापस ला सकेंगे। इसलिए मैं उन अंधे साधु से मिलने गया। जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, मेरी भतीजी जोर जोर से चिल्लाने लगी,
2: खूनी कातिल, इसी ने मेरे माता पिता का खून किया है।
3: ये लड़की क्या बोल रही है, इसे चुप कराओ।
1: ये तो चमत्कार हो गया। अपने माँ बाप के मरने के बाद तो इसने महीनों तक एक शब्द भी नहीं कहा। साधु महाराज की कृपा से इसकी आवाज वापस आ गई है।
2: नहीं नहीं, ये कातिल है, मैं ये चेहरा कभी नहीं भूल सकती। ये कोई साधु नहीं है, ये खूनी है।
4: तुम इसका मुंह

0: करवाओ, ये हमारे साधु महाराज की बेइज्जती कर रही है जिसने इसकी आवाज से लौटाई है।
1: नहीं नहीं, रहने दीजिए, ये छोटी बच्ची है, काफी सदमे में है।
2: तुम्हें साधु महाराज के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उन्होंने तुम्हारी आवाज वापस लौटाई है।
3: ये साधु नहीं खूनी है।
1: तुम इसे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं इसकी बोलने की शक्ति इसे वापस ले लूँगा।
2: इसे माफ कर दीजिए साधु महाराज, ये नहीं जानती है क्या बोल रही है। चलो यहाँ से, इससे पहले कि तुम अपनी आवाज फिर से खो दो। जहाँ पना मैं इसे घर ले गया, पर अब ये जिद कर रही है कि वो वही चेहरा था और कि ये सच बोल रही है। मुझे भी यकीन हो गया है हुजूर, पर हमारे पास कोई सबूत ही नहीं।
4: लेकिन ये कैसे साबित होगा कि ये अंधा साधु एक ढोंगी है?
5: हुजूर, हम पता लगा सकते हैं कि ये आदमी सही में एक साधु है या फिर एक ढोंगी। क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ?
4: ठीक है, हम कल खुद जाकर उस साधु से मिलेंगे

0: आओ बेटा।
1: हमने आपकी शक्ति और चमत्कारों के बारे में इतना कुछ सुना है कि हमें आना पड़ा।
0: ओ, ये तो विश्वास की बात है। ऊपर वाले की शक्ति में विश्वास रखो और कुछ भी हो सकता है।
1: ये आपका बड़प्पन है साधु महाराज। हम कुछ प्रसाद चढ़ाने आए हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं।
0: हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है।
2: ओ, यही है वो बेईमान खूनी। मैं अभी उसका सर काट दूंगा। कातिल दरिंदा कहीं का डाकू।
1: तो तुम अंधे हो हाँ? सिपाहियों, इस नकली साधु को गिरफ्तार कर लो। तुमने इस मासूम बच्ची को अनाथ कर दिया और लोगों के विश्वास और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इसके लिए हम तुम्हें मौत की सजा सुनाते हैं। ले जाओ इस आदमी को। तुमने निडर होकर बहादुरी से सच्चाई का साथ दिया है मेरे बच्चे। इसके लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा।
3: शुक्रिया जहांपनाह।
4: शुक्रिया जहांपनाह।
1: शुक्रिया अदा करो बीरबल का। उसी के कारण इस ढोंगी साधु की असलियत सामने आई।
5: ओ, ये आसान था हुजूर। कोई भी स्वाभाविक रूप से खतरे में अपनी सुरक्षा अवश्य करेगा, अगर वो सच में अंधा नहीं हो तो। इसलिए पकड़ा गया।
3: शुक्रिया राजा बीरबल।
6: दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे रंजीला के साथ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की कहानी।
1: बोलो, कौन हो तुम? हमसे क्या चाहते हो?
2: जहांपनाह, मेरा नाम सैफ अली है, एक किसान हूँ।
1: बोलो।
2: मैं थोड़े से पैसे कमाकर सीधी सादी जिंदगी जी रहा था। 6 महीने पहले तक मैं अपनी बीवी के साथ खुशी से रह रहा था, फिर वो चल बसी।
1: ये सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ। फिर क्या हुआ?
2: बीवी के गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल मायूस हो गया। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारी कोई औलाद भी नहीं, तो मैं बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। और एक दिन काजी अब्दुल्ला मुझे मिले।
3: सैफ अली, तुम इतने दुखी और मायूस क्यों लग रहे हो?
2: आप जानते हैं काजी साहब, कुछ दिन पहले मेरी बीवी चल बसी और अब मुझे जीने की कोई चाह नहीं।
3: अरे अरे, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खुदा की खुदाई कमाल है, तुम्हें इस तरह मायूस नहीं होना चाहिए। तुमने सारी जिंदगी मेहनत की है, क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए अजमेर चले जाओ? खुदा के फजल से तुमको जीने का एक नया मकसद मिलेगा।
2: जी काजी साहब, आप ठीक कहते हैं, मुझे यही करना चाहिए। मैं अजमेर चला जाऊंगा, फिर ख्वाजा के दरबार से ही मुझे जीने का नया मकसद मिलेगा। शुक्रिया काजी साहब। मैं घर गया और अगले दिन अजमेर जाने की तैयारी करने लगा। पर उस रात मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी उम्र भर की जमा पूंजी का क्या करूंगा, उसे कहां छोड़ कर जाऊं, पैसों के लिए मैं किस पर भरोसा कर सकता हूं। फिर मुझे काजी अब्दुल्ला का ख्याल आया। मैंने सोचा काजी साहब पर मैं भरोसा कर सकता हूं, तो मैं अगले दिन उनके घर गया और उनसे मेरे लौट के आने तक मेरी जमा पूंजी अपने पास रखने की दरख्वास्त की।
3: सैफ अली, तुम्हारे आने तक ये थैला मेरे पास रहेगा, पर पहले मेरे सामने इस पर मोहर बंद लगा दो, ताकि तुम्हें इत्मीनान रहे कि इसे किसी ने नहीं खोला।
2: तो मैंने उस थैले को उनके सामने मोहर बंद कर दिया और उन्होंने वो थैला अपने पास रख लिया। मैं अजमेर से लौटा ये फैसला करने के बाद कि अब बाकी की जिंदगी बच्चों को अल्लाह और इबादत के बारे में सिखाने में गुजारूंगा। अपनी जमा पूंजी पर गुजर कर लूंगा, ये सोचकर मैं काजी साहब के पास मेरे पैसे लेने गया।
3: मुझे खुशी है कि तुमने अब अपनी बाकी जिंदगी बच्चों को धर्म और खुदा के बारे में तालीम देने का फैसला किया है। ये लो, मैंने तुम्हारे पैसे को हिफाजत से रखा है, जरा जांच लो मोहर ठीक है ना।
2: शुक्रिया काजी साहब मेरे पैसों की देखभाल करने के लिए, मोहर वैसे ही है। आपका फिर से शुक्रिया। ओह या खुदा, ये कैसे हो सकता है? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए?

0: क्या हुआ सैफ अली, बच्चों को पढ़ाने में सलाह चाहिए? फिर से कैसे आना हुआ?
1: काजी साहब, घर जाकर जब मैंने वो पैसों का थैला खोला तो मेरे रखे हुए सोने के सिक्कों की जगह सिर्फ कुछ पत्थर देखकर मेरे तो होश उड़ गए।
0: क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मेरे पास रखने से पहले वो थैला मुझे खोल के दिखाया था? क्या खुद तुमने मोहर नहीं लगाई थी? फिर यहाँ आकर मुझसे ये बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब जाओ यहाँ से और दूर हो जाओ मेरी नजरों से।
1: काजी साहब, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मैं उन पैसों के बिना अपना बुढ़ापा कैसे गुजारूंगा?
0: तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, सुना नहीं तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दूंगा। निकल जाओ।
1: आपके पास आने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था हुजूर, आप ही मेरे पैसे वापस दिला सकते हैं। काजी साहब जैसे ऊंचे अफसर से सिर्फ आप ही मुझे पैसे वापस दिला सकते हैं।
2: बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम इस मामले में सच का पता लगा सकते हो?
3: हुजूर, मैं कुछ और जानना चाहूंगा, क्या तुम्हारे पास वो थैला है? हुजूर, मुझे इस मामले में सच जानने के लिए थोड़ा समय चाहिए, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए।
2: यकीनन बीरबल, इस बीच सैफ अली तुम हमारे मेहमान बनकर रह सकते हो, पर अगर हमें ये पता चला कि तुम झूठे हो तो तुम्हें लंबे समय तक हमारे कैद खाने का मेहमान बनना पड़ेगा।
1: शुक्रिया जहां अपना, मैं आपको जबान देता हूँ कि मैंने सिर्फ सच और सिर्फ सच ही कहा है।

0: सेवकराम
1: जी जनाब।
0: सेवकराम, ये मेरी पसंदीदा पोशाकों में से एक है, थोड़ी फट सी गई है। तुम शहर के सबसे अच्छे दर्जी का पता लगा सकते हो जो इसे रफू कर सके। रफू इस तरह से होनी चाहिए कि पोशाक सिल भी जाए और सिलाई भी नहीं दिखनी चाहिए।
1: बिल्कुल जनाब, मैं अभी बाजार जाकर पता लगाता हूँ। मैं जरूर किसी अच्छे दर्जी को ढूंढ लूंगा जो ये काम कर सके।
0: नहीं सेवकराम, मुझे एक अच्छा दर्जी नहीं, सबसे अच्छा दर्जी चाहिए। तुम इस शहर के सबसे अच्छे दर्जी का पता लगाओ।

0: बहुत बढ़िया, पता ही नहीं चल रहा है कि ये पहले फटी हुई थी। और रफू भी कमाल का किया है, कोई आसानी से पता नहीं लगा सकता। बताओ ये काम किसने किया है?
1: जनाब, गोपाल नाम का एक दर्जी है, उसी ने ये काम किया है मेरे लिए। मैंने जिनसे भी पूछा सब ने उसी का नाम बताया।
0: बहुत खूब, तुम उससे कहो कि वो मुझसे आकर यहाँ मिले, मुझे और कपड़ों की रफू करवानी है।

0: क्या तुमने सैफ अली के मामले में सच का पता लगा लिया या कुछ और वक्त चाहिए?
1: हुजूर, मैंने सच का पता लगा लिया है। आप सैफ अली और काजी अब्दुल्ला को यहाँ बुलवा लीजिए, मैं सारी सच्चाई आपके सामने रख दूंगा हुजूर।
0: जरूर बीरबल। सिपाहियों, सैफ अली और काजी अब्दुल्ला को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए।
1: सैफ अली, क्या ये वही थैला है जो तुमने काजी अब्दुल्ला के पास रखवाया था?
2: जी हुजूर, ये मेरा ही थैला है।
1: काजी साहब, क्या आप इस थैले को पहचानते हैं?
3: हाँ, बिल्कुल वैसा ही थैला लगता है, और ये मोहर भी मेरी बेशक अभी खुली है, पर इसी ने उस पर ये मोहर लगाई, और वापस लेने से पहले इसी ने इसे जांच करके देखा, तब ये खुली नहीं थी। थैले में क्या था मैंने देखा भी नहीं। ये कहता है सोने के सिक्के थे, मैं कैसे यकीन कर लूं हुजूर? ये झूठ भी तो बोल सकता है।
1: गोपाल दर्जी को जल्द बुलाया जाए।
4: गोपाल दर्जी, दरबार में पेश हो।
1: हमें बताओ गोपाल, क्या हाल ही में तुमने काजी अब्दुल्ला का कोई काम किया है?
4: जी जहाँ पना, काजी अब्दुल्ला ने मुझसे अपना एक पैसे का थैला रफू करवाया था जो फट गया था।
1: हुजूर, काजी अब्दुल्ला को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने सैफ अली के थैले को काट कर उसमें से पैसे निकाल लिए, फिर उसने पैसों की जगह पत्थर रखकर गोपाल से रफू करने को कहा। झूठा और धोखेबाज है।
3: बना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे इस बार माफ कर दीजिए।
0: इतने बड़े ओहदे पर रहकर तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? लोग तुमसे सलाह और मदद की उम्मीद रखते हैं और तुम धोखेबाजी करते फिरते हो। नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। हम तुम्हें 1 साल कैद की सजा देते हैं। सिपाहियों, बंद कर दो इसे कैद खाने में। सैफ अली, फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे और तुम्हारे नेक काम में हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारे लिए एक मदरसा बनवा देंगे जहाँ तुम बच्चों को मजहबी तालीम दे सको। जाओ, खुदा खैर करे।
2: शुक्रिया जहाँपनाह, शुक्रिया राजा बीरबल।
0: बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी सूझबूझ और पार की नजर ने एक चोर और धोखेबाज को पकड़ा। तुम्हें काजी की करतूत पर शक कैसे हुआ?
1: हुजूर, जब मैंने सैफ अली को ये कहते हुए सुना कि काजी ने उससे थैली को मोहर बंद करके उसे जांचने को कहा, तभी मैं समझ गया कि पैसे किसी और चालाकी से निकाल लिए गए थे, इसलिए मैंने थैली की ध्यान से जांच की और ये सिलाई देखी। अब सिर्फ शहर के सबसे अच्छे दर्जी का पता लगाने की देर थी हुजूर।
0: शाबाश बीरबल, शाबाश, तुमने फिर नई मिसाल कायम की, शाबाश।
1: शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।
5: दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे रंजीला के साथ।

0: जहाँ बना आप एक महान राजा हैं, देश विदेश में हर कोई आपकी तारीफ करता है।
1: शुक्रिया।
0: आप अपनी सल्तनत का पूरा ध्यान रखते हैं और हर एक को अपने परिवार की तरह मानते हैं।
1: पर क्या? क्या मैं किसी को नजरअंदाज कर रहा हूँ या कोई पराया महसूस कर रहा है?
0: जिस तरह से आप सभी की जरूरतों का ख्याल रखते हैं, क्या कभी आपने अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है?
1: मेरे पूर्वज? मैं उनकी जरूरतों का ख्याल कैसे रख सकता हूँ? अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे, वो तो खुदा को प्यारे हो गए।
0: आप जरूर उनका ख्याल अच्छी तरह से रख सकते हैं।
1: मैं अपने पूर्वजों का ध्यान रखता हूँ। हम उनकी रूह के सुकून के लिए दुआ करते हैं। हमने उनकी याद में शाही मकबरे बनाए हैं और उनकी याद में अक्सर इबादत होती है।
0: ए गुस्ताखी, माफ जावना, मेरा मकसद आपको परेशान करने का नहीं था। क्या आपने किसी को स्वर्ग भेजा आपके पूर्वजों की जरूरत का पता लगाने के लिए?
1: क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई कैसे स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है?
0: जहाँवना, मैंने एक सिद्ध योगी के बारे में सुना है जो किसी को भी स्वर्ग भेज सकता है और वापस बुला सकता है। वजीर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं। हम उन्हें बुलवाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं।
1: ठीक है, तुम वजीर अब्दुल्ला से कहो कि कल वो दरबार में योगी राज को बुलाए।
0: जैसी आपकी मर्जी जहाँवना।
1: आपने योगी राज को बुलाया है? क्या वो यहाँ दरबार में मौजूद है?
2: जहाँवना, योगीराज निरंजन बाबा दरबार के बाहर इंतजार कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुलाया जाए।
1: बुलाइए उन्हें।
3: योगीराज निरंजन बाबा हाजिर हो। हेलो निरंजन।
1: आपका स्वागत है योगीराज। हमने सुना है कि आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं।
3: हेलो निरंजन, ईश्वर की लीला परम्पार है। मैं तो एकमात्र भक्त हूँ। अगर कोई स्वर्ग जाकर वापस आना चाहे तो ये अवश्य संभव है।
1: हम जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों को स्वर्ग में कोई तकलीफ तो नहीं है।
3: मैं अवश्य ऐसा कर सकता हूँ जहाँवना, किंतु आपको किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना होगा जिस पर आपको पूरा भरोसा हो और जो आपके करीब हो।
2: हुजूर आला, मेरे ख्याल से बीरबल को स्वर्ग भेजना चाहिए। और कोई नहीं जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं, फिर वो आपके अजीज भी है। मुझे यकीन है कि वो आपका हुक्म मानेंगे और स्वर्ग के सुखों की परवाह ना करते हुए वापस भी आएंगे।
1: बीरबल, क्या आप हमारे लिए ये यात्रा करेंगे?
4: जरूर जहाँपना, आपकी ओर से ये यात्रा करना मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। योगी जी, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? मैं वापस कब तक आ सकता हूँ और मैं जाऊँगा कैसे?
3: मैं एक पवित्र अग्नि जलाऊंगा और जैसे ही आप उसमें प्रवेश करोगे, मैं अपनी दिव्य शक्तियों से स्वर्ग का रास्ता खोल दूंगा। अगर आप चाहो तो 2 महीने में वापस आ सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग स्वर्ग का आनंद छोड़कर वापस आते हैं। अलख निरंजन,
4: यह विधि कहाँ होगी योगी जी?
3: वैसे तो इस क्रिया को कहीं भी किया जा सकता है, पर हम इसे पवित्र नदी यमुना के तट पर संपन्न करेंगे।
4: जहाँपना, क्योंकि मैं काफी समय तक घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं आपसे 4-5 दिन की मोहलत चाहूंगा। जाने से पहले कुछ काम पूरे करने हैं।
1: जरूर बीरबल। योगीराज जी, बीरबल 5 दिन के बाद इस यात्रा के लिए रवाना होंगे। कृपया तैयारियां शुरू करें।
2: आदाब जहाँपना।

0: हम बोले बम बोले, जय भोले बम बोले, अलख निरंजन।
1: आइए
2: अलविदा जहांपनाह।
3: अलविदा दोस्त, जल्दी लौटना।
2: मैं जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा जहांपनाह।
4: राजा बीरबल जिंदाबाद।
3: योगीराज जी, हमें आपकी शक्तियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि बीरबल पर कोई आंच नहीं आएगी?
0: निश्चिंत रहे जहांपनाह, मैं आज तक अनेक लोगों को स्वर्ग भेज चुका हूँ, लेकिन आज तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई।
3: हम माफी चाहते हैं।
0: बम बोले, अलख निरंजन, अलख निरंजन। बीरबल अब स्वर्ग की ओर निकल चुके हैं और 2 महीनों में वापस लौट आएंगे। यदि वो स्वर्ग के सुखों के मोहजाल में ना फंसे तो
5: जरूर वापस लौटेंगे। बीरबल से ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है ना जहांपनाह?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: क्रिया पूर्ण हो गई, अब हमें बीरबल की वापसी की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
3: शुक्रिया योगी महाराज।
6: और इसीलिए जयपुर के किले को मजबूत बनाने की जरूरत। जहांपनाह,
3: माफ कीजिए मानसिंह जी, हमें अपने दोस्त बीरबल की बहुत याद आ रही है। करीब 2 महीने हो चुके हैं उन्हें स्वर्ग की यात्रा पर गए हुए। योगीराज ने क्या कहा था? मेरे ख्याल से उन्होंने 2 महीने कहा था।
5: जी हाँ जहांपनाह, पर उन्होंने ये भी कहा था कि ज्यादातर लोग लौट के नहीं आते क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुख इतने भा जाते हैं। शायद बीरबल ने भी वहीं रहने की ठान ली हो।
3: नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बीरबल पर पूरा भरोसा है, वो लौट कर आएंगे।
2: आदाब जहांपनाह।
3: खुशामदीद, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जहांपनाह, शुक्रिया।
3: बताइए बताइए, हमें अपनी यात्रा के बारे में बताइए, और कैसा हाल है वहाँ पर?
2: जहांपनाह, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। जितना सुना था स्वर्ग, उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। मैं आपके पूर्वजों से मिला, सभी से, वे सब बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल योगी जी ने सच कहा था, स्वर्ग जाकर लौटना बहुत मुश्किल है।
7: कैसे आपका?
2: पर आपसे वादा किया था और मैं हाजिर हूँ।
3: शाबाश, हम जानते थे कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं बीरबल। तो हमारे पूर्वज ठीक हैं, खुश हैं, उन्हें किसी चीज की कमी तो नहीं? और आपने अपने बाल क्यों इतने बड़ा रखे?
2: जहांपनाह, उन्होंने मेरे जरिए आपके लिए दरख्वास्त भेजी है। स्वर्ग में नाई न होने के कारण मेरे बाल बढ़ गए। स्वर्ग में सबके बाल लंबे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हो सके तो आप अपना नाई वहाँ भेज दें।
3: जरूर, इसी वक्त हमारे नाई को बुलाइए, योगी राज के साथ। अच्छा हुआ कि हमने योगी राज जी को हमारे साथ रहने के लिए आमंत्रित किया, वो भी यहीं पर है।
2: आदाब योगी जी।
3: योगी राज जी, ये अच्छा हुआ कि हमारे नाई ने सुझाया कि हम किसी को स्वर्ग भेजें। बीरबल ने अभी अभी हमें बताया है कि हमारे पूर्वजों को नाई की जरूरत है, इसीलिए उन्हें स्वर्ग भेजने की तैयारियां करें। कल सुबह ही ये काम हो जाना चाहिए। आप दोनों को हमारी ओर से इनाम मिलेगा, हम आप दोनों से बहुत खुश हैं।
8: जहांपनाह, मुझे माफ करें, मैंने पाप किया है, मुझे माफ करें। ये योगी राज पाखंडी है और ये सब मैंने मंत्री अब्दुल्ला के कहने पर किया। वो बीरबल की शोहरत से जलता है, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। नहीं नहीं नहीं, मुझ पर रहम करें। यदि मैं जलती हुई चिता पर बैठाया जाऊंगा तो मैं जरूर मर जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि बीरबल कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बच पाऊंगा।
3: हम बहुत शर्मिंदा हैं अपने दोस्त बीरबल के खिलाफ इस घिनौनी साजिश से। सिपाहियों, इस नाई और पाखंडी योगी को काल कोठरी में डाल दो। और वजीर अब्दुल्ला, मैं चाहूं तो तुम्हें इस जुर्म के लिए फांसी पर लटका सकता हूं, लेकिन तुमने हमारी इतने वर्षों तक सेवा की, इसलिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। लेकिन आइंदा मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूं। सिपाहियों, इसे हमारी सरहद के बाहर छोड़ाओ।

0: मेरे शातिर दोस्त, मुझे बताओ जो हम सभी जानने के लिए बेचैन हैं, तुम्हें उस साजिश का पता कैसे चला और तुम जलती हुई आग से बचे कैसे?
1: जहाँ पना, उस दिन जब योगीराज दरबार में पहली दफा आए थे और पवित्र अग्नि जलाकर मुझे स्वर्ग में भेजने की विधि बता रहे थे, तभी मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। इसलिए मैंने आपसे 5 दिनों की मोहलत मांगी, जिनमें मैंने एक सुरंग खुदवाई जो कि उस जगह से शुरू होकर मेरे घर तक जाए। और उस दिन जब मैं चिता पर पहुंचा, मैं बिल्कुल वहां खड़ा था जहां से सुरंग का गुप्त दरवाजा था। और जैसे ही आग लगाई गई, मैंने खुफिया दरवाजा खोला, सुरंग में उतरा और सीधे अपने घर गया। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मैं चाहता था कि उनमें से कोई अपना जुर्म कबूल करे, और इनमें सबसे कमजोर मोहरा था नाई। इसलिए स्वर्ग से वापस आने में 2 महीने और ये लंबे बाल।
0: शाबाश बीरबल, शाबाश, कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। लाजवाब, बढ़िया, बहुत खूब।

हे भगवान, ये तो जहां बना का पसंदीदा फूलदान था, वो मुझे जरूर सजा देंगे।

0: हमारा फूलदान कहाँ गया? आखिर में तो तुम ही यहाँ थे, बताओ कहाँ है वो?
1: सर, मैं उसे साफ करने ले गया था।
0: सफाई? उसके लिए उसे यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत थी? जाओ उसे फौरन वापस लाओ।
1: हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, पर दरअसल सफाई करते वक्त गलती से गिरकर टूट गया वो।
0: टूट गया? मगर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे साफ करने ले गए हो। गलती से गिराने के लिए हम तुम्हें माफ कर देते हैं, मगर हम तुम्हें झूठ बोलने की सजा देंगे। हमें झूठ से सख्त नफरत है। दफा हो जाओ हमारी सल्तनत से। सिपाहियों, ले जाओ इसे यहाँ से।
1: हुजूर, हुजूर माफ कर दीजिए हुजूर, हुजूर मुझसे गलती हो गई हुजूर, मैं डर गया था हुजूर, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, हुजूर माफ कर दीजिए हुजूर।
0: इस तरह हमने उसे देश निकाला की सजा दी। किसी भी झूठे को कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमेशा सच बोलना चाहिए।
2: आपने बहुत अच्छा किया हुजूर, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई सबसे बेहतर है।
0: हाँ, यकीनन। क्या आप में से कभी किसी ने झूठ बोला है?
3: नहीं जापना, झूठ कभी नहीं, हो ही नहीं सकता जापना,
2: कभी भी नहीं,
3: कभी नहीं,
2: बिल्कुल भी नहीं।
3: मुझे तो झूठ बोलना आता ही नहीं
2: है, मुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता हुजूर।
0: बीरबल, तुम क्या कहते हो, तुमने कभी झूठ बोला है?
4: मैंने कभी ना कभी तो झूठ बोला है जापना।
0: तुम्हारा मतलब है कि हमारे दरबार के 9 रत्नों में से 1 रत्न झूठा है?
4: लेकिन हुजूर, हमें कभी ना कभी तो झूठ बोलना ही पड़ता है ना। मुझे ये यकीन है हर कोई झूठ बोलता है, किसी को नुकसान या ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, पर किसी को ठेस ना पहुंचे इसलिए।
0: नहीं, हमें नहीं लगता कि किसी को भी किसी भी हालत में झूठ बोलने की जरूरत है, और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे दरबार का खास मंत्री एक झूठा शख्स हो।
4: लेकिन हुजूर।
0: नहीं नहीं नहीं, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमारे उसूल सबके लिए बराबर हैं, इसलिए अब तुम हमारे दरबार में मंत्री नहीं रह सकते बीरबल। हमें झूठ और झूठों से सख्त नफरत है।
4: सेवक राम।
5: जी हुजूर, कहिए मैं क्या कर सकता हूँ?
4: बाजार जाकर मेरे लिए शहर का सबसे अच्छा सुनार ढूंढो। उसे कहना कि ऐसी ही एक डाली सोने की बनाए, पूरी डाल से लेकर गेहूं के दानों तक एक डाल जैसी होनी चाहिए सेवक राम। तो जाकर एक बढ़िया सुनार ढूंढकर उससे ये काम करवाओ।
0: बीरबल, हमने तुम्हें अपने दरबार से निकाल कर कहा था कि कभी अपनी सूरत मत दिखाना, तुमने हमारे हुक्म की तामील क्यों नहीं की?
4: हुजूर, मुझे माफ करे, मैं आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करना चाहता था।
0: तो यहाँ क्यों आए हो?
4: हुजूर, आपने मुझे दरबार में आने से मना किया हो, फिर भी मैं इस राज्य का वफादार नागरिक हूँ। मुझे एक ऐसी चीज मिली है जो इस सल्तनत को दुनिया में सबसे अमीर बना देगी, इसलिए सोचा आपको आकर दिखा दूँ।
0: सचमुच? ऐसी क्या चीज है जो हमारी सल्तनत को दुनिया में सबसे अमीर बना देगी? दिखाओ हमें। ये तो असली सोना है।
4: जी हुजूर, ये बिल्कुल असली सोना है।
0: मगर इसका क्या मतलब है और इसका करना क्या चाहिए?
4: हुजूर, ये सोने की डाली मुझे एक ज्योतिषी ने दी थी जो बरसों की तपस्या के बाद हिमालय पर्वत से लौटे थे। ये उन्हें भगवान से वरदान में मिला था। उन्होंने कहा कि अगर हम इसे सबसे उपजाऊ जमीन पर बोएंगे तो सोने की खेती कर सकते हैं।
0: बीरबल, क्या तुम्हें यकीन है?
4: हुजूर, वे ज्योतिषी कोई आम आदमी नहीं थे। मुझे तालाब के पास ये डाली देकर वो तालाब के उस पार पानी पर चलकर पार कर गए।
0: पानी पर चलकर गए?
4: जी हुजूर, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे हम जमीन पर चलते हैं, वैसे वे पानी पर चलकर तालाब पार कर गए हुजूर।
0: खैर बीरबल, अब वक्त जाया मत करो और जल्दी से सबसे उपजाऊ जमीन ढूंढकर इस बाली को वहाँ बो दो।
4: हुजूर, मैंने पहले ही ये काम कर दिया है और ऐसी एक जमीन भी ढूंढ ली है, मैं आपको अभी वहाँ ले जा सकता हूँ।
0: ठीक है, तो फिर हम कल ही इस बाली को बोएंगे, कल सवेरे यहाँ आना और हम साथ चलेंगे। दूसरों को भी तुम बता देना कि वो जमीन कहाँ है, ताकि वो भी वहाँ आकर सोने की इस बाली की बुआई को देख सकें।

0: हुजूर यही वो जगह है।
1: ओ, तो फिर देर किस बात की है? जाओ बीरबल और बाली को बो।
0: नहीं हुजूर, मैं ये डाली नहीं बो सकता।
1: नहीं बो सकते? क्या मतलब तुम नहीं बो सकते?
0: हुजूर, सिर्फ वही इसकी बुआई कर सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। अगर कोई झूठा इसे बोएगा तो ये सोने की डाली नहीं उगेगी। और जैसे मैंने आपसे कहा है, मैंने जीवन में कई बार झूठ बोला है।
1: ठीक है, तो फिर आप में से कोई आगे आकर इस बाली को बोइए। हमें यकीन नहीं होता, हमारे पास एक भी ऐसा आदमी नहीं जिसने कभी झूठ ना

0: ना हो।
1: हुजूर, मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही इसकी बुआई कर सकते हैं, सिर्फ आप। हुजूर, अब सिर्फ आप ही हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला है, तो क्यों ना आप ही इस डाली को बो दें।
0: हमने भी बचपन में कभी कुछ झूठ बोले होंगे, इसलिए हमें नहीं लगता कि हम।
1: हुजूर, मैं झूठ बोल रहा था, ये सोने की डाली जादुई नहीं है, ना ही ये मुझे किसी ज्योतिषी ने दी थी, इसे मैंने शहर के एक जौहरी से बनवाई थी। जी हुजूर, आप समझ गए होंगे कि हर किसी को कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, सच्चाई छुपाने या धोखा देने को नहीं, बल्कि इसलिए कि किसी का दिल ना दुखे या शर्मिंदा ना होना पड़े या किसी और अच्छे कारण के लिए।
0: हम समझ गए बीरबल, और सच बोलने पर तुम्हें सजा देने के लिए माफी चाहते हैं, और बिना डरे हमें अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुम हमारे एक सच्चे दोस्त हो बीरबल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया हुजूर, इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया, शुक्रिया।

दोस्तों, आपने अभी सुना अकबर और बीरबल की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मेरी दुनिया में। तब तक आपकी दोस्त आरजे रंजिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे अकबर और बीरबल की कहानी।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को, अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है, अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
2: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके, इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे। जी
2: डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्यकर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
2: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर सिंह के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए?
4: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
2: जी बताइए।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब की तरफ से, ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
2: तो दोनों को ही खानी
3: चाहिए। और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
2: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
3: जी
2: और डॉक्टर साहब,
5: क्या फाइलेरिया की पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
3: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
2: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: जब अभियान चलता है हम सभी से यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
2: जी और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता, इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी, अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
2: अच्छा। जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक दबा जाता
3: है, वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
5: जी, और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
2: जी बताइए।
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
2: जी
1: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपनी बातें।
7: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी बिल्कुल तैयारी में लग चुके होंगे

0: तो उसका जीरो चाउन भी करा सकते हैं। तो यह छोटी छोटी बातें हैं जो किसान साथियों को समझने वाली बात है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं मानसून और खेती पर। आज महत्वपूर्ण चर्चा है, इसको आप सुनिएगा और हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी बातचीत को आप सुनकर अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। हम किस तरीके से खेती कर सकते हैं, खासतौर पर जो खरीफ की फसल आने वाली है उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जो लगा सकते हैं, क्या क्या तैयारी हमें करना चाहिए, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को।
1: जी हाँ, मानसून का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और खास तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर कहें इस मानसून पर निर्भर करती है तो गलत नहीं होगी। खास तौर पर अगर खरीफ फसलों की बात करें तो बहुत हद तक इसकी निर्भरता रहती है और ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि अगर मानसून की बारिश अच्छी होगी तो हमारे खेत लहलहाएंगे। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि इस बार मानसून कैसा रहने वाला है, हमारे किसानों को अपने स्तर पर किस तरह की तैयारी करनी है और कैसे वर्षा जल संचयन भी वो कर सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के जैनमणि जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में। आप मानसून के चाल के बारे में बताएंगे, मानसून कैसा रहने वाला इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर वाई शिवे जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में, और शिवे जी हमें क्रॉप्स के बारे में जानकारी देंगे यानी अलग अलग जो फसलें हैं उनके बारे में, और डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जी हैं प्रधान वैज्ञानिक कृषि भौतिकी संभाग पूसा नई दिल्ली में। और अनंता जी से भी हम समझेंगे कि प्रबंधन किस तरीके से करें, मानसून भी है फसलें भी हैं तो इनके बीच का प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमानों के बारे में आपको हमने बता दिया है और आगे बात करते हैं मानसून के बारे में। तो इस बार मानसून कैसा रहने वाला है और इसका प्रभाव हमारी कृषि पर किस तरह से होता है, इन तमाम बातों को समेटे हुए देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: भारत में मानसूनी सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। इस दौरान हुई बारिश खरीफ फसलों की पैदावार के लिए काफी अहम मानी जाती है, यानी अगर मानसून अच्छा हो तो उपज भी भरपूर हो जाती है। लेकिन मानसून कमजोर हुआ तो इसका सीधा असर कृषि पर सूखे के रूप में पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और खेती के लिए मानसून की अहमियत को समझते हुए मौसम विभाग हर साल मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान जारी करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा के दूसरे चरण के दीर्घ अवधि पूर्वानुमान में इस बार जून से सितंबर के दौरान मानसूनी बारिश के औसत से 96 से 104% रहने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस बार पूरे देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा के सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून सीजन में मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से ज्यादा बरसात होने की संभावना है। मध्य भारत में ओडिशा, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ आते हैं। इन इलाकों में दूसरी फसलों के साथ मुख्य रूप से गेहूं, धान, कपास और दलहन की बुआई की जाती है। गुजरात में किसान मिर्च, जीरा जैसी फसलों की खेती भी करते हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए मानसून की अच्छी बरसात अच्छी पैदावार की सौगात लेकर आती है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, केरल और लक्षद्वीप आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। वहीं उत्तर पूर्व भारत और उत्तर पश्चिम भारत में बरसात के सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान आते हैं। इन राज्यों में अन्य फसलों के अलावा गेहूं, धान और दलहन की खेती मुख्य रूप से की जाती है। हालांकि कई बार मानसून हर इलाके में एक जैसा नहीं बरसता, यानी कई बार कहीं कम और कहीं ज्यादा बरसात भी हो जाती है। आमतौर पर जिन इलाकों में मानसून के दौरान ज्यादा बरसात होती है वहाँ किसान ऐसी फसलों की बुआई कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जिन इलाकों में कम बरसात होती है वहाँ किसान उन फसलों की बिजाई कर सकते हैं जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत हो। इसकी जानकारी किसान अपने

0: नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी ले सकते हैं।
1: जो आप काम करने को कह रहे हो
2: तो बिल्कुल, अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको यह भी बताया कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश की संभावना है वहां के किसान क्या करें, जहां पर बारिश थोड़ी कम रह जाती है वहां पर किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किस तरह की फसलों या फिर किस्मों का उन्हें चुनाव करना चाहिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डॉक्टर जयनमणि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिये मानसून का इंतजार हर किसी को होता है लेकिन किसान जो है उसका जीवन उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी आमदनी उसके ऊपर निर्भर करती है, सिर्फ मौसम में बदलाव ठंड या गर्म का मतलब उससे उसका नहीं रहता। तो ऐसे में इस बार का मॉनसून कैसा रहने वाला है, क्या बताता है भारत मौसम विज्ञान विभाग?
3: देखिए, जो अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन आया है, जो भविष्यवाणी है, वो जून मंथ का मंथली जो रहेगा और कौन सा एरिया में कम रेन होगा और कौन सा एरिया में ज्यादा रेन होगा, और उसके साथ साथ पूरा जो सीजन है 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक सारा भारत में मानसून स्थिति क्या रहेगा। तो पहले अगर बात करें सारा भारत का, तो इस साल ऐसे कुछ फीचर्स नेगेटिवली नहीं है। तो हम अगर ग्लोबल फीचर्स का बात करें, जैसे लानीना चल रहा है और ऐसे ही अप्रैल मई में भी ज्यादा गर्मी हुआ है, तो ये सारा बहुत इंडिकेट करता है कि मानसून अच्छा रहेगा ओवरऑल जो है। अगर ऑल इंडिया रेनफॉल जो सारा भारत का बारिश का अगर हम हिसाब करें, तो पूरा सीजन में जो है टोटल रेन लगभग जो हमारा 89 सेंटीमीटर होता है वो नॉर्मल रहेगा। हम रादर बढ़ाया, इनका मान था 99%, हम 103% दिया अपडेट में। और उसके साथ साथ जून महीने का जो है, सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि मानसून का जो आगमन होता है ये एडवांस फेज में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हर साल का यही स्टोरी है, मतलब यही ऑब्जर्वेशन है, इसमें घबराने का कोई बात नहीं होना चाहिए। और कुछ कुछ मीडिया जो बोलते हैं वो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हमारा जो रहेगा स्थिति, अभी पेनिनसुलर इंडिया जो दक्षिण भारत कवर कर रहा है, आगे से भी केंद्रीय भारत और हमारा उत्तर पश्चिम भारत को भी आएगा। और यही है कि कौन सा डेट जो है, डेट तो वेरी करता है, कभी 10 दिन लेट में आता है, कभी 10 दिन पहले आता है। जैसे दिल्ली का अगर बात करें, पिछले साल बहुत लेट में आया,
2: 25 के बाद
3: जून 27 नॉर्मल डेट होता है, राजस्थान जुलाई फर्स्ट वीक होता है। तो लगभग जो प्रेडिक्शन है जून महीना का सेकेंड हाफ है वो बारिश अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ मानसून का जो आगमन है, अभी तक जो आंकड़ा है कुछ डिले नहीं हुआ है, और महाराष्ट्र का कवर टाइम पर करेगा और केंद्रीय भारत भी टाइम पर करेगा।
2: बिल्कुल, तो अभी जो मानसून की चाल है या फिर रफ्तार है उसमें किसी तरह की हम तब्दीली नहीं देख रहे हैं, जो सामान्य रूप से जो होना चाहिए वैसा ही है। शिवे साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए जो रिपोर्ट भी हमने दिखाई तो उसमें भी हमने बताया कि किस तरीके से कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब हम एवरेज निकालते हैं पूरे देश का तो लगता है कि हाँ मानसून अच्छा रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और किसानों को इसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। आप जो अभी खासतौर पर जो खरीफ सीजन की फसलें हैं उनके लिए विशेष तौर पर क्या बताना चाहेंगे?
4: देखिए, मानसून जैसा कि इस साल नॉर्मल रहने की संभावना है, तो बहुत से क्षेत्रों में जो है अलग अलग किस्में लगाई जाती हैं, अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं, तो उस अनुसार जो है किसानों को अपनी तैयारी करने की जरूरत है। जैसे विशेषकर मध्य प्रदेश के अंदर जो है सोयाबीन लगाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर जो है कपास लगाई जाती है, या छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार के अंदर जो है धान का बहुत खेती होती है। इसके साथ साथ यदि हम उत्तरी भारत की बात करें, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है धान मक्का ज्वार बाजरा इनकी बहुत खेती होती है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी फसलें भी हैं हमारी, जैसे दाल वाली फसलें हैं, अरहर है, मूंग है, उड़द है, इनकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है खरीफ के मौसम में। लेकिन बात ये ध्यान रखने की है कि जो अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्में उन्हीं को लगाएं, और उसके साथ साथ जो है इस चीज का भी ध्यान रखें, पानी यदि आपके यहाँ अच्छी बारिश हो रही है तो उसका जो है पूरा सदुपयोग करें। सदुपयोग करने का मतलब ये है कि पानी को बाहर न जाने दें, और यदि पानी बहुत ज्यादा भर गया है, जैसे हमारी अरहर की है, मूंग की है, उड़द की है, तो वहाँ पानी निकालने की संभावना भी बढ़ जाती है,
2: बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है फसलें, ये भी हम जानते हैं। अनंता जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि देखिए प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है, रेन और क्रॉप इसके बीच में जब प्रबंधन की बात करते हैं तो इसे हम किस तरीके से समझें?
5: जी, जैसे कि अभी मानसून के समय में विभिन्न फसलें लगती हैं, जिसमें जैसे कुछ धान है, मक्का है, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें, इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलें भी लगती हैं। तो इसमें सभी फसलों को सामान्य रूप से पानी की जरूरत नहीं होती है। जैसे धान है उसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तिलहनी या दलहनी फसलें हैं उनको कम पानी की जरूरत होती है। तो आपको जो उस हिसाब से जो पानी का जो प्रबंधन करना चाहिए फसलों में, जैसे अभी डॉक्टर सीवेज जी ने भी कहा है कि धान के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो आपको वहां पे जो ऐसे मैने ऊंची बना लीजिए ताकि अगर बरसात का पानी आता है तो ज्यादा से ज्यादा पानी जो है आपके खेतों में रुक सके। आपकी जैसे तिलहनी फसलें हैं या दलहनी फसलें हैं या सब्जी वर्गीय फसलें हैं तो पानी के प्रति काफी संवेदनशील होती है। अगर ज्यादा पानी बरस गया तो उनकी जो जड़ें होती है वो खराब होने की संभावना होती है। तो उसमें जो आप जल निकासी का प्रबंधन कर सकते हैं या फसलों को आप में लगा सकते हैं, जिससे जो है आपका पानी से नुकसान नहीं हो सकता। जैसे कि हम देख ही रहे हैं आजकल जलवायु परिवर्तन की वजह से जो वर्षा की तीव्रता है वो ज्यादा हो जाती है, और जो आपके रेनी डे हम जो कहते हैं कि वर्षा के दिन, उनमें कमी आ रही है। जैसे कि टोटल बारिश हम कहते हैं कि जो आपका मानसून वर्षा है वो तो आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन जो वितरण है वो आपका सामान्य नहीं रहता है। कभी आपकी बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, कभी आपका ड्राई पीरियड जो सूखा समय है फसलों के दो बारिश के बीच का समय वो ज्यादा रह जाता है। तो अगर आप जो ये जो पानी है जो पानी एकत्रित नहीं, तो आपको ये सलाह दूंगी कि आप खेत के पास में एक पौंडनुमा स्ट्रक्चर बना दीजिए और जो बरसात का पानी आता है उसमें इकट्ठा हो जाएगा, साथ ही जो आप जल निकासी करते हैं खेतों से उसका पानी भी उसमें इकट्ठा हो जाएगा। और जब आपका जो सूखा पीरियड ज्यादा होता है उसमें आप जब पंप की मदद से वो जो पौंड में आपका पानी एकत्रित हुआ है उसको आप फसलों में डाल सकते हैं। इसके आपके कई फायदे होंगे, एक तो आपको पानी मिल जाएगा फसलों में, दूसरा जो खेत का जो उर्वरक है वो पानी के साथ आपका उसमें इकट्ठा हो गया तो फिर से आपके जो खेतों में आ जाएगा, ये भी आपका फायदा हो जाएगा।
6: बिल्कुल अनंत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई, क्योंकि देखिए हम पानी को सिर्फ पानी की तरह लेते हैं कि एक पोषक तत्व है, जितने जो जरूरत होती है फसलों को उनमें से एक ये भी है, एक कंपोनेंट है महत्वपूर्ण, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिले। जो अनंत जी ने बताया कि आपके खेत की जो मिट्टी बहती है वो बहुत रिच होती है, वो बर्बाद ना जाए, उस पानी को बर्बाद आप बिल्कुल ना जाने दें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान इसके लिए अपने स्तर पर तैयारी करें, वहां पर भी जहां पर बारिश कम होती है और वहां पर भी जहां पर ज्यादा होती है, दोनों ही स्थिति में आपको अपने स्तर पर जरूर तैयार रहना चाहिए। अब बात मैं करती हूँ जनमणि जी से। जनमणि जी, जैसे कि हम वितरण की बात करें, देखिए सारा प्रबंधन जो है इसी बात पर फोकस हो जाता है कि कहीं बारिश ज्यादा ना हो जाए और कहीं बारिश कम ना हो जाए, लेकिन अगर एक समझने की हम कोशिश करें, एक मेरा सवाल है कि ये दरअसल वितरण कम हो क्यों रहा है? मतलब एक दिन एक क्षेत्र में देखते बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वहीं दूसरी जगह देखते हैं कि कम हो रही है, तो एवरेज तो आपका ज्यादा निकलता है लेकिन पानी जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता, प्यास धरती की नहीं बुझती।
3: देखिए मैं इसका ना जो डिस्कशन है दो बातें बताऊंगा। जो एक तो जो एरिया है जैसे उड़ीसा है या हमारा पूर्वोत्तर राज्य है और जैसे हमारा पश्चिम का जो कोंकण गोवा कर्नाटक और केरल, यहाँ तो हर साल ज्यादा बारिश होता है, फ्लड होता है, ठीक है ना। इसकी जो वेरिएबिलिटी है कम है, चाहे मानसून कैसा भी परफॉर्म करो लेकिन जो रेन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा बारिश मिलता है, ठीक है। और अगर हम अंदरूनी इलाका का बात करें जैसे मध्य प्रदेश है या ज्यादा से ज्यादा जो राजस्थान है, ये इलाका में जो है एक तो रेनफॉल का जो अमाउंट है 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर टोटल होता है, और राजस्थान में भी तो ऐसा इलाका है टोटल 50 सेंटीमीटर है। तो ये इलाका में जो मानसून का जो जैसे अभी डिस्कशन हो रहा है, यहाँ जो है जो हम रेनफॉल एरिया बोलते हैं कि जहां बारिश कम होता है उसके साथ साथ इसका जो वेरिएबिलिटी है, मतलब 6 दिन बारिश हुआ या 2 दिन बारिश हुआ फिर एकदम ड्राई स्पेल लंबा है, तो ज्यादा हमारा जो फोकस रहता है ये राजस्थान मध्य प्रदेश इसी इलाका का रहता है कि इनको सही इन्फॉर्मेशन मिले कि कब वेट स्पेल होगा कब ड्राई स्पेल होगा, सो दैट जैसे दे कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन, पानी को स्टोर करना है कौन सा, यू नो सोइंग सीजन कौन सा टाइम में होता है, इसलिए वो मौसम विज्ञान विभाग से जो नियरेस्ट सेंटर है वहां से टाइम टू टाइम हमारा SMS जाता है उसका इस्तेमाल करें
6: जी। यानी जनामणि जी जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं पूर्वानुमान होते हैं इस पर हमारे किसान बहुत गौर करें क्योंकि अगर उन्हें ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली जैसे आपने बताया कि हैवी स्पेल की अगर संभावना बन रही है तो किसान सिर्फ इस सीजन की फसल को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेप्स ना उठाएं बल्कि ये भी सोचें कि इस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। और जैसे कि हाल में हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया उसमें भी फोकस यही था कि धरती एक ही है और पानी जो है इसे आप लैब में नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बारिश होगी ऊपर से वही पानी आप इस्तेमाल करेंगे या फिर ग्राउंड वाटर होगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान पहले से किस तरीके से पानी को बचाया जाए ताकि आगे भी काम आए।
3: बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो वाटर मैनेजमेंट है, दूसरा क्या होता है कि क्रॉप का जो डिफरेंट स्टेज होता है तो अकॉर्डिंगली जैसे हैवी स्पेल होता है तो पेस्ट एंड डिजीज और आपको जो भी खादी या कुछ भी फर्टिलाइजर डालना है तो वेट स्पेल में तो चला जाता है नीचे, ठीक है ना। तो इसलिए जो मौसम का भविष्यवाणी लेके नॉट ओनली कि आप लगाए धान कि कब आ रहा है मानसून वो एक है, उसके बाद भी कम्प्लीटली मैनेजमेंट जो है वो मौसम का भविष्यवाणी पर होना चाहिए
6: जी, जी।
3: जैसे पेस्ट डिजीज कंट्रोल है, जैसे फर्टिलाइजर लगाना है तो बारिश को देखते या कब ड्राई स्पेल है वही विंडो में करना चाहिए
6: जी। शिवे जी इस पे मुझे लगता है और बेहतर तरीके से बता पाएंगे, आप क्या बताना चाहेंगे सर, चाहे वो खाद डालने की बात हो या फिर पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो मौसम या फिर खासतौर पर बारिश की जो संभावना है उसको देखते हुए कैसे हमारे किसान कर सकते हैं।
4: देखिए बारिश का जो है बहुत बड़ा महत्व है हमारे खाद्यान्न उत्पादन में, विशेषकर जो है खरीफ के मौसम में। ये एक तो पानी पौधों को डायरेक्ट मिलता है, दूसरे जो हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में हम पंप सेट से ट्यूबवेल से पानी को निकालते हैं तो उसके लिए भी रिचार्ज होना ग्राउंड वाटर बहुत जरूरी है और ये वर्षा पर ही निर्भर करता है। तो इसका बहुत अच्छे ढंग से किसानों को सदियों को करना चाहिए क्योंकि पानी एक ऐसी कॉमोडिटी है इसके बिना खेती नहीं की जा सकती, चाहे वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है चाहे इरीगेटेड है, कैसी भी कंडीशन है पानी बहुत जरूरी है। तो किसानों को क्योंकि आजकल कृषि विज्ञान केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वहां पे जो मौसम की भविष्यवाणी की सूचना जाती है और उन्होंने जो है अपने व्हाट्सएप मैसेज से किसानों को जोड़ रखा है तो उनके हर किसानों के पास में कम्युनिटी सेंटर पे जाती है कि भी अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है या हवा तेज चलने वाली है या हमको जो है खाद डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक होने की जरूरत है और उनको जो है समय समय पर जो भी उनको मैसेज मिलता है उसी अनुसार जो है चाहे वो किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर करें कि आज बारिश होने वाली है तो हम नहीं डालेंगे, यदि थोड़ा ड्राई स्पेल आ रहा तो उस समय जो फर्टिलाइजर लगाएं या हो सकता है उनका कुछ इरिगेशन देने की जरूरत पड़े तो इस तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रॉप की प्लानिंग भी इस तरीके से करनी चाहिए कि जैसे इंटरक्रॉपिंग है या मिक्स क्रॉपिंग है या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ऐसे आयाम यदि वो अपनी कृषि पद्धति में लेकर आएंगे तो वहां पर पानी की उपयोग क्षमता बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ उनकी आमदनी भी बनेगी। और यदि कुछ दुर्भाग्यवश किसी कारणवश कुछ ड्राई स्पेल आ जाता है तो वहां पर फसल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती
6: जी,
4: है।
6: लेकिन जी जी जी सर
4: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, किसान भाई जो है इस चीज का भी ध्यान रखें कि उनके पास में कोई अवशेष बचा हुआ है किसी फसल का तो उसको जलाएं नहीं बल्कि उसको मिट्टी के ऊपर छोड़ें तो आच्छादन का काम करेगा, मल्चिंग का काम करेगा, उससे उनका जो है पानी का ह्रास कम होगा और उनकी जो है वाटर रिटेंशन
6: और कार्बन कंटेंट भी बढ़ेगा मिट्टी का।
4: बिल्कुल, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट तो आत्मा मानी जाती है मिट्टी की और वो जो है पोषक तत्व प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है और जो हमारे जैसे माइक्रोबियल बायोमास है, माइक्रोबियल बायोमास कार्बन है, बैक्टीरिया फंजाई एक्टिनोमाइसिन इनके लिए भी बहुत जरूरी है।
6: जी लेकिन डॉक्टर शिवे जैसा कि आपने बताया कि मौसम कैसा रहने वाला है पूर्वानुमान देखे उसी के अनुसार ही चाहे सिंचाई करनी है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें, खाद डालें या कीटनाशक डालें हैं उसी के अनुसार हमारे किसान अपनी योजना बनाए। लेकिन एक बात हम ये भी जानते हैं कि किसान जो एक पैटर्न फॉलो करता आ रहा है मतलब जो परम्परागत तौर पर कि इस फसल में इतनी सिंचाई लगनी है तो 21 दिन बाद हम पहली सिंचाई लगाएंगे फिर इतने दिन बाद, तो वो भी ये बात सही है कि अगर वो डे मिस हो गया तो उसकी फसल में नुकसान होगा, तो इससे मतलब ये बड़ा जटिल हो जाता है, किसान कैसे समझे इसे?
4: समझने की जरूरत ये है कि यदि बारिश हो जाती है जैसे क्रिटिकल स्टेज बताते हैं कि भाई इस पे पानी देने की जरूरत पड़ती है। धान के अंदर हम बताते हैं कि जिस समय मैक्सिमम टिलिंग स्टेज हो या हमारी जो है बालियां निकलनी अंदर ही बननी शुरू हो में, तो उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और बालियां इनिशिएशन से बाली बाहर आने तक तो बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्टेज को ध्यान में रखते हुए किसान भाई पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन उस समय यदि बारिश हो जाती है तो फिर पानी देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मक्का के अंदर जो है हमारी नी हाई स्टेज है, बहुत क्रिटिकल है पानी के लिए, तो उस समय पानी नहीं लगा तो लगेगा तो काफी नुकसान हो जाएगा। यदि बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बारिश होती है तो उस समय सप्लीमेंटल इरिगेशन कहते हैं उसको, पूरक सिंचाई कहते हैं, उस समय सिंचाई करेंगे तो उनकी पैदावार अच्छी होगी। इसी तरीके से जैसे हम मैं बताना चाहूंगा कि अरहर की फसल है, अरहर की फसल या मूंग उड़द की फसल को अभी डॉक्टर अनंत अवशिष्ट जी ने बताया कि बेड पर लगाना चाहिए और आजकल ब्रॉड बेड पर लगा रहे हैं किसान, तो उसी पद्धति को अपनाना चाहिए। तो इस पद्धति को अपनाएंगे तो उनके यहाँ जल भराव की कोई समस्या होती है तो वो उससे नुकसान नहीं होगा बल्कि हमारी फसल बच जाएगी और उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, बाहर नहीं जाएगा और जड़ों को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से यदि कुछ नए आयाम लेकर आएंगे बिजाई के लिए या क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो उनसे जो है ज्यादा हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी और इसके साथ साथ जो हमारे जो दूसरे प्रबंधन के आयाम है वो भी अच्छे होंगे।
6: जी अनंता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जैसे कि डॉक्टर शिवे बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि जब किसान की फसल खेत में होती है या फिर बुआई कर देता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस उसकी फसल होती है, उस वक्त वो उसके आगे पीछे नहीं सोचता, वो उसका पूरा ध्यान ही रहता कि मेरी फसल कैसे अच्छी हो। तो कैसे यहां पर एक सामंजस्य भी रहे और दोनों तरह से काम होते रहे, क्या बताएंगे?
5: जी इसमें तो मैं किसान भाई बहनों को यह सलाह दूंगी कि उन्हें मौसम आधारित कृषि करनी चाहिए या मौसम आधारित कृषि प्रबंधन उसमें करना चाहिए। उन्हें समय समय पर मौसम की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि अभी मानसून के समय जो मुख्य मौसमी तत्व होता है वो बारिश होती है। बारिश केवल सिंचाई के लिए नहीं, खरपतवार नियंत्रण करना है या आपका कीटनाशक है या आपका जो आपकी बीमारियां आ रही है उसके प्रबंधन के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी डॉक्टर सिंह ही बता रहे थे कि आपको कब सिंचाई देनी है, आप डिफरेंट स्टेज होती है इसमें आपको सिंचाई देते हैं और किसान भाई बहन क्या करते हैं कि उसी में दे देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्होंने सिंचाई कर दी और उन्हें मौसम की जानकारी नहीं है, उसके तुरंत बाद बारिश आ गई तो फसलों को जितना पानी चाहिए था उससे ज्यादा पानी उनको फसलों को मिल गया। तो हर चीज को अपना ऑप्टिमम जो कहते हैं उतनी जरूरत होती है, तो अगर ऑप्टिमम से ज्यादा उनको पानी मिल जाता है तो उनकी फसलें खराब हो सकती है। इसके अलावा जैसे खरपतवार नाशी डालना है या कीटनाशी डालना है, आपको बीमारियों से बचाना है अपनी फसलों को, तो किसान भाई बहनों को अगर इसकी सूचना नहीं है कि अगले दो तीन दिन में बारिश होने वाली है और उन्हें कीटनाशक आपके फसलों में डाल दिया तो इसका क्या होगा कि तुरंत उसके बाद बारिश हो गई तो कीटनाशक उसका धुल जाएगा और धुल के जो है ये आपको
6: मिट्टी को भी
5: दूषित करेगा और वहां से जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। और अगर आपका बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो रन ऑफ करके पानी के साथ बह के जो नजदीकी नाले हैं या नाले से होते होते जो नजदीक के तालाब है उनमें भी चला जाएगा, उसमें मछलियां हैं, जलीय जंतु हैं,
6: प्रदूषित हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा।
5: तो आपका देखो एक तो एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से बच जाएगा अगर आपको मौसम की जानकारी है, आपकी मृदा प्रदूषित होने से बच जाएगा, आपका जो भूजल है वो प्रदूषित होने से बच जाएगा और आपके जो जलीय जंतु हैं वो भी आपके बच सकते हैं। तो अगर आपको छोटी सी जानकारी एक मिल जाती है तो आपके इतने जो साइड फायदे हैं हम कहते हैं ये फायदे आपके हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी रिसोर्स सेविंग हो जाती है क्योंकि आपने जो है पानी की आपकी बचत हो रही है, आपने पानी लगाया तो पानी लगाने में आपका लेबर का जो खर्चा आ रहा है या डीजल का खर्चा आ रहा है तो वो भी आपका बच जाता है, तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो बच जाता है।
6: बिल्कुल देखिए, यानी कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि मानसून का प्रिडिक्शन, उसका पूर्वानुमान कितना सटीक होगा इस पर भी आपकी आय निर्भर करती है क्योंकि उसी के अनुसार आप आगे की जो कृषि क्रियाएं हैं उनके बारे में विचार कर सकते हैं, उनके बारे में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं। इसीलिए इस विषय को हमने आज शामिल किया अपने कार्यक्रम में ताकि किसानों तक जागरूकता फैले और मॉनसून के चाल पर वो नजर रखें। लेकिन कई बार समस्या ये आती है कि किसानों तक इतनी सटीक जानकारी सही समय पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि मौसम की चाल इतनी तेजी से बदलती है कि किसान खुद भाप नहीं पाता। तो इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टाइटर भीम 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून और खेती की। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है और किसान कितने खुशहाल होंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी, किस हद तक होगी, ये भी निर्भर करता है मॉनसून कैसा रहने वाला है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जयनमणि, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, किसान मौसम पर नजर रखता है, मौसम के अनुसार अपनी योजना बनाना चाहता है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी उसे मिलेगी तभी यह संभव होगा कि कल बारिश होने वाली है, तभी वो तैयारी करेगा ना कि आज वो सिंचाई ना लगाए। तो इसके लिए किस तरह का तंत्र बनाया जा रहा है, किसानों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है?
2: देखिए, जो मेनली जो आजकल हमारा जो किसान भाई और बहन के साथ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप हर जैसे ग्राम या डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, जहां हमारा जो लेटेस्ट है 4 बार पर डे बुलेटिन जाता है। तो उसमें हम 2 तरीके का भेजता है। एक है, एक नावकस्ट जाता है जो मेनली सडन डेवलपमेंट के बारे में बताता है, नेक्स्ट 2-3 घंटा है तो किसान भाई के लिए ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए है। जैसे लाइटनिंग है जो सडनली लोगों के ऊपर, आप सभी को मालूम है बिहार झारखंड उड़ीसा में ज्यादा जाने जाता है, तो उनका सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। वो एक SMS जाता है, उसमें ध्यान देना चाहिए अपना सेफ्टी के लिए, क्योंकि जून महीना में ज्यादा जान को खतरा रहता है, जून जुलाई में जैसे मानसून आगमन का टाइम होता है। और दूसरा एक है कि हमारा जो शॉर्ट रेंज है, मतलब 5 दिन तक जो प्रेडिक्शन है वो आता है, डेली हम लोग भेजते हैं मैसेज के थ्रू में भेजते हैं। अगर कोई सीवियर वेदर है, लंबा स्पेल है, एक्टिव स्पेल है, मानसून आ रहा है, सारा डिटेल कवर करता है। और उसके साथ साथ एक एक्सटेंडेड रेंज, लंबा अवधि का 2 हफ्ते तक वैलिड है, हम भेजते हैं। वो 2 हफ्ते वाले जो 14 दिन का जो प्रेडिक्शन है वो जाता है। सभी किसान भाई जो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हमारा होता है, जैसे हर स्टेट में हमारा सेंटर है, तो अगर वो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र का बात हो रहा था, अगर वहां संपर्क करे तो सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आजकल का जो टेक्नोलॉजी है वो 80% to 90% एक्यूरेटली जो है ड्राई स्पेल है या ज्यादा बारिश होगा, कितना दिन बरसेगा, वो डिटेल्स आजकल से ही जा रहा है इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। और मैं तो और बोलूंगा कि जो नावकास्ट है उसको अपना सेफ्टी के लिए जरूर व्यवहार करें, क्योंकि ज्यादा जाने जो है हमारा एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं उन्हीं का भी जाता है। हम अगर पिछले स्टैटिस्टिक्स
1: बिल्कुल, और पिछली बार का मुझे भी याद भी आता है कि किस तरीके से आप बताए कि लाइटनिंग की वजह से
2: बिहार में
1: जान भी गई,
2: उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में
1: जी। और डॉक्टर शिवे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो किसान है मौसम देखते रहे, उसी के अनुसार अपनी पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो डेवलप करें, तो ऐसे में ये तो बात हुई सिंचाई की, तो क्या ये सिंचाई तक ही सीमित है या फिर पोषक तत्व तो प्रबंधन और बारिश का भी किसी तरह का संबंध है जिसे हमारे किसान ध्यान में रखें?
3: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। किसान भाइयों को ये जानने की जरूरत है कि पानी है तो तभी वो अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, पानी नहीं है तो फिर वो पोषक तत्व भी नहीं डालते हैं, क्योंकि पोषक तत्व जो है पानी से ही लिए जाते हैं जड़ों के माध्यम से। तो इस तरीके से ध्यान करने की जरूरत है, जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो गई है जिस दिन, तो उस दिन जो है उनको नाइट्रोजन नहीं डालनी चाहिए, जब तक पानी खेत में खड़ा है, धान के खेत में विशेषकर, क्योंकि धान हमारे भारत में लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होता है, सभी प्रदेश के अंदर होता है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन का बहुत बड़ा ह्रास होता है। और नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता धान के अंदर देखें वो 25 से 30% से ज्यादा नहीं है, बाकी लॉस ही होता है, चाहे अमोनिया गैस बनकर उड़ जाता है, चाहे नाइट्रोस ऑक्साइड गैस, या जो है फिर वो नाइट्रेट लीचिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है किसानों को कि जैसे हमारा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उसमें जो है आप फोलियर फीडिंग कर सकते हैं, पानी का घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, और यदि आपकी बहुत ज्यादा बारिश हो गई है तो उस समय जो नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब पानी निकल जाए खेत से तभी दें, तो इससे हमारी नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ साथ आजकल बायो फर्टिलाइजर्स भी पानी के साथ साथ बहुत अच्छे पोषक तत्व प्रबंधन में हमारी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, अच्छी फसल लेने के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए, इसका भी इस्तेमाल किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ग्रीन मैन्योरिंग है या हमारा सड़ी गड़ी गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो जो है हमारी मीटर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूसरा हमारे जो फसल अच्छी होती है, और तीसरा जो हमारा ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी मृदा के अंदर जो है पानी का अवशोषण ज्यादा होता है, तो पानी बह के नहीं जाता है ऐसी मृदाओं के अंदर, और जो हमारी वैसी मिट्टी होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की कमी है, वहां पानी बह के भी चला जाता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी नहीं बढ़ती है। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करें। अभी दूसरे जो है भारत सरकार ने और हमारा इफ्को जो है नैनो यूरिया बना रहा है, तो कुछ नाइट्रोजन उपकरणीय छिड़काव से नैनो यूरिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, इससे नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी
1: और श्रम भी इसमें कम लगता है,
3: कम भी लगता है। और इसके साथ साथ कभी कभी हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पौधों के अंदर दिखाई देते हैं कि भी जिंक की कमी होगी, आयरन की कमी होगी। विशेषकर मैं बताना चाहूंगा जैसे डायरेक्ट सीधी बिजाई धान की कर रहे हैं और अभी चली रही है पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ज्यादातर किसान और दूसरी जगह भी करते हैं, तो यदि शुरू में उनके यहाँ आयरन की हरिमाहीनता दिखाई देती है तो उसके लिए जो है पर्णीय छिड़काव से कर सकते हैं। बाद में जब बारिश होगी तो फिर उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश अच्छी होती है तो फिर जो है आयरन की कमी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है पानी की और पोषक तत्व प्रबंधन का एक सामंजस्य है जो एक अच्छा मृदा स्वास्थ्य के लिए और अच्छी उत्पादकता के लिए और अच्छा जो है रिटर्न देने के लिए जरूरी है।
1: जी डॉक्टर अनंता, एक चीज हम ये भी देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिस जो पहले नहीं होती है, तो अगर बारिश उस क्षेत्र में ज्यादा हो गई तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता हो जाती है और उसके बाद बीमारियों अपने आप ही आने लगती है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमारे किसानों को, किस तरीके से इसको लेकर वो सजग रहे।
4: जी जैसे कि आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा है, बरसात के मौसम में जो बीमारी और कीड़े आते हैं ये जो है एक तो तापमान और नमी आर्द्रता जो हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस पर निर्भर करते हैं, और विभिन्न जो आईसीआर के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है उन्होंने ऐसे कई मॉडल डेवलप किए हैं जो हम कहते हैं कि डिजीज फॉर वार्निंग मॉडल्स, वो जो है आपके जो मौसम के आधार पर आप उसकी पहले से वार्निंग दे सकते हैं कि फसल की आपकी ये फसल लगी हुई है और ये फसल की कौन सी स्टेज है और इसमें कौन सी बीमारी है कीड़ा आने वाला है, तो इसकी फॉर वार्निंग पहले से पता चल जाती है मॉडल के आधार पर। तो ये जो अलर्ट जो है किसान भाई बहनों को दे सकते हैं कि भाई आपकी ये फसल लगी है इसमें ये कीड़ा या बीमारी आ सकती है, तो आप पहले से इस फसल की निगरानी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए किसान भाई लोगों को अपने जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो आपके अनुसंधान संस्थान है या आपकी कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके संपर्क में, कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में तथा मौसम वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए और समय समय पर आपको जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है अपना मोबाइल पे जो है जैसे मेघदूत ऐप अभी बताया है या दामिनी ऐप है इससे बिजली की आपको जानकारी मिल जाएगी, मेघदूत ऐप है इसमें आपको मौसम की जानकारी के साथ साथ ही कैसे आपको प्रबंधन करना है, मौसम आधारित कृषि प्रबंधन करना है ये भी आप उसमें जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जो है प्ले स्टोर से ये जो मेघदूत ऐप और दामिनी ऐप इसमें
1: जानकारी, मेघदूत ऐप के बारे में तो काफी प्रचार प्रसार हुए, दामिनी ऐप जो
2: लाइटनिंग
1: बारे में बताइए कि बिजली का प्रेडिक्शन में पता चल सकता है।
2: देखिए बिजली का जो प्रेडिक्शन है वो मॉनिटरिंग है, हमारा जो सिस्टम है कहीं कहीं इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसके साथ साथ सैटेलाइट बेस्ड भी हम लोग को पता चलता है, तो आधा घंटे विद इन वन आवर वो मैसेज जाता है कि जस्ट फोर वार्निंग, मतलब कहीं इलाका में हो रहा है आगे जाएगा, तो उसको हम लोग ये जैसे बताए कि जो दामिनी ऐप है उसके थ्रू में आपको पता चलेगा कौन सा एरिया में वो एक्टिविटी चल रहा है या थोड़ा बहुत होने वाला है। अच्छा। वो मैपिंग के वजह से वो गूगल ऐप में दामिनी डाउनलोड करके कर सकते हैं बिजली की गिरने का जो है, और जैसे बताया मेघदूत, मेघदूत में आपका पूरा अपना एरिया का भी का, आप देख सकते हैं लोकेशन और जो जगह है वहाँ क्या बारिश का संभावना है वो मिल सकता है डिटेल।
4: जी इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे जैसे बरसात के मौसम में आप खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि खरपतवार काफी आती है और खरपतवार का जो मुख्य फसल है उससे काफी प्रतिस्पर्धा होती है, वो मृदा से पोषक तत्व तो लेती है इसके साथ साथ जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको भी बाध्य करती है, क्योंकि उनकी पैदावार जो है मुख्य फसल से ज्यादा हो जाती है और वो जो मुख्य फसल है उसको प्रकाश कम मिलता है तो उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है या कम हो जाती है, तो इसका काफी उपज की गुणवत्ता पे भी इसका असर पड़ता है। तो समय समय पर जो आपको खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए, इससे आपके जो मृदा है उसमें भी क्या होगा कि जो हवा का आदान प्रदान अच्छे से होगा, हवा का आदान प्रदान अच्छा होगा तो आपकी जो जड़ें होंगी वो भी मजबूत होंगी, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व वो जमीन से ले लेगी, अच्छे से आपका प्रकाश संश्लेषण होगा और आपकी जो उपज की गुणवत्ता है और उत्पादकता दोनों में बढ़ा होगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो अभी आपने बताया, देखिए सुनने में बातें बहुत आम सी लगती है लेकिन इसका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है फसलों पर। जयरमणि जी, जैसा कि हम मानसून की बात कर रहे हैं और पहले तो जो तरीका होता था कि विंड्स किस तरफ हवा बह रही है और आसमान में बादल छाए या नहीं छाए उसको देखकर अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन अब तो सब चीजें बहुत सिस्टमैटिक हो गई, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम मानसून को ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो हमारे देश का मानसून किस तरह का है, नेचर ऑफ मानसून क्या है?
2: नहीं देखिए, ये मतलब जानकर हम गर्व अनुभव करना चाहिए कि जो मानसून है वो भारत में सबसे ज्यादा रेन होता है। अगर सारा विश्व का जो क्लेम करते हैं, जैसे अमेरिका भी क्लेम करता है हमारा मानसून है, या कहीं भी आप जो ट्रॉपिकल एरिया है, मानसून मतलब विंड एक्चुअली मेनली हवा, हवा का गति एंड हवा का दिशा। तो हमारा भारत का ऐसा नेचर, मतलब हमारा जैसे लैंड है केरला से लेकर के हिमालय अगर जाएं, और हमारा दो जो समुद्र है जो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। हिमालय तो एक जो है जो हमारा हवा आ रहा है समुद्र से उसको रुकता है। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा ये पूरा रेगिस्तान बन जाता है, ठीक है ना। सो हमारा जो रेन का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा है। जैसे अगर किसी के साथ कंपेयर करें तो मानसून का सबसे ज्यादा रेन होता है हमारा पूर्वोत्तर, सभी को मालूम है मौसम ड्राम है, चेरापूंजी है, उसके साथ साथ हमारा जो कोंकण का क्षेत्र है चाहे कर्नाटक का क्षेत्र है बहुत ज्यादा बारिश होता है। 2500 मिलीमीटर है, 250 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, तो ये हमारा का पूरा साल का जो पानी है और बिजली भी है मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि खेती तो है ही है, उसके साथ साथ हमारा जो पूरा जीवन है मानसून के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसलिए मानसून बहुत अहम माना जाता है साउथ एशिया के लिए, पर्टिकुलरली हमारा भारत के लिए है।
1: जी जी। शिवेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्रॉप के हिसाब से अगर हम बात करें, खरीफ की जो फसलें हैं अगर उनके बारे में एक एक करके और बारिश से जोड़कर अगर इनको थोड़ा समझना चाहें तो किस तरह से?
3: हाँ देखिए, जैसे भारत के अंदर जो लगभग खरीफ में जो राइस है, धान है, सभी प्रदेशों में उगाया जाता है, इसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है, बिना पानी के धान नहीं हो सकता, तो इसके लिए बारिश का बहुत बड़ा रोल है। और जो ये हमारी खाद्यान्न की जो पूर्ति के लिए नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कमाने के लिए,
1: हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है,
3: खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी जरूरी है। जैसे पिछले साल जो लगभग हमने 32-36 हजार करोड़ रुपए का जो है
1: रिकॉर्ड एक्सपोर्ट
3: धान का किया है, तो उससे अर्निंग हुई है। तो उस तरीके से धान के प्रबंधन के लिए जरूरी है कि पानी का जो है सदुपयोग करें, और विशेषकर मैं पंजाब हरियाणा में क्योंकि बासमती की खेती होती है, यहां बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि वो डायरेक्ट सीधी बिजाई करेंगे, डायरेक्ट सीडिंग करेंगे तो उसमें पानी की बचत होगी और पानी कम लगता है, लगभग उसमें 25-30% पानी की बचत हो सकती है, क्योंकि हमको जो है लगभग उसमें 20-22 इरीगेशन देनी पड़ती है, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड राइस है उसमें हमको जो 28-30 इरीगेशन देनी पड़ती है। और साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, जैसे हम पर्लिंग करते हैं उस समय यदि बारिश नहीं होती है तो उसमें लगभग हमारा 15 लाख लीटर पानी लग जाता है पर्लिंग के अंदर, तो उस पानी की बचत कर सकते हैं हम सीधी बिजाई करके, लेकिन ये सीधी बिजाई जो है अभी कर लें वो बारिश आने से पहले ताकि उनका जमाव हो जाए। तो इस तरीके से जो है धान के अंदर पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन मक्का है, ज्वार है, बाजरा, इनको थोड़ा कम पानी की जरूरत पड़ती है। मक्का ज्वार बाजरे को हमेशा जो रेज बेड पर लगाना चाहिए, रिज पर लगाएंगे उससे दो फायदे होंगे, एक तो उनकी फसल को नुकसान नहीं करेगा पानी यदि अधिक हो जाता है, और दूसरा उनका ग्राउंड वाटर कहीं पानी खेत का पानी खेत में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, और ये हमारा स्लोगन भी है और ये हमारा विजन भी है,
1: गांव का पानी गांव में ही रहे।
3: तो इस तरीके से यदि बिजाई करेंगे वो मक्का ज्वार बाजरे के अंदर तो उनकी फसल अच्छी होगी। और हमारा, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। अब बात आती है कपास। कपास बहुत हमारी प्रमुख
1: कमर्शियल
3: क्रॉप है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत मतलब अच्छी क्रॉप है। तो लगभग जो है पंजाब में भी, हरियाणा में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, गुजरात में भी होती है, और हमारे लगभग महाराष्ट्र, हमारे जो मध्य प्रदेश में, इनमें सभी प्रदेशों में होती है। तो इसके लिए जो है आजकल ये बताते हैं हम कि रेज बेड पर लगाएं, रेज बेड पर लगाएंगे तो उनका ये फायदे होंगे कि दो लाइनें आ जाएंगी और दो लाइनों के बीच में खूड बन जाएगा, तो अधिक पानी होगा तो खूड के अंदर जो है वो अवशोषित हो जाएगा, फसल को नुकसान नहीं होगा। अब आती है जैसे गन्ने की बात, गन्ना एक हमारी बहुत ही कॉमर्शियल क्रॉप है, सभी जानते हैं चीनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, सभी खाते हैं लगभग, तो इसके लिए जो है पानी की बहुत जरूरत पड़ती है गन्ने के लिए। गन्ने के लिए पानी खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसकी जो है गन्ने की पानी जो सहन करने की क्षमता वो अधिक है और इसको पानी की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसको भी जो है इस तरीके से जब लास्ट जुताई करें, लास्ट अर्थिंग करें तो गन्ने के ऊपर जो है मिट्टी चढ़ा दें, मिट्टी चढ़ा देंगे तो उनकी जो है गूल बन जाएंगी और गूल के अंदर जो पानी रहेगा तो पानी बाहर बहकर नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है यदि अधिक पानी भर भी जाता है गन्ने के अंदर तो गन्ने की फसल को जो है बांधने का जरूर सोचें, उसको जो है गिरने से बचाने के लिए। अब बात आती है जैसे हमारी जो है कुछ दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें भी हमके लिए बहुत जरूरी है खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, पोषण सुरक्षा के लिए भी प्रोटीन का स्रोत है और विशेषकर जैसे हमारा अरहर है, अरहर दूसरे नंबर पर आती है चने के बाद में और लगभग सभी प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है और लंबी अवधि की भी है, मध्य अवधि की भी है और बहुत कम अवधि की भी किस्में पूसा ने निकाली है, पूसा अरहर 16 करके वो भी लगा सकते हैं किसान भाई, तो पानी के अनुसार जो लगा सकते हैं लेकिन उसको भी जो है रेज बेड पे लगाना चाहिए, यानी कि खूड बना कर जो हमारी बेड बनी हुई है उस पर लगाना चाहिए। और मूंग उड़द को तो पहले से बताते हैं 2-3 लाइन लग जाएंगी और उसके बाद में जो है पानी का जो है कोई नुकसान नहीं होगा और फसल अच्छी होगी या कीट प्रबंधन करने में या खरपतवार नियंत्रण में भी यदि रेज बेड पर लगाएंगे।

0: तो उसमें काम
1: बिल्कुल और जो जो हमारे किसानों की एक ये शिकायत रहे या कहें समस्या रहती है कि दाल दलहन लेने में थोड़ा सा वो घबराते भी है कि बारिश अगर ज्यादा होगी तो फसल को नुकसान हो जाएगा, काफी सेंसिटिव होती है ये फसल। तो ऐसे में जैसे कि डॉक्टर शिवा आपने बताया कि रेज बेड यानी कितना ऊंचा होना चाहिए, किस तरीके से मतलब रेज बेड
0: लगभग जो है ये 5 से 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और उस तरीके से उस पर लाइनें भी 2-3 आ जाती हैं। तो इसके यही फायदा होता है कि हमको खरपतवार नियंत्रण करना है तो फूड के अंदर जाके हम होइंग कर सकते हैं या किसी को इंसेक्टिसाइड डालना है तो उसके फूड के अंदर चलकर डाल सकते हैं। और जो एक्सेस पानी है वो फूड के अंदर आ जाता है, वो जड़ों में नहीं रहता है, तो इसका ये फायदा है। तो रेज बेड जो है बहुत ही जरूरी है। हालांकि किसान कुछ क्षेत्रों में जागरूक है लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी उनको जागरूक होने की जरूरत है ताकि उनकी फसल को वाटर लॉगिंग से बचाया जा सके और उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो।
1: जी और डॉक्टर अनंता आप क्या बताना चाहेंगे जो कीट और बीमारियों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि दलहन में ये समस्या काफी रहती है।
2: इसके लिए आपको मौसम की जानकारी होनी जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मौसम आधारित फॉरवार्निंग मॉडल है तो उस फॉरवार्निंग मॉडल के आधार पर आप जो आने वाले कीड़े और बीमारी की जानकारी समय से ले सकते हैं। और जब मौसम आपका अच्छा है मतलब बारिश नहीं हो रही है उसी समय आप जो कीड़े या बीमारी को बचाने के लिए उसमें कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। अगर बारिश आने वाली है तो आप कभी भी उसमें छिड़काव न करें। और जैसे कि अभी डॉक्टर शिविर जी भी बता रहे थे कि धान के लिए और इनके लिए बारिश की मानसूनी जो वर्षा होती है वो काफी अच्छी होती है, एक टाइप से वरदान है। और जो पिछले कई वर्षों के सांख्य के आंकड़े हैं उनसे भी ये पता चला है कि अगर मानसूनी वर्षा जैसे हम एक तो सिंचाई के रूप में पानी दे रहे हैं, दूसरा आपका जो मानसूनी वर्षा हो रही है तो अगर मानसूनी वर्षा अच्छी हो रही है तो उससे जो फसल की जो गुणवत्ता होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। इन दोनों में जो मानसूनी वर्षा है और फसल की गुणवत्ता उपज है इसमें एक सकारात्मक रिलेशनशिप है। अगर आप सिंचाई का पानी ज्यादा देते हैं तो उसमें उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं आएगी बजाय आपकी मानसूनी वर्षा की। तो मैं तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप जो मौसम के बारे में जानकारी अवश्य लें और अपने क्षेत्र में कौन सी फसल लगानी है फसल का चुनाव उसी आधार पर करें कि आपके वहाँ पे कितनी बारिश होने वाली है। अगर बारिश ज्यादा होने वाली है तो जो पानी को नवीन क्रॉप है जैसे धान है या कपास है या गन्ना वो वाली फसलें लगा सकते हैं। और अगर बारिश कम हो रही है तो वहाँ पे आप जैसे बाजरा है या दलहनी है या तिलहनी फसलें लगा सकते हैं और उसमें समय समय पर मौसम आधारित प्रबंधन आपका बिल्कुल इससे आपका नहीं रिसोर्स की तो सेविंग होगी, आपकी लागत में भी कम आएगी और आपकी जो उपज है उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। और अगर गुणवत्ता अच्छी है तो आपको उसका जो है बाजार भाव भी अच्छा
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा जैसा आप पूछ रहे थे ना कैसा इंसेक्ट और डिजीज का प्रबंधन करें, क्योंकि जैसा डॉक्टर अनंत अवस्थी जी ने पहले भी बताया था कि बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से कीड़े मकोड़े और बीमारियां ज्यादा आती हैं। तो किसानों को ये सलाह देंगे हम कि वो जागरूक रहें, अपने खेतों में जाते रहें, देखते रहें कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं आ गए हैं या कोई बीमारी तो नहीं आ गई है। अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र नजदीक के हैं वहां से वो सलाह लेते रहें और दूसरे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डेवलपमेंटल एजेंसीज हैं उनसे कॉन्टेक्ट करते रहें, सही दवा का सही समय पर इस्तेमाल करें और जब बारिश ना हो रही हो तभी जो है उसका स्प्रे करें। और ये आपको वार्निंग मिल जाती है कि भाई आज बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, फिर आपको जो है किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे कोई डिजीज है चाहे कोई आपका
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी, एक भारत मौसम विज्ञान विभाग और आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से एक परियोजना जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सलाह चलती है, तो ये हर केवीके में कृषि विज्ञान केंद्र है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है उसमें भी ये जानकारी जो है आप हर शुक्रवार और हर मंगलवार को ले सकते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहा, पिछले सप्ताह मौसम कैसा रहा, आगे आने वाले दिनों में क्या करवट बदलेगा। और मौसम आधारित कृषि प्रबंधन चाहे वो कीड़े
1: मतलब वो एग्री एडवाइजरी भी मतलब साथ साथ कृषि सलाह भी रहती है बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कई तरह की व्यवस्था है किसानों के लिए कि उन्हें सही जानकारी सटीक जानकारी और सही समय पर मिलती रहे, क्योंकि खेती में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और अगर आप कृषि में अनुशासन के साथ नहीं चलेंगे तो उसका नुकसान आपको फसलों के रूप में देखने को मिलेगा, यानी उस तरह की उपज आपको प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ रुक सकता है लेकिन खेती नहीं रुकती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अब मौसम पूर्वानुमान को लेकर किसानों में किस तरह की जागरूकता है और किस हद तक उनका विश्वास पैदा हुआ है। छोटा सा ब्रेक।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: डॉक्टर जनमणि जी, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपने पूर्वानुमान देखा है तो उसको बिल्कुल आप मानकर आगे बढ़ें। तो आपको किस तरह का फर्क लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से भी काफी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका प्रभाव या फिर इसका असर किसानों पर किस तरह का देख रहे हैं आप?
2: नहीं, देखिए, जैसे जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं महाराष्ट्र का बात करूं, कुछ कुछ राज्यों हैं जहां जो पेनिट्रेशन है जिसको माना जाता है बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र में तो हर कृषक के पास जो भी जागरूकता है पहुंचता है, ग्रामीण कृषि केंद्र है जैसे, वहां तक लेवल पर पूरा आयोजन है। लेकिन कुछ कुछ जो एरिया है जैसे झारखंड एरिया है, कुछ एरिया बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है जैसे मोबाइल का पेनिट्रेशन हो, व्हाट्सएप का हो, तो जहां जहां नेटवर्किंग कम है फिर भी मतलब जैसे ग्रामीण कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचता है। लेकिन कृषक का पर्सनल जागरूकता बहुत जरूरी है कि वो उनका जो जैसे बात हो रहा था नियरेस्ट कहाँ है, इन्फॉर्मेशन कौन देता है, तो एक बार एक चैनल बन जाए और वो व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहां मेंबर बन जाए तो आपको देखिए एक तो मिलता है कि पिछले हफ्ते में कैसा बारिश था और वो भी दर्शाता है, जैसे हमारा कलर भी रहता है, जैसे ग्रीन कलर मतलब बहुत ज्यादा बारिश चल रहा है, ठीक है ना, तो फ्लड का सिचुएशन क्या रहेगा, तो अपने आप को एक शिक्षणीय या शिक्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा सारे किसान भाई और बहन को कि वो जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जरूर इस मानसून का पहले
1: जी जी
2: वहाँ दर्शन कर, वहाँ जाके विजिट करें और डिटेल उनसे ले,
1: विशेषज्ञों के टच में रहे, उनके संपर्क में रहे।
2: दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉट ओनली हमारा जो एग्रीकल्चर का जो क्रॉप है वो उसके लिए चाहिए पर खुद का सेफ्टी के लिए भी, जैसे आजकल जो है जलवायु का परिवर्तन वजह से बारिश का जो परिमाण है बहुत बढ़ जाता है, एकदम से 400 मिलीमीटर 500 पिछले साल देखे होंगे कि
1: काफी नुकसान भी,
2: तो वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है उनको, नाउ कास्टिंग के रूप में, वार्निंग के रूप में, सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टाइम स्केल में मिल जाता है, लोकेशन एरिया में भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शिवे, क्योंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, किस तरह का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर मॉनसून का आप देखते हो? कि हम देखते हैं कि जिस दिन भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मॉनसून का प्रिडिक्शन होता है तो अच्छा हुआ तो शेयर बाजार मुस्कुरा उठता है, अगर गड़बड़ रहता है तो मुरझा जाता है, तो इतना मतलब इतना प्रभाव है मॉनसून का हमारी अर्थव्यवस्था पर, उसे किस तरीके से उसका असर दिखाई देता है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में?
3: देखिए, मॉनसून का जो है हमारी खेती पे बहुत आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है हर मामले में, चाहे वो खाद्यान्न का उत्पादन है, चाहे दलहन उत्पादन है, चाहे तिलहन उत्पादन है, चाहे हमारी गन्ने की फसल है, चाहे हमारी धान की फसल है, सभी फसलों के लिए, क्योंकि खरीफ के मौसम में अधिक उत्पादन होता है हमारा, और बरसात के दिनों में यदि पानी का हम अच्छा सदुपयोग करते हैं और बरसात की सूचना मिल जाती है किसानों को तो उनके चेहरे पे एक अलग से मुस्कान आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि उनकी फसल जो है
1: अच्छी,
3: हम कितना ही पानी दे लें धान और गन्ने के लिए, जब तक ऊपर से मानसून की बारिश नहीं होती तो ये दो फसलें बहुत अच्छे ढंग से नहीं होती
1: जी, जी।
3: तो इस वजह से जो है हमारी अर्थव्यवस्था में जो मानसून का है बहुत बड़ा रोल है, चाहे

0: आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता था, तो उसके आधार पर ही जो है मौसम आधारित परामर्श बनाया जाता है। लेकिन अब ये ब्लॉक लेवल पे आ गया है।
1: बिल्कुल, तो
0: ब्लॉक लेवल पे आने से इसकी जो है एक्यूरेसी जो है अच्छी हो गई है। तो अगर एक्यूरेसी अच्छी होगी तो जो मौसम आधारित हम सलाह दे रहे हैं वो भी आपकी अच्छी होगी, सटीक होगी, और उससे जो किसान भाई बहनों को ज्यादा फायदा होगा।
1: जी बिल्कुल, तो जानकारी का सटीक होना बहुत जरूरी होता है, खासतौर पर जैसे कि हम कह रहे हैं जब खेती की बात करते हैं तो मौसम का क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, ये हम सभी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने अपनी राय रखी और महत्वपूर्ण चर्चा में आपने जानकारी साझा की हमारे किसानों तक। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भी 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा को सुना हमारे विशेषज्ञों द्वारा, ये जानकारी आपको दी जा रही थी और खासतौर पर उन्होंने मौसम और खेती को हम किस तरीके से देख सकते हैं, खासतौर पर मौसम आधारित हम लोग खेती करते हैं कि अगर सामान्य से अधिक वर्षा हुई या सामान्य वर्षा हुई किस क्षेत्र में कैसी वर्षा होगी, किस तरीके से हमें फसल को बोना चाहिए, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। हमारा वक्त हो चुका है आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी से जाने का, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

दोस्तों, जिंदगी के रंग कभी तेज होते हैं, कभी बिल्कुल शांत, कभी शोर में मिलते हैं और कभी खामोशी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस शोर के बीच भी एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं, आपके जहन में, आपके जीवन में, बिना आवाज ऊंची किए, सिर्फ अपने कलम से लिखे शब्दों के जरिए। आज का सफर ऐसी ही एक शांत सोच से भरी आवाज के साथ है। आज जिंदगी के रंग गीतों के संग पर एसएन रेडियो के इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए शब्द सिर्फ लिखने का जरिया नहीं, जिंदगी को समझने का एक तरीका है। डॉक्टर दीपा वंजानी, पीएमबी गुजराती साइंस कॉलेज इंदौर के इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड, इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी और 30 सालों से टीचिंग, लर्निंग, राइटिंग, सोशल वर्क और स्टूडेंट्स के सपनों का हिस्सा। उनका लिखना क्लासरूम की चार दीवारों तक सीमित नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे नेशनल डेली से लेकर लंदन से पब्लिश होने वाली कॉन्फ्लुएंस साउथ एशियन पर्सपेक्टिव्स तक उनका काम पढ़ा गया है और महसूस किया गया है। उनकी पोएट्री बुक शिफ्टिंग सैंड्स हांगकांग से पब्लिश हुई और उसी सिलसिले में रेडियो और टेलीविजन हांगकांग पर उनका लाइव इंटरव्यू भी हुआ, जहां उनके शब्दों ने समुन्दर पार भी अपनी जगह बनाई। बच्चों के लिए लिखा गया उनका वन एक्ट प्ले जेम्स रॉबिन, 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स, ट्रांसलेशन और एडिटिंग का काम और 5 पीएचडी स्टूडेंट स्कॉलर्स को गाइडेंस देना। उनका ये सफर सिर्फ एकेडमिक नहीं है, एक गहरा जिम्मेदारी भरा और इंसानियत भरा सफर है। फर्स्ट प्राइज विनर ऑल इंडिया एसे राइटिंग बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स से लेकर नेशन बिल्डर अवार्ड बाय रोटरी इंटरनेशनल, नारी शक्ति को प्रणाम अवार्ड और सीनियर जर्नलिस्ट अवार्ड बाय

0: प्रेस क्लब तक, ये सभी सम्मान उनके इस सफर को रोशन करते हैं। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा सम्मान वो विश्वास है जो उनके स्टूडेंट्स और उनके रीडर्स उन पर करते हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आज हम डॉक्टर दीपा वंजारी से उनके अचीवमेंट्स नहीं, उनके एहसास, उनकी जर्नी और उनके शब्दों के पीछे के इंसान को जानेंगे। वेलकम डॉक्टर दीपा वंजारी हमारे आज के इस खास एपिसोड पर जिंदगी के रंग गीतों के संग के साथ।
1: थैंक यू सो मच तनुषा फॉर हैविंग मी ऑन द शो।
0: हम बहुत बहुत बहुत खुश हैं आज आपको इस इंटरव्यू में अपने साथ पाकर। हम अपने सफर को आगे ले जाते हैं एंड डायरेक्ट डाइव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। डॉक्टर दीपा, आपने इंग्लिश लिटरेचर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, लेकिन वो पहला पल अगर आपको याद हो जब किसी पोएम ने, किसी लाइन ने या किसी टीचर ने आपके अंदर वो एक एहसास जगाया हो, उस पल में आपने डिसाइड किया कि शब्द ही आपका घर हैं, और आपको ये एहसास हुआ कि वर्ड्स आर एक्चुअली द प्लेस आई बिलोंग, मैं यहीं के लिए बनी थी और वर्ड्स में मैं अपना यूनिवर्स पा सकती हूँ, कोई ऐसा एक पल हो जो एक टर्निंग पॉइंट हो आपके जीवन का?
1: तनुषा, व्हेन आई लुक बैक तो ऐसे दो चीजें बहुत एम्बेडेड है मेमोरी में। एक ये था कि व्हेन आई वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड तो मुझे मिसेस नाजरेथ सेंट मैरी कॉन्वेंट अजमेर में इंग्लिश पढ़ाते थे
0: जी,
1: और मिसेस नाजरेथ का प्रोनंसिएशन वाज फ्लॉलेस, वो बहुत सुंदर तरीके से शब्दों को प्रोनाउंस करती थी और मैं क्लास में वंडर स्ट्रक होती थी केवल उनका लिप्स का मूवमेंट देखकर कि वो कैसे कब मुंह कम खोलती हैं, कब लिप्स को एक्सपैंड करती, क्योंकि उनके प्रोनंसिएशन रियली बहुत अच्छे थे। तो वो जो शब्दों के प्रोनंसिएशन से लगाव था वो आई थिंक जब आप ना मेमोरी में जाते हो वापस तो समझ आता है कहाँ से आया, तो ये मिसेस नाजरेथ से आया। और दूसरा कि बुक्स इंटीग्रल पार्ट थे हमारे घर का, क्योंकि मेरे फादर बहुत एविड रीडर थे, तो उनको तो हमारे, मेरे को याद है कि मैं बड़ी ही ऐसे हुई कि ड्राइंग रूम में एक बड़ा रैक है और उसमें बहुत सारी बुक्स अरेंज्ड हैं
0: जी।
1: तो मेरे ग्रोइंग अप इयर्स में मतलब रीडिंग वाज ऐसे इंटीग्रल पार्ट कि ये नॉर्मल होता है, लोग ऐसे ही करते हैं। तो आई फेल इन लव विद बुक्स। तो स्कूल टाइम में ही नाइन्थ ऑनवर्ड्स तो एलिस्टर मैकलिन, फ्रेडरिक फॉसेट, सिडनी शेल्डन, ये पढ़ना स्टार्ट हो गया। एंड ट्वेल्थ में आई रेड क्राइम एंड पनिशमेंट दोस्तोयेवस्की का
0: जी।
1: तो मेरे पापा की ही थी, ओरिजिनल कॉपी थी उनके पास
0: जी।
1: तो वो पढ़कर तो मतलब दोस्तोयेवस्की पढ़ने के बाद इट वॉज नॉट द सेम एवर, तो आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट लव।
0: जी जी जी, बहुत ही सुंदर और बहुत गहरे आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और ये हमें बताता है कि कैसे आपकी स्कूलिंग, आपकी टीचर्स, आपके गाइड्स, आपके पेरेंट्स जो घर में माहौल आपको देते हैं उसी से आपकी आगे की जर्नी मैप होती है। बहुत सुंदर। हम आगे चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। आप 30 सालों से 3 डेकेड्स से टीचिंग के इस फील्ड में हैं और आपने जेनरेशंस आफ्टर जेनरेशंस को बदलते देखा है, आज के स्टूडेंट्स, पहले के स्टूडेंट्स, सब मतलब यू हैव गॉन थ्रू अ होल जर्नी विद स्टूडेंट्स इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है कि पहले किस तरह से स्टूडेंट्स थे, अब क्या चेंजेस हैं, और कोई ऐसी एडवाइस जो आपको, आप यंग माइंड्स को, क्योंकि आप एक मेंटोर हैं, एक गाइड हैं, आप एक एजेंट फॉर चेंज हैं फॉर स्टूडेंट्स, तो कोई एक पहली तो पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करते हैं? आई एम श्योर बहुत सी चेंजेस आपने एक्सपीरियंस किए होंगे। और दूसरा सवाल उसी से रिलेटेड मैं चाहूंगी कि आप इन यंग माइंड्स को, कोई यंग एस्पायरिंग राइटर्स, एकेडमिशियंस को अगर देना चाहें तो वो क्या होगा?
1: चेंज तो मैसिव आया है और ये चेंज जो है ये और भी ज्यादा प्रोनाउंस्ड हुआ है पोस्ट कोरोना
0: जी,
1: क्योंकि कोरोना का जो इम्पैक्ट रहा है वो आई थिंक काफी हद तक इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल,
0: जी
1: तो दोनों जो वेरिएंट्स हैं लाइफ के उसके ऊपर बहुत प्रभाव डाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स उस समय जो स्कूल कर रहे होंगे, और फिर क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो फिर वो कॉलेज जाते हैं,
0: जी
1: तो वो कहीं पर वो इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि अब जो वो ट्रेंड था कि एकेडमिक्स में आप सिर्फ ग्रेजुएशन पे फोकस कर रहे हो क्योंकि डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये डिग्री कैरी फॉरवर्ड करनी है हमारे पीजी में या आगे जो भी रिसर्च करना है कॉम्पिटिटिव
0: जी
1: एग्जाम में, अभी जो फोकस है वो साथ में कमाना बहुत इम्पेरेटिव हो गया है। तो साथ में ही स्टूडेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, भले वो घर में काम कर रहे होंगे
0: जी
1: बिकॉज टेक्निकली स्ट्रांग हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोडिंग या ये सब काम ऑलरेडी आते हैं, तो भले घर में से कर रहे होंगे पर मेजर पार्ट जो है वो उसमें बहुत सारा टाइम एनर्जी जा रहा है,
0: जी
1: तो यहाँ पे फोकस कम है। और एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो चेंज हुआ है, क्योंकि एआई जनरेटेड इतना कंटेंट अवेलेबल है
0: जी
1: असाइनमेंट बनाने के लिए, आंसर्स रेडी करने के लिए,
0: जी
1: तो हम सिर्फ बोलते हैं और जवाब आ जाते हैं, और ये समझ में आने लगा है स्टूडेंट्स को बाय एंड लार्ज कि इतना लिखने से आंसर रेडी हो जाता है,
0: जी
1: तो बस इतना अगर पासिंग मार्क्स आ गए तो ठीक है। और लाइब्रेरी में बैठना, बुक्स इशू कराना, नोट्स बनाना, पहले के स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठ के नोट्स बनाते थे, बुक्स इशू कराते थे, उनको टेक्स्ट बुक्स रेफरेंस बुक्स का एटलीस्ट डिफरेंस पता था, अभी रेफरेंस बुक्स तक जाने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, और वो सीरियसनेस जो थी क्लासरूम की वो ऑफ कोर्स बहुत ही कम हुई है टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट,
0: जी
1: तो ये एक मैसिव शिफ्ट है स्टूडेंट्स के बिहेवियर में।
0: जी
1: और एडवाइस तो आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि ये जो जल्दी है ना आप लोगों को,
0: जी
1: जल्दी में नहीं होता, वो कबीर दास जी की एक लाइन है, उनका एक बहुत फेमस दुआ है, इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए,
0: जी जी जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: धीरे धीरे ही सब होता है, आप जब सही मौसम आएगा तभी फल आएगा तभी फूल आएगा, भले हम 100 घड़े पानी उसमें पौधे में डाल रहे हों,
0: जी जी
1: तो
0: बहुत
1: वो कंटेंटमेंट एक अंदर लाके, और फिर कि एक एक फर्म डिटर्मिनेशन से कि अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस होना है,
0: जी
1: तो ऐसा अगर आई थिंक जर्नी हो तो वो ज्यादा
0: जी बिल्कुल
1: इंटीग्रेटेड एक बोलते हैं
0: जी
1: जो अप्रोच वो होता है।
0: जी जी इतनी डिस्ट्रैक्टेड जर्नी ना हो, आप थोड़े से फोकस्ड रहें, जैसे पहले पढ़ाई पे फोकस करें फिर शायद कमाने पे, बट अब जैसे हम जानते हैं कि समय इतना चेंज हो गया है, सब कुछ इतना बदल गया है और प्रेशर्स इतने अलग हो गए हैं, तो ये चेंजेस कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स को तो कह ही सकते हैं, बट इसका सोर्स भी कुछ और हो सकता है। मतलब अब डायरेक्टली स्टूडेंट्स ये बात ना समझ पाए शायद, बट कहीं ना कहीं ये जो बदलाव की जो लहर है उसको कहीं सोर्स पे टैप करें तो शायद। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी दोस्तों, बातों के बीच एक खूबसूरत गीत सुनते हैं, क्योंकि जिंदगी के रंग गीतों के संग ही और गहरे होते हैं।

0: Welcome back, Dr. Deepa. Times of
1: Thank
0: India.
1: You.
0: जी, Times of India और Hindustan Times के लिए आपने लिखा, International Magazine, Confluence, South Asian Perspectives के लिए regular columns भी लिखे. इन सभी के बीच आपने क्लासरूम लेक्चर और टीचिंग भी कंटिन्यू करी थ्रू आउट योर लाइफ. तो इन सब डाइवर्स फील्ड्स में आपको बैलेंस बनाना किस तरह से आपके लिए कैसा रहा? क्या ये चैलेंजिंग था? क्या ये इजी था? क्या आपको फोकस रखना, टाइम मैनेजमेंट, इन सब चीजों से आपने कैसे डील किया व्हेन यू वर डूइंग? एक हमेशा आप यू हैव हैड अ पैरेलल फील्ड जो चली है अलोंग विथ योर टीचिंग. तो इन सब एरियाज ऑफ लाइफ को जो डाइवर्स भी हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टिंग भी हैं, तो उनको कैसे आपने मैनेज किया मैम?
1: अभी तनुषा, यू यूज दिस वेरी एप्रोप्रिएट वर्ड इन योर क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट.
0: हाँ जी,
1: वो ही क्रक्स है.
0: जी जी,
1: क्योंकि एवरीथिंग इन लाइफ इज मैनेजिंग योर टाइम.
0: हाँ जी,
1: क्योंकि आप देख, अपने पास इफ यू सी कि सभी के पास वही 24 आवर्स हैं जिसमें सब करना है.
0: जी,
1: अब अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करके इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे मैक्सिमम आउटपुट के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. टाइम असेट है, इसको वैल्यू करना है, इसको रिस्पेक्ट करना है और इसको मैनेज करना है.
0: ब्यूटिफुल.
1: अगर ये समझ में आ गया लाइफ में, तो आई थिंक बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ.
0: हाँ जी,
1: बस यही करना है. और इनिशियली ये डिफिकल्ट हो सकता है किसी के लिए, ये स्ट्रगल होगा, चैलेंज होगा. मे बी नींद देर तक सोने की आदत या जो भी कारण, सबके अलग अलग होंगे, पर एक बार मैनेज हो जाए तो देन एक रिदम जो होती है ना लाइफ के साथ, ये उसके साथ चलते हो फिर आप.
0: जी जी.
1: एंड एक्चुअली आप देखो, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय हो जाता है जो.
0: जी.
1: तो अपने को म्यूजिक भी इंजॉय करना है ना, थोड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जिसमें भी हमारी रुचि हो, या सिनेमा
0: जी
1: कुछ भी, या फ्रेंड्स, तो ये सबको भी टाइम देना है. तो वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, इतना सारा है लाइफ में. तो टाइम मैनेज करेंगे तो बहुत चीज मैनेज हो जाती है. तो फिर बैलेंस रखना इज ऑल्सो ईजी. एंड आई और यू एंजॉय, यही प्रोसेस रहा.
0: जी जी, बहुत बहुत बहुत सुंदर. आपने पोएट्री, आपकी जो फर्स्ट पोएट्री बुक थी वो थी शिफ्टिंग सैंड्स, एक पोएट्री एंथोलॉजी, एंड ये बात करती है बदलाव की, इनो शिफ्ट्स की, एक सबलाइम इमोशनल जर्नी की. तो इस

0: किताब को लिखते वक्त क्या आपने कभी खुद को भी थोड़ा सा खोया कहीं पे, थोड़ा पाया, या कुछ नए एक्सपीरियंसेस, कुछ नए एपिफनीज हुई आपको जिनसे आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज हुई, या कोई एक नया एक्सपीरियंस डेवलप हुआ हो? कैसा था ये एक्सपीरियंस शिफ्टिंग सैंड्स को लिखने का मैम?
1: शिफ्टिंग सैंड्स में उस बुक में बहुत सारी पोएम्स जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल है,
0: जी
1: तो बहुत सारा राइटिंग उसका, नॉट द होल बुक पर बहुत सारा पार्ट जो है वो पर्सनल लाइफ से आया है। तो वो पोएम्स लिखने में आई थिंक बहुत सारा इमोशन वेंट आउट हो गया। तो अभी मेरे ख्याल में ये जरूरी भी है, आई थिंक राइटिंग प्रोसेस में हम लोग सभी जो है थोड़ा सा सब्जेक्टिव उससे स्टार्ट करते हैं अपनी पर्सनल से, लेकिन वो एक लैडर है टू मूव टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिविटी, जो कि इम्पोर्टेंट है राइटिंग की जर्नी में, क्योंकि आप पर्सनल से इम्पर्सनल तक पहुंच पाते हो। तो आई देन रियलाइज कि अभी ये पार्ट को ड्रॉप कर देना है,
0: जी
1: अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी की ओर बढ़ना है। तो एज अ राइटर जो भी थोड़ा बहुत लिख पाई हूँ लाइफ में, उसमें ये एक लर्निंग प्रोसेस रहा मेरा शिफ्टिंग साइंस से। आई लर्न दिस,
0: जी
1: क्लेंजिंग ऑफ इमोशन भी हो गया, जो कहीं पे जीवन के सफर में जो हम लोग स्ट्रगल्स देखते हैं या दुख दर्द जीवन में आते हैं, वो ह्यूमन जर्नी है, तो वो सब भी एक्सप्रेस करने की एक अपॉर्चुनिटी हो गई। तो सॉर्ट ऑफ एक अपन बोलते हैं कैथार्टिक राइटिंग होता है, तो क्लेंजिंग हो गया।
0: जी
1: दैट वे शिफ्टिंग साइंस हेल्प मी।
0: बहुत ही खूबसूरती से आपने हमें बताया कि कैसे एक यंग राइटर या एक अस्पायरिंग राइटर एट एनी एज जब शुरू करता है तो शायद सबसे पहले अपने पर्सनल थॉट्स को वेंट आउट करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो लिखता है वो मैं मानती हूँ एक इमोशनल सोल है। तो वंस यू स्टार्ट फ्रॉम दैट, तो आप धीरे धीरे उस प्रोसेस से आगे बढ़ के मेच्योर होते हैं, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स मोर ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स ऑफ राइटिंग। ब्यूटिफुली सेड एंड ब्यूटिफुली पुट, जो सिर्फ एक राइटर, जो एक मंझावा राइटर और एक रीडर बता सकता था हमें। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपा। हम आगे चलते हैं। आपकी जीवन में बहुत सारे ग्लोबल मोमेंट्स ऑफ रिकॉग्निशन भी रहे हैं, जैसे कि हांगकांग में आपकी पहली बुक पब्लिश होना, रेडियो टीवी हांगकांग पर आपका इंटरव्यू, और स्पेन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपका पेपर सेलेक्ट होना, ये सभी ऐतिहासिक ग्लोबल मोमेंट्स हैं किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में। तो इन सबके बीच कोई ऐसा पल जो आपके दिल के बहुत करीब हो, या जो आज भी आप याद करते हैं तो आपको एक मोमेंट ऑफ प्राइड होता है, एक मोमेंट ऑफ जॉय होता है कि मैंने ये सब पा लिया, तो इस एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि नेशनली तो हम सब लाइक रिकॉग्नाइज होते ही हैं जब हम काम करते हैं, बट इंटरनेशनली टू टेक दैट फर्दर स्टेप एंड अपने काम को इतना बेहतर करना कि आप एक इंटरनेशनल स्तर पा सके, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए?
1: वो जब जब शिफ्टिंग साइंस में मैन्युस्क्रिप्ट शेयर किया मैंने पब्लिशर के साथ,
0: जी,
1: और वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, और फिर जो प्रोसेस है पूरा एडिटिंग एंड एक लंबा 9-10 मंथ्स का कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ उनके साथ, और मजे की बात ये बात कभी नहीं हुई फोन पर टेलीफोनिकली, सिर्फ मेल से ही काम होता था। और उस प्रोसेस में ऑफकोर्स मैंने बहुत लर्न किया, क्योंकि ब्रिटिशर हैं वो मैम जो रन करती हैं प्रोवर्स, तो एक हार्ड टास्क मास्टर भी हैं, तो वो भी एक लर्निंग जर्नी थी। और दूसरा वो मोमेंट की जब आपकी बुक रिलीज हो रही हो, आप वहां पे माइक पे बात कर रहे हो और सब नेशनैलिटीज के लोग वहां बैठे हुए हैं, एंड देन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने कंट्री को, अपने वो दैट मोमेंट ऑफ प्राइड व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर नेशन, वो वहां जाके जो फीलिंग होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। एंड मैंने आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं वेस्टर्न आउटफिट नहीं पहनूंगी, आई विल गो इन माय इंडियन आउटफिट, इंडियन ज्वेलरी, एंड दे वर वेरी हैप्पी एक्चुअली, दे रियली अप्रिशिएट, वो अप्रिशिएट भी करते हैं इन चीजों को। और फिर ये कि उस समय ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, इवन जब मैं इंटरव्यू दे रही थी रेडियो एंड टेलीविजन हांगकांग पे, तो आई स्टार्टेड विद द भगवद गीता,
0: ब्यूटिफुल,
1: तो ये मैंने सोचा नहीं था, पर वो फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आई डिडंट नो व्हाट ही वाज गोइंग टू आस्क, क्योंकि वो लाइव था. तो व्हाट एवर ही आस्क्ड मी, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी थी कि ऑटोमेटिकली वो गीता से रिलेट हो गया. तो आई फेल्ट लाइक ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंडियन टुवर्ड्स माई कंट्री ऑल्सो. तो दैट रियली मेड मी फील वेरी प्राउड
0: वेरी
1: अबाउट स्टैंडिंग दे एंड यू नो.
0: गुड जी,
1: हाँ.
0: बहुत, आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, तो उसके बारे में हम आगे खैर बात करेंगे। बहुत ही अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि एक्चुअली जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म से पहुंचते हैं तो आप नेशन रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिर्फ उसी मोमेंट पे समझ आता है जब वो आपका नाम लेते हैं और आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप इस कंट्री से हैं। तो
1: हाँ जी.
0: बहुत ही सुंदर। और अब हम एक गाना सुनते हैं, क्योंकि इन सब सुकून भरी बातों के बीच एक गीत हमें और थोड़ा जज्बातों से जोड़ देगा। तो चलिए एक गाना सुनते हैं, खूबसूरत सा।

0: वेलकम बैक डॉक्टर दीपा जी, राइटिंग फॉर चिल्ड्रन एक बहुत अलग एक्सपीरियंस अगेन रहा आपके जीवन में. एक वन एक्ट प्ले जेम्स रॉबिन बच्चों के लिए आपने लिखा. उस वक्त आपने अपने अंदर क्या चेंजेस महसूस किए? क्या आपको उसके लिए एक बच्चा बनना पड़ा? आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ा? और ये क्यों डिसाइड किया आपने कि आप एक वन एक्ट प्ले फॉर चिल्ड्रन लिखना चाहेंगे? क्या इसके पीछे कोई एक स्टोरी है जो आप हमारे लिसनर के साथ शेयर करना चाहेंगे?
1: गुड यू आस्क दिस तनुषा, क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है. मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ उसके प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश त्रिवेदी, जो कि जूलॉजिस्ट थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे
0: जी.
1: और जर्नलिस्ट भी थे
0: जी.
1: तो उनको रीडिंग का शौक था. और उनको एक बार एक आर्टिकल मिला एक बच्ची का यूएस में, और वो उसको एक जैसे रॉबिन मिलता है और वो डेड रॉबिन की स्किन को मिलवाउकी म्यूजियम ले जाती है. और वो एक बहुत छोटा सा आर्टिकल था और उन्होंने मुझे पढ़ने को दिया और बोले इसका दीपा कुछ कर पाए अपन. तो मैंने रख लिया और उसके बाद सडनली ही पास्ड अवे. या वो उनकी उनकी डेथ बहुत ही सडन थी. उनको एक हार्ट अटैक आया. वो गाना गा रहे थे एक स्टूडियो में, गाते गाते उनको हार्ट अटैक आया एंड ही पास्ड अवे. और वो रह गया आर्टिकल मेरे पास. और उसको एक्चुअली मैं बहुत साल में उसको भूल भी गई थी आर्टिकल को.
0: जी.
1: एक बार किताबों की सफाई में वो आर्टिकल फिर निकला
0: जी.
1: और देन आई रिमेम्बर्ड कि त्रिवेदी सर ने कहा था इसका कुछ कर पाए तो. और फिर मैंने उसको सोचा इसको एक फॉर्मल शेप देती हूँ और
0: जी.
1: बच्चों में एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैसे जनरेट करें क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन एंड ऑल दैट. तो एक बच्चा किस पर्सपेक्टिव से समझेगा,
0: बिल्कुल
1: उसको कैसी भाषा चाहिए, कैसी किताब होनी चाहिए कि बच्चा अट्रैक्ट हो. तो विजुअल्स बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं
0: जी.
1: तो फिर उसको विजुअल्स के साथ इंटीग्रेट करना, अच्छे ब्राइट कलर्स यूज करना उन इलस्ट्रेशंस में ऐसा
0: जी.
1: तो फिर वहां पे उस तरफ सोचना स्टार्ट किया. तो हाँ, लैंग्वेज को बहुत सिंप्लीफाई करना, अपने मैसेज को पीची और मॉरल ना बनाते हुए एक बात को सिंपली बोल देना ताकि बच्चा उससे को रिलेट कर पाए. ये नहीं बोले कि कोई मॉरलाइज कर रहा है
0: जी.
1: तो वैसा टोन लाके और फिर पब्लिशर से बात करके कि अब उसको इलस्ट्रेटेड बुक कैसे बनाए
0: जी.
1: तो बच्चों को अट्रैक्ट करे, वैसा करके फिर वो फाइनली जेम्स रॉबिन जो है
0: जी.
1: वो बॉम्बे से उसको पब्लिश कराया. तो हाँ जी, और मैं सोचती हूँ कि ये फिर से करना चाहिए बच्चों के लिए, कुछ और ऐसा लिखने का प्रयास.
0: तो एक तरह से ये आपका ट्रिब्यूट था टू राकेश जी जिन्होंने ये आर्टिकल आपसे शेयर किया था और कहीं ना कहीं ये बात आपके जहन में रही और आपने उसको आगे तक पहुंचाया. ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अक्सर हम बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं, हम पढ़ते हैं, हम उसके बारे में सोचते भी हैं बहुत उस समय में, बट हम भूल जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं समय और जीवन के साथ. बट जैसे मैंने कहा कि मैं जानती हूँ आपको कि आप एक बहुत ही स्पिरिचुअली अलाइंड और स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, इसीलिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि आपके जीवन की सभी शैलियां एक तरफ और इंसानियत एक तरफ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आप रिसर्च का काम, ट्रांसलेशन, इन सब से जुड़े हुए हैं. एनजीओस आप फॉर एनिमल राइट्स, एनजीओस फॉर एनिमल राइट्स के साथ भी काफी समय से जुड़े हुए हैं. तो आप अपने इस पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, अपने इस साइड ऑफ लाइफ, पर्सपेक्टिव नहीं, आपकी इस पर्सनालिटी आपकी जो है, जो सेंसिटिव है, जो स्पिरिचुअल है, जो इंसानियत और ह्यूमैनिटी से इतनी अफेक्टेड है, तो ये जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप हुई हैं, क्या इसके पीछे कोई एक मोमेंट रहा है या सीरीज ऑफ इवेंट्स रहे हैं, या आप शुरुआत से ही एक ऐसे पर्सनालिटी थे जो थोड़ा सॉफ्ट थे, सेंसिटिव थे एंड ह्यूमैनिटी की तरफ आपका झुकाव था? ये साइड ऑफ पर्सनालिटी आपका कैसे डिड इट, आपका आपकी जो रीडरशिप है, आपकी जो रीडिंग है, डिड दैट शेप यू एज अ पर्सन लाइक दिस, और इट वाज सम मोमेंट्स और सीरीज ऑफ इवेंट्स जो आपके जीवन में घटे जिनसे आप ऐसे बने? तो कोई इस पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में, इस साइड ऑफ योर पर्सनालिटी के बारे में अगर आप हमें बता सकें.
1: एनिमल्स से जो लगाव है स्पेशली डॉग्स से, वो चाइल्डहुड ट्रेट है,
0: जी
1: वो चाइल्डहुड में भी था, ऑल्दो ऐसा बहुत अफेक्शन या डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन मैंने पेरेंट्स की साइड से नहीं देखा था डॉग्स या एनिमल्स के प्रति, बट समहाउ आई थिंक मे बी पास्ट लाइफ या मे बी यू नो कहीं पे फैमिली में रहा होगा, तो आई वॉज कैरिंग इट, तो वो मेरे को बचपन से था. एंड इफ यू हैव द टाइम आई टेल यू दिस स्टोरी.
0: जी जी बिल्कुल.
1: जबलपुर में व्हेन माय फादर वाज ट्रांसफर्ड, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी और घर के बाहर एक बहुत सुंदर गार्डन था. जबलपुर की सॉइल बहुत फर्टाइल है तो बहुत अच्छे डहलिया वगैरह उगते थे, तो वहाँ क्यारी में एक ब्लैक रंग की डॉगी थी,
0: जी.
1: वो हमारे घर आके बैठती थी और उसने एक ऐसा गड्ढा खोद के वहाँ एक पपी को बर्थ थी, जस्ट हैड वन पप, और वो पप डार्क ब्राउन कलर का बहुत ही सुंदर पप.
0: जी जी
1: तो वो काली डॉग उसको फीड करना और देखना कि उसका पपी ठीक रहे, ये मेरी जिम्मेदारी हो गई थी तब से, सेकंड स्टैंडर्ड से. और वो पपी इतना ब्यूटीफुल था कि कोई हमारे गेट में आके उसको चुरा के ले गया. हाँ जी. और वो जो ट्रॉमा था ऑफ लूजिंग दैट पप, वो द वे आई हैड क्राइड एंड हैट्स ऑफ टू माई फादर कि वो कार उठा के मुझे बिठा के, और हमारे घर एक काम करने व्यक्ति आते थे उनका नाम पंडित था,
0: जी
1: वो पंडित को साथ में लेके हम उसकी ढूंढाई करने निकले 2-3 दिन.
0: जी जी
1: और फाइनली उन्होंने, पंडित ने स्पॉट कर लिया कि कौन से घर में वो है पपी, और हम उसको लेकर आए घर वापस. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि वो मेरे फादर ने जो मेरे को कोऑपरेट किया, उन्होंने मेरे को स्नब नहीं किया इस बात पे कि हाँ ये डॉग का पप है, वो ये एक्चुअली केयर्ड कि नहीं ये रो रही है इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये करना चाहिए. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा लेसन था. सेंसिटिविटी, अपन बच्चे होते हैं तो हम ये समझते नहीं है कि ये छोटी छोटी बातें कितनी इम्पोर्टेंट है,
0: एक्ट कर सकती हैं. जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी बहुत ही हम इससे समझ सकते हैं कि अगेन पेरेंटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है. आपको जो घर में माहौल मिलता है वो कितना लंबा जाता है आपके सफर में. तो वही मैं दोबारा वही कहूंगी कि हम बहुत चीजें यूथ से एक्सपेक्ट करते हैं, बट हम सोर्स को टैप नहीं करते कि वो कहाँ से सीखें. बहुत सारी चीजें वो सीख ही नहीं पाते अपने घर से, जो माहौल शायद हम को मिल जाता है, कुछ लोगों को मिल जाता है जो बहुत फॉर्चुनेट होते हैं. मैं समझूंगी कि आप में बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले जिन्होंने हमें ऐसे शेप किया. बट हाँ, चलिए दोस्तों, इसी बात पे एक और गीत, अपना सफर हम आगे बढ़ाते हैं और एक गीत के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं.

0: वेलकम बैक डॉक्टर दीपा वंजानी. आपसे बात करना एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है. ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत अच्छी प्याली चाय की पी रहे हैं और बात कर रहे हैं. इसी सफर को आगे बढ़ाते हैं. आप एक लिटरेरी ग्रुप शब्द शिल्प के नाम से जो 2016 से है, मेरे जहां तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो उसकी फाउंडर मेंबर हैं. तो ये लिटरेचर ग्रुप किस तरह से ऑपरेट करता है, इसको इसकी फाउंडिंग मेमोरीज क्या हैं, रीजन आपका क्या रहा इसको टू यू नो टू मेक दिस ग्रुप, इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं शब्द शिल्प के बारे में, तो हमारे लिसनर्स को हम बहुत जानना चाहेंगे शब्द शिल्प के बारे में. जी
1: तनुषा, चाय का नाम लेकर तो यू नो यू हैव ब्रॉट इन दिस क्रेविंग कि अभी कर प्याली चाय के सामने आ जाए. यू डोंट नो हाउ मच आई लव टी. और शब्द शिल्प की बात है तो शब्द शिल्प 2012 में आई स्टार्टेड.
0: जी.
1: और रीजन ये था कि मैं एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर जिसको EMRC बोलते हैं, वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें टीचिंग डिपार्टमेंट है. वहाँ पे MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक इंटीग्रेटेड कोर्स कर चलता है. मैंने 12 साल वहाँ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाया एज अ विजिटिंग फैकल्टी.
0: जी जी.
1: तो वो मेरा फर्स्ट या सेकेंड ईयर, आई थिंक सेकेंड ईयर था पढ़ाने का. और बच्चे क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाती थी और स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि लिखते रहे होंगे पर वो बता नहीं पाए किसी को या रीड नहीं करवा पाए. तो क्योंकि लिटरेचर सब्जेक्ट था तो वो मेरे साथ जुड़ गए और फिर वो क्लास के बाहर आके मुझे अपनी डायरी देते थे कि ये लिखा, ये शॉर्ट स्टोरी, ये शायरी. तो वो मुझे समझ में आया कि बच्चे बहुत लिखते हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ वो शेयर कर सके, जहाँ वो लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिले.
0: जी.
1: तो देन वहीं पे EMRC में ही आई डिसाइडेड कि एक ऐसा लिटरेचर क्लब बनाते हैं जो बच्चा जुड़ना चाहे अपने मन से, स्टूडेंट हो प्रोफेशनल हो, उनको हम एक जगह पे एक संडे को मंथ में मिलके बैठेंगे, चाय कॉफी पियेंगे और राइटिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करेंगे, रीडिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करेंगे. ऐसे ये सफर स्टार्ट हुआ. और क्योंकि अच्छे लोग जुड़ते चले गए इस ग्रुप में तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर पाए. उसमें बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है शब्द शिल्प में.
0: जी
1: हाँ, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया और बहुत अच्छी एक्टिविटीज को प्लान भी किया.
0: जी जी. जब जब लिटरेचर ग्रुप्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जब कोई बातचीत नहीं थी, जब सोशल मीडिया नहीं था, तब 2012 में आपने एक लिटरेचर ग्रुप शुरू किया, तो ये दिखाता है कि आप कितने विजनरी हैं और आपके रीडिंग ने, आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ ने आपको कितना एनरिच और फर्टाइल किया है कि आप इतने विजन से सोच सकते हैं. और उस जमाने में जब ऐसे कोई ग्रुप्स नहीं हुआ करते थे, ये तो अब है कि हम हर जगह देखते हैं कि ये ग्रुप वो ग्रुप, हर चीज के लिए यू नो देयर इज अ प्लेटफॉर्म एंड देयर इज अ वे एंड देयर इज अ मीडियम. बट बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे शब्द शिल्प के बारे में जान के. और मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो आप शब्द शिल्प से जुड़ सकते हैं. मैं आपको जो हमारे डिटेल्स होंगे उसमें मैं आपको दीपा वंजानी जी, डॉक्टर दीपा वंजानी जी से कनेक्ट करूंगी जिससे कि आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकें. चलिए डॉक्टर दीपा, हम आगे चलते हैं क्योंकि हमारा समय जाता जा रहा है, तो हमें भी अपने अपने शो को आगे बढ़ाना होगा. आप एक PhD गाइड भी रहे हैं, 5 PhD स्कॉलर्स को आपने गाइड किया है. और सिर्फ अकेडमिक्स नहीं, आपने उन्हें एक पर्सनल मेंटर के रूप से उनकी जर्नी को आई थिंक एनरिच किया है और गाइड किया है. तो इसी से रिलेटेड आप मुझे बताना चाहेंगे कि मेंटोरशिप का रोल जो है वो किसी भी, टीचर्स बहुत हैं, लेक्चरर्स बहुत हैं कॉलेज में, स्कूल में, बट एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, बिकॉज आप PhD स्कॉलर्स को भी गाइड कर चुके हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या कितनी इम्पोर्टेंस है एक टीचर की, एक स्टूडेंट की लाइफ में, और कैसे जो यंग टीचर्स हैं, एस्पायरिंग टीचर्स हैं, वर्किंग यंग टीचर्स हैं, वो इस बात की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं और अपने टीचिंग के सफर को बियॉन्ड जस्ट टेक्सचुअल टीचिंग में जाके एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. हाउ इज इट एन एक्चुअल इम्पैक्ट, एक्चुअल इन्फ्लुएंसर मेरे हिसाब से टीचर ही होता है, और ट्रू इन्फ्लुएंसर. सो अगर हम इस सोशल मीडिया लैंग्वेज से इसको कनेक्ट कर सकें तो.
1: हाँ, राइटली सेड, टीचर का बहुत इम्पैक्ट है और हर स्टेज ऑफ लाइफ पे है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो रियली दे लुक अप टू यू. तो जितनी हम कमर्शलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, और बहुत दुख है होता है मुझे ये देखकर कि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एक कमर्शियल लेन देन का केवल प्लेटफॉर्म ना बने, ये कभी भी नहीं होना चाहिए एकेडमिक्स में. तो जब जब ये आ जाएगा बीच में, तो जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है वो जो है वो डिक्लाइन होगा ही, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ पे आप गुरु वर्ड यूज करते हो अपने टीचर के लिए
0: जी.
1: और आप बोल रहे हो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर. तो जहाँ पे हम ऐसा पेडेस्टल पे टीचर को रखते हैं, तो कम से कम वो एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर टीचर को भी उठानी पड़ेगी
0: जी.
1: क्योंकि हाथ ताली हमेशा दो हाथों से बजती है
0: जी.
1: तो हम सिर्फ ये ना बोलें कि यंग जनरेशन को रिस्पेक्ट नहीं है या ना उसको नहीं समझते मॉरल वैल्यूज, तो वो पहले मुझे अपने अंदर इंटीग्रेट करके दिखाना पड़ेगा
0: जी,
1: जो बहुत इम्पोर्टेंट है. नहीं तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक मेजर शिफ्ट या एक मेजर चेंज जो आप चाह रहे हैं वो आ सके, क्योंकि टेक्सचुअल रीडिंग इज नॉट दी एंड ऑल एंड बी ऑल
0: जी
1: वहां पे, क्योंकि आप कह रहे हो कि इंटीग्रेटेड होलिस्टिक पर्सनैलिटी बनानी है, तो खुद भी वैसा एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा.
0: जी
1: पीएचडी गाइड होने के लिए भी आपको आपके एथिकल वैल्यूज हाई रखने पड़ते, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के पीएचडी करते समय
0: जी,
1: पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, अपन दोनों ही सुनते हैं
0: जी.
1: वो उससे जो है ना एक इम्प्रेशन आप ओवरऑल बनाते हो कि है ना सब चलता है एकेडमिक्स. वो सब चलता है एटीट्यूड नहीं, सब नहीं चलता
0: जी,
1: है ना. एक रिस्पेक्ट होती है नॉलेज की
0: जी,
1: वो सैंक्टिटी मेंटेन करना. मुझे बहुत अच्छा लगा जो मेरी पहली स्टूडेंट थी पीएचडी की
0: जी,
1: वो अब खुद पीएचडी गाइड हो गई है.
0: बताएं,
1: तो वो जब उसने पहली पीएचडी इनरोल करी, तो जब मुझे बताई कि मेरा मैंने इनरोल किया है स्टूडेंट को, तो वो स्टूडेंट डर रही होंगे या ऐसा थोड़ा सा रहता है कि कैसे ये चार साल निकलेंगे करके. तो वो जब मिलने आई उनसे, तो उन्होंने कहा अरे मेरी पीएचडी गाइड ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, मैंने वही सीखा उनसे, तो मैं थोड़ी ना तुम्हें करूंगी, तुम रिलैक्स हो जाओ.
0: हाउ अमेजिंग.
1: तो जब वो लाइन उसने बोली तो मेरे को लगा कि चलो कहीं मैंने कहीं कोई इम्पैक्ट एज अ टीचर एज अ ह्यूमन बीइंग भी छोड़ा है
0: एज अ गाइड यस,
1: कि वो कैरी फॉरवर्ड कर पा रही है.
0: बिल्कुल बियॉन्ड द टेक्सचुअल पीएचडी जो जो उन्हें आपके अंडर मिली आपने उनके. यही मेरा अगला सवाल भी था, आपने मुझे पहले ही एक बहुत खूबसूरत सा जवाब दे दिया कि आपको इतने अवार्ड्स मिले हैं, इतने रिकॉग्निशंस मिले हैं, इतने रिवॉर्ड्स मिले हैं, नेशन बिल्डर, नारी शक्ति को प्रणाम अवार्ड, जर्नलिज्म ऑनर्स. लेकिन यही बात कि किसी स्टूडेंट की कही भी कोई बात या किसी रीडर की कही भी एक बात जो अवार्ड से बहुत गहरी लगी हो आपको, वो शायद ये थी कि आपकी जिनको आपने गाइड किया वो पहली बात वो खुद गाइड बने, पीएचडी गाइड बने, और फिर उन्होंने जो उनके अंडर थे उनको ये एक एक्सपीरियंस कैरी फॉरवर्ड किया कि मैं आपको परेशान नहीं करूंगी एंड आई एम अ गाइड फॉर यू, आई एम अ हेल्प फॉर यू. एंड ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, दिस इज हाउ एक्चुअली टीचर्स कैन शेप एंड दे आर द ट्रू एजेंट्स ऑफ चेंज. लाइक आई मेंशन बिफोर कि आप कैसे अपने पूरी एक पीढ़ी को इंस्पायर कर सकते हैं सही गाइडेंस से. बहुत बहुत ही सुंदर आपसे बातचीत हुई डॉक्टर दीपा. इसी से हम आगे चलते हैं और हमारे आखिरी सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं. आप डेकेड से 30 इयर्स ऑफ जर्नी, इस पूरी जर्नी को अगर आप एक सिंपल सी लाइन में, बिकॉज आप एक राइटर हैं, एक पोएट हैं, तो कुछ लाइन, एक कोई एक लाइन या कुछ पंक्तियां जो जिनसे आप इस सफर को कंक्लूड करना चाहें, या कुछ ऐसा कहना चाहें जो एक इम्पैक्ट छोड़ सके हमारे लिसनर्स पर, तो वो क्या होगा मैम? इफ यू कैन जस्ट गिव अस अ फ्यू लाइन्स टू यू नो समराइज दिस जर्नी, दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ 3 decades ऑफ योर लाइफ, जो भी आपको लगता है मैम.
1: ये बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, क्योंकि मुझे पोएट्री से बहुत प्यार है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट हैं और ये बहुत कॉमनली कोटेड लाइन्स हैं, बहुतों ने पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी, पर somehow I feel कि ये जो है ये क्रक्स ऑफ लाइफ है, क्योंकि लाइफ में बहुत टेम्पटेशंस हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं और बहुत चैलेंजेस हैं, बट डिस्पाइट ऑल दैट लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और उसको शेप करना, उसको सही डायरेक्शन देना वो हमारे हाथ में है. तो हम जो है अपना जो बेस्ट है, व्हाट मस्ट बी डन मस्ट बी डन, इट इज एज सिंपल एज दैट. ये हमेशा हम लोग को अपहोल्ड करके रखना है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बोला है अपनी एक लास्ट स्टैंजा है उनकी बहुत खूबसूरत पोएम का, जिसमें वो लिखते हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. सो बिफोर वॉट एवर टाइम वी हैव ऑन दिस प्लैनेट, वो जर्नी जो है वो हम फ्रूटफुल बनाए
0: जी,
1: जो हमने क्योंकि हम ऋण लेकर आए हैं समाज का, इस देश का, अपने पेरेंट्स का, तो उसको हम चुकाएं
0: जी.
1: तो बेस्ट जो कर सकते हैं
0: जी
1: वो अपनी जर्नी में करते चले जाएं
0: जी.
1: जो जो मिलेगा वो नेचुरल आउटकम है
0: जी.
1: मिल गया तो बहुत अच्छा
0: जी.
1: तो नहीं तो भी हमें अपना करते जाना है बेस्ट.
0: जी जी, बहुत बहुत ही सुंदर. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइंस हमें बहुत लेसन्स देती हैं, बहुत सिंपल लाइंस हैं, बट इनका मीनिंग इज इटर्नल एंड बियॉन्ड टाइम इट विल लिव. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपा. आज आपसे बात करना सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, जैसे मैंने कहा एक चाय की तरह था, जो बातें चलते चलते ठंडी तो हो जाती है मगर अपना स्वाद फिर भी छोड़ जाती है. एक शांत गहरी गुफ्तगू जिसमें सवालों से ज्यादा एहसासों ने जवाब दिए, मुझे ऐसा लगा. थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपा मंजानी.
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो तनुषा. आई एम ग्लैड वी कुड हैव दिस कॉन्वर्सेशन.
0: जी जी बिल्कुल. तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और ये था जिंदगी के रंग गीतों के संग सिर्फ SN रेडियो पर. अगली मुलाकात तक थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा महसूस कीजिए, और जिंदगी के रंग जल्दी में नहीं गहराई से जीने की कोशिश कीजिए. और हाँ, सृजन से हमेशा जुड़े रहिए. नमस्कार.
2: जिंदगी के रंग हजार.
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही. कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर. सुनना ना भूलिएगा.

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे सिर्फ एक शिक्षक नहीं रहे बल्कि एक मार्गदर्शक रहे। वे सिर्फ एक निर्देशक नहीं बल्कि अनेक रंग कर्मियों के प्रेरणा स्रोत रहे। वे सिर्फ एक प्रशासक नहीं बल्कि संस्कारों और मूल्यों के संवाहक रहे। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ रंग कर्मी, शिक्षाविद और समाज सेवी श्री मोहनलाल जी गोयल, अध्यक्ष विकल्प नाट्य संगठन। पंजाब की धरती से शुरू हुई उनकी यात्रा शिक्षा के प्रांगण से होती हुई रंगमंच के विराट मंच तक पहुंची, जहां उन्होंने न केवल नाटक किए बल्कि जीवन को भी एक सार्थक अभिनय में बदल दिया। आज हम उनसे जानेंगे उनकी बचपन की प्रेरणाएं, मंच की यादगार कहानियां, विकल्प की स्थापना और उसकी दिशा, और इस बदलते समय में रंगमंच की भूमिका। तो आइए स्वागत करते हैं आदरणीय श्री मोहनलाल जी गोयल का
2: जिंदगी के रंग गीतों के संग। आज का रंग जो मैं पेश करने जा रहा हूं रंगमंच के ऊपर, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, सभी को नमस्ते कहता हूं। दर्शकों, ये रंगमंच की बात है तो आगे बढ़ते हैं, हम कैसे रंगमंच की बात कर रहे हैं।
1: चलिए गोयल जी, फिर शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं। कुछ अपने बचपन के दिनों के बारे में बताइए। परिवार, फैमिली, परिवेश, शुरुआती संस्कारों ने आपके व्यक्तित्व को कैसे आकार दिया, कुछ उसके बारे में हमारे साथ कुछ बातें साझा कीजिए। थोड़ा हमें अपनी पुरानी जिंदगी में एक झलक दिखाइए।
2: मेरा जन्म जो है 1945 में नवंबर में हुआ था, 11 नवंबर को, लेकिन जैसे

0: का बहुत ध्यान रखते थे, ऐसा ही मेरा भी अब तक भी जो परिवेश रहा है उसी में संस्कारों का ये समावेश हुआ, जिसके कारण मैं आज भी थोड़ा बहुत दान पुण्य की तरफ ध्यान ध्यान रहता हूँ। मैं थोड़ा बहुत जो भी किसी हेल्प कर सकता हूँ, मैं मदद करने की तैयार रहता हूँ। ये मेरे संस्कार जो मेरे पिताजी ने दिए, जिनको मैंने देखा तक नहीं था।
1: बहुत सुंदर। और ये तो बहुत ही जिंदगी में एक खालीपन सा हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप उनके संस्कारों को लेके आगे चलते रहे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बातचीत शुरू करते हैं। तो क्या बचपन से ही आपका रंगमंच की ओर झुकाव था, या ये सफर बाद में शुरू हुआ, कुछ इसके बारे में
0: नहीं,
1: बताइए।
0: मेरा शुरू से ही जो बचपन में से ही मैं रंगमंच से जुड़ गया, वो इस तरह से जुड़ गया कि उन दिनों में रामलीला आया करती थी, रामलीला के लोग आया करते थे। उनके लिए मैं दिन में तो दाना आटा वगैरह इकट्ठा करता था, दाल वगैरह इकट्ठी करता था, और शाम को मैं वो बाबू एक पैसा दे दे ऐसी एक छोटी छोटी जो गीत, उन दिनों के गीत होते थे, उनपे मैं थोड़ी एक्टिंग करके लोगों को रिझाया करता था, जिससे मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, वो दान कर दिया था। ऐसा मेरा शुरू से रहा। तो बचपन से ही मुझे रंगमंच से ऐसा जुड़ना पड़ गया। कारण ये था कि इच्छा थी, इच्छा शक्ति थी उस वक्त की, उस वक्त के मुताबिक जो था उसके मुताबिक मैं करता रहा। ये रंगमंच से शुरू से जुड़ गया था मैं।
1: अरे तो ये तो बहुत ही जोरदार बात है, आप बचपन से ही मतलब रामलीला के माध्यम से रंगमंच से जुड़ गए,
0: जी
1: एक
0: जी
1: तरह
0: जी
1: से कहूं तो मैं।
0: जी
1: तो कोई जीवन में कोई गुरु शिक्षक या ऐसी कोई प्रेरक शख्सियत जो आपको अभी भी याद हो, या जिनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस हो, कुछ उनके बारे में बताइए बचपन की, कोई
0: जी
1: ऐसे।
0: मेरे मेरे गुरु थे, उनका नाम भी मोहनलाल था। मेरा
1: अच्छा।
0: मोहनलाल है, उनका मोहनलाल था, और उन्होंने मुझे रंगमंच की बारीकियां बताई। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे स्टेज पे बोला जाता है, कैसे मैं खास तौर पे मैं एलोक्यूशन में बहुत आगे बढ़ गया, यानी एलोक्यूशन से मैं आगे बढ़ गया रंगमंच की तरफ। तो रंगमंच को लाने वाले मेरे गुरु थे श्री मोहनलाल जी, और
1: अच्छा।
0: वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं श्रद्धांजलि रूप उनको कहूंगा कि उनके कारण ही सब कुछ हूं मैं, रंगमंच के कारण। जो भी रंगमंच का मैं कार्य कर रहा हूँ उनके कारण ही हूँ। चाहे वो थोड़ी उम्र के लिए हम 3-4 साल इकट्ठे रहे, 4 साल, लेकिन 4 साल में भी मेरे जो जितने भी एज ए गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो हमारा बना रहा आखिर तक।
1: बड़ी बात है सर, आप भी आज भी उनको याद कर रहे हैं, देखिए कितनी बहुत बढ़िया बात है। तो एक शिक्षक और बाद में प्राचार्य के रूप में आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? क्या शिक्षण और रंगमंच साथ साथ चलते रहे? क्योंकि टीचिंग में तो काफी समय भी देना पड़ता है, तो ये कैसे मैनेज करते रहे आप दोनों?
0: ऐसा था सर कि शिक्षक के तौर पे मैं बहुत ज्यादा रंगमंच की तरफ झुक गया था। मैं खास तौर पे मेरी खासियत थी वहां पर, मैं मशहूर था इस बात के लिए कि मोहनलाल गोयल कभी बच्चों का नुकसान नहीं करेगा। शिक्षण के लिए मैं रात को ही एक एक महीने का पूरा कैंप लगाया करता था रंगमंच के लिए। तो रात को हम रिहर्सल करते, रात के 1-2 बजे तक बैठे रहते, और शाम को उसको बच्चे मुझे छोड़ के जाते घरों में। तो उसके बाद फिर सुबह पे आके फिर पढ़ाया करता था मैं। और अगर मैं बाहर अंदर जाता था, क्योंकि बहुत बार 3-3 4-4 दिन लग जाते थे जब हम कंपटीशन में जाते थे रंगमंच के, तो नाटकों का खासतौर पर एकांकी नाटकों का पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत चलन था। तो
1: अच्छा।
0: एकांकी नाटकों के कारण मैं बहुत मशहूर हो गया वहां पर। लेकिन 3-4 दिन लग जाते थे, एक बार जाते थे, तो फिर मैं संडे को क्लास लगाया करता था, और सभी सभी को समोसा भी खिलाया करता था। इस तरह से मैं समोसे वाला प्रोफेसर बन गया। इस तरह से कहने की बात यह है कि मैंने कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं किया एज फार एज शिक्षण इज कंसर्न। शिक्षा को पूरा ध्यान भी देता रहा, लेकिन साथ ही साथ मैं पढ़ाता भी रहा, और पूरा रंगमंच के नाम पे मेरा नाम था सारे दिल्ली, राजस्थान, उसके बाद जयपुर, जयपुर के बाद ये तो अब की बात है, लेकिन उन दिनों में मैं हिमाचल, दिल्ली और पंजाब में खास तौर पे और हरियाणा में, चारों स्टेट्स में मेरा नाम था रंगमंच के लिए।
1: नहीं, तो बहुत बड़ी बात है कि आपने कभी अपनी टीचिंग को भी नहीं छोड़ा और बच्चों की भी पढ़ाई का कोई नुकसान किया, और उसके साथ में ये भी करते रहे। ये दोनों भावनाओं के बीच में आपने संतुलन बनाए रखा है।

0: तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए, इसी संतुलन के नाम पे और आपके इस पैशन के नाम पे, स्टेज से जो आपका प्यार रहा है शुरू से, इसी के नाम पे रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं, बहुत बढ़िया सा।
1: जी जी जी

0: हाँ, तो वेलकम बैक गोयल साहब। तो आप ये
1: जी
0: बताइए कि आपका पहला मंचन या पहले अभिनय अगर आपको याद है तो बताइए, वो कैसा अनुभव था जब आप पहली बार स्टेज पे गए थे, क्या था वो?
1: वो उस वक्त का नाम था आवाज का नीलाम, यानी आवाज का नीलाम एक आवाज अखबार छपता था उन दिनों में, यानी ऐसा सोचा गया था, ऐसा लेखक ने उसको आवाज दिया था, नाम का अखबार का नाम आवाज रखा था। उसमें नौकर का रोल अदा किया था। मेरे जो सीनियर थे मुझे पिटाई करा करते थे, तुम ऐसे नहीं बोलते, तुम ऐसे नहीं बोलते, तो उस तरह से वो पिटाई मुझे आज तक याद है, और उस वजह से मैं आज रंगमंच में जो मैं नाम बनाया उस वजह से बनाया, क्योंकि शुरू शुरू में जो जो आदमी सीख लेता है, जो जो सीख मिल जाती है उसके बाद फिर वो कायम रहती है, उसी कायम रहने के कारण ही मैं आज जो थोड़ा बहुत कर पाया हूँ, रंगमंच की सेवा कर रहा हूँ। मेरा आवाज का नीलाम था और नौकर का रोल किया था मैंने शुरुआत में।
0: ये पहले पहले जो प्लेस थे उनमें इस तरह के रोल्स होते भी काफी थे, मुझे याद है
1: बिल्कुल
0: एकांकी
1: बिल्कुल
0: नाटकों में
1: बिल्कुल
0: पहले
1: होते थे,
0: ऐसे
1: हाँ
0: रोल्स बहुत होते थे, कभी वो
1: बिल्कुल
0: कॉमेडी
1: बिल्कुल।
0: करता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, इस तरह
1: मुझे
0: के।
1: आज भी उसका डायलॉग याद है एक,
0: अरे
1: मैं
0: अच्छा,
1: सुनाना चाहूंगा कि
0: हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए।
1: सेठ और जो अखबार वाला मालिक है उसके बीच एक चर्चा है। वो कहता है कि अखबार जो छापता है वो गरीब आदमी है, ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन सेठ आदमी का कार्य जो कार्य करता है वो संपादक है, और संपादक और सेठ के बीच एक आपस में संवाद होता है कि गरीब की गुर्बत, गरीब की इज्जत, गरीब की मोहब्बत भी खरीदी जा सकती है सेठ जी, लेकिन आप हमारी उस प्रथा को नहीं खींच सकते जो आप सोच रहे हो, ऐसी कोई बात हुई थी मुझे याद आ
0: अच्छा,
1: रहा।
0: सही
1: यानी कहने का मतलब गरीब की हर चीज खरीदी जा सकती है
0: बात,
1: लेकिन गरीब की इज्जत आबरू जो है वो फिर भी कायम रहती है किसी ना किसी तरीके से, चाहे कुछ भी किया जा सके।
0: हाँ उसका स्वाभिमान कायम रहता है, बाकी अगर
1: स्वाभिमान
0: बड़े से बड़े हो
1: बिल्कुल
0: कितना
1: बिल्कुल।
0: भी गरीब रहे, बिल्कुल सही
1: जी
0: बात।
1: जी जी
0: तो अच्छा, आप ये बताइए सर, आपके द्वारा निर्देशित या अभिनीत कौन कौन कौन सा नाटक ऐसा जो है आपको याद रहता है कि यार ये मेरे को बहुत फेवरेट है मेरा, तो ऐसा कौन सा है?
1: मेरे दो नाटक बहुत अच्छे मुझे हमेशा याद रहते हैं। एक तो है बकरी सर्वेश्वरदास सक्सेना का, और
0: अच्छा
1: दूसरा नाटक था जो कौन नचाए नाच।
0: अच्छा
1: कौन नचाए नाच एक हमारे दोस्त थे उनका लिखा हुआ है, आजकल वो दूरदर्शन पे बहुत ऊंची चीज है, शायद
0: अच्छा
1: प्रोड्यूसर से भी ऊपर है, रवि जी उनका नाम है, वो
0: अच्छा अच्छा
1: कपूरथला से बिलोंग करते थे। उन्होंने लिखा था नाटक कौन नचाए नाच। उसमें क्या है, जो खास बात हो रही थी कि चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे कहीं भी हो, जनता हमेशा नाचती रहती है, नचाने वाले नचाते हैं,
0: नचाते। अच्छा,
1: और
0: ये
1: हमेशा जनता कठपुतली बनी रहती है। इस वजह से जनता ही हमेशा पिसती है, कभी किसी का नुकसान नहीं होता ऊपर वालों का, तो वो वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन हम जनता ही हमेशा उनको झेलती है, चाहे अच्छा
0: मतलब
1: हो या
0: ये,
1: बुरा
0: हाँ
1: हो।
0: वही कठपुतली वाली बात है, नचाने वाला कोई होता है, हम कठपुतली हैं सब लोग,
1: जी जी
0: वही
1: बिल्कुल,
0: आनंद का जो डायलॉग है, बिल्कुल।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मेरे को याद आ गया कि साहब ये भी बहुत तो ऊंचे राइटर थे, ये कहा जाता
1: बहुत
0: है
1: ऊंचे
0: आपके
1: राइटर
0: कैटेगरी
1: थे
0: में, बहुत ऊंचे
1: इसमें।
0: राइटर।
1: खासियत जो बकरी नाटक मैंने किया था उसमें बकरी जो बनाया था मैंने लाइव बना बकरी बनाई थी, एक पतली सी
0: ओके
1: लड़की
0: ओके
1: ली और पतली सी लड़की को मैंने उसका वेशभूषा वैसे बनाई, और वो यूनिवर्सिटी में पंजाब यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल हुआ करता था उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था उस लड़की को,
0: अरे वाह वाह वाह,
1: और
0: बहुत
1: उसके
0: बढ़िया।
1: सिर्फ सिर्फ हाव भाव थे, वो हाव भाव दिखाती थी अपना, लेकिन बोल तो सकती नहीं थी, म्यां-म्यां करके अलावा इसको जो होता है उसका आवाज होती थोड़ी बहुत, लेकिन अदरवाइज उसने कमाल कर दिया था लड़की ने। हाव भाव ऐसे अपने सिर हिलाती थी, जहाँ पांव हिलाती थी जब उसके साथ कुछ भी होता था, तो वो बहुत अच्छा रहा नाटक वो। और वो अभी अभी मुझे याद है उसके, बकरी को क्या पता था मश्क बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ ना कहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ ना कहेगी।
0: अच्छा, मश्क बन के रहे ही, ये शब्द
1: जी
0: है उसके। मश्क वो नहीं होता है जिसमें पानी भरते हैं,
1: हाँ,
0: वो
1: पानी
0: चमड़े
1: पानी
0: की,
1: भरते हैं, चमड़ा
0: चमड़े की
1: होता ना
0: जो होती है, चमड़े की जो,
1: उसका शरीर
0: हाँ
1: चमड़ा होता है जो, उसी में पानी भरते हैं,
0: वो लेके
1: वही,
0: घूमते हैं जिसके जी।
1: हाँ,
0: हाँ
1: बस वो कुछ नहीं
0: हाँ
1: कहेगी, वो क्या कहेगा, मश क्या कहेगी।
0: क्या क्या गोयल साहब, आपने क्या दे रहा जी, आजकल के बच्चों को तो मश क्या होता है पता ही नहीं है।
1: नहीं पता, मुझे
0: हम
1: नहीं
0: आप तो बात
1: पता।
0: करते, मश देखी नहीं होगी इन्होंने कभी,
1: नहीं,
0: आजकल
1: देखी
0: के
1: नहीं होगी
0: बच्चों ने नहीं
1: वाकई।
0: देखे, नहीं देखी हो। पहले वो नाली के अंदर चलाते थे उसको, जब हम छोटे थे तो
1: हाँ
0: मुझे
1: बिल्कुल
0: याद है,
1: बिल्कुल
0: सफाई
1: बिल्कुल
0: करते थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वाह वाह
1: बिल्कुल।
0: वाह, क्या पुरानी याद दिला दी आपने सर।
1: हाँ जी,
0: तो अब जैसे सिंहासन खाली है या मीरा जैसी प्रस्तुतियां हैं, ये बहुत बड़े बड़े नाटक हैं, तो इनसे कोई जुड़ी हुई याद हो तो कोई ऐसी बात हो तो
1: मेरा
0: बताइए।
1: सिंहासन खाली है तो एक नाटक था, नाटक किया हमने यूनिवर्सिटी में, सेकंड आया था उसका। लेकिन मीरा जो था उसके साथ मेरी जुड़ी हुई कई बातें हैं।
0: जी
1: पहली बात, मीरा के मैंने 25 शो किए ऑल ओवर इंडिया में,
0: अच्छा
1: और हम जहाँ डीएवी स्कूल की बस ले जाया करते थे, 45 बच्चे उसमें थे, 45 बच्चे, उन सभी बच्चों को मैं साथ जाता था, मैं डायरेक्ट किया था उस प्ले को। और वो नृत्य नाटिका थी, वो नृत्य नाटिका इतनी मशहूर हुई सारे इंडिया में, 25 जगह पर मैंने किया, क्योंकि डीएवी स्कूल कॉलेज जो हमें स्पॉन्सर कर देते थे। लेकिन खास बात यह थी कि मैंने 5 लाख रुपए कमाए इससे, और 5 लाख ही मैंने अलग अलग जगह पर दान कर दिए। जैसे अमृतसर खेला तो अमृतसर वहां पर पिंगलवाड़ा है, वहां दिया पैसा, जो जहाँ जो जय लुधियाना खेला, जहाँ पूना। एक खास बात मैं इसके बारे में साझी करना चाहूंगा कि मीरा डांस ड्रामा जब किया था, हमारे एक प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस होती है डीएवी की एट पुणे, पुणे में होना था, तो मुझे कहा गया था मीरा डांस ड्रामा लाना। मैंने कहा कौन लाएगा इतना, मैं जहाँ के राजस्थान के यानी जो लोकगीतों पर आधारित नृत्य होते हैं वो लेके जा रहा था। तो मुझे रास्ते में आ गया, जैसे मैं अभी चढ़ा जयपुर स्टेशन पे थे हम सब लोग, अभी गए नहीं थे, तो मुझे फोन आ गया कि नहीं, मीरा ही लाना आपने। मैं सब बच्चों को
0: अच्छा
1: उतारा और फिर दोबारा से बस ले गए, 3 दिन में और 2.5 दिन में पहुंचे वहां पर, और फिर प्ले किया वहां पर। उस प्ले को गुलजार ने देखा, और एक जो है अपनी नृत्य नृत्य करती है, जिसकी टांग पांव नहीं है,
0: अच्छा सुधा
1: सुधा
0: चंद्रन, सुधा चंद्रन,
1: सुधा चंद्रन, सुधा
0: सुधा
1: चंद्रन,
0: चंद्रन, सुधा
1: हाँ,
0: चंद्रन,
1: इन
0: समझ
1: दोनों
0: गया।
1: ने देखा, और सबकी आंखों में आंसू आ गए थे उस वक्त। और खास तौर पे जब मैंने मेड़ता और चित्तौड़गढ़ किया, चित्तौड़गढ़ वाले थे लोग मेरे साथ माफी मांगने आए कि सर हम आपसे माफी मांगते हैं, मीरा के साथ बहुत हमने गलत किया, ऐसा एहसास हुआ, ये मुझे
0: अच्छा
1: एहसास भूलता नहीं है। और मैं मेड़ता में बारिश हो रही थी, खूब बारिश हो रही थी, लोगों ने पानी में खड़े होकर के नाटक देखा। तो इस तरह से ये मीरा के साथ मेरी बहुत सारी जुड़ी हुई बातें हैं सर।
0: बहुत ही बढ़िया सर, ये तो मजा आ गया। तो चलिए, आपके इस मीरा नाटक के नाम पे, और ये जो, अच्छा देखिए उस जमाने में मेरे को ये लगता है कि इतनी टेक्निक, साउंड इफेक्ट, लाइट इफेक्ट्स वगैरह भी नहीं थे उस जमाने में, तो बहुत बेसिक रूप से नाटक किया
1: हाँ
0: करते थे आप।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल।
1: बिल्कुल, हाँ जी।
0: हाँ सर, अब वापस हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत। अब आते हैं हम विकल्प नाट्य संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। तो विकल्प की स्थापना का विचार कैसे आया, इसके पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या था, कुछ इसके बारे में बताइए हमारे को।
1: विकल्प नाटक संस्थान जो था हमारा बना, नाट्य संस्था, वो 4 लोगों ने बनाई थी उस वक्त। ये 1974 की बात है, 1974, यानी 50 साल पुरानी बात है। उस वक्त एक मिस्टर हरि हरिशंकर हरि हरि नारायण थे, वो अभी भी हैं हमारे साथ, हरिनारायण शर्मा। दूसरे थे राजेश रेड्डी, जो आपके यानी रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर रहे अल्टीमेटली, वो पास। एक मिस्टर थे भटनागर साहब, और एक और थे। 4 लोगों ने मिलके आपस में नाटक किया करते थे, यूनिवर्सिटी में खेला करते थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। उनके दिमाग में आया कि हम चारों को इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए नाटकों का काम करेंगे, इसलिए संस्था बन गई ये। और संस्था बनते बनते ये लगातार आज 50 साल पूरे कर लिए इसने, 50 साल से ऊपर भी हो गया। हम अभी अभी पिछले दिनों में 1 मार्च 1925 को 2025 को हमने इसका 50वां जो है दिवस मनाया गया।
0: अच्छा,
1: और उसमें राजेश रेड्डी को बुलाया गया था और हरिनारायण जी को, दोनों को सम्मानित किया था। राजेश रेड्डी एक बहुत लेखक भी है, कवि भी है, नाटककार भी है, बहुत मशहूर आदमी है और इंटरनेशनल स्टार का आदमी है। वो उनके उनकी देख रेख में सारा काम किया हमने।
0: राजेश रेड्डी जी का नाम मैंने भी सुना है। तो आप विकल्प किस दिशा में काम कर रहा है, क्या उसकी पहचान किस तरह से बना रखी है, आप कोई मंथली करते हैं, किस तरह से क्या है?
1: ऐसा है सर,
0: हाँ,
1: इस दिशा में असल में क्या है कि जो हमारी संस्थाएं हैं, ये नाटक की संस्थाएं आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोर रहती हैं। सरकार हमें कोई देती नहीं है, लोगों के चंदे के ऊपर, लोगों की जहाँ कंट्रीब्यूशन के ऊपर है, जहाँ आपस में जो मिलजुल के ही काम करते हैं, तो इसलिए कोई रेगुलरिटी तो बन नहीं सकती इसमें। हाँ, इतना जरूर है कि 2-3 महीने में एक नाटक जरूर हो जाता है, लेकिन इसको मैंने इस बार एज ए प्रेजिडेंट ऑफ नाट्य विकल्प नाट्य संगठन का प्रेजिडेंट के नाते मैंने इसको दिशा दी है नई। इसमें हमारे कुछ नए जो सदस्य जुड़े हैं वो नृत्य के और गाने में यानी संगीत में बहुत अच्छे हैं। उनका संगीत का कार्यक्रम मैंने 2-3 कर दिए इस वजह से, और उसके अलावा मैंने 2-3 नाटक भी कर दिए। नाटक में अब मैं एकांकी की तरफ जाना चाहता हूँ, अब फुल लेंथ की बजाय एकांकी चाहे 2 कर लो या 1 कर लो, लेकिन एकांकी की तरफ जा रहा हूँ मैं। जैसे अभी हमने एक नाटक किया था अंधेर नगरी चौपट राजा के ऊपर, एक छोटा छोटा नाटक किया था। ऐसे ही हमने एक नार वो भी बीमार एक नाटक किया था, वो भी छोटा नाटक था। इसका मतलब ये हुआ कि आज एकांकी इसको ज्यादा पसंद करेंगे, तो ज्यादा समय लंबा बैठना दर्शक बैठना नहीं पसंद करते, तो इसलिए एकांकी का ज्यादा रोल होना चाहिए। उस एंगल से मैं इधर काम और नुक्कड़ नाटक का भी थोड़ा सा ध्यान रख रहा हूँ कि जैसे ये हमारा जो अंधेर नगरी वाला प्ले था, इसमें पानी पे ऊपर हमने वाटर के ऊपर दिया था थोड़ा बहुत आइडिया।
0: अच्छा,
1: जो
0: अच्छा।
1: पानी कैसे बचाया जा सकता है, तो उस एंगल से मैं सोचता हूँ कि सरकार से अगर बात की जाए तो नुक्कड़ नाटक ऐसे बनाए जाए, कुछ कुछ बातों को लेकर के सरकार से बात की जा सकती है या किसी मंत्री से बात की जा सकती है, जिसके ऊपर हम नुक्कड़ नाटक करें और उसके साथ संदेश भी दे सके।
0: लोगों में पानी की कंजर्वेशन के लिए संदेश जाए, तो अगर नाटकों के माध्यम से दिया जाए तो बहुत अच्छा
1: जी, जी,
0: तो जी, इसका मतलब है कुछ चुनौतियां तो हैं। देखिए, विकल्प चलाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आर्थिक आपने बताई दिया, कलाकारों की उपलब्धता भी होगी, लोगों पे इतना समय भी नहीं होता होगा रिहर्सल वगैरह के लिए आ पाए।
1: इसमें मैंने एक तजर्बा किया, इसमें एक मैंने प्रयोग किया कि हमारे एक मिस्टर प्रेमचंद गांधी जी हैं, ही इज ए वेरी गुड राइटर आल्सो, उन्होंने गाथा बंदनी एक नाटक लिखा। अच्छा। उसके 4 हिस्सों 4 कहानियां है उसकी, कि 4 स्त्रियां जो हैं वो शिकार हो जाती हैं, यानी जिसको बोलते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट का, तो उन चारों ने अपने चारों अलग अलग एरियाज में, जैसे एक लड़की है जो ईसाई लड़की है और वो किसी कारण से किसी के साथ लग जाती है और उसका मर्डर कर देती है, उसका कारण सही होता है, कारण जो मर्डर का वो सही है। जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र की लड़की है, उसका जो सरपंच है वो उसका दुष्कर्म करता है उसके साथ, उसे मर्डर कर दिया। ऐसे एक बाबा, मैंने बाबा का रोल अदा किया उसमें, यानी जो जैसे आज के जमाने में बाबा काम करते हैं, उस बाबा का मर्डर हो गया। तो इस तरह से 4 कहानियां थी अलग अलग, लेकिन 4 कहानी के पात्र सबके अलग अलग थे, इसलिए हमारे रिहर्सल की प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं अदरवाइज तो इकट्ठा नाटक पूरा 3 घंटे का 2.5 घंटे का करना हो तो बड़ा मुश्किल होता है।
0: ये गाथा बंदी में जो कुछ याद आ रहा है आपका, अभी हुआ था इसी में, क्या भगवंत ने इसी में पार्ट किया था कि
1: हाँ, इसमें जेलर का रोल अदा किया सबसे ज्यादा,
0: जेलर का अब याद आ गया मुझे।
1: हाँ जी,
0: अरे मैं भगवंत से
1: अभी दूरदर्शन पे जा रहे हैं, दूरदर्शन पे जा रहे हैं अभी, एक उसका एपिसोड हो गया, दूसरा एपिसोड होना है 5 तारीख को, 5 मार्च को उसकी होनी है। यानी रिहर्सल चल रही है आजकल, हमारी शुरू होगी रिहर्सल, आज से शुरू हो रही है।

0: इस तरह से भरंत कौर बहुत अच्छी नाटककार है, अच्छी अच्छी अभिनेता है, बहुत पुरानी है
1: वो। सर हमारे बैंक में भी बहुत नाटक करती थी, क्योंकि मैं तो उसको जाने कब से कह रहा हूँ, उसका भी रेडियो इंटरव्यू करना है, लेकिन उसके बड़ी कभी इधर चली जाती है कभी उधर चली जाती है, बिजी बहुत।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: भगवंत मेरी बड़ी पुरानी मित्री है एक तरह से, हम लोग नौकरी साथ साथ किए काफी समय।
0: क्या बात है साहब।
1: तो मेरे को तो विकल्प वो बहुत बोलती थी, अब मेरे को विकल्प के अध्यक्ष ही मिल गए, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। मैं विकल्प के नाटक में जा रही हूँ, मैं वहां बिजी हूँ, मैं वहां बिजी हूँ, ऐसे बहुत कहती रहती थी मेरे से। चलिए तो इसी उस पे हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल।

0: अच्छा गोयल साहब, तो
1: हाँ जी
0: आपको क्या लगता है कि आजकल जो एक ये सिनेरियो बन रहा है मंच का, तो युवाओं की रंगमंच के प्रति गंभीरता कम हुई है या इसका रूप बदल गया है? नए बच्चे आ रहे हैं, स्टेज से जुड़ रहे हैं, क्या
1: दोनों दोनों
0: आपको
1: चीजें
0: लगता
1: हैं साहब, दोनों
0: है?
1: चीजें
0: अच्छा,
1: हैं। इसमें रंगमंच के प्रति गंभीरता भी कम हो गई है, लोग ज्यादा जल्दी ही रिजल्ट चाहते हैं, हर आदमी परिणाम चाहता है, परिणाम ये। लेकिन रंगमंच आप जानते हो कि ये तो एक ऐसी विधा है जहां पर परिश्रम की जरूरत है, जहां पर हर तरह से एक तरह का समर्पण की जरूरत है, वो समर्पण नहीं हो सकता आज के जमाने में, तो इसलिए गंभीरता कम हुई। लेकिन जो रूप बदला है इसका, जैसे वेब सीरीज शुरू हो गई है या ओटीटी हो गया है, ऐसा कुछ वहां पर झुकाव तो हो रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं हो रहा। उससे रंगमंच, जो हमारा पुराना रंगमंच, जो हमारी जो सभ्य संस्कृति के मुताबिक हम कहें तो अच्छी नहीं है बात, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। युवा बिल्कुल बेकार तो नहीं है इस बात के लिए, लेकिन फिर भी झुकाव तो दूसरी तरफ ज्यादा हो रहा है।
0: तो कुछ ऐसा बताइए, आपने विकल्प से जुड़े से नए कलाकार हैं जिन्हें आपने तैयार किया हो और आपको लगता है कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा किया है ना, आपको एक गर्व महसूस होता हो, कोई ऐसे कलाकार
1: बिल्कुल,
0: ग्रूम किए हो आपने बताए
1: मैं आपको
0: हो?
1: बताता हूँ सर कि आलोक जी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो नृत्य के लड़कियां आई हैं, खास तौर पे 60 ईयर अबाव की एज की एक मीरा सक्सेना करके लड़की है
0: अच्छा,
1: लेडी, और इसके अलावा रुनझुन घोष करके की लड़की है जो कि 125 सिर पे घड़े रख करके नाचती है, बबाई डांस करती है वो, और लोग, हाँ बबाई करती है, और उसकी जो मदर है वो बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है और कोच भी है। उसने हमारे दो जो बच्चे थे मीरा, जो बबाई डांस किया 125 सिर पे घड़े रख करके, छोटे छोटे घड़े रख करके, और हमारे दो बच्चे जो थे डीएवी के, वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। इस वजह से मैं गर्व महसूस करता हूँ उनके बच्चों के लिए जो मैंने तैयार किए थे। उसके अलावा अभी हम जो नाटक कर रहे हैं उसमें नए लोग लिए जा रहे हैं, जैसे एक जुरानी करके लड़का है, तो इस तरह से कुछ नए कुछ पुराने मलामलू के अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा विकल्प जो है, अच्छे नाटक दे सके, अच्छे नृत्य दे सके, अच्छे गीत दे सके। अभी मैंने जगजीत सिंह पर एक उनकी नाइट करनी है, जगजीत सिंह के जो हमारे पास गायक है ना, मेरे अपने गायक, जैसे तीन चार गायक हैं, जैसे ओम गोस्वामी है, प्रबोध गोस्वामी है, ऐसे एक एक और लड़का है हमारे पास, तो तीन चार लड़के हैं, और एक मेरा स्टूडेंट है यूएसए से आया हुआ है यहाँ पर पंजाब का, वो बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा गाता है, क्लासिकल गाता है, वो वहाँ प्रोग्राम देता है, स्टेज शो देता है, वो पर चांस आया हुआ। उनका लेकर 29 मार्च को मैं करने जा रहा हूँ एक जगजीत सिंह के नाम श्रद्धांजलि समारोह, स्वरांजलि समारोह।
0: चलिए, उसके लिए सर बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और जगजीत सिंह का
1: बहुत
0: प्रोग्राम
1: धन्यवाद
0: करें
1: सर,
0: तो हमें भी याद कर लीजिए, हम भी
1: जरूर
0: गजल के
1: जरूर
0: फैन
1: जरूर
0: हैं
1: जरूर जरूर जरूर साहब, जरूर आप, मेरा सौभाग्य होगा, मेरा सौभाग्य होगा साहब। अरे
0: मैं साहब तलत महमूद, जगजीत सिंह इनका बड़ा फैन हूँ।
1: क्या बात साहब, आपको अच्छा लगेगा, मेरा ऐसा ख्याल है।
0: नहीं, बिल्कुल अच्छा लगेगा सर। तो आपके, आप ये बताइए कि जैसे आजकल रंगमंच और फिल्म अभिनय तो बहुत हो ही गया, ओटीटी वेब सीरीज वगैरह में, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है एक्टिंग जब हम स्टेज पे करते हैं और जब हम फिल्म के लिए एक्टिंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है बेसिक डिफरेंस क्या है?
1: बेसिक डिफरेंस यही है कि रंगमंच में जो खासियत ये है कि एक्टर को सब कुछ वहीं दिखाना पड़ता है, उसको सब 100% देना पड़ेगा, तभी वो कामयाब होगा। लेकिन फिल्म में तो कहीं भी कट कर दो, कहीं भी काम कम कर दो, ज्यादा कर दो, आवाज ऊंची कर दो, टेक्निक का बहुत जरूरी हो सकता है। लेकिन रंगमंच में तो जब तक आवाज अच्छी नहीं होती, जब तक हाव भाव अच्छे नहीं देगा बच्चा, कोई बंदा, तो काम नहीं हो सकता। इसी रंगमंच का ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको एक, अगर इजाजत दो, घटना सुनाना चाहूंगा। जहां पर
0: हाँ, सुनाइए सर।
1: मेरे, मैं जब बीए फाइनल में पढ़ता था पंजाब में, तो मेरे पास बलासानी आया करते थे, उस तरफ डुड्डी के गांव है जहां लाल लाजपत राय का जन्म हुआ था, वहां पर एक नावलकार थे जसवंत सिंह, उनके पास वो दोस्त थे, आपस में दोस्त, एक महीने के लिए आया करते बड़ा आसानी। तो मैंने कॉलेज में बुलाया उनको, उनसे पूछा कि रंगमंच में, वो रंगमंच के साथ जुड़े हुए थे बड़ा आसानी, मैंने उनसे पूछा कि कैसे मुश्किल होता है। तो उन्होंने 2 बीघा जमीन का एक एग्जाम्पल दी, मुझे घटना सुनाई कि मैं जब 2 बीघा जमीन का जो टांगा लेकर के भाग रहा था, तो मुझे कहता जो मेरा निदेशक था वो कहता था कि और भागो जब तक खून नहीं निकल आए तब तक उसने मुझे छोड़ा नहीं। यानी इस स्थिति तक साधना की जाती है रंगमंच में, तो यानी खून मांगती है रंगमंच, लेकिन फिल्म में वो चीज नहीं। फिल्म में बहुत सारी चीजें सुरक्षित की जा सकती है, ऑलरेडी किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन रंगमंच में सब कुछ अपने ही आप ही देना होता है सब कुछ। तो ये मेरा ख्याल यही अलग डिफरेंस है सबसे बड़ा।
0: नहीं सही बात है। और बलराज साहनी तो क्या तो करेक्टर एक्टर थे साहब, क्या
1: अरे क्या बात
0: क्या बात। बलराज साहनी के भाई थे भीष्म साहनी, वो भी बहुत अच्छा
1: बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल वो पंजाब के थे,
0: पंजाब के थे दोनों
1: बिल्कुल,
0: गुरदासपुर
1: के थे। हाँ जी हाँ जी
0: बहुत बढ़िया। अच्छा तो ये बाई में जब ये बात चल रही है तो एनएसजी से जो कलाकार निकलते हैं इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कैसे क्या है?
1: मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया निकल रहे हैं जो एनएसजी से निकल रहे हैं, क्योंकि उनको यानी नीचे स्तर तक रह करके, जमीनी स्तर पर रह करके काम करना पड़ता है और एक्टिंग को की बारीकियों को हर तरह से सीखना पड़ता है, इसलिए वो मैं समझता हूँ कि असली जो रंगमंच है वो नाट्य संस्थाओं से जो प्रशिक्षित होकर के आते हैं, निखर के आते हैं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। मेरा ख्याल तो यही है। अलकाजी का नाम आपने सुना ही है, अलकाजी का क्या बात है साहब, बहुत सारे जितने एक्टर हैं, अच्छे एक्टर जितने भी हुए हैं, वो सब हमेशा एनएसजी से निकले हुए, जो ज्यादा अच्छे लगे आपको, मेरा ख्याल है कि दूसरे इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी एक नेचुरल किसी के टैलेंट होता है तो वो आता है, ऊपर आते हैं, बहुत सारे आते हैं लोग, लेकिन फिर भी अगर प्रशिक्षित होगा और नेचुरल भी हो तो मिला के और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए एनएसडी से निकले हुए लोगों को मैं अच्छा समझता हूँ।
0: चलिए अब बल्ला साहनी साहब के नाम पे हम एक गाना सुन लेते हैं, कोई उनकी फिल्म का ही।
1: हाँ,
0: है ना, तो रुक जाते हैं, आपने बात याद दिला दी उनकी।
1: जी जी।

0: आप थोड़ा सा इधर आ जाते हैं गोयल साहब, आपकी जो डीएवी कॉलेज के आप प्रिंसिपल भी रहे हैं और इतने विद्वान हैं, तो एक शिक्षाविद और समाज सेवी के रूप में आपकी सामाजिक गतिविधियां रंगमंच से कैसे जुड़ती है? क्योंकि आप सामाजिक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व रहते हैं, शिक्षाविद तो हैं ही आप, एजुकेशनिस्ट तो हैं ही, तो रंगमंच भी आप थे, तीनों चीजों को कैसे बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं आप?
1: हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी समाज की आवश्यकताएं होती हैं उसके मुताबिक हम थिएटर को करें।
0: जी
1: यानी जब चुनते हैं हम कोई भी नाटक, तो कोशिश होती है कि समाज का कोई ना कोई पहलू छुआ जा सके, उसे उसके उसका उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसे जैसे नृत्य नाटकाएं हैं, जैसे मीरा नृत्य नाटका है हमारी, मीरा नृत्य नाटका ने बहुत अच्छा काम किया समाज सेवा का। समाज सेवा के साथ साथ एक यानी बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन रहा, और उससे जो पैसा कमाया गया वो आगे दिया गया। तो इस तरह से एक तरह का समाज सेवा के रूप में मैं कार्य करता रहा। और हमने एक प्रोग्राम दिया था बाघा बॉर्डर पर, जिसमें मैं नृत्य नृत्य दिए थे सारे, और थोड़ा छोटा मोटा एक प्ले दिया था। वो बहुत पसंद आया था पाकिस्तानियों को भी। मैं पाकिस्तान भी 3 बार गया हूँ वहां पर, वहां का नाटक देखा। तो वहां सामाजिक सरोकारों को ज्यादा जोड़ते हैं पर पाकिस्तान वाले, हम भी कोशिश करते हैं लेकिन पाकिस्तान वाले ज्यादा जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बाहर बैठा था, नाटक देख रहा, लड्डू करारे पंजाबी में था, लड्डू करारे। तो वो क्या करते हैं, मुझे उठा लिया जी, पता लग गया कि मैं तो थोड़ा जुड़ा हूँ रंगमंच के साथ। मुझे स्टेज पे ले गए, मुझे अपना एक भूमिका बना दी उन्होंने, मेरी एक एक पात्र बना दिया उस इमीडिएटली उन्होंने। इस तरह के कार्य करने से समाज को जोड़ना और भी आसान हो जाता है। तो इस तरह से नाटक के तौर पे मैं ये कर पाया हूँ। थोड़ा बहुत समाज सेवा का काम भी करता रहा, जैसे आपको बताया कि मैंने 5 लाख रुपए कमाए और वो आगे बांट दिए, तो बांटने में मजा आता है साहब। जी
0: दान की तो प्रवृत्ति आपने शुरू से ही है ना, अपने फादर से आपने लिया है,
1: जी
0: बातें
1: जी
0: करते ही है। नहीं तो पाकिस्तान का किस्सा आपने अच्छा सुनाया, वाघा बॉर्डर पे भी आपने प्ले किया है, क्या
1: पंजाब
0: श्रोताओं मतलब, और
1: में
0: पाकिस्तान
1: सदर
0: बिल्कुल सही बात है, वहाँ पाकिस्तान में पंजाबी लैंग्वेज ज्यादा यूज आती है नाटकों
1: हाँ
0: में भी,
1: बिल्कुल,
0: और
1: पंजाबी
0: हाँ
1: लैंग्वेज ही थी। कठपुतली नाटक एक बहुत अच्छा था मेरा पंजाबी प्ले,
0: अच्छा
1: जो कपूर सिंह को मनका लिखा हुआ है। तो इस तरह से पंजाबी प्ले भी बहुत किए मैंने, लेकिन हिंदी प्ले ज्यादा किए मैंने।

0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ जी
0: क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा शौक है, पाकिस्तानी जो टीवी ड्रामाज आते हैं
1: हाँ
0: मैं यूट्यूब पे काफी देखता हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। एक
1: वो
0: तो
1: शरण सिंह एक अमृतसर में एक बंदा था जी, ही डेड नाउ, ही इज ए
0: अच्छा
1: वेरी गुड नुक्कड़ नाटक। मैं एनएसएस के नेशनल सर्विस स्कीम के कैंप लगाया करता था एज ए
0: अच्छा
1: टीचर,
0: अच्छा अच्छा
1: तो वहां
0: अच्छा
1: पर मैं उनको बुलाया करता था। वो सिर्फ आने जाने का खर्चा लिया करते थे मुझसे 500-700 रुपए, और वो यानी समाज की जो असलियत है उनके ऊपर नाटक किया करते थे, और
0: अच्छा
1: वो गांव में 10-10 हजार की गैदरिंग को एड्रेस कर देते थे। और एक बार तो हमारा ऐसा हुआ कि लाइट चली गई, तो हमारे चारों तरफ ट्रैक्टर थे खड़े, मैंने कहा ट्रैक्टर की लाइट जगा लो भाई, ट्रैक्टर की
0: अच्छा
1: लाइट जगा के भी हमने प्ले किया। तो
0: अरे
1: एक
0: वाह
1: सामाजिक सरोकारों का बहुत अच्छा मैं तरीका बनाया था, नेशनल सर्विस स्कीम के हर कैंप में उनको बुलाया करता था, और कैंप कैंपों में प्रोग्राम किया करता था नाटक के, नाटकों के द्वारा 3-4 नाटक करते थे वो, 5-3 घंटे का प्रोग्राम होता था, बहुत अच्छा होता था। इस तरह से
0: यार,
1: सामाजिक सरोकारों के काम
0: वही
1: करता
0: वही
1: रहा हूँ।
0: मेरा अगला प्रश्न भी यही था कि आपको लगता है कि थिएटर समाज परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है।
1: यस बिल्कुल
0: नेचुरली
1: बिल्कुल
0: आपने नुक्कड़ माध्यम के से बता ही दिया कि अगर हम करें तो जुड़
1: हाँ
0: सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: चलिए, समाज और थिएटर का ये जो संबंध है इस पे रुक के हम एक कोई गाना सुन लेते हैं,
1: जी
0: और
1: जी
0: करीब करीब हम बकौल अमीन से यानी आखिरी पायदान पर आ गए हैं, और इसके
1: हाँ
0: बाद में बस एक दो प्रश्न और है फिर अपन समाप्त करेंगे।
2: ये भाई दर्द।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: सर है अप, अप, आता है कोड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
0: माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: गोयल साहब, आप अपने लंबे अनुभव के आधार पर अब युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो अब रंगमंच पे आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
1: उनके लिए मैं चार लाइनें बोलना चाहूंगा सर।
0: अरे वाह, स्वागत है।
1: इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि हजारों मुश्किलें हैं इंसान के आगे, सब गुबारा है मुझे ईमान के आगे। रोशनी कहीं बदनाम ना हो जाए इस डर से, रख दिया मैंने दिया तूफान के आगे।
0: वाह, बहुत सुंदर सा, वाह।
1: तो मुश्किलें हमेशा आती हैं इंसान के आगे, और जो दृढ़ संकल्प होते हैं वही लोग रंगमंच में आ सकते हैं। और युवाओं को मेरा संदेश है, अगर रंगमंच पे आना है तो दृढ़ संकल्प होकर के, जुनून को साथ लेकर के, अपनी हर चीज को भूल करके, अनुशासन को अपनाते हुए अगर आप आ सकते हो तो आना चाहिए, नहीं अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जहां पर रंगमंच जो है आपका परिश्रम मांगता है, रंगमंच आपके लिए सबको देने को तैयार है, लेकिन बाद में देता है पहले लेता है। आप क्या दे सकते हो, वो देने वाली प्रवृत्ति अगर होगी, चाहे अपना समय देना रिहर्सल के लिए समय देना, और उसके अलावा सब कुछ दे देना अपने आप को, यानी दृढ़ संकल्प होकर के कार्य करोगे तो रंगमंच और भी उभरेगा और नए कलाकार भी आएंगे, नए युवा जुड़ेंगे। युवाओं के लिए मेरा यही है कि मुश्किल हमेशा आती है, मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन उसको सामना करना जरूरी है। हर बाधाओं का जो सामना अगर करता है इंसान, वही कामयाब होता है। संघर्ष के बिना जीवन नहीं है। कि लहरों से लड़ो, तूफानों से जूझो, क्या चलते हो किनारे किनारे, किनारे किनारे चलने से कुछ नहीं होता, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष के बिना कुछ नहीं हो सकता।
0: अच्छा गोयल साहब, मुझे अभी ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया कि आप इतने बड़े स्टेज के आर्टिस्ट हो, हमने आपसे कोई डायलॉग नहीं सुना, तो तो मैं, ये तो बड़ी हमारी हमारी तरफ से गलती हो जाएगी। आपके इतने प्ले आपने किए, कोई अगर आपका मन हो, कोई
1: मैंने एक डमरू नाथ एज ए स्टूडेंट मैंने डमरू नाथ प्ले किया था, जिसमें वो जो ओझा होते हैं उसका रोल अदा किया था मैंने।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: तो उसका मैं एक डायलॉग सुना देता हूँ।
0: सुना दीजिए।
1: जय काली काली महाकाली, ब्रह्मा की पुत्री इंद्र की साली, जा बैठी पीपल की डाली, पलट तेरा ध्यान किधर है। जब पलट तेरा ध्यान किधर है बोलता था मैं, चुमटे के साथ खड़काता था, तो कई बच्चे उठ जाते थे, नींद से उठ जाते थे। तो अब तो 80 साल का हो गया, मैं उतनी आवाज में वो दम नहीं रहा, लेकिन वक्त था जब दम था।
0: नहीं नहीं, आपकी आवाज में अभी भी दम है, और 80 साल पे आपका स्टेज के प्रति पैशन जो है, मतलब अच्छे अच्छे युवाओं को शर्मसार कर दे, मैं तो ये कहूंगा सर। मतलब मेरे को तो बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है। आप हैं, अमिताभ बच्चन हैं, वो 83 इयर्स पे भी देखिए क्या केबीसी
1: मुकाबला हो सकता है। तो
0: ऐसे लोग विलक्षण होते हैं,
1: शताब्दी के लोग हैं वो तो साहब,
0: शताब्दी के लोग हैं साहब, मतलब विलक्षण है। इस उम्र को जैसे रोक रख के रखा हुआ है,
1: जी जी जी,
0: और वही जोश, वही वो जोश पूरा दौड़ के आते हैं अभी भी केबीसी के अंदर, आप देखिए।
1: हाँ बिल्कुल, कभी आप चल के नहीं आएंगे, दौड़ के आएंगे। हाँ,
0: दौड़ के आएंगे, मतलब कभी आप उनको ढीला डाला नहीं।
1: मैं भी 80 साल की उम्र पे भी थिएटर कर रहा हूँ, तो यही कारण है कि इन लोगों का ही पूरा प्रेरणा मिलती है हमें, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों से, नहीं तो कैसे आदमी बढ़ पाएगा आगे के लिए।
0: आपको सलाम है सर हमारी तरफ से, हम तो यही।
1: मैं जिंदगी के रंग गीतों के संग के दर्शकों का, और खास तौर पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे सुना और मेरे कुछ बातों को ध्यान में रखा होगा, ऐसा मेरा ख्याल है कि इसका शायद कोई फायदा हो सके, तो बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
0: नहीं नहीं सर, अभी अभी अभी अभी अपन समापन करते हैं। तो गोयल जी, आपसे बातचीत सचमुच एक प्रेरणादायक अनुभव रहा। आपने जिस सादगी, स्पष्टता और आत्मीयता से अपने जीवन के अनुभव साझा किए, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। आपकी यात्रा हमें सिखाती है कि मंच केवल रोशनी और तालियों का नाम नहीं, बल्कि वह एक साधना है, समर्पण की, संस्कारों की और स्मृति जिम्मेदारी की। विकल्प जैसी संगठन के माध्यम से नई पीढ़ी को दिशा देना और बदलते दौर में भी रंगमंच की ज्योति को प्रज्वलित रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। हम आशा करते हैं आपकी ये ऊर्जा और प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों तक यूं ही पहुंचती रहे। आपने आज हमारे लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: मेरा जिंदगी के रंग गीतों के संग कार्यक्रम के लिए सलाम।
0: आज के लिए इतना ही। मैं हूं आलोक कुमार, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। नमस्ते।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार है बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों, सायरा बानो जब 16 साल की थी तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थी। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानो जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए, पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकारा हैं हेलन। जी हाँ, हेलन जो बहुत प्रसिद्ध डांसर रहीं, एक्ट्रेस रहीं हमारी हिंदी फिल्मों की। हेलन का असली नाम है हेलन एंड रिचर्डसन खान। जी हाँ, हेलन दरअसल एक क्रिश्चियन हैं। आइए उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये

0: श्रोताओं, हम स्वागत करते हैं महेंद्र गौतम जी का जयपुर से। गौतम भाई, जरा ये बताइए अदाकारा हेलेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शी वॉज अ वेरी गुड डांसर एक्चुअली। उनकी केमिस्ट्री जो आयशा भोसले के साथ में है और उनके जो गाने हैं वो आपको वैसे ही थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो वो उनके गाने अपने आप में बहुत मजेदार गाने होते थे। आप थिरकते थे उनसे, आज भी थिरक उठते हो।
0: बेहतरीन बेहतरीन गौतम भाई, थैंक यू सो मच गौतम, आपका बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

हेलन का जन्म 21 नवंबर 1938 को बर्मा में हुआ। उनके पिता की मौत वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हो गई, तभी उनकी फैमिली भारत में शिफ्ट हो गई। यहीं पर हेलन का करियर बॉलीवुड फिल्मों में शुरू हुआ। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

बड़ी ही मजेदार बात है कि एज एक्ट्रेस हेलन और उनके लिए गाना गाने वाली हमारी प्रसिद्ध गीत गायिका आशा भोसले जी की बेहद गहरी दोस्ती थी। आशा भोसले जी ने हेलन के करीब करीब सारे गाने गाए हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन ने सलीम खान जी से शादी की, जिसकी वजह से वो सलमान खान जी की फैमिली से जुड़ी। यूं देखा जाए तो सलमान खान उनके सौतेले बेटे हैं, बट दोनों के बीच बेहद प्यार है। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: नहीं इतना बता मिस्टर, नहीं है तू मेरे बस में तुझा मिस्टर, मैं तंग आई नहीं इतना सता मिस्टर, नहीं है तू मेरे बस में तुझा मिस्टर।
1: अजी

हेलन को सबसे पहला बढ़िया ब्रेक हावड़ा ब्रिज नाम की मूवी में मिला, जिनका बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, मेरा नाम चिंग चिंग चू। आइए दोस्तों सुनते हैं यही गीत।

आपको ये जान होगा दोस्तों कि हेलन को ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ साथ पद्म श्री अवार्ड्स के लिए भी चुना गया। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को

मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: मैंने जब दरवाजा खोला ना भैया, तो उसकी आंखों में आंसू थे, सांसों में तेजी थी, दिल में बेबसी थी। परली ने पहले बताया ही नहीं कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम।
1: धीरे धीरे हर शम बुझी रफ्ता रफ्ता।
0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के प्रोग्राम में जो शायर हमारे साथ हैं उनका नाम है अशोक गोयल साहब। अशोक गोयल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए।
2: नमस्कार
0: जी सर,
2: मैं डॉक्टर अशोक गोयल गुना से, मध्य प्रदेश गुना से।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: थैंक यू सर।
0: तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है और अभी आप कहाँ रहते हैं, उन जगहों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
2: जी, मैं मेरा बर्थ प्लेस मध्य प्रदेश का है, गुना का, और मैं अभी गुना में ही रहता हूँ। बीच में मैं सर्विस में रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में, और पेशे से मैं चिकित्सक हूँ।
0: जी बहुत खूब। तो अशोक सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए अपनी गजल सुनाएं।
2: जी मैं कुछ अशार पेश करता हूं। देखें
0: इरशाद,
2: एक मतलब यूं कहा है कि उसकी सूरत गुलाब की सूरत, उसकी सूरत गुलाब की सूरत, यूं मेरे महताब की सूरत, उसकी सूरत गुलाब की सूरत, यूं मेरे महताब की सूरत, चांद भी रूबरू नहीं होता, चांद भी रूबरू नहीं होता, ऐसी मेरे जनाब की सूरत, चांद भी रूबरू नहीं होता, ऐसी मेरे जनाब की सूरत, एक लम्हे पे क्यों गुमा इतना, एक लम्हे पे क्यों गुमा इतना, जिंदगी है हुबाब की सूरत, एक लम्हे पे क्यों गुमा इतना, जिंदगी है हुबाब की सूरत।
0: बहुत खूब।
2: और एक शेर देखें कि क्या खबर कब सफर ये थम जाए
0: जी,
2: क्या खबर कब सफर ये थम जाए, देख तो लूं जनाब की सूरत,
0: क्या बात,
2: देख तो लूं जनाब की सूरत। शुक्रिया जनाब।
0: बहुत खूब बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। तो अब मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा सर कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
2: जी, मेरे पसंदीदा शायरों में सबसे पहला जो नाम आता है वो है मोहतरम जनाब मीर तकी मीर मरहूम साहब
0: जी,
2: और जो उनकी बेहद जो मुझे गजल जो पसंद है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है
0: जी,
2: जाने न जाने गुल ही न जाने, बात तो सारा जाने।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारी सी गजल अशोक सर के हुक्म पर।

0: बहुत खूब सर, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि एक छोटा सा ही सवाल कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे साहब?
1: दरअसल समीर साहब, मैं बतलाऊं आपको कि इन द क्लास ऑफ 9th 10th, इन द ईयर ऑफ 1966,
0: जी
1: मेरा बड़ा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं।
0: जी
1: और ये इत्तेफाक है या हुस्ने इत्तेफाक है आप इसे,
0: क्या बात है,
1: दैट्स आई एम। और मेरे वालिदे मोहतरम जो थे
0: जी,
1: वो कवि थे और काफी नामचीन अपने समय में रहे।
0: जी
1: परिवार में लगभग सभी लोग साहित्य में दखलंदाजी रखते हैं।
0: क्या बात है, बहुत खूब। तो
1: मेरे
0: जी
1: जी
0: जी जी कहिए कहिए।
1: हमने काका हाथरसी, नीरज जी, बालकवि बैरागी, अटल जी, इन सब राहत इंदौरी साहब और इन सभी लोगों के साथ पार्टिसिपेट किया है, मंच को साझा किया है उन लोगों के साथ। और मैं भी बचपन से ही लिखता रहा हूं, लेकिन 90s में आके मैंने अपना ट्रैक चेंज किया तो मैं हिंदी से उर्दू के खत्ते में आ गया। तो उसके लिए मैंने बाकायदा उर्दू लिखना पढ़ना सीखा, डिप्लोमा किया और उसके बाद पीजी की तैयारी की थी कामराज यूनिवर्सिटी से
0: जी।
1: लेकिन चूंकि मेरा एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर था तो मैं पूरे पेपर से नहीं दे सका उसके, लेकिन उर्दू लिखना पढ़ना और एक इसे अजीब इत्तेफाक कह सकते हैं आप कि मेरा ना तो उर्दू का कोई टीचर रहा है और ना मिलने गजल का कोई मेरा उस्ताद है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तब मेरे हिसाब से तो आपने अपनी काबिलियत को, अपने पैशन को आगे बढ़ाया खुद। और
1: समीर साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ अलग एक थोड़ा सा वो रखता हूं कि इट्स नॉट ए पैशन
0: जी,
1: इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: गजल मेरे लिए पैशन नहीं है, शौक नहीं है, ये मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है। जिस तरह मुझे सोना जागना सांस लेना जरूरी है, उसी तरह मैं गजल को जीता हूं।
0: भाई वाह, क्या
1: और ये अजीब इत्तेफाक मानेंगे आप कि मैं बाकी गजल को जीता ही हूं, मैं एक सेकंड भी इसके बिना नहीं रहता।
0: बहुत खूब बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात। बहुत बहुत बढ़िया कि एक ऐसी कला है जिसको आप हर सेकंड हर पल अपने साथ जीते हैं, जिसका हर पल आप सांसों में महसूस करते हैं उसे, क्या बात है, बहुत खूब। तो सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए एक और गजल हमें सुनाए।
1: आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा तरन्नुम से पढूं।
0: जी जी, बहुत खूब, इरशाद।
1: इश्क

0: भाई वाह,
1: आज तो बस अमीर जिंदा है। और एक शेर ये देखें कि
0: इरशाद
1: एक एहसास का शेर है।

0: प्यार की तिल में पीर जिंदा है,
1: बहुत खूब,
0: प्यार की दिल में पीर जिंदा है। और ये शेर समीर साहब
1: इरशाद, इरशाद सर, इरशाद
0: उस इंसान के लिए जो खुददारी से जीता है।
1: जी,
0: हर कहीं सर झुकाऊं कैसे,

0: जब तलक के वजीर
1: बहुत
0: जिंदा है,
1: बहुत खूब,
0: जब तलक के वजीर जिंदा है, जब तलक के वजीर जिंदा
1: बहुत खूब, बहुत ही खूब,
0: है। शुक्रिया
1: बहुत ही
0: शुक्रिया जनाब।
1: प्यारी, बहुत ही प्यारी गजल साहब, बहुत ही प्यारी गजल। और तरन्नुम में तो इसमें चार चांद लग गए, मजा आ गया साहब, बहुत खूब। बस एक छोटी सी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ऐसी कोई गजल है जो आपकी शख्सियत को बयान करती हो, सूट करती हो आपकी पर्सनालिटी को?
0: जी जरूर जरूर। देखिए वो तो हर किसी शायर का अपना एक कहना चाहिए कि जज्बा भी होता है और वो अपना अपने आप को बयां भी करता है,
1: जी,
0: और जब तक शायर खुद अगर अपनी कलाम में ना नजर आए तो फिर शायरी मैं समझता हूं कि उतनी असरदार नहीं होती है।
1: क्या बात है, बहुत
0: मैं कुछ एक गजल मैं पढ़ना चाहता हूं
1: जी
0: जो
1: जी जरूर
0: खास तौर से ये मैं समझता हूं कि ये मेरा जो जो मेरी फितरत है,
1: जी
0: आदत नहीं, मेरी फितरत जो है
1: जी
0: वो आप इन आसार में जरूर देखेंगे।
1: जी इरशाद,

0: से
1: और ये शेर बतौर खास देख लें,
0: अच्छा
1: दौरे हाजिर के हालात।
0: जी
1: जिंदा है हर

0: और ये शेर समीर साहब देखें,
1: इरशाद
0: बड़ा सच्चा शेर है
1: जी,
0: और हर शख्स पर लागू है
1: जी।
0: इसमें दो लफ्ज, एक लफ्ज है नफस, नफस का माने मायने होते हैं सांस है,
1: जी
0: सांस
1: जी।
0: मेरे नफस नफस पे है कर्जा हयात का, हयात जिंदगी
1: जी।

0: सेना टूटे थकान में। और ये शेर बतौर खास देखें,
1: इरशाद
0: यहाँ एक लफ्ज है मौजज़ा,
1: जी
0: यानी कि चमत्कार।
1: जी
0: ये मौजज़ा इश्क भी

0: बहुत खूब,
1: जी
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी
1: शुक्रिया,
0: गजल,
1: बहुत शुक्रिया।
0: एकदम तरन्नुम में डूबी हुई, बहुत खूब, बहुत सुंदर। अशोक सर, अब मैं गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुना सकें।
1: जी मेरे पसंदीदा जो गजल गायक हैं जनाब पंकज उदास साहब,
0: जी जी
1: और दूसरे जो हैं वो हैं जो गुलाम अली साहब।
0: जी
1: तो आप जो भी उनकी कोई गजल आपके पास हो आप वो सुनवाएं।
0: जी बिल्कुल साहब, पंकज उदास साहब की एक गजल जो आपका, आपकी इजाजत हो तो, जो मुझे बहुत पसंद है।
1: जरूर जरूर।
0: गम की घटा जो छाए तो झूम के बरसे। मैं आपकी इजाजत से हाजरीनों के लिए ये गजल पेश करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अशोक सर, बहुत ही छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: देखिए, मेरे परिचय में ऐसा कुछ खास भी नहीं है और मेरी शख्सियत में भी ऐसा कुछ खास नहीं है कि जिसके लिए हम किसी तरह के इश्तियारे और तस्वीरात का इस्तेमाल करें। एक साधारण सा इंसान हूं और बिल्कुल बस ये है कि मैं जो मेरी जो फितरत है
0: जी।
1: वो एक मुझे खुदा दाद एक चीज है मेरे पास, वो है मोहब्बत। मैं मेरे तमाम लोगों से बे इंतहा मोहब्बतें करता हूँ। मुझे ये एक पहन है ऊपर वाले की,
0: जी जी जी जी
1: और तो बस एक बहुत साधारण सा आदमी हूँ आपकी और मेरी सबकी तरह से।
0: क्या
1: तो
0: बात,
1: मेरा ऐसा कोई खास कुछ नहीं है कि मुझमें कुछ ऐसी, मुझे भी नहीं लगता कि मुझमें कोई बहुत खासियतें। तमाम खामियां जो आम इंसान में होती हैं वो सब उन्हीं के साथ जी रहे।
0: क्या कहा है साहब, क्या कहा है, बहुत खूब बहुत खूब। तो आगे बढ़ते हुए डॉक्टर अशोक सर, मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए एक गजल और सुनाएं।
1: जी जरूर, मतलब पेश करता हूं कि जैसा कि मैंने कहा कि मेरी फितरत, ज्यादातर लोग यूं समझते हैं कि मैं इश्किया गजलें पढ़ता हूं
0: जी,
1: और ये हकीकत भी है, लेकिन ये इश्क हकीकी भी है और ये इश्क मजाजी भी है।
0: ओहो क्या बात है,
1: तो ये दोनों ही है, तो आप जहां इसको जोड़ेंगे ये गजल वहीं जुड़ जाएगी।
0: वाह,
1: देखें मतलब देखें
0: जी।
1: बदनाम तो मुझे

0: बहुत बढ़िया।
1: और ये शेर मैं अपने लिए ही पढ़ता हूँ
0: जी इरशाद।
1: सीधा सा आदमी था मैं,

0: दिया।
1: बहुत खूब,
0: और ये शेर बतौर खास आपकी खिदमत में रखता हूं कि
1: जी
0: जहरीला जहर सा हूं मैं, पत्थर सख्त हूँ
1: जी
0: जहर।

0: तबीयत ने कर दिया दीवाना।
1: बहुत थी प्यारी गजल, बहुत ही खूबसूरत गजल। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खूबसूरत सी गजल के लिए। अब मैं गुजारिश करूंगा कि अपने पसंद के किसी गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
0: देखिए, मैं चूंकि मेरे तमाम जो पसंदीदा शायर हैं और जो गायक हैं, जैसे शहरयार साहब की एक गजल है, शदीद प्यास थी फिर भी छुआ ना पानी को।
1: जी,
0: शदीद प्यास थी फिर भी छुआ ना पानी को, मैं देखता रहा दरिया तेरी रवानी को।
1: क्या बात है।
0: मैं देखता रहा दरिया तेरी रवानी को। तो शहरयार साहब की जो उमराव जान की जो गजलें हैं
1: जी,
0: वो मेरी बेहद पसंदीदा गजलें हैं
1: जी।
0: तो आप चाहें तो सुनवा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। आइए दोस्तों, डॉक्टर अशोक साहब के हुक्म पर सुनते हैं उमराव जान की ही ये प्यारी सी गजल। डॉक्टर अशोक सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपकी गजलें सुनी, आपसे बातचीत की, आपकी पसंद की गजलें हमने सुनी। बहुत मजा आया हमारे श्रोताओं को भी और हमें भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।
0: जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: शदीद प्यास थी फिर भी छुआ न पानी।

दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और मध्यम गति से ये बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग क्या कहता है इस पर आज नजर डालेंगे। साथ साथ में साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम काफी विषयों पर बातचीत करने जा रहे हैं, जैसे कि कपास की खेती। चूंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो यहाँ पर कपास की खेती का विशेष ध्यान दिया जाता है, किसान विशेष तौर पर इस खेती को करते हैं। कौन सा बीज होना चाहिए, कैसे इसको करना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ में मधुमक्खी पालन एक अच्छा व्यवसाय है तो हमारे किसान साथी इसको भी, मधुमक्खी पालन भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। साथ साथ में सफल किसान की कहानी पर भी हम एक नजर डालेंगे। लेकिन इन बातों से पहले हम साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि भारत का मौसम विभाग इस बार का क्या कहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा, चक्र से होकर गरज रही है और प्रदेश के चंबल संभाग के जिले तथा ग्वालियर, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, आगरा जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिलों में आ चुका है मानसून। आज अगर बात करें कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम और भोपाल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर रीवा, इंदौर एवं चंबल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े अगर देखा जाए तो छपारा, गोहरगंज, नागदा, पचौर और परसवाड़ा, अनूपपुर, बहोरीबंद, देवेंद्र नगर, गुलाबगंज, रायसेन, खाच रोड और नर्मदापुरम में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान ग्वालियर संभाग के जिलों में काफी गिरे और शेष संभागों में जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। ग्वालियर संभागों के जिलों के सामान से विशेष रूप से कम है और सागर संभागों के जिलों में सामान्यता काफी कम। इंदौर और उज्जैन संभागों में सामान्य, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में सामान से कम और शेष संभागों में जिलों में सामान्य वर्षा हो रही है। आपको बता देना चाहते हैं कहां पर किस तरीके की वर्षा होने की संभावना बताई जा रही है, मौसम विभाग क्या कहता है। वर्षा या गरज चमक के साथ बौछार किन किन स्थानों पर होनी है। रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में संभावित है। आगामी 24 घंटों में भारी और मध्यम वर्षा कहां कहां होने वाली है। कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना बताई जा रही है, जहां पर डिंडोरी आएगा, बैतूल, बालाघाट, राजगढ़, रायसेन, धार, उज्जैन, अनूपपुर, मंडला एवं सिवनी जिलों में, और कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने के अल्पकालीन तेज हवा की संभावना उसमें रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिले इसमें आते हैं। तो ये थी हमारे जानकारी जो अभी आप सुन रहे थे मौसम की। अगर झाबुआ जिले की बात करें तो अधिकतम तापमान आज का जो रहा है वो 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा है, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। वर्षा अभी तक नहीं हुई है, बहुत कम हुई है। 1 जून से अभी तक जो वर्षा कुल आंकी गई है वो 15.9 मिलीमीटर आंकी गई है। तो ये मौसम आधारित जानकारी आपको हम दे रहे थे क्योंकि इस आधार से हमारे किसान साथी चुनाव कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें फसलों का चयन करना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम में जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी कपास की खेती कर सकते हैं। साथ साथ में जानेंगे किस तरीके से हमारे किसान साथी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो आइए इस रेडियो रिपोर्ट को हम सुनते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, आप लो रेडियो अपनी बात है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, आप लो रेडियो अपनी बातें।
3: किसानी में हम आपको बताएंगे कपास की खेती के बारे में। जी हाँ, कपास की अगर हम बात करें तो व्यवसायिक दृष्टि से इसका काफी महत्व है और इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। लेकिन कई तरह की बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि कपास की अच्छी पैदावार हमारे किसानों को प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट।
4: कपास नकदी फसल है जो हमारे देश में सफेद सोना कहा जाता है।

0: गर्मी ज्यादा है तो उससे बचाव के लिए जरूरी है कि उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां ऊपर पेड़ पौधे उसके आसपास हो, और इसके लिए जरूरी है कि कहीं कहीं अब इस समय फ्लोरा की कमी है तो उनको भोजन के रूप में आर्टिफिशियल भोजन दें। इसके लिए एक भाग पानी और एक भाग चीनी दोनों का घोल बनाकर एक चाशनी तैयार कर ले। उस चाशनी को ठंडा होने के उपरांत फीडर की सहायता से किसान भाई यानी कि मधुमक्खी पालक आदि मधुमक्खियों में इस भोजन को दें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम थोड़ा और भी बढ़ सकता है, टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है, तो जो टाट के बोरे होते हैं उन टाट के बोरे को जो बॉक्स है मधुमक्खी के उसके ऊपर डाल देना चाहिए। साथ ही साथ दो या तीन बार उनको गीला करना चाहिए दिन में, ताकि जो बॉक्स का तापमान है वो सामान्य बने रहे और मधुमक्खी को ज्यादा दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ये भी जरूरी है, ये भी ध्यान रखें कि इस समय मधुमक्खी पालक को मधुमक्खी का विभाजन नहीं करना चाहिए। अगर कमजोर मधुमक्खी है, बॉक्स कमजोर है, परिवार बॉक्स कम है, तो ऐसे समय पर उनको विभाजन नहीं करना चाहिए।
1: गर्मी के मौसम में पर्याप्त फूल नहीं होते, जिससे मधुमक्खियों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में मधुमक्खी पालकों को चाहिए कि उनके कृत्रिम भोजन की व्यवस्था करें। इसके लिए क्या करें, जानते हैं विशेषज्ञ से।
0: तो स्थान का चुनाव करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना है मधुमक्खी पालक को।
1: ये तो बात हो गई मधुमक्खियों के भोजन की, अब बात कर लेते हैं उनकी सुरक्षा की। इस समय अन्य कीटों से उन्हें कैसे सुरक्षा दी जाए, आइए जानते हैं।
0: मधुमक्खी पालक ये देख ले कि ऐसे स्थान का चुनाव इस समय करे कि जहाँ फूल यानी कि फ्लोरा हो, वैसे स्थान पर मधुमक्खियों का स्थानांतरण कर दे। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि पहले से वहाँ स्थान आपका होना चाहिए कि पानी वहाँ है, अच्छा पीने के लिए स्वच्छ पानी है, आसपास जो है कोई हाईवे रूट तो नहीं है, साथ ही साथ कोई किसी तरह की पेस्टिसाइड, क्योंकि आजकल जो फसलें हैं अधिकतर किसान भाई पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो ये भी देख लें कि अधिकतर वहाँ ज्यादातर किसान कीटनाशियों का अधिक प्रयोग ना करते हो, और करते भी हो तो ये भी शोध कर ले कि किस कीटनाशी या फंजीसाइड का किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब मक्खी होती है तो वो फूल के पास जाएगी, उससे फूल से रस चूसेगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो केमिकल होता है उसका इफेक्ट मधुमक्खी के में आएगा, और धीरे धीरे उससे उसकी जो है मोर्टिलिटी होने की भी संभावना बनी रहती है।
1: इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर किसान और मधुमक्खी पालक उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं और उनकी संख्या में इजाफा भी। एचएस और बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें।

0: किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाज्म यानी उच्च कोटि की आनुवांशिकी का पता लगाना, प्रजनन क्षेत्र में पशुओं का व्यवस्थित दुग्ध अभिलेखन शुरू करना, पशु चुनाव के लिए दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना, सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना ताकि पशु पालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले, पशुओं की खरीद बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके, पशु पालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है, इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं जो पशुपालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशुपालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशुपालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: अब नई चीज हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों से बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से

0: पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दे। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ पीठ के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
1: अभी आपने हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सब का उपयोग करके अपने अच्छे से नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है, तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी बिल्कुल तैयारी में लग चुके होंगे क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी अब होने लगी है। खासतौर पर देखा जाए अब मानसून भी आने की संभावना बताई जा रही है, ऐसे हमारे मौसम विभाग कह रहा है। खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो 15.2 mm की बारिश अभी तक हो चुकी है, तो खुशी की बात है कि इस बार सामान्य वर्षा होने की संभावना बताई जा रही है। तो ऐसे में किसान साथी अपनी भरपूर तैयारी करें, पानी संरक्षण को लेकर काम करें। खासतौर पर अगर हम देखें कि जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है उसको एक सा कराएं, समतलीकरण करा लें, मेड़बंधान करा लें, तालाब का निर्माण भी करा सकते हैं। और किसान साथी तालाब अगर है तो उसका जीर्णोच्चारण भी करा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो किसान साथियों को समझने वाली बात है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं मानसून और खेती पर। आज महत्वपूर्ण चर्चा है, इसको आप सुनिएगा और हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी बातचीत को आप सुनकर अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। हम किस तरीके से खेती कर सकते हैं, खासतौर पर जो खरीफ की फसल आने वाली है उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जो लगा सकते हैं, क्या क्या तैयारी हमें करना चाहिए, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को।
2: जी हाँ, मॉनसून का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और खास तौर पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बात करें तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था अगर कहें इस मॉनसून पर निर्भर करती है तो गलत नहीं होगी। खास तौर पर अगर खरीफ फसलों की बात करें तो बहुत हद तक इसकी निर्भरता रहती है और ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि अगर मॉनसून की बारिश अच्छी होगी तो हमारे खेत लहलहाएंगे। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि इस बार मॉनसून कैसा रहने वाला है, हमारे किसानों को अपने स्तर पर किस तरह की तैयारी करनी है और कैसे वर्षा जल संचयन भी वो कर सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के जैनमणि जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में। आप मॉनसून के चाल के बारे में बताएंगे, मॉनसून कैसा रहने वाला है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर वाई शिवे जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में, और शिवे जी हमें क्रॉप्स के बारे में जानकारी देंगे यानी अलग अलग जो फसलें हैं उनके बारे में। और डॉक्टर

0: भारत में मानसूनी सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। इस दौरान हुई बारिश खरीफ फसलों की पैदावार के लिए काफी अहम मानी जाती है, यानी अगर मानसून अच्छा हो तो उपज भी भरपूर हो जाती है। लेकिन मानसून कमजोर हुआ तो इसका सीधा असर कृषि पर सूखे के रूप में पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और खेती के लिए मानसून की अहमियत को समझते हुए मौसम विभाग हर साल मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान जारी करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा के दूसरे चरण के दीर्घ अवधि पूर्वानुमान में इस बार जून से सितंबर के दौरान मानसूनी बारिश के औसत से 96 से 104% रहने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस बार पूरे देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा के सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून सीजन में मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से ज्यादा बरसात होने की संभावना है। मध्य भारत में ओडिशा, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ आते हैं। इन इलाकों में दूसरी फसलों के साथ मुख्य रूप से गेहूं, धान, कपास और दलहन की बुआई की जाती है। गुजरात में किसान मिर्च, जीरा जैसी फसलों की खेती भी करते हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए मानसून की अच्छी बरसात अच्छी पैदावार की सौगात लेकर आती है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, केरल और लक्षद्वीप आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। वहीं उत्तर पूर्व भारत और उत्तर पश्चिम भारत में बरसात के सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान आते हैं। इन राज्यों में अन्य फसलों के अलावा गेहूं, धान और दलहन की खेती मुख्य रूप से की जाती है। हालांकि कई बार मानसून हर इलाके में एक जैसा नहीं बरसता, यानी कई बार कहीं कम और कहीं ज्यादा बरसात भी हो जाती है। आमतौर पर जिन इलाकों में मानसून के दौरान ज्यादा बरसात होती है, वहाँ किसान ऐसी फसलों की बुआई कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जिन इलाकों में कम बरसात होती है, वहाँ किसान उन फसलों की बिजाई कर सकते हैं जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत हो। इसकी जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी ले सकते हैं।
1: जो आप काम करने को कह रहे हो,
2: तो बिल्कुल अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको यह भी बताया कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश की संभावना है वहां के किसान क्या करें, जहां पर बारिश थोड़ी कम रह जाती है वहां पर किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किस तरह की फसलों या फिर किस्मों का उन्हें चुनाव करना चाहिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डॉक्टर जयनमणि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिये मानसून का इंतजार हर किसी को होता है, लेकिन किसान जो है उसका जीवन उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी आमदनी उसके ऊपर निर्भर करती है। सिर्फ मौसम में बदलाव, ठंड या गर्म का मतलब उससे उसका नहीं रहता। तो ऐसे में इस बार का मानसून कैसा रहने वाला है, क्या बताता है भारत मौसम विज्ञान विभाग?
3: देखिए, जो अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन आया है, जो भविष्यवाणी है, वो जून मंथ का मंथली जो रहेगा और कौन सा एरिया में कम रेन होगा और कौन सा एरिया में ज्यादा रेन होगा, और उसके साथ साथ पूरा जो सीजन है 1 जून से 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक सारा भारत में मानसून स्थिति क्या रहेगा। तो पहले अगर बात करें सारा भारत का, तो इस साल ऐसे कुछ फीचर्स नेगेटिवली नहीं है। तो हम अगर ग्लोबल फीचर्स का बात करें, जैसे लानीना चल रहा है और ऐसे ही अप्रैल मई में भी ज्यादा गर्मी हुआ है, तो ये सारा बहुत इंडिकेट करता है कि मानसून अच्छा रहेगा ओवरऑल जो है। अगर ऑल इंडिया रेनफॉल जो सारा भारत का बारिश का अगर हम हिसाब करें, तो पूरा सीजन में जो है टोटल रेन लगभग जो हमारा 89 सेंटीमीटर होता है वो नॉर्मल रहेगा। हम रादर बढ़ाया, इनका मान था 99%, हम 103% दिया अपडेट में। और उसके साथ साथ जून महीने का जो है, सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि मानसून का जो आगमन होता है, ये एडवांस फेज में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर साल का यही स्टोरी है, मतलब यही ऑब्जर्वेशन है, इसमें घबराने का

0: कोई बात नहीं होना चाहिए और कुछ कुछ मीडिया जो बोलते हैं वो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हमारा जो रहेगा स्थिति, अभी पेनिनसुलर इंडिया जो दक्षिण भारत कवर कर रहा है, आगे से भी केंद्रीय भारत और हमारा उत्तर पश्चिम भारत को भी आएगा। और यही है कि कौन सा डेट जो है, डेट तो वैरी करता है, कभी 10 दिन लेट में आता है, कभी 10 दिन पहले आता है। जैसे दिल्ली का अगर बात करें, पिछले साल बहुत लेट में आया,
1: 25
0: के बाद जून 27 नॉर्मल डेट होता है, राजस्थान जुलाई फर्स्ट वीक होता है। तो लगभग जो प्रिडिक्शन है जून महीना का सेकेंड हाफ है वो बारिश अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ मानसून का जो आगमन है अभी तक जो आंकड़ा है कुछ डिले नहीं हुआ है, और महाराष्ट्र का कवर टाइम पर करेगा और केंद्रीय भारत भी टाइम पर करेगा।
1: बिल्कुल, तो अभी जो मानसून की चाल है या फिर रफ्तार है उसमें किसी तरह की हम तब्दीली नहीं देख रहे हैं, जो सामान्य रूप से जो होना चाहिए वैसा ही है। शिव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए जो रिपोर्ट भी हमने दिखाई तो उसमें भी हमने बताया कि किस तरीके से कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब हम एवरेज निकालते हैं पूरे देश का तो लगता है कि हाँ मानसून अच्छा रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और किसानों को इसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। आप जो अभी खासतौर पर जो खरीफ सीजन की फसलें हैं उनके लिए विशेष तौर पर क्या बताना चाहेंगे?
2: हम देखिए, मानसून जैसा कि इस साल नॉर्मल रहने की संभावना है, तो बहुत से क्षेत्रों में जो है अलग अलग किस्में लगाई जाती हैं, अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं, तो उस अनुसार जो है किसानों को अपनी तैयारी करने की जरूरत है। जैसे विशेषकर मध्य प्रदेश के अंदर जो है सोयाबीन लगाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर जो है कपास लगाई जाती है, या छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार के अंदर जो है धान का बहुत खेती होती है। इसके साथ साथ यदि हम उत्तरी भारत की बात करें, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है धान मक्का ज्वार बाजरा इनकी बहुत खेती होती है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी फसलें भी हैं हमारी, जैसे दाल वाली फसलें हैं, अरहर है, मूंग है, उड़द है, इनकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है खरीफ के मौसम में। लेकिन बात ये ध्यान रखने की है कि जो अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्में उन्हीं को लगाएं, और उसके साथ साथ जो है इस चीज का भी ध्यान रखें, पानी यदि आपके यहाँ अच्छी बारिश हो रही है तो उसका जो है पूरा सदुपयोग करें। सदुपयोग करने का मतलब ये है कि पानी को बाहर ना जाने दें, और यदि पानी बहुत ज्यादा भर गया है, जैसे हमारी अरहर की है, मूंग की है, उड़द की है, तो वहाँ पानी निकालने की संभावना भी बढ़ जाती है,
1: बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है फसलें, ये भी हम जानते हैं। अनंता जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि देखिए प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है, रेन और क्रॉप इसके बीच में जब प्रबंधन की बात करते हैं तो इसे हम किस तरीके से समझें?
3: जी, जैसे कि अभी मानसून के समय में विभिन्न फसलें लगती हैं, जिसमें जैसे कुछ धान है, मक्का है, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें, इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलें भी लगती हैं, तो इसमें सभी फसलों को सामान्य रूप से पानी की जरूरत नहीं होती है। जैसे धान है उसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तिलहनी या दलहनी फसलें हैं उनको कम पानी की जरूरत होती है, तो आपको जो उस हिसाब से जो पानी का जो प्रबंधन करना चाहिए फसलों में, जैसे अभी डॉक्टर सीवर जी ने भी कहा है कि धान के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो आपको वहां पे जो ऐसे मैने ऊंची बना लीजिए ताकि अगर बरसात का पानी आता है तो ज्यादा से ज्यादा पानी जो है आपके खेतों में रुक सके। आपकी जैसे तिलहनी फसलें हैं या दलहनी फसलें हैं या सब्जी वर्गीय फसलें हैं, तो पानी के प्रति काफी संवेदनशील होती है, अगर ज्यादा पानी बरस गया तो उनकी जो जड़ें होती है वो खराब होने की संभावना होती है, तो उसमें जो है आप जल निकासी का प्रबंधन कर सकते हैं या फसलों को आप में लगा सकते हैं, जिससे जो है आपका पानी से नुकसान नहीं हो सकता। जैसे कि हम देख ही रहे आजकल जलवायु परिवर्तन की वजह से जो वर्षा की तीव्रता है वो ज्यादा हो जाती है, और जो आपके रेनी डे हम जो कहते हैं कि वर्षा के दिन, उनमें कमी आ रही है। जैसे कि टोटल बारिश हम कहते हैं कि जो आपका मानसूनी वर्षा है वो तो आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन जो वितरण है वो आपका सामान्य नहीं रहता है, कभी आपकी बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, कभी आपका ड्राई पीरियड जो सूखा समय है फसलों के दो बारिश के बीच का समय वो ज्यादा रह जाता है। तो अगर आप जो ये जो पानी है जो पानी एकत्रित नहीं, तो आपको ये सलाह दूंगी कि आप खेत के पास में एक पौंडनुमा स्ट्रक्चर बना दीजिए, और जो बरसात का पानी आता है उसमें इकट्ठा हो जाएगा, साथ ही जो आप जल निकासी करते हैं खेतों से उसका पानी भी उसमें इकट्ठा हो जाएगा, और जब आपका जो सूखा पीरियड ज्यादा होता है उसमें आप जब पंप की मदद से वो जो पौंड में आपका पानी एकत्रित हुआ है उसको आप फसलों में डाल सकते हैं। इसके आपके कई फायदे होंगे, एक तो आपको पानी मिल जाएगा फसलों में, दूसरा जो खेत का जो उर्वरक है वो पानी के साथ आपका उसमें इकट्ठा हो गया तो फिर से आपके जो खेतों में आ जाएगा, तो ये भी आपका फायदा हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, अनंत जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई, क्योंकि देखिए हम पानी को सिर्फ पानी की तरह लेते हैं कि एक पोषक तत्व है जितने जो जरूरत होती है फसलों को, उनमें से एक ये भी है, एक कंपोनेंट है महत्वपूर्ण, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिले, जो अनंता जी ने बताया कि आपके खेत की जो मिट्टी बहती है वो बहुत रिच होती है, वो बर्बाद ना जाए, उस पानी को बर्बाद आप बिल्कुल ना जाने दें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान इसके लिए अपने स्तर पर तैयारी करें, वहां पर भी जहां पर बारिश कम होती है और वहां पर भी जहां पर ज्यादा होती है, दोनों ही स्थिति में आपको अपने स्तर पर जरूर तैयार रहना चाहिए। अब बात मैं करती हूँ जनमणि जी से। जनमणि जी, जैसे कि हम वितरण की बात कर रहे हैं, देखिए सारा प्रबंधन जो है इसी बात पर फोकस हो जाता है कि कहीं बारिश ज्यादा ना हो जाए और कहीं बारिश कम ना हो जाए, लेकिन अगर एक समझने की हम कोशिश करें, एक मेरा सवाल है कि ये दरअसल वितरण कम हो क्यों रहा है, मतलब एक दिन एक क्षेत्र में देखते बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वहीं दूसरी जगह देखते हैं कि कम हो रही है, तो एवरेज तो आपका ज्यादा निकलता है लेकिन पानी जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, प्यास धरती की नहीं बुझती।
0: देखिए मैं इसका ना जो डिस्कशन है दो बातें बताऊंगा। जो एक तो जो एरिया है जैसे उड़ीसा है या हमारा पूर्वोत्तर राज्य है और जैसे हमारा पश्चिम का जो कोंकण गोवा कर्नाटक और केरल, यहाँ तो हर साल ज्यादा बारिश होता है, फ्लड होता है, ठीक है ना। इसकी जो वेरिएबिलिटी है कम है, चाहे मानसून कैसा भी परफॉर्म करो लेकिन जो रेन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा बारिश मिलता है, ठीक है। और अगर हम अंदरूनी इलाका का बात करें जैसे मध्य प्रदेश है या ज्यादा से ज्यादा जो राजस्थान है, ये इलाका में जो है एक तो रेनफॉल का जो अमाउंट है 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर टोटल होता है, और राजस्थान में भी तो ऐसा इलाका है टोटल 50 सेंटीमीटर है। तो ये इलाका में जो मानसून का जो जैसे अभी डिस्कशन हो रहा है, यहाँ जो है जो हम रेनफेयर एरिया बोलते हैं कि जहां बारिश कम होता है उसके साथ साथ इसका जो वेरिएबिलिटी है, मतलब 6 दिन बारिश हुआ या 2 दिन बारिश हुआ फिर एकदम ड्राई स्पेल लंबा है, तो ज्यादा हमारा जो फोकस रहता है ये राजस्थान मध्य प्रदेश इसी इलाका का रहता है कि इनको सही इन्फॉर्मेशन मिले कि कब वेट स्पेल होगा कब ड्राई स्पेल होगा, सो दैट जैसे दे कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन, पानी को स्टोर करना है कौन सा, यू नो सोइंग सीजन कौन सा टाइम में होता है, इसलिए वो मौसम विज्ञान विभाग से जो नियरेस्ट सेंटर है वहां से टाइम टू टाइम हमारा SMS जाता है उसका इस्तेमाल करें।
1: जी यानी जनमणि जी, जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं, पूर्वानुमान होते हैं, इस पर हमारे किसान बहुत गौर करें, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, जैसे आपने बताया कि हैवी स्पेल की अगर संभावना बन रही है, तो किसान सिर्फ इस सीजन की फसल को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेप्स ना उठाएं, बल्कि ये भी सोचें कि इस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। और जैसे कि हाल में हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया, उसमें भी फोकस यही था कि धरती एक ही है और पानी जो है इसे आप लैब में नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बारिश होगी ऊपर से वही पानी आप इस्तेमाल करेंगे या फिर ग्राउंड वाटर होगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान पहले से किस तरीके से पानी को बचाया जाए ताकि आगे भी काम आए।
0: और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो वाटर मैनेजमेंट है, दूसरा क्या होता है कि क्रॉप का जो डिफरेंट स्टेज होता है तो अकॉर्डिंगली जैसे हैवी स्पेल होता है तो पेस्ट एंड डिजीज और आपको जो भी खाद या कुछ भी फर्टिलाइजर डालना है तो वेट स्पेल में तो चला जाता है नीचे, ठीक है ना। तो इसलिए जो मौसम का भविष्यवाणी लेके नॉट ओनली कि आप लगाए धान कि कब आ रहा है मानसून वो एक है, उसके बाद भी कम्प्लीटली मैनेजमेंट जो है वो मौसम का भविष्यवाणी पर होना चाहिए।
1: जी, जी।
0: जैसे पेस्ट डिजीज कंट्रोल है, जैसे फर्टिलाइजर लगाना है, तो बारिश को देखते या कब ड्राई स्पेल है वही विंडो में करना चाहिए।
1: जी शिवे जी, इस पे मुझे लगता है और बेहतर तरीके से बता पाएंगे, आप क्या बताना चाहेंगे।
2: तो पानी पौधों को डायरेक्ट मिलता है, दूसरे जो हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में हम पंप सेट से ट्यूबवेल से पानी को निकालते हैं तो उसके लिए भी रिचार्ज होना ग्राउंड वाटर बहुत जरूरी है और ये वर्षा पर ही निर्भर करता है। तो इसका बहुत अच्छे ढंग से किसानों को सदियों को करना चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसी कॉमोडिटी है कि इसके बिना खेती नहीं की जा सकती, चाहे वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है चाहे इरीगेटेड है, कैसी भी कंडीशन है पानी बहुत जरूरी है। तो किसानों को, क्योंकि आजकल कृषि विज्ञान केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वहां पे जो मौसम की भविष्यवाणी आडवाणी की सूचना जाती है और उन्होंने जो है अपने व्हाट्सएप मैसेज से किसानों को जोड़ रखा है, तो उनके हर किसानों के पास में कम्युनिटी सेंटर पर जाती है कि भी अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है या हवा तेज चलने वाली है या हमको जो है खाद डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक होने की जरूरत है और उनको जो है समय समय पर जो भी उनको मैसेज मिलता है उसी अनुसार जो है, चाहे वो किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर करें कि आज बारिश होने वाली है तो हम नहीं डालेंगे, यदि थोड़ा ड्राई स्पेल आ रहा तो उस समय जो फर्टिलाइजर लगाएं या हो सकता है उनके कुछ इरिगेशन देने की जरूरत पड़े तो इस तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रॉप की प्लानिंग भी इस तरीके से करनी चाहिए कि जैसे इंटरक्रॉपिंग है या मिक्स क्रॉपिंग है या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ऐसे आयाम यदि वो अपनी कृषि पद्धति में लेकर आएंगे तो वहां पर पानी की उपयोग क्षमता बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ उनकी आमदनी भी बनेगी। और यदि कोई दुर्भाग्यवश किसी कारणवश कुछ ड्राई स्पेल आ जाता है तो वहां पर फसल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती
1: जी,
2: है।
1: लेकिन
2: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, किसान भाई जो है इस चीज का भी ध्यान रखें कि उनके पास में कोई अवशेष बचा हुआ है किसी फसल का तो उसको जलाएं नहीं बल्कि उसको मिट्टी के ऊपर छोड़ें, तो आच्छादन का काम करेगा, मल्चिंग का काम करेगा, उससे उनका जो है पानी का ह्रास कम होगा और उनकी जो है वाटर रिटेंशन
1: और कार्बन कंटेंट भी बढ़ेगा मिट्टी का।
2: बिल्कुल, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट तो आत्मा मानी जाती है मिट्टी की और वो जो है पोषक तत्व प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है और जो हमारे जैसे माइक्रोबियल बायोमास है, माइक्रोबियल बायोमास कार्बन है, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिन, इनके लिए भी बहुत जरूरी है।
1: जी, लेकिन डॉक्टर शिवे, जैसा कि आपने बताया कि मौसम कैसा रहने वाला है, पूर्वानुमान देखे उसी के अनुसार ही चाहे सिंचाई करनी है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें, खाद डालें या कीटनाशक डालने हैं, उसी के अनुसार हमारे किसान अपनी योजना बनाए। लेकिन एक बात हम ये भी जानते हैं कि किसान जो एक पैटर्न फॉलो करता आ रहा है, मतलब जो परंपरागत तौर पर कि इस फसल में इतनी सिंचाई लगनी है तो 21 दिन बाद हम पहली सिंचाई लगाएंगे फिर इतने दिन बाद, तो वो भी ये बात सही है कि अगर वो डे मिस हो गया तो उसकी फसल में नुकसान होगा, तो इसे मतलब ये बड़ा जटिल हो जाता है, किसान कैसे समझे इसे?
2: समझने की जरूरत यह है कि यदि बारिश हो जाती है जैसे क्रिटिकल स्टेज बताते हैं कि भाई इस पर पानी देने की जरूरत पड़ती है, धान के अंदर हम बताते हैं कि जिस समय मैक्सिमम टिलिंग स्टेज हो या हमारी जो है बालियां निकलनी अंदर ही बढ़नी शुरू हो में तो उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और बालियां इनिशिएशन से बाली बाहर आने तक तो बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्टेज को ध्यान में रखते हुए किसान भाई पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन उस समय यदि बारिश हो जाती है तो फिर पानी देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मक्का के अंदर जो है हमारी नी हाई स्टेज है, बहुत क्रिटिकल है पानी के लिए, तो उस समय पानी नहीं लगा तो लगेगा तो काफी नुकसान हो जाएगा। यदि बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नई बारिश होती है तो उस समय सप्लीमेंटल इरिगेशन कहते हैं उसको, पूरक सिंचाई कहते हैं, उस समय सिंचाई करेंगे तो उनकी पैदावार अच्छी होगी। इसी तरीके से जैसे मैं बताना चाहूंगा कि अरहर की फसल है, अरहर की फसल या मूंग उड़द की फसल को अभी डॉक्टर अनंत अवशिष्ट जी ने बताया कि बेड पर लगाना चाहिए और आजकल ब्रॉड बेड पर लगा रहे हैं किसान, तो उसी पद्धति को अपनाना चाहिए। तो इस पद्धति को अपनाएंगे तो उनके यहाँ जल भराव की कोई समस्या होती है तो वो उससे नुकसान नहीं होगा बल्कि हमारी फसल बच जाएगी और उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, बाहर नहीं जाएगा और जड़ों को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से यदि कुछ नए आयाम लेकर आएंगे बिजाई के लिए या क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो उनसे जो है ज्यादा हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी और इसके साथ साथ जो हमारे जो दूसरे प्रबंधन के आयाम है वो भी अच्छे होंगे।
1: जी अनंता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जैसा कि डॉक्टर शिवे बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि जब किसान की फसल खेत में होती है या फिर बुआई कर देता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस उसकी फसल होती है, उस वक्त वो उसके आगे पीछे नहीं सोचता, वो उसका पूरा ध्यान नहीं रहता कि मेरी फसल कैसे अच्छी हो, तो कैसे यहाँ पर एक सामंजस्य भी रहे और दोनों तरह से काम होते रहे, क्या बताएंगे?
3: जी, इसमें तो मैं किसान भाई बहनों को यह सलाह दूंगी कि उन्हें मौसम आधारित कृषि करनी चाहिए या मौसम आधारित कृषि प्रबंधन उसमें करना चाहिए, उन्हें समय समय पर मौसम की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अभी मानसून के समय जो मुख्य मौसमीय तत्व होता है वो बारिश होती है। बारिश केवल सिंचाई के लिए नहीं, खरपतवार नियंत्रण करना है या आपका कीटनाशक है या आपका जो आपके बीमारियां आ रही हैं उसके प्रबंधन के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी डॉक्टर सिवेही बता रहे थे कि आपको कब सिंचाई देनी है, आप डिफरेंट स्टेज होती है इसमें आपको सिंचाई देते हैं और किसान भाई बहन क्या करते हैं कि उसी में दे देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्होंने सिंचाई कर दी और उन्हें मौसम की जानकारी नहीं है, उसके तुरंत बाद बारिश आ गई, तो फसलों को जितना पानी चाहिए था उससे ज्यादा पानी उनको फसलों को मिल गया। तो हर चीज को अपना ऑप्टिमम जो कहते हैं उतनी जरूरत होती है, तो अगर ऑप्टिमम से ज्यादा उनको पानी मिल जाता है तो उनकी फसलें खराब हो सकती है। इसके अलावा जैसे खरपतवार नाशी डालना है।

0: है, कीटनाशी डालना है आपको, बीमारियों से बचाना है अपनी फसलों को। तो किसान भाई बहनों को अगर इसकी सूचना नहीं है कि अगले 2-3 दिन में बारिश होने वाली है और उन्हें कीटनाशक आपके फसलों में डाल दिया, तो इसका क्या होगा कि तुरंत उसके बाद बारिश हो गई तो कीटनाशक उसका धुल जाएगा और धुल के जो है ये आपको
1: मिट्टी को भी
0: दूषित करेगा और वहां से जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। और अगर आपका बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो रन ऑफ करके पानी के साथ बह के जो नजदीकी नाले हैं या नाले से होते होते जो नजदीक के तालाब है उनमें भी चला जाएगा, उसमें मछलियां हैं, अन्य जलीय जंतु हैं,
1: प्रदूषित हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा।
0: तो आपका देखो एक तो एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से बच जाएगा अगर आपको मौसम की जानकारी है, आपकी मृदा प्रदूषित होने से बच जाएगा, आपका जो भूजल है वो प्रदूषित होने से बच जाएगा और आपके जो जलीय जंतु हैं वो भी आपके बच सकते हैं। तो अगर आपको छोटी सी जानकारी एक मिल जाती है तो आपके इतने जो साइड फायदे हैं हम कहते हैं ये फायदे आपके हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी रिसोर्स सेविंग हो जाती है क्योंकि आपने जो है पानी की आपकी बचत हो रही है, आपने पानी लगाया तो पानी लगाने में आपका लेबर का जो खर्चा आ रहा है या डीजल का खर्चा आ रहा है तो वो भी आपका बच जाता है, तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो बच जाता है।
1: बिल्कुल देखिए, यानी कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि मानसून का प्रिडिक्शन, उसका पूर्वानुमान कितना सटीक होगा इस पर भी आपकी आय निर्भर करती है क्योंकि उसी के अनुसार आप आगे की जो कृषि क्रियाएं हैं उनके बारे में विचार कर सकते हैं, उनके बारे में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं। इसीलिए इस विषय को हमने आज शामिल किया अपने कार्यक्रम में ताकि किसानों तक जागरूकता फैले और मॉनसून के चाल पर वो नजर रखें। लेकिन कई बार समस्या ये आती है कि किसानों तक इतनी सटीक जानकारी सही समय पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि मौसम की चाल इतनी तेजी से बदलती है कि किसान खुद भाप नहीं पाता। तो इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून और खेती की। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है और किसान कितने खुशहाल होंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी, किस हद तक होगी, ये भी निर्भर करता है मॉनसून कैसा रहने वाला है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जयनमणि, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, किसान मौसम पर नजर रखता है, मौसम के अनुसार अपनी योजना बनाना चाहता है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी उसे मिलेगी तभी यह संभव होगा कि कल बारिश होने वाली है, तभी वो तैयारी करेगा ना कि आज वो सिंचाई ना लगाए। तो इसके लिए किस तरह का तंत्र बनाया जा रहा है, किसानों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है?
2: देखिए, जो मेनली जो आजकल हमारा जो किसान भाई और बहन के साथ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप हर जैसे ग्राम या डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, जहां हमारा जो लेटेस्ट है 4 बार पर डे बुलेटिन जाता है। तो उसमें हम 2 तरीके का भेजता है। एक है, एक नावकास्ट जाता है जो मेनली सडन डेवलपमेंट के बारे में बताता है, नेक्स्ट 2-3 घंटा है तो किसान भाई के लिए ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए है। जैसे लाइटनिंग है जो सडनली लोगों के ऊपर, आप सभी को मालूम है बिहार झारखंड उड़ीसा में ज्यादा जाने जाता है, तो उनका सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। वो एक SMS जाता है, उसमें ध्यान देना चाहिए अपना सेफ्टी के लिए, क्योंकि जून महीना में ज्यादा जान को खतरा रहता है, जून जुलाई में जैसे मानसून आगमन का टाइम होता है। और दूसरा एक है कि हमारा जो शॉर्ट रेंज है, मतलब 5 दिन तक जो प्रेडिक्शन है वो आता है, डेली हम लोग भेजते हैं, मैसेज के थ्रू में भेजते हैं। अगर कोई सीवियर वेदर है, लंबा स्पेल है, एक्टिव स्पेल है, मानसून आ रहा है, सारा डिटेल कवर करता है। और उसके साथ साथ एक एक्सटेंडेड रेंज, लंबा अवधि का 2 हफ्ते तक वैलिड है, हम भेजते हैं। वो 2 हफ्ते वाले जो 14 दिन का जो प्रेडिक्शन है वो जाता है। सभी किसान भाई जो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हमारा होता है, जैसे हर स्टेट में हमारा सेंटर है, तो अगर वो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र जी का केंद्र का बात हो रहा था, अगर वहां संपर्क करे तो सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आजकल वो 80% to 90% एक्यूरेटली जो है ड्राई स्पेल है या ज्यादा बारिश होगा, कितना दिन बरसेगा, वो डिटेल्स आजकल से ही जा रहा है इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। और मैं तो और बोलूंगा कि जो नावकास्ट है उसको अपना सेफ्टी के लिए जरूर व्यवहार करें, क्योंकि ज्यादा जाने जो है हमारा एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं उन्हीं के
1: बिल्कुल। और पिछली बार का मुझे भी याद भी आता है कि किस तरीके से आप बताए कि लाइटनिंग की वजह से
2: बिहार में।
1: और डॉक्टर शिवे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं मौसम देखते रहे, उसी के अनुसार अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी है वो डेवलप कर, ये तो बात हुई सिंचाई की, तो क्या ये सिर्फ सिंचाई तक ही सीमित है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन भी किसी तरह का संबंध है जिसे हमारे किसान ध्यान में रखें?
3: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। किसान भाइयों को ये जानने की जरूरत है कि पानी है तो तभी वो अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, पानी नहीं है तो फिर वो पोषक तत्व भी नहीं डालते हैं, क्योंकि पोषक तत्व जो है पानी से ही लिए जाते हैं, जड़ों के माध्यम से। तो इस तरीके से ध्यान करने की जरूरत है। जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो गई है जिस दिन, तो उस दिन जो है उनको नाइट्रोजन नहीं डालनी चाहिए, जब तक पानी खेत में खड़ा है, धान के खेत में विशेषकर, क्योंकि धान हमारे भारत में लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होता है, सभी प्रदेश के अंदर होता है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन का बहुत बड़ा ह्रास होता है। और नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता धान के अंदर देखें वो 25 से 30% से ज्यादा नहीं है, बाकी लॉस ही होता है, चाहे अमोनिया गैस बनकर उड़ जाता है, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, या जो है फिर वो नाइट्रेट लीचिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है किसानों को कि जैसे हमारा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उसमें जो है आप फोलियर फीडिंग कर सकते हैं, पानी का घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, और यदि आपकी बहुत ज्यादा बारिश हो गई है तो उस समय जो नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब पानी निकल जाए खेत से तभी दें, तो इससे हमारी नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ साथ आजकल बायो फर्टिलाइजर्स भी पानी के साथ साथ बहुत अच्छे पोषक तत्व प्रबंधन में हमारी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, अच्छी फसल लेने के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए, इसका भी इस्तेमाल किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ग्रीन मैन्यूरिंग है या हमारा
1: गोबर हरी खाद वगैरह
3: सड़ी गली गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो जो है हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूसरा हमारा जो फसल अच्छी होती है, और तीसरा जो हमारा ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी मृदा के अंदर जो है पानी का अवशोषण ज्यादा होता है तो पानी बह के नहीं जाता है ऐसी मृदाओं के अंदर, और जो हमारी वैसी मिट्टी होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की कमी है वहां पानी बह के भी चला जाता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी नहीं बढ़ती है। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करें। अभी दूसरे जो है भारत सरकार ने और हमारा इफ्को जो है नैनो यूरिया बना रहा है, तो कुछ नाइट्रोजन उपरणीय छिड़काव से नैनो यूरिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, इससे नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी
1: और श्रम भी इसमें कम लगता है
3: और इसके साथ साथ कभी कभी हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पौधों के अंदर दिखाई देते हैं कि भी जिंक की कमी होगी, आयरन की कमी होगी। विशेषकर मैं बताना चाहूंगा जैसे डायरेक्ट सीधी बिजाई धान की कर रहे हैं और अभी चली रही है पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसानों और दूसरी जगह भी करते हैं, तो यदि शुरू में उनके यहाँ आयरन की हरिमाहीनता दिखाई देती है तो उसके लिए जो है पर्णीय छिड़काव से कर सकते हैं। बाद में जब बारिश होगी तो फिर उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश अच्छी होती है तो फिर जो है आयरन की कमी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है पानी की और पोषक तत्व प्रबंधन का एक सामंजस्य है जो एक अच्छा मृदा स्वास्थ्य के लिए और अच्छी उत्पादकता के लिए और अच्छा जो है रिटर्न देने के लिए जरूरी है।
1: जी डॉक्टर अनंता, एक चीज हम ये भी देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं।

0: फसल की कौन सी स्टेज है और इसमें कौन सी बीमारी या कीड़ा आने वाला है, तो इसकी फॉरवार्निंग पहले से पता चल जाती है मॉडल के आधार पर। तो ये जो है अलर्ट जो है हम किसान भाई बहनों को दे सकते हैं कि भाई आपकी ये फसल लगी है, इसमें ये कीड़ा या बीमारी आ सकती है, तो आप पहले से इस फसल की निगरानी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए किसान भाई लोगों को अपने जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो आपके अनुसंधान संस्थान है या आपकी कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनके संपर्क में, कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में तथा मौसम वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए और समय समय पर आपको जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है अपना मोबाइल पे जो है जैसे मेघदूत ऐप अभी बताया है या दामिनी ऐप है, इससे बिजली की आपको जानकारी मिल जाएगी। मेघदूत ऐप है, इसमें आपको मौसम की जानकारी के साथ साथ ही कैसे आपको प्रबंधन करना है, मौसम आधारित कृषि प्रबंधन करना है, ये भी आप उसमें जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर से ये जो मेघदूत ऐप है और दामिनी ऐप, इसमें
1: जी ये बहुत अच्छा आपने बताया। मेघदूत ऐप के बारे में तो काफी प्रचार प्रसार हुआ, दामिनी ऐप जो
2: लो लाइटनिंग
1: का है, तो बारे में थोड़ा सा बताइए कि बिजली का प्रिडिक्शन में पता चल सकता है।
2: देखिए बिजली का जो प्रिडिक्शन है वो मॉनिटरिंग है, हमारा जो सिस्टम है कहीं कहीं इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उसके साथ साथ सैटेलाइट बेस्ड भी हम लोग को पता चलता है। तो आधा घंटे विद इन वन आवर वो मैसेज जाता है कि जस्ट फोर वार्निंग, मतलब कहीं इलाका में हो रहा है आगे जाएगा। तो उसको हम लोग ये जैसे बताए कि जो दामिनी ऐप है उसके थ्रू में आपको पता चलेगा कौन सा एरिया में वो एक्टिविटी चल रहा है या थोड़ा बहुत होने वाला है। अच्छा। वो मैपिंग की वजह से वो गूगल ऐप में दामिनी डाउनलोड करके कर सकते हैं बिजली की गिरने का जो है। और जैसे बताया मेघदूत, मेघदूत में आपका पूरा अपना एरिया का भी आप देख सकते हैं, लोकेशन और जो जगह है वहाँ क्या बारिश का संभावना है वो मिल सकता है डिटेल
0: जी। इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे जैसे बरसात के मौसम में आप खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि खरपतवार काफी आती है और खरपतवार का जो मुख्य फसल है उससे काफी प्रतिस्पर्धा होती है, वो मृदा से पोषक तत्व तो लेती है, इसके साथ साथ जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको भी बाध्य करती है, क्योंकि उनकी पैदावार जो है मुख्य फसल से ज्यादा हो जाती है और वो जो मुख्य फसल है उसको प्रकाश कम मिलता है तो उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है या कम हो जाती है, तो इसका काफी उपज की गुणवत्ता पे भी इसका असर पड़ता है। तो समय समय पर जो आपको खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए, इससे आपके जो मृदा है उसमें भी क्या होगा कि जो हवा का आदान प्रदान अच्छे से होगा, हवा का आदान प्रदान अच्छा होगा तो आपकी जो जड़ें होंगी वो भी मजबूत होंगी, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व वो जमीन से ले लेगी, अच्छे से आपका प्रकाश संश्लेषण होगा और आपकी जो उपज की गुणवत्ता है और उत्पादकता दोनों में बढ़ा होगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो अभी आपने बताया, देखिए सुनने में बातें बहुत आम सी लगती है लेकिन इसका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है फसलों पर। जयरमणि जी, जैसा कि हम मानसून की बात कर रहे हैं और पहले तो जो तरीका होता था कि विंड्स किस तरफ हवा बह रही है और आसमान में बादल छाए या नहीं छाए उसको देखकर अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन अब तो सब चीजें बहुत सिस्टमैटिक हो गई, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम मानसून को ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो हमारे देश का मानसून किस तरह का है, नेचर ऑफ मानसून क्या है?
2: देखिए ये मतलब जानकर हम गर्व अनुभव करना चाहिए कि जो मानसून है वो भारत में सबसे ज्यादा रेन होता है। अगर सारा विश्व का जो क्लेम करते हैं, जैसे अमेरिका भी क्लेम करता है हमारा मानसून है, या कहीं भी आप जो ट्रॉपिकल एरिया है, मानसून मतलब विंड एक्चुअली मेनली हवा, हवा का गति एंड हवा का दिशा। तो हमारा भारत का ऐसा नेचर, मतलब हमारा जैसे लैंड है केरला से लेकर के हिमालय अगर जाएं और हमारा दो जो समुन्द्र है जो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। हिमालय तो एक जो है जो हमारा हवा आ रहा है समुद्र से उसको रुकता है। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा ये पूरा रेगिस्तान बन जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो रेन का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा है, जैसे अगर किसी के साथ कंपेयर करें तो मानसून का सबसे ज्यादा रेन होता है हमारा पूर्वोत्तर, सभी को मालूम है मौसिनराम है, चिरापूंजी है, उसके साथ साथ हमारा जो कोंकण का क्षेत्र है चाहे कर्नाटक का क्षेत्र है बहुत ज्यादा बारिश होता है, 2500 मिलीमीटर एक्चुअली, 250 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। तो ये हमारा का पूरा साल का जो पानी है और बिजली भी है मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि खेती तो है ही है, उसके साथ साथ हमारा जो पूरा जीवन है मानसून के द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसलिए मानसून बहुत अहम माना जाता है साउथ एशिया के लिए, पर्टिकुलरली हमारा भारत के लिए है।
1: जी जी, शिवेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्रॉप के हिसाब से अगर हम बात करें, खरीफ की जो फसलें हैं अगर उनके बारे में एक एक करके और बारिश से जोड़कर अगर इसको थोड़ा समझना चाहें तो किस तरह से?
3: हाँ देखिए, जैसे भारत के अंदर जो लगभग खरीफ में जो राइस है, धान है, सभी प्रदेशों में उगाया जाता है, इसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है, बिना पानी के धान नहीं हो सकता, तो इसके लिए बारिश का बहुत बड़ा रोल है। और जो हाँ, ये हमारी खाद्यान्न की जो पूर्ति के लिए नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कमाने के लिए,
1: हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है,
3: खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है, और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी जरूरी है। जैसे पिछले साल जो लगभग हमने 32-36 हजार करोड़ रुपए का जो है
1: रिकॉर्ड एक्सपोर्ट
3: धान का किया है, तो उससे अर्निंग हुई है, तो उस तरीके से धान के प्रबंधन के लिए जरूरी है कि पानी का जो है सदुपयोग करें। और विशेषकर मैं पंजाब हरियाणा में, क्योंकि बासमती की खेती होती है, यहां बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि वो डायरेक्ट सीधी बिजाई करेंगे, डायरेक्ट सीडिंग करेंगे, तो उसमें पानी की बचत होगी और पानी कम लगता है, लगभग उसमें 25-30% पानी की बचत हो सकती है, क्योंकि हमको जो है लगभग उसमें 20-22 इरीगेशन देनी पड़ती है, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड राइस है उसमें हमको जो 28-30 इरीगेशन देनी पड़ती है। साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, जैसे हम पडलिंग करते हैं उस समय यदि बारिश नहीं होती है तो उसमें लगभग हमारा 15 लाख लीटर पानी लग जाता है पडलिंग के अंदर, तो उस पानी की बचत कर सकते हैं हम सीधी बिजाई करके, लेकिन ये सीधी बिजाई जो है अभी कर लें वो बारिश आने से पहले, ताकि उनका जमाव हो जाए। तो इस तरीके से जो है धान के अंदर पानी

0: प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन मक्का है, ज्वार है, बाजरा, इनको थोड़ा कम पानी की जरूरत पड़ती है। मक्का, ज्वार, बाजरे को, मक्का, ज्वार, बाजरे को हमेशा जो रेज बेड पर लगाना चाहिए, रिज पर लगाना चाहिए। तो रिज पर लगाएंगे उससे दो फायदे होंगे, एक तो उनकी फसल को नुकसान नहीं करेगा पानी यदि अधिक हो जाता है, और दूसरा उनका ग्राउंड वाटर कहीं पानी, खेत का पानी खेत में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और ये हमारा स्लोगन भी है और ये हमारा विजन भी,
1: पानी खेत में, गांव का पानी गांव में,
0: गांव का पानी गांव में रहे। तो इस तरीके से यदि बिजाई करेंगे वो मक्का, ज्वार, बाजरे के अंदर, तो उनकी फसल अच्छी होगी। और हमारा, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। अब बात आती है कपास, कपास बहुत हमारी प्रमुख
1: कमर्शियल
0: क्रॉप है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत मतलब अच्छी क्रॉप है। तो लगभग जो ये पंजाब में भी, हरियाणा में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, गुजरात में भी होती है, और हमारे लगभग महाराष्ट्र, हमारे जो मध्य प्रदेश में, इनमें सभी प्रदेशों में होती है। तो इसके लिए जो है आजकल ये बताते हैं कि रेज बेड पर लगाएं, रेज बेड पर लगाएंगे तो उनका ये फायदे होंगे कि दो लाइनें आ जाएंगी और दो लाइनों के बीच में खूड बन जाएगा, तो अधिक पानी होगा तो खूड के अंदर जो है वो अवशोषित हो जाएगा, फसल को नुकसान नहीं होगा। अब आती है जैसे गन्ने की बात, गन्ना एक हमारी बहुत ही कॉमर्शियल क्रॉप है, सभी जानते हैं, चीनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, सभी खाते हैं लगभग। तो इसके लिए जो है पानी की बहुत जरूरत पड़ती है गन्ने के लिए, गन्ने के लिए पानी खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है गन्ने की पानी जो सहन करने की क्षमता वो अधिक है और इसको पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसको भी जो है इस तरीके से जब लास्ट जुताई करें, लास्ट अर्थिंग करें, तो गन्ने के ऊपर जो है मिट्टी चढ़ा दें, मिट्टी चढ़ा देंगे तो उनकी जो है गूल बन जाएंगी और गूल के अंदर जो पानी रहेगा तो पानी बाहर बहकर नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है यदि अधिक पानी भर भी जाता है गन्ने के अंदर तो गन्ने की फसल को जो है बांधने का जरूर सोचें, उसको जो है गिरने से बचाने के लिए। अब बात आती है जैसे हमारी जो है कुछ दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें भी हमके लिए बहुत जरूरी है खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, पोषण सुरक्षा के लिए भी प्रोटीन का स्रोत है। और विशेषकर जैसे हमारा अरहर है, अरहर दूसरे नंबर पर आती है चने के बाद में, और लगभग सभी प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है, और लंबी अवधि की भी है, मध्य अवधि की भी है, और बहुत कम अवधि की भी किस्में पूसा ने निकाली है, पूसा अरहर 16 करके वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसको भी जो है रेज बेड पे लगाना चाहिए, यानी कि खूड बना कर जो हमारी बेड बनी हुई है उस पर लगाना चाहिए। और मूंग उड़द को तो पहले से ही बताते हैं 2-3 लाइन लग जाएंगी और उसके बाद में जो है पानी का जो है कोई नुकसान नहीं होगा और फसल अच्छी होगी, या कीट प्रबंधन करने में या खरपतवार नियंत्रण में भी यदि रेज बेड पर लगाएंगे तो उसमें काम।
1: और जो जो हमारे किसानों की एक ये शिकायत रहे या कहें समस्या रहती है कि दाल दलहन लेने में थोड़ा सा वो घबराते भी है कि बारिश अगर ज्यादा होगी तो फसल को नुकसान हो जाएगा, काफी सेंसिटिव होती है ये फसल, तो ऐसे में जैसे कि डॉक्टर शिवे आपने बताया कि रेज्ड बेड यानी कितना ऊंचा होना चाहिए, किस तरीके से मतलब रेज्ड बेड किस
0: तरीके से, लगभग जो है ये 5 से 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और उस तरीके से उस पर लाइने भी 2-3 आ जाती है। तो इसके यही फायदा होता है कि हमको खरपतवार नियंत्रण करना है तो फूड किसी को इंसेक्टिसाइड डालना है तो उसके कूड़ के अंदर चलकर डाल सकते हैं, और जो एक्सेस पानी है वो कूड़ के अंदर आ जाता है, वो जड़ों में नहीं रहता है, तो इसका ये फायदा है। तो रेज बेड जो है बहुत ही जरूरी है, हालांकि किसान कुछ क्षेत्रों में जागरूक है लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी उनको जागरूक होने की जरूरत है ताकि उनकी फसल को वाटर लॉगिंग से बचाया जा सके और उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो।
1: जी और डॉक्टर अनंता आप क्या बताना चाहेंगे जो कीट और बीमारियों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि दलहन में ये समस्या काफी रहती है।
2: इसके लिए आपको मौसम की जानकारी होनी जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मौसम आधारित फॉरवार्निंग मॉडल है, तो उस फॉरवार्निंग मॉडल के आधार पर आप जो आने वाले कीड़े और बीमारी की जानकारी समय से ले सकते हैं, उसी समय आप जब कीड़े या बीमारी को बचाने के लिए उसमें कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं, या अगर बारिश आने वाली है तो आप कभी भी उसमें छिड़काव ना करें। और जैसे कि अभी डॉक्टर सिवे जी भी बता रहे थे कि धान के लिए और इनके लिए बारिश की मानसूनी जो वर्षा होती है वो काफी अच्छी होती है, एक टाइप से बर्दाश्त

0: उससे जो फसल की जो गुणवत्ता होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। इन दोनों में जो मानसूनी वर्षा है और फसल की गुणवत्ता उपज है, इसमें एक सकारात्मक रिलेशनशिप है। अगर आप सिंचाई का पानी ज्यादा देते हैं तो उसमें उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं आएगी बजाय आपकी मानसूनी वर्षा की। तो नहीं तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप जो मौसम के बारे में जानकारी अवश्य लें और अपने क्षेत्र में कौन सी फसल लगानी है, फसल का चुनाव उसी आधार पर करें कि आपके वहाँ पे कितनी बारिश होने वाली है। अगर बारिश ज्यादा होने वाली है तो जो पानी को नवीन क्रॉप है जैसे धान है या कपास है या गन्ना, वो वाली फसलें लगा सकते हैं। और अगर बारिश कम हो रही है तो वहाँ पे आप जैसे बाजरा है या दलहनी है या तिलहनी फसलें लगा सकते हैं और उसमें समय समय पर मौसम आधारित प्रबंधन आप कर सकते हैं। इससे आपका नई रिसोर्स की तो सेविंग होगी, आपकी लागत में भी कम आएगी और आपकी जो उपज है उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। और अगर गुणवत्ता अच्छी है तो आपको उसका जो है बाजार भाव भी अच्छा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, जैसा आप पूछ रहे थे ना कैसा इंसेक्ट और डिजीज का प्रबंधन करें, और क्योंकि जैसा डॉक्टर अनंत अवस्थी जी ने पहले भी बताया था कि बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से कीड़े मकोड़े और बीमारियां ज्यादा आती हैं, तो किसानों को ये सलाह देंगे हम कि वो जागरूक रहें, अपने खेतों में जाते रहें, देखते रहें कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं आ गए हैं या कोई बीमारी तो नहीं आ गई है। अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र नजदीक के हैं वहां से वो सलाह लेते रहें, और दूसरे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डेवलपमेंटल एजेंसीज है उनसे कॉन्टेक्ट करते रहें, सही दवा का सही समय पर इस्तेमाल करें, और जब बारिश ना हो रही हो तभी जो है उसका स्प्रे करें। और ये आपको वार्निंग मिल जाती है कि भाई आज बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, फिर आपको जो है किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे कोई डिजीज है चाहे कोई आपका।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी, एक भारत

यानी उस तरह की उपज आपको प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ रुक सकता है लेकिन खेती नहीं रुकती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अब मौसम पूर्वानुमान को लेकर किसानों में किस तरह की जागरूकता है और किस हद तक उनका विश्वास पैदा हुआ। छोटा सा ब्रेक।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडवा भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: डॉक्टर जनमणि जी, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपने पूर्वानुमान देखा है तो उसको बिल्कुल आप मानकर आगे बढ़ें। तो आपको किस तरह का फर्क लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से भी काफी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका प्रभाव या फिर इसका असर किसानों पर किस तरह का देख रहे हैं आप?
2: नहीं, देखिए, जैसे जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं महाराष्ट्र का बात करूं, कुछ कुछ राज्यों हैं जहां जो पेनिट्रेशन है, जिसको माना जाता है, बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र में तो हर कृषक के पास जो भी जागरूकता है पहुंचता है, ग्रामीण कृषि केंद्र है, जैसे वहां तक लेवल पर पूरा आयोजन है। लेकिन कुछ कुछ एरिया है, जैसे झारखंड एरिया है, कुछ एरिया बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल का पेनिट्रेशन हो, व्हाट्सएप का हो, तो जहां जहां नेटवर्किंग कम है, फिर भी मतलब जैसे ग्रामीण कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचता है। लेकिन कृषक का पर्सनल जागरूकता बहुत जरूरी है कि वो उनका जो जैसे बात हो रहा था, नियरेस्ट कहाँ है, इन्फॉर्मेशन कौन देता है, तो एक बार एक चैनल बन जाए और वो व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहां मेंबर बन जाए, तो आपको देखिए एक तो मिलता है कि पिछले हफ्ते में कैसा बारिश था, और वो भी दर्शाता है, जैसे हमारा कलर भी रहता है, जैसे ग्रीन कलर मतलब बहुत ज्यादा बारिश चल रहा है, ठीक है ना, तो फ्लड का सिचुएशन क्या रहेगा, तो अपने आप को एक शिक्षणीय या शिक्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा सारे किसान भाई और बहन को कि वो जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जरूर इस मानसून का पहले
1: जी जी
2: वहाँ दर्शन कर, वहाँ जाके विजिट करें
1: और डिटेल
2: उनसे ले,
1: विशेषज्ञों के टच में रहे, उनके संपर्क में रहे।
2: दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉट ओनली हमारा जो एग्रीकल्चर का जो क्रॉप है वो उसके लिए चाहिए, बट खुद का सेफ्टी के लिए भी। जैसे आजकल जो है जलवायु का परिवर्तन वजह से बारिश का जो परिमाण है बहुत बढ़ जाता है, एकदम से 400 मिलीमीटर 500 पिछले साल देखे होंगे कि
1: काफी नुकसान भी,
2: तो वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है उनको, नावकास्टिंग के रूप में, वार्निंग के रूप में, सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टाइम स्केल में मिल जाता है, लोकेशन एरिया में भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शिवे, क्योंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, किस तरह का प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था पर मॉनसून का आप देखते हो? कि हम देखते हैं कि जिस दिन भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मॉनसून का प्रिडिक्शन होता है तो अच्छा हुआ तो शेयर बाजार मुस्कुरा उठता है, अगर गड़बड़ रहता है तो मुरझा जाता है, तो इतना मतलब इतना प्रभाव है मॉनसून का हमारी अर्थव्यवस्था पर, उसे किस तरीके से उसका असर दिखाई देता है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में?
3: देखिए, मॉनसून का जो है हमारी खेती पे बहुत आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है हर मामले में, चाहे वो खाद्यान्न का उत्पादन है, चाहे दलहन उत्पादन है, चाहे तिलहन उत्पादन है, चाहे हमारी गन्ने की फसल है, चाहे हमारी धान की फसल है, सभी फसलों के लिए, क्योंकि खरीफ के मौसम में अधिक उत्पादन होता है हमारा, और बरसात के दिनों में यदि पानी का हम अच्छा सदुपयोग करते हैं और बरसात की सूचना मिल जाती है किसानों को, तो उनके चेहरे पे एक अलग से मुस्कान आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि उनकी फसल जो है, हम कितना ही पानी दे लें धान और गन्ने के लिए, जब तक ऊपर से मानसून की बारिश नहीं होती तो ये दो फसलें बहुत अच्छे ढंग से नहीं होती। तो इस वजह से जो है हमारी अर्थव्यवस्था में जो मानसून का है बहुत बड़ा रोल है, चाहे हमारा खाद्यान्न उत्पादन है, चाहे एक्सपोर्ट में है, चाहे हमारा किसान की खुशहाली है, चाहे हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, तो उस सब में जो है मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये बहुत ही मतलब जरूरी है,
1: जरूरी,
3: और ये इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना और समय से होना बहुत जरूरी है अच्छी पैदावार।
1: डॉक्टर अंता, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: जी, जैसे कि अभी बताया कि मानसूनी वर्षा से काफी फायदा होता है, मैं तो ये कहूंगी कि अभी जो पूर्वानुमान है उसकी जो सटीकता है उसमें काफी अच्छा आ रहा है, क्योंकि पहले जैसे हम देते थे मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट जो हम देते थे IMD से जो मिलता था वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता था, तो उसके आधार पर ही जो है मौसम आधारित परामर्श बनाए जाते हैं, लेकिन अब ये ब्लॉक लेवल पे आ गया।
1: बिल्कुल,
4: तो जैसे ब्लॉक लेवल पे आने से इसकी जो है एक्यूरेसी जो है अच्छी हो गई है, तो अगर एक्यूरेसी अच्छी होगी तो जो मौसम आधारित हम सलाह दे रहे हैं वो भी आपकी अच्छी होगी, सटीक होगी, और उससे जो किसान भाई बहनों को ज्यादा फायदा होगा।
1: जी बिल्कुल, तो जानकारी का सटीक होना बहुत जरूरी होता है, खासतौर पर जैसे कि हम कह रहे हैं जब खेती की बात करते हैं तो मौसम का क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, ये हम सभी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने अपने अपनी राय रखी और महत्वपूर्ण चर्चा में आपने जानकारी साझा की हमारे किसानों तक। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडवा भी 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
5: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा को सुना हमारे विशेषज्ञों द्वारा, ये जानकारी आपको दी जा रही थी और खासतौर पर उन्होंने मौसम और खेती को हम किस तरीके से देख सकते हैं। खासतौर पर मौसम आधारित हम लोग खेती करते हैं कि अगर सामान्य से अधिक वर्षा हुई या सामान्य वर्षा हुई, किस क्षेत्र में कैसी वर्षा होगी, किस तरीके से हमें फसल को बोना चाहिए, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। हमारा वक्त हो चुका है आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी से जाने का। आपके

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। दोस्तों, आज के कलाकार का मंच है नए टैलेंट्स के लिए, नए गायकों के लिए, नई गायिकाओं के लिए जो अपनी प्रतिभा का बहुत बहुत लुत्फ उठा रहे हैं और आज हमें मौका मिल रहा है उनके गीत सुनने का, उनके संगीत को हमें भी मजे से इंजॉय कर पाए, ये हमें आज मौका मिल रहा है। और आज हमारे साथ जो गायिका है वो है रुबीना दास जी। बाकी रुबीना जी अपने बारे में खुद हमें बताएंगी, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके गीत भी सुनेंगे। रुबीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी धन्यवाद। नमस्कार समीर जी, और आज के कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रुबीना, बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ, लेकिन अभी मैं बैंगलोर में अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती हूँ। और मैं अपने बारे में ये बता सकती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ या होममेकर हूँ, उसके साथ साथ मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। मैं खुद भी योगा करती हूँ और दूसरों को भी योगा करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ।
0: बहुत खूब,
1: मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब रुबीना जी। हम सभी जानते हैं दोस्तों, योगा हमारे देश से ही पैदा हुआ और कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कितना ज्यादा प्रभावशाली है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है हमारे दोस्तों में से ज्यादातर लोग योगा को प्रैक्टिस करते होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू करना चाहिए, और अब चाहें तो रुबीना जी से संपर्क कर सकते हैं। रुबीना जी हमारे बीच में एक बहुत अच्छे टीचर, एक बहुत अच्छे फ्रेंड और अब हमारी फैमिली मेंबर भी हो गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम को रुबीना जी की ही आवाज में गाए हुए इस बहुत खूबसूरत गीत से।

0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया रूबीनाथ जी, बहुत बढ़िया स्टार्ट। तो आगे बढ़ते हुए आपसे एक इंपॉर्टेंट, एक मजेदार और बहुत सिग्निफिकेंट सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप मुझे अपने जीवन के कुछ 3 महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बता सकती हैं जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो? 3 लोग।
1: 3 लोग
0: जी।
1: ओके, एक सबसे पहले तो मेरे पिताजी हैं, जिनसे बहुत पॉजिटिविटी मुझे आई है, मैं उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। अभी तो वो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। और दूसरे हैं मेरे माताजी, उनको भी मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ।
0: जी।
1: वो भी नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर है। और तीसरे हैं बहुत, जिनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस अभी अभी हुई हूँ, अभी मतलब कुछ दिनों से, वो है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी।
0: क्या बात है,
1: उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ।
0: तो ऐसी क्या बात है प्रधानमंत्री मोदी साहब में जिससे आपको लगा कि ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं?
1: उन पॉजिटिविटी आती है, वो हमारे देश को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत पीछे थे हम। वो पॉजिटिविटी आती है उनको देखने से, उनकी सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये ऐसे लीडर ऐसे ही होने चाहिए।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया बात कही साहब आपने।
1: जी, एज अ पर्सन मैं उनको बहुत मान देती हूँ।
0: जी, मैं भी वही कह रहा हूं मैम कि एज अ पर्सनैलिटी, ऐसे एक व्यक्तित्व, जितना पावरफुल इंसान वो दिखाई देता है, बस उसको देख के मजा आ जाता है। इतनी बड़ी उम्र में भी कितनी पावर उनमें रहती है, कितना काम वो करते हैं,
1: बहुत ऊर्जा,
0: बहुत ऊर्जा रहती है उनके पास। वो तमाम जगहों पर जाकर वो काम करते हैं जो इतनी उम्र पर पहुंचकर, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर आदमी नहीं करना चाहता या नहीं झुकना
1: नहीं
0: चाहता, लेकिन वो बहुत प्यारे ढंग से हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। ये एक बहुत बढ़िया बात है, बहुत खूब कहा आपने।
1: जी जी, उनसे मुझे योगा के लिए भी इंस्पिरेशन उनसे भी ज्यादा मिली है।
0: क्या बात,
1: इसीलिए मैं ज्यादा उनको पसंद करती हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात कही आपने। वो हमारे देश की पुरानी संस्कृति को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं रूबीना जी की ही आवाज में।

0: बहुत सुंदर। रुबीना जी, आपके जीवन के कुछ सबसे सुखद, बहुत ही प्लेजेंट कुछ पल रहे होंगे, उनके बारे में बताइए।
1: बहुत सुखद पल, जब मेरा पहला बच्चा हुआ था
0: जी,
1: मेरा बेटा जब आया था मेरी गोद में, वो तो सबसे अच्छा सुखद पल होता ही है माँ के लिए।
0: जी जी जी।
1: और जबकि मैं एक बेटी चाहती थी पहला बच्चा
0: ओके
1: लेकिन भगवान ने ये मुराद भी मेरी पूरी कर दी। सो मेरी सेकेंड चाइल्ड जब भी मेरी बेटी हुई है, उस टाइम भी मुझे बहुत ही खुशी मिली।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: और दोनों बच्चे मेरे काफी बड़े हो गए हैं, दो में एक माँ के लिए वो बच्चे ही रहेंगे, लेकिन हाँ वो आज बहुत अच्छा ऑनेस्ट हैं अपने जिंदगी में और बहुत आगे भी आ चुके हैं। दोनों ही जॉब करते हैं, बैंगलोर में ही रहते हैं, मेरे पास ही रहते हैं।
0: वेरी नाइस।
1: और एंड दे आर वेरी नाइस एंड बहुत मान रखते हैं पेरेंट्स का, इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है
0: बहुत खूब।
1: दोनों को पाके मैं बहुत खुश हूँ।
0: अमेजिंग, बहुत खूब रुबीना जी। दोस्तों आपने सुना, मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, कहीं पढ़ी थी मैंने, फिर उसको लेकिन मैंने अपनाने की कोशिश की। देखिए हम लोग सब एक दूसरे से सीख के ही सीखते हैं, कोई ऊपर से ज्ञान हमारे पास नहीं आ जाता। तो हुआ यूं कि एक मित्र ने मेरे से पूछा कि आपकी माँ कहाँ रहती हैं, तो मैंने उनको बताया वहां रहती हैं, जहां भी रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो माँ मतलब आपके पास रहती हैं। मैंने कहा जी नहीं, माँ मेरे पास नहीं रहती हैं, मैं माँ के पास रहता हूं। मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं माँ से दूर जा सकूं या माँ को रख सकूं, मेरी माँ मुझे अभी भी रखती है।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात कहा आपने। और ये बात मेरे दोनों बच्चे भी यही बोलते हैं, हम अपनी माँ बाप के पास रहते।
0: क्या बात है, सो क्यूट, सो क्यूट, दैट इज सो ब्यूटिफुल। दोस्तों सुनिए कितनी प्यारी बात है ये। चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं रवीना जी की आवाज में, जो मैं उनके दोनों बच्चों को डेडिकेट करना चाहूंगा। चलिए सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही सुंदर। चलिए मैम, कुछ पुरानी यादों में चलते हैं। आपकी कोई पुरानी सी याद है जो आपको बड़ी खूबसूरत लगती हो, आपको अक्सर याद आ जाती हो, क्या वो हमें आप बताना चाहेंगे?
1: पुरानी सी यादें, पुरानी यादें तो किसको पसंद नहीं है, है तो बहुत सारी, खजाने ही हैं।
0: जी
1: हाँ, लेकिन कॉलेज के टाइम के जो दोस्तों के साथ जो हम लोग जो टाइम बिताते हैं वो बहुत ही ज्यादा यादगार बनी रहती है। और ये भी मैं बोल सकती हूँ, एक बहुत अच्छी बात है, जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी मुझे गाना सिखाने के लिए लेके जाती थी और मैं थोड़ा पीछे भागती थी मुझे, और मम्मी को मुझे पता था, वो चाहती थी कि मैं गाना सीखूं, जबकि मैं थोड़ा पीछे भागती थी और मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी गाना सीखने के लिए। जब मैं छुपती थी तो मम्मी क्या करती थी, मेरे टीचर को घर पे बुला लेती थी तो, और क्योंकि मेरी आवाज अच्छी थी तो सारे टीचर्स भी मुझे बहुत पसंद करते थे, वो खुशी खुशी आ भी जाते थे और मैं छुप नहीं पाती थी।
0: वाओ,
1: इस तरह से मम्मी ने मुझे थोड़ा, ये बचपन का कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जो अभी मुझे याद आती हैं, तभी मैं मम्मी को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि तभी मुझे गाना थोड़ा बहुत जो सिखाई थी और मैं छुप छुप

0: अच्छा रुबीना मैम, ये बताइए आपके सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: मेरे सबसे पसंदीदा गायक तो किशोर कुमार जी हैं।
0: ओके।
1: मैं उनके गाने को बहुत एंजॉय करती हूँ, वो जो दिल से गाते हैं। वैसे तो मैं मुझे मुकेश जी, मोहम्मद रफी जी और सारे सिंगर्स पसंद है, लेकिन किशोर कुमार जी का जो अल्हड़पन है गाने में वो मुझे ज्यादा पसंद है। और मैं तो हमेशा लता दी को दिल से बहुत बहुत ज्यादा चाहती हूँ, और लेकिन मैं आशा जी के ज्यादा फैन हूँ।
0: क्या बात है, बहुत खूब। आशा जी की क्यों फैन है आप?
1: आशा जी की भी वही अल्हड़पन।
0: बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने,
1: मुझ में भी वही अल्हड़पन है, इसीलिए।
0: बहुत खूब।
1: वैसे तो मैं सबको पसंद करती हूँ, गाना तो सबका गाना चाहती हूँ, लेकिन हाँ उनकी जो जॉयफुलनेस है गाने के लिए, जो जिस जॉयफुलनेस से वो लोग गाते हैं वो मुझे ज्यादा पसंद है।
0: बहुत खूब कहा मैम आपने, बहुत ही प्यारा टर्म यूज किया, जॉयफुलनेस। आशा जी के गानों में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनकी आवाज की लरज में जो जॉयफुलनेस सुनाई देती है वो बहुत अमेजिंग है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक प्यारा प्यारा सा गीत।

0: तो रुबीना जी चलिए एक काम करते हैं, आपके बचपन में चलते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: मैं सच बताऊं, मैं बचपन में जब छोटी थी तो आसमान में उड़ना चाहती थी। तो पंछी बनकर तो नहीं, हाँ उस टाइम मुझे एयर होस्टेस बनने का बहुत मन था।
0: क्या बात है।
1: और

0: बहुत बढ़िया रुबीना जी, बचपन की बात हो रही है, बहुत सारे टीचर्स आपके रहे होंगे, आपके फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: हाँ, वैसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट टीचर्स थे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे मैथ्स टीचर मेरे बहुत फेवरेट थे, और उनकी वजह से मेरा मैथ्स बहुत सुधर गया था और मैं बहुत अच्छा मार्क्स लेके आती थी, और मेरे मैथ्स टीचर भी मुझसे बहुत खुश रहते थे। फिर जब भी मैं कॉलेज में गई तो मेरे इकोनॉमिक्स प्रोफेसर मुझे बहुत पसंद थे, तो उन्होंने भी मुझे बहुत पसंद किया क्योंकि मेरा अच्छा होता था इकोनॉमिक्स में। और फिर मैं ये भी जानती हूँ और ये भी मेरा जीवन का फंडा है कि हम बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, सबसे बहुत कुछ सीखते हैं, सभी टीचर हैं एक दूसरे के। तो मैं अपने बच्चों को भी अपना टीचर मानती हूँ, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ।
0: बहुत ही खूबसूरत बात तो, कही आपने।
1: हाँ, लेकिन हाँ, ये दो टीचर स्कूल के, एक मेरे मैथ्स टीचर और कॉलेज के जो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर थे, ये मेरे अभी भी मुझे बहुत पसंद है। दोनों ही नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं बहुत याद करती हूँ दोनों को, और उनके वजह से आज मैं जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो उनको मैं सोचती हूँ उनके वजह से ही हुआ है।
0: बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात है। दोस्तों चलिए अगला गीत रुबीना जी के ही इन दो टीचर्स को डेडिकेट करते हुए सुनते हैं।

0: बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारी गायकी। तो रुबीना जी, मुझे बताए ना कि कौन से ऐसे तीन शब्द हैं, कौन से ऐसे तीन वर्ड्स हैं जो आपको सबसे अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं, डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं?
1: जी जी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ।
0: ऑलराइट,
1: मैं लाइफ के हर डिसीजन को बहुत कॉन्फिडेंटली फेस करती हूँ। दूसरी चीज है, मैं बहुत, आई एम ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो मैं ऑनेस्टी में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ।
0: ओके,
1: और तीसरी है, मैं बहुत डिटर्मिंड हूँ। जो चीज मैं सोचती हूँ उसको मैं करके ही रहती हूँ। अगर नहीं कर पाऊंगी तो पहले से बता देती हूँ,
0: क्या बात,
1: लेकिन
0: है?
1: हाँ, कोशिश करती हूँ कि वो करके ही रहूं।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात कही है। मुझे आपकी ये क्वालिटी बहुत पसंद आई मैम, जो आप डिटर्मिनेशन की कह रहे हैं। डिटर्मिनेशन वैसे भी किसी भी इंसान की जिंदगी में बहुत ही पावरफुल स्किल होता है। हम इसे डेवलप भी कर सकते हैं और ये हमारे अंदर से इनबिल्ट भी होता है। बहुत खूब
1: जी, थैंक यू।
0: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं रुबीना जी के डिटर्मिनेशन के ऊपर एक प्यारा सा गीत।

0: और रुबीना जी, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए और नए जो गायक आ रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश दीजिए।
1: जी जी, जरूर देना चाहूंगी। और प्रोग्राम सुनने वालों को तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आपने मेरा गाना सुना और सराहा, इसके लिए भी दिल से बहुत शुक्रिया है। और जैसे मैं बोली, मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरा मोटो है हेल्थ इज वेल्थ। तो आप अपने शरीर को, शरीर के प्रति सजग रहिए एंड आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा अगर आप योगा, प्राणायाम या कोई किसी भी तरीके से एक्सरसाइज करते रहे। वो आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए बहुत अच्छा है। शरीर और मन को बैलेंस करता है योगा। तो मैं तो हमेशा बोलूंगी योगा, क्योंकि मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ तो योगा के लिए ही बोलूंगी। लेकिन हाँ, अपने स्वास्थ्य के ऊपर जरूर ध्यान दें। गाना गाते रहे जो मन के लिए बहुत ही अच्छा है, और गाते रहे जो आपको शांति भी देती है, मन को शांति भी देती है। लेकिन उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहिए।
0: बड़ी ही प्यारी बात रुबीना जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, हेल्थ जो होती है वो पहली वेल्थ होती है। अगर हमने उसे संभाला तो बाकी की सारी वेल्थ फिर अपने आप पीछे आ ही जाती हैं।
1: जाएगी।
0: बड़ी ही खूबसूरत बात कही रुबीना जी आपने। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच।
1: नमस्ते, थैंक यू।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

आज के कलाकार का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अमेजिंग एपिसोड लेके दोस्तों मैं हाजिर हूं। आज हमारे साथ जो टैलेंट है वो बहुत लर्नेड, बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैं, लेकिन बड़ी मजेदार वाली बात है कि वो संगीत में भी उतने ही प्रबुद्ध हैं। तो हमें आज उनकी पर्सनालिटी की जानकारी के साथ साथ बड़े ही प्यारे प्यारे गीत भी सुनने को मिलेंगे। इट ऑलवेज ऑलवेज हैपन्स, अ पर्सन डेवलप्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू अनदर लेवल, अनदर फॉर्मेट, अनदर प्रोटोकॉल, अनदर ऑर्बिट, आई मस्ट से। तो आज जो पार्टिसिपेंट, आज जो कलाकार, आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं वो हैं डॉक्टर जितेंद्र वोरा साहब। बहुत ज़्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ, इनका प्रोफाइल मेरे सामने है। जब हम डॉक्टर वोरा साहब का प्रोग्राम एयर करेंगे तो उससे पहले उनका जो प्रोफाइल आपके सामने आएगा तो उसमें आपको सारी बातें पता चलेंगी। फिर भी डॉक्टर वोरा साहब

0: हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के प्रबुद्ध प्रोफेसर रहे, टीचर रहे, बच्चों से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद अभी वो एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हैं, म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं, ग्राफोलॉजिस्ट हैं और ग्राफोथेरेपिस्ट हैं, PLR स्पेशलिस्ट हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और जाहिर से बात है लाइफ कोच है। बाकी हम डॉक्टर वोरा साहब से ही पूछेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू इन फ्रंट ऑफ अवर फैंस, इन फ्रंट ऑफ अवर लिसनर्स। सो प्लीज थोड़ा सा हमारे लिसनर्स से बात कीजिए, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ हैं आप, अभी क्या करते हैं आप?
1: धन्यवाद समीर साहब। मैं अभी मुंबई में बोरीवली में हूँ और कुछ सालों से अभी एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के बारे में जो लोगों को ज्ञान वगैरह भी देता हूँ, मतलब सिखाता भी हूँ, और जो काउंसलिंग होता है और जो कंसल्टेंसी होती है वो भी मैं करता हूँ। तो पहले तो मेरा जो है 30 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग में रहा, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी वगैरह, लेकिन जो म्यूजिक जो है वो म्यूजिक मेरे साथ में चल ही रहा था। जैसे कि तो 1993 में जब वर्तक कॉलेज में यहाँ पर वसई में जब मैं था, तब SYBSE में सबसे पहले मुझे गाने का मौका मिला और वहां से मुझे मालूम पड़ा कि हाँ यस, मैं भी एक मस्क डियर हूँ और जो सुगंध जो आ रही है वो मेरे खुद के नाभि से ही आ रही है। तो वहां से चालू करते करते अभी तक मतलब संगीत का जो सफर है वो चालू ही है और कुछ शोज वगैरह भी करता हूँ। जो मेरा एस्ट्रोलॉजी का वास्तु का जो काम है उसके अंदर मैं लोगों को जो दूसरी थेरेपी जो देता हूँ उसके साथ में म्यूजिक थेरेपी भी मैं लोगों को देता हूँ। और अभी अभी लास्ट मतलब कुछ 3 महीने में मैंने कुछ लाइव ऐसे 11 शोज भी किए हैं, तो इस तरह से लाइफ चल रही है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, बस आउट ऑफ शीयर इनक्विजिटिवनेस आपने मेंशन किया है, एंड ऑफ कोर्स आपके प्रोफाइल में तो मेंशन है ही म्यूजिक थेरेपी। जाहिर से बात है हमारा ये पूरा प्रोग्राम म्यूजिक को ही डेडिकेटेड है, गायकी संगीत, और हमारे जितने भी सुनने वाले लोग हैं वो सब म्यूजिक से कनेक्टेड है। तो ऑफ कोर्स मैं ये जानना चाहूंगा, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग अ ले मैन हियर, ये म्यूजिक थेरेपी क्या होती है डॉक्टर साहब, एंड हाउ डू यू, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डू यू डू विद द म्यूजिक थेरेपी? म्यूजिक थेरेपी से सुनने में आता है कोई तकलीफ है जिसको हम ठीक करते हैं म्यूजिक से, सो इसकी सही डेफिनेशन क्या है?
1: सही डेफिनेशन देखिए ऐसी है कि एक तो होता है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति गाता नहीं है, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमारे चक्रों पर असर करते हैं। देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि जिसको किसी भी चीज में, जैसे कि ऑफिस में अपने पोजीशन में, अपने रिलेशन में या किसी बिजनेस में, किसी में भी अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उसे हमेशा परकशन वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाने चाहिए या बजाते हुए सुनना चाहिए। उससे उस व्यक्ति का मूलाधार चक्र यानी जो रूट चक्र होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। ऐसा मैंने देखा हुआ है कि जो लोग खास करके ड्रम्स हैं या कोंगो बोंगो वगैरह हैं या ढोल है, मृदंग है या इस प्रकार के नगाड़े वगैरह जो हैं वो अगर बजाते हैं या अगर सुनते हैं तो उनकी हमेशा स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, रिलेशनशिप में स्टेबल रहते हैं वो लोग, बिजनेस में, जॉब में, करियर में वो लोग बहुत, उनकी अच्छी स्टेबिलिटी होती है। दूसरा मैं एक थोड़ा सा सीक्रेट में अगर बताना चाहूंगा कि अगर ऑरा स्कैनिंग अगर किसी भी ऑफिस के या कंपनी के लोगों का किया जाए तो जिसका मूलाधार चक्र जिसका स्टेबल होता है ना उसको कंपनी वाले लोग नहीं निकालते, लेकिन जिनको जिनके मूलाधार चक्र जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं या वीक होते हैं उनको ही ज्यादा करके लोग कंपनी से उनको रिलीव करवाया जाता है। तो अगर स्टेबिलिटी चाहिए किसी भी चीज में तो वो मतलब वो म्यूजिक थेरेपी काम में आती है। दूसरा जैसे मैं वोकल का मतलब मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे कि एसिडिटी है आपने कुछ अगर ऐसा अनाप शनाप खा लिया और वो खाने के बाद में आपको एसिडिटी है, अभी एसिडिटी के बाद में अगर आपके पास में कोई भी एंटीसिड नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे एसिडिटी कम अगर हो, तो तुरंत ही आपको खमज राग के गाने गा लेने चाहिए या खमज राग के गाने सुन लेने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक गाना है, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, वो वाला जो गाना है ना, तो वो गाना छू कर मेरे मन कर, तो वो गाना जो है वो खमज राग का है। मैं आपको 100% मैं आपको कहता हूं कि आपकी एसिडिटी जो है ना तुरंत ही एकदम उसका शमन हो जाता है। जैसे ही पूरा ये गाना खत्म होते होते दूसरा अंतरा पूरा होता है, इतने में आपको लगेगा कि हाँ यस, जैसे छाती में चेस्ट में जलन जो है वो कम हो गई है।
0: वाओ,
1: तो ये इस प्रकार के बहुत सारे मतलब जो है ना इसके एप्लीकेशन है म्यूजिक के। और म्यूजिक तो मेरा अगर ऐसा है, मैं आपको कहूं कि म्यूजिक अगर ना होता तो शायद मैं मर गया होता। और गॉड से कनेक्ट करने के लिए, प्रकृति से, निसर्ग से कनेक्ट करने के लिए म्यूजिक इज द ओनली टूल एंड दैट इज द बेस्ट टूल, जिससे आप मतलब आप प्रकृति से, निसर्ग से, एनवायरमेंट से, गॉड से आप कनेक्ट कर सकते हैं।
0: बहुत खूब, अमेजिंग। तो दोस्तों, यूं तो वोरा साहब से इस तरीके की बातचीत के लिए पूरा एक सेपरेट एपिसोड बनता है, जो हम जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे आगे बनाने की, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे डॉक्टर साहब के म्यूजिक की। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत से, जो डॉक्टर वोरा साहब ने हमारे लिए प्रिपेयर किया।

0: बहुत सुंदर। तो डॉक्टर साहब शुरुआत से शुरू करते हैं, आपने अपनी गायकी, आपने कहा ना कि आपको पता चला कि कस्तूरी आप ही के अंदर छुपी हुई है, तो आपने अपनी कस्तूरी की सुगंध कब पहचानी, कब आपको महसूस हो गया कि बस अब गाना है?
1: वो मैंने जब पहली बार हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन था और उसमें मैंने डरते डरते मैंने गाना गाया था, और वो गाना जो है वो इतना फेमस हुआ, इसकी वजह से मैं इतना फेमस हुआ था कि शायद, और मैं आपको, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूं अब, मतलब कोई वो ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन शायद मतलब कृष्ण भगवान को भी जैसे कि ऐसे लगा होगा कि अरे इसके पीछे ज्यादा लड़कियां पड़ गई हैं मेरे मेरे साथ में, मतलब इतनी इतना मैं मोहित नहीं कर सकता हूं जितना ये लड़का जो है इतना सबको मोहित कर रहा है।
0: ओके
1: वो कॉलेज को, वो जो SYBSC और TYBSC का जो मेरे जो दिन थे, वो मेरे सब लोग मतलब बस अभी तुम हमारे लिए गाने गाओ, और उस वक्त ऐसा था, एक आपको शायद पता होगा झंकार बीट्स करके एक
0: मूवी आई थी
1: उस टाइम पे, झंकार बीट्स करके थे, तो उसके जो एक व्यक्ति आए हुए थे तो उन्होंने मुझे सुना, और सुनने के बाद में वो स्टेज पर आए और उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्या करोगे अभी BSc करने के बाद में, तो मैंने कहा मैं तो केमिस्ट बनूंगा, तो बोला नहीं नहीं तुम ये मत करो, तुम हमारे साथ में आ जाओ, तो तुम्हारी वजह से हम भी कमाएंगे और हमारी वजह से तुम भी कमाओगे। तो मैं फिर उनके साथ में फिर मैं शोज करने लगा, और वो शोज में मैं लिटरली, मेरे पास में अभी तो कोई वीडियोस वगैरह तो नहीं है, लेकिन लिटरली लोग मेरे पर पैसे उछालते थे, मतलब वो तो उस, वो एक ऑर्केस्ट्रा का जमाना था ना, लोगों को लाइव परफॉर्मेंसेस वगैरह बहुत पसंद आते थे
0: जी,
1: तो जी। लोगों को मतलब वो सब जो है बहुत पसंद आता था, और उसमें एक गोल्डन टाइम जैसे के मतलब था, बाद में फिर तो मोबाइल वगैरह आ गए तो वो सब ऑर्केस्ट्रा का सब क्रेज वगैरह कम हो गया।
0: ओके
1: और उसी वक्त से मतलब चालू है धीरे धीरे धीरे धीरे करते करते सीखते सीखते सीखते अभी तक यहां तक आए हैं।
0: बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो ये थी वोरा साहब के संगीतमय यात्रा की कहानी, उनकी जर्नी कहां से शुरू हुई, सोशल मीडिया आ गया, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड आ गया, हमें उसको इस्तेमाल करना आ गया, और हमारी रीच सिर्फ एक स्टेज परफॉर्मेंस के सामने मौजूद सुनने वालों से बढ़कर पूरी दुनिया में फैल गई। आइए तो एक फिर प्यारा सा गीत सुने आज वोरा साहब की आवाज में, जिसे हम पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं।

0: बहुत खूबसूरत। चलिए अपनी संगीत के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरीके का म्यूजिक पसंद करते हो डॉक्टर साहब आप? आई मीन टू से फोक म्यूजिक, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, गजल, भजन, ओरिजिनल, इंस्ट्रूमेंटल या कुछ वेस्टर्न, किस तरीके का म्यूजिक? पर्सनली मुझे मालूम है आपका जवाब होगा हर तरीके का म्यूजिक, म्यूजिक इज म्यूजिक। डॉक्टर साहब खाना हमारे सामने एक बफे में बहुत सारा रखा होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ एक दो चीजें चूज करते हैं ना अपनी पसंद की, तो आपके पसंद का संगीत क्या है?
1: मेरी पसंद का जो संगीत है वो तो देखा जाए तो ज्यादा करके ऐसे गाने के जो रोमांटिक हो, जिसमें मतलब प्रेम या मतलब मोटिवेशनल ऐसे गाने वगैरह हो, तो इस प्रकार के जो गाने होते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा मेरी पर्सनालिटी को भी सूट करते हैं, मेरी आवाज को भी सूट करते हैं और लोगों को भी पसंद आता है। और मैं खुद मतलब जब वो गाता हूं मैं, तो मैं उसमें पूरा घुस जाता हूं, मतलब मैं उसमें, क्योंकि जब से मतलब मुझे षणमुखानंद हॉल के अंदर परफॉर्म करते हुए जब कुमार सानू जी ने जब मुझे देखा, तब उन के साथ में मिलते हुए मतलब जब उन्होंने मुझे पूछा ना मतलब कि तुम डरे हुए क्यों थे,

0: तुम उस गाने में पूरा घुस क्यों नहीं जाते? तब जाकर के मतलब मैं जो है वो गाना जब मैं फील करके जब मैं गाता हूं तो मैं भी एंजॉय करता हूं और लोगों को भी एंजॉय करवा सकता हूं। तो मुझे जो है ना ज्यादा करके रोमांटिक गाने जो हैं वो गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं और मैं उसी प्रकार के गाने जो है ज्यादा करके प्रिफर करना मतलब प्रिफर करता हूं। क्योंकि अगर ज्यादातर दर्द वाले जो गाने हैं वो भी या एकदम जिस प्रकार के स्पिरिचुअल या भजन इस प्रकार के गाने मैंने ज्यादातर ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने जो गाने हैं वो रोमांटिक गाने ही मैंने पैपी सॉन्ग्स जो होते हैं जिस पर थोड़ा सा डांस आप कर सके या थिरक सके इस प्रकार के गाने जो है वो लोगों को भी पसंद आते हैं और मैं भी उसका पूरा भरपूर आनंद लेता हूं।
1: बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनते हैं जितेंद्र सर की ही आवाज में।

0: बहुत खूबसूरत जितेंद्र सर, जाहिर से बात है इतने सारे गीत आप गाते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, तो रियाज भी करते होंगे अपने वाद्य यंत्र यानी कि गले का, आवाज का आप ख्याल भी रखते होंगे। सो व्हाट डू यू डू, क्या ट्रिक्स हैं आपके पास या क्या डेली हैबिट्स हैं जिसे आप अपनी आवाज का ख्याल रखते हैं?
1: मेरी आवाज का ख्याल रखने के लिए एक तो चीज है कि ऑफ कोर्स रियाज तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे भी देखते आप, एक कहावत है कि बर्तन मांजत रहिए, रोज मतलब जो है वो बर्तन घिसने पड़ते हैं तो ही वो चमकते रहेंगे। तो उसी तरह से गले को भी अगर गर्म रखना है, गले को भी अगर आपको फ्लेक्सिबल रखना है, तो बहुत जरूरी है कुछ वोकल एक्सरसाइजेस मैं करता हूँ, क्योंकि मैं वॉइस कल्चर सीखा हुआ हूँ, तो अलग अलग आवाज निकालना, अलग अलग उसमें एक्सप्रेशंस फीलिंग्स डालना, तो ये सब मैं पहले से सीखा हुआ हूं, तो उसकी एक्सरसाइज मैं रोज करता हूं। मैं खाने पीने का बहुत ध्यान रखता हूं, जिस तरह से कोई गर्म तवा हो और उसके ऊपर अगर पानी के छींटे अगर मारे जाएं तो कैसे पानी की आवाज आती है, उस तवे पर कैसा असर होता है, वैसा ही अगर हम बहुत ठंडा अगर पानी पियेंगे या अगर बहुत ठंडी चीज या बहुत गर्म चीज अगर खाएंगे या पियेंगे तो वोकल कॉर्ड्स पर धीरे धीरे असर होती है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए बॉडी टेम्परेचर का जो भी पानी या खाना हो वही मैं ज्यादा करके खाता हूं और इस तरह से मैं अपने गले का ध्यान रखता हूं।
0: बहुत सुंदर, अमेजिंग, दीज आर सम ब्यूटीफुल टिप्स दोस्तों जो हमारे काम आ सकती हैं। बहुत बहुत सिंगर्स हमारी फैमिली में हैं जो प्रैक्टिस करते होंगे, उनके पास अपनी ट्रिक्स होंगी, आई सिंसियरली अप्रिशिएट दैट एंड रिस्पेक्ट दैट, लेकिन जाहिर से बात है किसी एक्सपर्ट के टिप्स को सीख लें तो भला क्या बुराई है, हो सकता है हमारे काम आ जाए। आइए चलिए फिर एक प्यारे से गीत का आगाज करते हैं जितेंद्र साहब की ही आवाज में।

0: अमेजिंगली ब्यूटिफुल सिंगिंग. नाउ जितेंद्र साहब, अपने किसी सबसे अच्छे परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताइए, कहाँ हुआ वो, क्या अकॉम्प्लिशमेंट, आपकी फीलिंग क्या हुई. देखिए, क्या दिया गया वो तो बहुत कुछ है, दिया जा सकता है, बट अपने इनर फीलिंग की बात होती है कि हाँ, आज मैंने मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, सबसे बेस्ट काम किया. सो ऐसे किसी अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में थोड़ा हमें बताइए.
1: जी जरूर. उस दिन वो एक किसी एनजीओ का कोई प्रोग्राम था और षणमुखानंद हॉल में, यहाँ पर मुंबई में, जिसमें बहुत बड़े बड़े एमिनेंट ऐसे सिंगर्स भी आए हुए थे और जिसमें कुमार सानू साहब भी वहां पर प्रेजेंट थे. लगभग 700-800 की पब्लिक थी और उसमें मुझे गाने का परफॉर्मेंस करने का मुझे मौका मिला और उसमें मैंने वो हंसीनी वाला जो गाना है किशोरदा ने गाया हुआ, वो गाना मैंने गाया था. और उस गाने में थोड़ा सा स्लाइट, उसमें कहीं मुंह बराबर अच्छी तरह से खुल नहीं रहा था, तो कुमार सानू साहब ने पीछे, स्टेज के पीछे आकर के मुझे कहा था कि क्या तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो और तुम क्या सिगरेट पीते हो. मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं, मैं सिगरेट वगैरह नहीं पीता. तो फिर कि तुम्हारा मुंह पूरा खुलता क्यों नहीं है. तो उन्होंने अब मेरे मुंह में चार उंगलियां ऐसे डाल करके देखी, चेक करने के लिए कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं. तो उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारा मुंह तो पूरा खुलता है, तो फिर तुम वहां पे ऐसा क्यों तुमने परफॉर्म किया. थोड़ा सा स्लाइट, मतलब 99% तक तुमने एग्जैक्टली किशोरदा की तरह ही एग्जैक्टली गाया. आंख बंद करके अगर हम सुनेंगे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे किशोरदा ही गा रहे हैं. तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी कि ये 100% करने के लिए जो है ना, टिप्स मतलब जो है वो तुझे देता हूं. और उन्होंने कुछ मुझे टिप्स दी थी, उस टिप्स का मैं इस्तेमाल करता हूं और लोगों में प्यार फैलाता हूं मैं.
0: वाओ, दैट वाज वन ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दोस्तों. तो चलिए अपने एक्सपीरियंसेस को भी जरा याद कीजिए. सभी एक्सपीरियंसेस बहुत ही एक्सेलरेटिंग होते हैं. याद कीजिए और इस गीत का आनंद उठाइए.

0: बहुत खूब बहुत खूब। जितेंद्र सर, जब किसी गीत को आप गाने चलते हैं, जैसे आपने बताया उस स्टेज पर आपने ओ हंसनी गाया किशोर कुमार साहब का, ऋषि कपूर जी के ऊपर फिल्माया गया था और फिल्म का नाम था बदनाम आदमी, ऐसा कुछ नाम था उसका फिल्म का नाम। एनीवेज, तो किसी गाने को जब चूज करते हैं आप, ये करते हैं कि इसको गाना चाहिए, आपने वैसे पहले ही बता दिया कि आप रोमांटिक गाने ही गाते हैं, तो उन रोमांटिक गानों में भी जब आप गाना चूज करते हैं तो कैसे करते हैं, किस कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखते हैं?
1: खास करके ये मैं ध्यान ज्यादा करके रखता हूँ कि लोगों ने पहले ये गाना सुना हुआ है और देखा हुआ है, तो वो गाने की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को मैं उस सिचुएशन के अंदर मैं खुद मैं घुस जाता हूं, और जब हम उसमें अमालगम हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं या इम्बाइब हो जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे में से वो एक फीलिंग, वो एक एक्सप्रेशंस, वो उस प्रकार का वॉइस कल्चर, वो इस प्रकार का जो कहें वो एक हरकत है या टेम्पो है या जो एनर्जी है वो हमारे में आ ही जाती है। तो इसीलिए उस गाने को फील करते हुए जब हम गाते हैं तो वो गले से नहीं, वो दिल से नहीं, लेकिन वो नाभि से निकल करके वो गाना हमारे गले से बाहर निकलता है और लोग एंजॉय करते हैं।
0: ये बात तो मेथड की हुई डॉक्टर साहब कि आप उस गाने को ऐसे परफॉर्म करते हैं। मेरा हाँ। मैं पूछना ये चाह रहा था कि किसी गाने को जब आप चूज करते हैं तो वो किन किन पॉइंट्स पर चूज करते हैं कि मैं इस गाने को गाऊंगा या इस गाने को नहीं गाऊंगा, वो पूछ रहा था सर मैं। How do you choose a song to sing?
1: हाँ, उसमें खास करके मैं लिरिक्स का बहुत ध्यान रखता हूँ एक तो, और दूसरा सिचुएशन के हिसाब से, मतलब मैं चूज करता हूँ कि ये सिचुएशन कैसी है, और उस सिचुएशन के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से भी मैं गाने चूज करता हूँ और उस तरह से परफॉर्म करता हूँ।
0: ओके, ऑलराइट। तो चलिए दोस्तों, आप सोचिए आपका मेथड क्या है किसी भी गीत को सुनने का, चूज करने का। जैसे कि दो ऑफ कोर्स आई एम नो वे वाइज टू सजेस्ट एनीथिंग फ्रॉम माय साइड इन दिस प्रोग्राम, बिकॉज ये प्रोग्राम डॉक्टर जितेंद्र सर का है, लेकिन जिस तरीके के गाने आई एम नॉट अ सिंगर, मैं गाना नहीं गाता, बिल्कुल भी नहीं गाता। ऑफ कोर्स कुछ कुछ कोशिश कर रहा हूं, एक गुरु है मेरे, बहुत ही बढ़िया गुरु है, मेरे दोस्त भी हैं। एनीवेज, बट मैं चूज करता हूं एक मोटिवेशनल, ऐसे कुछ सॉन्ग्स जिनमें कुछ मैसेज हो, ना तो दुखी हो, ना रोमांटिक हो, ना बहुत मतलब किसी भी एक भावना की तरफ बहुत ज्यादा झुके हुए सॉन्ग्स ना हो, मुझे वो पसंद आते हैं। जैसे किशोर कुमार साहब की ही आवाज में है वो, एक तो रफी साहब की आवाज है, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, दोस्ती के ऊपर है ये गीत, तो इस तरीके के गीत मुझे ज्यादा पसंद आते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको किस तरीके के गीत पसंद आते हैं दोस्तों, सोचिए किस तरीके का पसंद करते हैं आप। आइए तब तक आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुने जो डॉक्टर जितेंद्र सर ने हमारे लिए स्पेशली हमारे लिए तैयार किया। आइए ना।

0: बहुत खूबसूरत, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। जब हम लोग की बातचीत शुरू हुई, लोग सब तो हम लोग बात कर रहे थे, पहले तो स्टेज परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी, फोन्स नहीं होते थे, ये इस तरीके के डिजिटलाइज्ड टूल्स नहीं होते थे, लेकिन आज हम चारों तरफ घिरे हुए हैं। तो किसी एक कलाकार को, मतलब सिंगर को, ये जो सोशल मीडिया अवेलेबल है हमारे पास, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट हो गया है आज की डेट में सिंगर्स के लिए सोशल मीडिया।
1: देखिए, एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा और लेकिन किसने देखा। तो जंगल में अगर मोर नाचेगा और कितना भी अगर खूबसूरत तरीके से अगर नाच ले, या कितना भी अगर देर तक नाच ले, लेकिन अगर कोई देखने वाला, कोई सराहने वाला, अगर उस कला को पहचानने वाला अगर कोई नहीं होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आज हमारी जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट टूल, ओके, टू एक्सप्रेस अवर स्किल। हमारी जो स्किल है, हमारे में जो एक हुनर है, उस हुनर को एक्सप्रेस करने का बहुत ही अच्छा मीडिया, बहुत ही अच्छा मतलब एक जरिया है। और इसमें हमेशा हमें, हम जैसे कलाकारों को इसका बहुत अच्छा उपयोग करना ही चाहिए।
0: ऑलराइट, ऑफ कोर्स, जाहिर से बात है इसके दोनों पहलू होते हैं दोस्तों, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। तो ये हमारी समझ पर निर्भर करेगा कि हम इस टूल का किस तरीके से इस्तेमाल करें। अमेजिंग। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक और बहुत ही खूबसूरत से गीत का आनंद उठाएं और फिर वापस आएं डॉक्टर साहब के पास।

0: पावरफुल सिंगिंग। डॉक्टर साहब, हम अपने प्रोग्राम की उस जगह आ गए जहां पर मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ मैसेज दीजिए, कुछ संदेश दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: जितने भी जो संगीत के जो ये कीड़े हैं, या फिर यूं कहे कि मतलब जो म्यूजिक लवर है, या जो लोग भी जो संगीत को एंजॉय करते हैं या उपयोग करते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। इसलिए हर जगह पर अगर आप म्यूजिक का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, मैं कहूं आपका काम जो है, हर काम आपका आसान हो जाएगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसे कमाना हो, चाहे वो आपका जॉब हो, करियर हो, आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी हो, रिलैक्स करना हो, हर चीज में आप म्यूजिक का उपयोग

0: किसी भी तरह से, चाहे कैसा भी कोई भी गिटारिस्ट अगर गिटार बजाए वो हमेशा अपनी तरह से राइट ही होता है। तो इसीलिए आप अपने सुर का, आलाप का, ताल का, हरकत का, टेम्पो का, किसी भी तरह का कोई भी आप चिंता मत कीजिए कि रॉन्ग आएगा राइट आएगा। आप गाइए, आप झूमिए, आप नाचिए, आप एकदम बहुत ही अच्छी हायर फ्रीक्वेंसी में रहिए, ऑटोमेटिकली ये नेचर, ये कुदरत जो है वो आपको अपनी मतलब लेयर में, अपने उस लेवल में ले लेगा और देखिए आपके सारे काम एकदम आसान हो जाएंगे, आपको हर तरह से लव, पीस, प्रॉस्पेरिटी और ब्लेसिंग्स मिलते रहेंगे।
1: बहुत खूब, अमेजिंग। सो दोस्तों, मेरा बहुत अर्नेस्टली सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सब चीजों की प्रैक्टिस करें और डॉक्टर साहब का धन्यवाद करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच कि आपके गीत सुने, आपसे बातें की, बहुत मजा आया। थैंक यू।

दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ। तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः। दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं अपने आप को समझने की, हमारे व्यक्तित्व को समझने की, हमारी आत्मा को समझने की, हमारे विचारों को समझने की, आध्यात्म की और धर्म की बात करते हैं। तो आज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है मीना अय्यर जी। मैं मीना अय्यर जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए उनसे प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ा सा पहले हमें बताएं कि वो भला कहाँ हैं, क्या करती हैं वो। मीना जी प्लीज।
1: जी नमस्ते, आप सबको मेरी नमस्ते।
0: जी
1: मैं मुंबई में रहती हूँ, मुझे 50 साल हो गए मुंबई में रहते हुए। इसके पहले मैं अहमदाबाद में थी जहाँ स्कूलिंग वगैरह की।
0: जी
1: फिर आगे की पढ़ाई यहाँ की, ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री में। उसके बाद मैंने म्यूजिक इंडस्ट्री में काम किया 20 साल, पहले HMV में और फिर मैग्ना साउंड।
0: वाओ, ओके।
1: तो बेसिकली आर्टिस्टों को फेमस किया।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब।
1: और अभी जो है वो मैं वेदांत सीखती भी हूँ, सिखाती भी हूँ और संगीत भी सीखती हूँ और गाती रहती हूँ।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी ही प्यारी बात कही मीना मैम आपने। खास करके एक शब्द का जो आपने प्रयोग किया, वेदांत।
1: हाँ।
0: कुछ वक्त गुजरा है मेरे को भी।

0: एक किताब पढ़ने का मौका मिला था वेदांता के ऊपर, और कुछ वक्त गुजरा, मतलब शायद 20 साल हो गए, लेकिन
1: अच्छा।
0: पहले पहले तो वो किताब मुझे बड़ी कठिन लगी, लेकिन जब कोशिश करके आगे बढ़ते रहे तो बहुत ही अमेजिंग चीजें क्लियर हुई मुझे पहली बार मेरी जिंदगी में। मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो आज हम थोड़ी सी वेदांत के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हुए, प्रारंभ करते हुए, सबसे पहले तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा मीना मैम
1: जी,
0: कि थोड़ा हमें आध्यात्म के बारे में बताइए, मतलब स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताइए। मतलब मैं और मेरे सीधे साधे सुनने वाले लोग आध्यात्म से क्या समझें, आध्यात्म का क्या मतलब है मैम?
1: आध्यात्म का मतलब है टू जस्ट बी।
0: ओके।
1: जैसे आपको ईश्वर ने बनाया वैसे आप रहो, यानी अपना स्वभाव जिसके साथ आप पैदा हुए हो उस स्वभाव में कोई भी गलत रंग नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे इफ यू आर काइंड हार्टेड,
0: जी,
1: आप दयालु हो स्वभाव से, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं आप ऐसे हो इसलिए छले जाते हो, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हर एक इंसान को ईश्वर किसी खास वजूद से बनाता है और सबका ही अलग अलग ध्येय होता है लाइफ में। अगर वो समझ में आ जाए जल्दी तो बहुत ही बढ़िया, और अगर ना आए तो जब आप तैयार हो जाते हो तो कोई ना कोई गुरु रूप में आ ही जाता है आपको समझाने के लिए कि आप किस चीज के लिए बने हो। तो अध्यात्म इस अपने आप से जुड़े रहना एट ऑल टाइम्स।
0: बहुत खूबसूरत।
1: और हाँ
0: जी बोलिए।
1: हमारा विचार ये है कि हम मनुष्य हैं और सत्य की खोज में हैं, है ना
0: जी,
1: लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम ही वो सत्य हैं और मानवता में हमने अपने आप को खो दिया है, वो सच्चाई है।
0: ओके ऑलराइट मैम, अगर इस बात को मैं थोड़ा सा आपसे और प्रार्थना करूं समझाने के लिए, कि आपने कहा हम मानव हैं और थोड़ा सा हम खो गए हैं, थोड़ा सा हम शायद भटक गए हैं, ऐसा क्यों कहा मैम आपने? मतलब हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, या शायद हमारा ध्यान कुछ ज्यादा ही मटेरियलिस्टिक चीजों में उलझ गया है, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं इस बात को?
1: जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, पहले ही अध्याय में कहा कि हमको दो चीजों ने जकड़ के रखा है इस संसार में, एक तो शोक दूसरा मोह
0: जी,
1: सौरो एंड डिल्यूजन। सौरोस तो तरह तरह के हमारे शोक होते हैं, है ना, कोई चीज गुम गई या किसी से लड़ाई हो गई या किसी से हमने बात की और उसने सही जवाब नहीं दिया, ऐसे शोकों की मतलब कतार बनी रहती है रोज रोजमर्रा की जिंदगी में भी, और हम उससे उभर नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है, हम अंदर से आनंद रूप हैं, वो हम समझ ही नहीं पाते हैं, हम बहुत दूर आ गए हैं इन सब में उलझते उलझते उलझते, इसलिए कहा कि मानवता में हम भटक गए हैं। और मोह किस चीज का, पहले तो ये गलत फहमी है कि ये थोड़ी टेक्निकल बात है लेकिन बताना जरूरी है
0: जी,
1: कि
0: जी।
1: हम अपने आप को सीमित कर देते हैं कि ये जो शरीर है जिसका नाम मीना है ये मैं हूँ
0: जी,
1: लेकिन हम सिर्फ इतना नहीं है
0: जी,
1: एक्चुअली पूरा कॉस्मोस हम ही हैं।
0: क्या बात है।
1: हाँ, ये बेसिकली वेदांत में यही समझाया जाता है कि आप जिसके पीछे भाग रहे हो या जिसे ढूंढने में लगे हो वो आप खुद हो।
0: बहुत खूब, बहुत सुंदर। मुझे मुझे ठीक से याद आ रहा है मीना मैम, कुछ समय गुजरा मैंने रोंडा ब्रायन की वो बुक पढ़ी थी द सीक्रेट, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और मैनिफेस्टेशन वगैरह के बारे में बोला गया है। तो उसमें एक जगह पर समझाया गया कि हमारा शरीर जो है वो एनर्जी से बना है, कोई भी एक छोटे से छोटा कण इस प्रकृति में एनर्जी से बना है, और एनर्जी न कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना दोबारा बनाई जा सकती है, ये हमेशा है, हमेशा से थी और हमेशा रहेगी।
1: बिल्कुल।
0: अब हमारे शरीर का कोई एक छोटा सा बायोलॉजिकल सेल भी एनर्जी ही है, और ये पूरी दुनिया एनर्जी से बनी है। तो उसमें ये बोला गया, तो फिर हम इस पूरी दुनिया से अलग कैसे हुए? अलग हैं ही नहीं, हम भी वही एनर्जी हैं, प्रकृति भी वही एनर्जी है। तो हम किस धोखे में जीते हैं कि मैं ही मैं हूं, मेरा अपना स्वार्थ, मेरा अपना पाना। आपने जो बात कही वो थोड़ी थोड़ी मुझे यहां से मैच होती हुई दिख रही है, मतलब उन्होंने शायद थोड़ा से अलग तरीके से इस बात को कहा
1: जी,
0: लेकिन आपने इस बात को वेदांता के हिसाब से समझाया
1: जी।
0: बहुत खूब दोस्तों, विचार कीजिए। ये पूरा प्रोग्राम विचार करने का ही है, जैसा मैम ने पहले ही कह दिया कि आध्यात्म जो हम हैं वही रहे हैं, इसी की कहानी है, ना हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। अब आपसे ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैम, आपने बहुत प्यारी प्रबुद्ध जिंदगी जी है, तो आपको आध्यात्म के बारे में सबसे पहले कब पता चला, किसने बताया?
1: किसी ने बताया तो नहीं, लेकिन जहां तक मुझे याद है
0: जी,
1: करीब 4 साल की उम्र से ही अगर कहीं कई भगवत कथा हो रही है या कहीं कोई संत आए हैं तो मैं बड़ी खींचती चली जाती थी उसकी ओर कि नहीं मुझे जाना है, और वो जो भी बोलते थे कुछ समझ में आता था कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं बहुत प्रभावित होती थी कि ये कितना मतलब साफ सुथरी बातें करते हैं और उनमें कोई इमोशनल अप्स एंड डाउन्स नहीं है। तो रुचि है बचपन से ही इसमें।
0: अच्छा।
1: और टू ऐड टू दैट, मेरी जो नानी थी वो बहुत ही यंग एज में विधवा हो गई थी और बहुत ही आध्यात्मिक थी वो। हर रोज मॉर्निंग में विष्णु सहस्रनाम पढ़ना, शाम को ललिता सहस्रनाम पढ़ना, और दिन भर लेडीज को एडुकेट करना गांव में कि ये स्तोत्र पढ़ो, ये स्तुति करो, ये करो, वो करो। तो एंड शी यूज्ड टू से वन सेंटेंस, ये सब तो रिलीजियस बातें हुई, भक्ति की बातें हुई, मुझे वो एक बात बार बार दोहराती थी कि मनुष्य जन्म जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको ऐसे ही गवाओ मत। तो तब मुझे ये नहीं समझ आता था, लेकिन वो समझने के लिए मैंने ये रास्ता चुना कि इन्होंने ऐसे क्यों कहा मुझसे। तो उसमें मैं बहुत कुछ सीखती चली गई और अब सिखाती गई हूँ थोड़ा बहुत।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम आज सौभाग्यशाली हैं कि जो आपकी टीचिंग्स हैं, जो आपकी नानी की टीचिंग्स रहीं, वो उसका कुछ हिस्सा हमें आज मिल पा रहा है। वी आर सर्टेनली फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड कि आपसे बातें हो रही हैं। बहुत सुंदर दोस्तों, मेरा फिर से आपसे प्रार्थना रहेगी कि बहुत ध्यान से इस बातचीत को सुनिए जो मीना मैम हमें बता रही हैं। एक पॉज लीजिए, विचार कीजिए अभी तक मीना मैम ने जो कहा, तब तक लीजिए एक ये प्यारा सा भजन सुनिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं।